सुप्रभात, नमस्कार। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1947 के ज्येष्ठ मास की 6वीं तिथि अर्थात 23 मई सन 2026। प्रातः के 5:56 हुए हैं। मीडियम वेव और एफएम पर हमारी प्रथम सभा अब एक साथ आरंभ हो रही है।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर

0: से महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलू की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहले कैंप से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र प्रौद्योगिकी अवसंरचना इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना साथ ही विनिर्माण नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

आइए हम सब मिलकर सबसे पहले उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी कृपा से ये सृष्टि संचालित हो रही है।

हे रघुनाथ, हे राजा राम, श्रद्धा और प्रेम भावना के फूल लेकर आए हैं, अब स्वीकार इन्हें कीजिए।

हाथ जोड़ विनती करूं, हे कृपा निधान, सुखी स्वस्थ और सेहत रहें, मुख पर मधुर मुस्कान, हृदय सिंहासन पर आप विराजो, आठ पहर करते रहें आपके श्री चरणों का ध्यान।

इसी भक्ति रचना के साथ आज का वंदना कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आज की वंदना में स्वर थे ओम व्यास, अनूप जलोटा, मुबारक हुसैन और आशा भोसले के।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 6:30 हुए हैं। अब आपको सुनवाते हैं आज का चिंतन।
1: वेद की सूक्ति है, अदृश्यमाये अर्थात मैं पर्वत को शांत करता हूँ। भाव ये है कि मैं पत्थर के समान कठोर और संवेदना शून्य हृदय को संवेदनशील बनाता हूँ। क्रोध की अग्नि को शांत करके प्रेम की धारा बहाता हूँ। मनुष्य को पत्थर से मोम, कुटिल से सरल और अपावन से पावन बनाने की अद्भुत शक्ति रखता हूँ। ये गुण अक्रोध गुण में है। डाकू अंगुलीमाल की कथा इस तथ्य को उजागर करती है। अंगुलीमाल अपने समय का बड़ा क्रूर और अत्याचारी डाकू था। वो अपने राह चलते लोगों को लूटता, उन्हें तड़पा तड़पा कर मार डालता था। मारे गए लोगों के हाथों की उंगलियों की माला पहनने के कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। देश में चारों ओर उसका आतंक था। एक बार गौतम बुद्ध डाकू के निवास की ओर जा निकले। वो निर्भय होकर उस क्षेत्र में घूमने लगे। अंगुलीमाल को जब यह ज्ञात हुआ तो वो क्रोध से आग बबूला हो गया। वो उन्हें मारने के लिए हाथ में नंगी तलवार लेकर अपशब्दों की बौछार करता हुआ उनके सामने जा पहुंचा। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। बुद्ध की तापसी वेशभूषा, उनके ओजस्वी मुखमंडल और सहज मधुर व्यवहार को देखकर अंगुलीमाल ठगा सा रह गया। वो बहुत देर तक चुपचाप उन्हें निहारता रहा। बुद्ध ने उसे कोमल शब्दों में कहा, भाई क्या आप सामने के पेड़ से दो पत्ते तोड़कर ला सकते हैं? अंगुलीमाल जैसे सोते से जगा, बोला, अभी लाता हूं। ये कहते ही वो दौड़ गया और दो पत्ते तोड़कर ले आया। भगवान बुद्ध ने फिर कहा, अभी काम करो, इन पत्तों को जहां से तोड़ा है वहीं जाकर इन्हें लगाओ। अंगुलीमाल को कहना पड़ा, ये किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। बुद्ध ने डाकू के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाया, जब तुम ये जानते हो कि टूटा हुआ कभी नहीं जुड़ सकता, तब तोड़ने का काम क्यों करते हो? इतना सुनते ही अंगुलीमाल को ये बोध हो गया। उसने बुद्ध के पैर पकड़ लिए, फूट फूट कर रोने लगा। बुद्ध ने डांट बसाया, क्रोध रूपी दानों के हाथों पग पग पर दुर्गति होने पर भी हम उसे गले से लगाए रहते हैं। इसका कारण हमारा अज्ञान है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। प्रसिद्ध दार्शनिक लुकमान ने कहा है कि एक दिन मैं घूमने जा रहा था। रास्ते में रत्न जटित आभूषणों से सजी एक अति रूपवती स्त्री मिली। मैंने उसे पूछा, देवी आप कौन है? मैं बुद्धि हूं। कहाँ रहती हैं? मनुष्य के सिर में। कुछ दूर जाने पर दो सींगों वाला एक विशालकाय राक्षस मिला। उससे प्रश्न किया, आप कौन हैं? मैं क्रोध हूं। कहाँ रहते हैं? मनुष्य के सिर में। परंतु वहां तो बुद्धि रहती है भाई। बुद्धि रहती जरूर है, परंतु मेरे पहुंचते ही वहां से कूच कर जाती है, राक्षस ने जाते जाते कहा। लुकमान की एक कहानी वैज्ञानिक आधार पर है। क्रोध की दशा में मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है। क्रोधी के सामने न करने योग्य और न बोलने योग्य जैसा कुछ नहीं रहता। वह सब कुछ कर सकता है और सब कुछ बोल सकता है। क्रोध प्राण हरने वाला शत्रु है। क्रोध व्यक्ति और समाज के लिए अनिष्टकर तो है ही, इसलिए संसार के बनाने वाले के आदेश का उल्लंघन भी होता है। परमात्मा की सृष्टि में मनुष्य का स्थान सबसे ऊंचा है। परमात्मा ने नदी, पर्वत, वनस्पति, पशु पक्षी सबकी रचना के बाद मानव को धरती पर उतारा, जिससे वह इस सुंदर रचना का आनंद लेता हुआ अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सके। उसकी उत्पत्ति के समय ईश्वर ने वेदवाणी के माध्यम से उसे आदेश दिया, आरोह इमम अमृतम सुखम रथम, हे जीवात्मा इस शरीर रूपी रथ पर सवार हो, जो सुख देने वाला और मोक्ष

0: तक पहुंचाने वाला है, उसे प्राप्त करो। जयशंकर प्रसाद जी ने क्रोध से बचने के लिए कहा कि सब भेदभाव भुलवाकर दुख सुख को दृश्य बनाता मानव कह रहे वह मैं हूं, यह विश्व निर्ण बन जाता।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:35 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश। आज इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय है तपेदिक रोग एक जानकारी। इस विषय पर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं डॉक्टर प्रदीप वार्ष्णेय।
2: श्रोताओं, हमारे शरीर में समय समय पर कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। आज हम एक ऐसी बीमारी पर चर्चा करेंगे जो सामान्य रूप से समाज में दिखती है, बहुत सारे इसके रोगी भी हैं, और वो है टीबी की बीमारी, क्षय रोग, तपेदिक रोग जिसको कहते हैं। हमारे सभी सुनने वाले भी जानते हैं तपेदिक रोग क्या है, इसकी जांच किस प्रकार से की जाती है और इसके इलाज के नए आयाम क्या हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर पी के वार्ष्णेय जो कि क्षय रोग विशेषज्ञ हैं। पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर बीमारी ये है क्या।
3: टीबी या क्षय रोग की बीमारी बहुत प्राचीन समय से चली आ रही बीमारी है
2: जी।
3: ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से होती है और हवा के द्वारा एक जने से दूसरे जने में फैलती है। तो यदि कोई टीबी का है जिसको फेफड़े की टीबी है और अगर वो दवा नहीं ले रहा है तो जब भी वो खांसता या छींकता है तो अपने 20 मीटर के घेरे में टीबी के बैक्टीरियाओं को फैला देता है।
2: अच्छा।
3: जो स्वस्थ व्यक्ति के फेफड़े में जाकर जो है इस बीमारी को पैदा कर देते हैं। लेकिन हर जने को ये बीमारी नहीं होती है और इसका कारण है कि हमारी जो इम्यूनिटी या बीमारी से लड़ने की ताकत है अगर वो अच्छी है तो टीबी या कोई और बीमारी हमारे शरीर को नहीं होगी। और जैसे ही किसी वजह से हमारे शरीर की ये इम्यूनिटी कम होती है, जैसे हमें बुखार हो गया कोई लंबा, या हमें डायबिटीज की बीमारी हो गई
2: जी,
3: या हमें एचआईवी हो गया, या हम कोई कैंसर का इलाज ले रहे हैं
2: जी,
3: उसकी दवा ले रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों में जैसी या हमारा खाना जो है पौष्टिक नहीं है या हम अच्छे रहन सहन में नहीं रह रहे हैं
2: जी,
3: है ना, कच्चे टूटे मकानों में कम जगह में ज्यादा लोग रह रहे हैं
2: गंदी जगहों पर,
3: तब ये बैक्टीरिया जो है हमारे शरीर में बढ़ने लगता है और टीबी की बीमारी जो है हो जाती है।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, लक्षणों की बात करें तो बहुत सारे लोगों का मानना यही है कि यदि खांसी आती है, बलगम आता है, जुखाम आता है या इस प्रकार की समस्या है, फेफड़े से संबंधित टीबी के बारे में ही आम धारणा है, लेकिन टीबी शरीर के कुछ अन्य अंगों को भी प्रभावित करती है, थोड़ा इसके बारे में बताएं।
3: टीबी लगभग 80% तो फेफड़े में ही होती है
2: जी।
3: इसके अलावा शरीर के किसी भी अंग में टीबी हो सकती है। सिर्फ जो है हमारे शरीर में बाल और नाखून दो ऐसे अवयव हैं कि जिनमें टीबी नहीं होती है
2: जी।
3: फेफड़े की टीबी में आमतौर पे 2 हफ्ते या उससे ज्यादा की खांसी, 2 हफ्ते या उससे ज्यादा का बुखार, सीने में दर्द होना, बलगम में कभी कभी खून आना, वजन कम होना, भूख कम लगना, ये सामान्य लक्षण है टीबी के। अन्य अंगों की टीबी को अलग अलग लक्षणों से पहचानते हैं
2: जी।
3: जैसे शरीर में, गले में, बगल में या जंघासों में गांठें हो जाना
2: जी।
3: पेट में दर्द होना या पेट में गैस का गोला घूमना और हड्डी जो है गल जाना या जोड़ों में सूजन आ जाना, अलग अलग जो अंगों की टीबी है उसके अलग अलग लक्षणों से उसे फिर पहचाना जाता है।
2: जांच कौन सी है और अलग अलग टीबी के लिए जांच क्या अलग अलग होती है या फिर एक ही जांच से पता चल जाता है।
3: फेफड़े की टीबी की मुख्य जाँच जो है बलगम के द्वारा होती है
2: जी,
3: जिसकी जांच हेतु पहले हम बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप से करते थे। उसके बाद अब हमारे जनपद में 3 एलईडी माइक्रोस्कोप हैं
2: जी,
3: और आधुनिक जांच की मशीन जो है सीबी नेट
2: जी,
3: वो हमारे यहाँ एक जनपद में और एक शाहबाद में है। इसके अलावा जांच की आधुनिक ट्रू नेट मशीनें, ये 17 मशीनें जनपद को हर सीएससी पीएससी के लिए भी दी गई हैं।
2: अच्छा।
3: तो ये बलगम में बहुत कम कीटाणु टीबी के होने पर भी टीबी की डायग्नोसिस कर देती हैं
2: जी।
3: अगर इसमें जांच में नहीं आता है तो हम फिर सहारा लेते हैं एक्सरे, अगर गांठ वाली टीबी है तो उसमें से पस निकालकर उसकी जांच की जाती है
2: जी।
3: पेट की टीबी है तो हमें अल्ट्रासाउंड से जांच की जाती है। ये कॉमन जो है टीबी है उनको इस तरह से पहचान सकते। इसका अगर समय से जांच, समय से इलाज कर लिया जाए तो 100% इसका इलाज उपलब्ध है।
2: अच्छा।
3: दवा इसकी जो हमारे सारा सरकारी क्षेत्र है वहाँ निशुल्क उपलब्ध है
2: जी।
3: इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी हम निशुल्क जांच और निशुल्क दवा बनाने के लिए प्रेरित करते हैं
2: जी।
3: और 6 महीने का सामान्य इसका इलाज है जिसमें अब कोई इंजेक्शन नहीं लगता है और सामान्य टीबी का यही इलाज है। और अगर जो ड्रग रेजिस्टेंट या खतरनाक वाली जो टीबी हो जाती है उसका 6 महीने से 9 महीने

0: या 18 महीने का भी इलाज है,
1: जी
0: और दवाएं सब बहुत महंगी हैं, लेकिन सरकार इनको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा रही है।
1: जी हाँ हाँ
0: पौष्टिक खाना जो नहीं ले रहे हैं उनमें टीबी होने की संभावना ज्यादा होती है, उसको दूर करने के लिए सरकार इलाज के दौरान हर मरीज को ₹500 महीना पोषण सहायता देती है
1: अच्छा
0: निक्षय पोषण योजना के अंदर।
1: जी
0: टीबी जो है कोई जिसका नहीं है कि जो ठीक ना हो पाए।
1: जी
2: तपेदिक रोग एक जानकारी, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रदीप वार्ष्णेय को, आपसे बातचीत की थी डॉक्टर विनय वर्मा ने। ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही मिनटों बाद यानी 6:45 पर हम आपको सुनवाएंगे श्री रामचरित मानस गान से आज का प्रसंग। भाग संख्या होगी 306। संगीत होगा सतीश भाटिया का, कलाकार होंगे रविंद्र साठे और कविता कृष्णमूर्ति। आज सवेरे 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक रंग। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे कनक सक्सेना के स्वर में गीत। 7:31 पर सुनना ना भूलिएगा फिल्मी गीतों का इंफोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे। आज इस कार्यक्रम में सुन पाएंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पर विशेष। इसके अलावा हम आपको सुनवाएंगे विश्व कछुआ दिवस पर जानकारी। 8:45 का समय होगा 102.9 मॉर्निंग हिट्स उर्दू कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगे आप तक आज सुबह 9:30 पर। 9:25 पर आप सुन सकेंगे महादेवी वर्मा की जानकारी।

9:50 पर हम आपको सुनवाएंगे उप शास्त्रीय संगीत का गायन मोहिंदर सिंह के स्वर में। राग होगा सुहनी। आपके अनुरोध पर इस कार्यक्रम का समय रहेगा आज सुबह 10:05 पर। 10:30 पर आप सुनना ना भूलिएगा गोल्डन हिट्स। आज दिन में 11:30 पर आप तक लेकर आएंगे कार्यक्रम मन भावन। आज इस कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे गीतमाला। सुबह 11:00 कार्यक्रम धरोहर के अंतर्गत धारावाहिक में हम आपको सुनवाएंगे जिंदगी के आईने में। एपिसोड संख्या होगी 9। गीत आपके नाम ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्म गीतों का ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आज दिन में 12:10 पर। हेलो फरमाइश इस कार्यक्रम का समय रहेगा आज दिन में 1:15 पर। सुनहरा दौर ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आज दिन में 2:30 पर।

0: और इसी के साथ हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे, कार्यक्रम आज शाम से। युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे आज शाम को 5:15 पर। 6:10 का समय रहेगा चित्रपट संगीत का। 6:20 पर हम आपको सुनवाएंगे कृषि जगत छाव बरगद की। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्री इरफान खां को, भेंट करता ये हैं और आपसे बात करेंगे असीम सक्सेना। सुनना न भूलिएगा कार्यक्रम छाव बरगद की आज शाम 7 बजे। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 6:45 हुए हैं। अब सुनिएगा श्री रामचरित मानस गान से आज का प्रसंग।
1: एपिसोड नंबर 306। 306

रावण को चुनौती देने के लिए श्रीराम ने एक ऐसे वाण का संधान किया जो उसके छत्र, मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूलों को काटता गिराता तरकस में वापस आ गया। उपस्थित असुर समुदाय आतंकित हो गया। सबको भयभीत देख रावण ने अपने पराक्रम और निर्भयता का उद्घोष किया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान से आज का प्रसंग। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
1: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी।

0: प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी तथा साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इत्येषश्च आतंकवादं निवारणाय बहुपक्षीय प्रयासानां सुदृढीकरणाय तथा संयुक्त राष्ट्रसंघस्य संरचनान्तर्गतं अन्ताराष्ट्रिय आतंकवादस्य विषये समग्र सम्मेलनं शीघ्रमेव अन्तिमीकृत्य स्वीकर्तुम् आहूतवन्तौ। ह्यः नवदिल्ल्याम् उभयोः नेत्रोः मध्ये वार्तायाः अनन्तरं प्रदत्ते संयुक्त वक्तव्ये उभौ पक्षौ संयुक्त राष्ट्रसंघे तथा यूरोपीय संघे च निर्दिष्टानाम् आतंकवादिनाम् आतंकिसंघटनानां च विरुद्धम् अपि च संयुक्त राष्ट्रसंघस्य सुरक्षा परिषद् प्रतिबन्ध समित्याः अन्तर्गतं सूचीबद्धानां 67,200+ यावत् आतंकिसंघटनानां विरुद्धं प्रबलं समन्वितं च कार्याचरणाय आग्रहं कृतवन्तौ।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: उभौ पक्षौ साइबर सुरक्षायाम् अपि च उदयोन्मुख प्रौद्योगिक्यां विशेषावधानेन सह रक्षा उद्योगयोः मध्ये सहयोगेन सह रक्षा सुरक्षा सहकारं सुदृढीकरणेऽपि सहमतौ अभवताम्। अस्मिन् सन्दर्भे साइप्रस डिफेंस एंड स्पेस इंडस्ट्रीज क्लस्टर तथा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स इत्येतयोः मध्ये संधिपत्रे हस्ताक्षरं जातम्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य 21वें रोजगार मेलायां विविध प्रशासकीय विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तानां यूनां कृते 150,000+ नियुक्तिपत्राणां वितरणं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति आभासीय माध्यमेन करिष्यति। अमेरिकादेशस्य विदेशसचिवः मार्को रूबियो इत्येषः अद्य भारतस्य चतुर्दिवसीय यात्रायां कोलकातानगरम् आगमिष्यति। इदं तस्य प्रथमं भारत पर्यटनं भविष्यति। कोलकातानगरे प्रवासावधौ श्रीरूबियो वर्येण मदर टेरेसा वर्यायाः समाधिस्थले श्रद्धाञ्जलिः अर्पणस्य अपेक्षा अस्ति। सः विक्टोरिया स्मारकमपि द्रष्टुं शक्नोति। पश्चात् अमेरिकादेशस्य विदेशसचिवः नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह मेलनं विधास्यति। श्वः श्रीरूबियो राष्ट्रिय राजधान्यां विदेशमन्त्रिणा एस जयशंकरेण सह वार्तालापं करिष्यति। सः अमेरिकादेशस्य दूतावासस्य स्वातन्त्र्यदिवसोपलक्ष्ये आयोजिते कार्यक्रमेऽपि भागं ग्रहीष्यति। सोमवासरे श्रीरूबियो वर्यः आगरा जयपुर नगरयोः भ्रमणं करिष्यति। तत्पश्चात् मंगलवासरे भारते आयोजिते क्वाड विदेशमन्त्रिणां सभायां भागं ग्रहीतुं नवदिल्ल्यां प्रत्यागमिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य पूर्वीय मध्यप्रदेशे पूर्वीय उत्तरप्रदेशे विदर्भे च तीव्रतर उष्णतरंगस्य स्थित्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारितास्ति। अद्य दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरंगस्य स्थित्यां आईएमडी विभागेन नारंगवर्णीया संचेतना प्रदत्ता अस्ति। तटीये आंध्रप्रदेशे, तेलंगानायां, पश्चिम मध्यप्रदेशे, पश्चिम उत्तरप्रदेशे च अद्य दिने तथैव स्थितिः भविष्यति। अद्य दिल्ल्याम् अधिकतमं तापमानं 45°C यावत्, न्यूनतम तापमानं 27°C यावत् भवितुं शक्नोति। अन्त्यक्रीडावार्तायाम् आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां सनराइजर्स हैदराबाद दलेन हैदराबादे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं 55 धावनांकैः पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ नगरे पंजाब किंग्स लखनऊ सुपर जायंट्स दलयोः मध्ये क्रीडा भविष्यति। इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 7 बजे हैं। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम लोक रंग। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा कनक सक्सेना को।

0: अभी आप सुन रहे थे कनक सक्सेना के स्वर में कार्यक्रम लोक रंग। ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
2: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
2: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। राजधानी लखनऊ सहित देशभर के 47 स्थानों पर होगा रोजगार मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 655 करोड़ रुपए लागत की 19 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, अच्छी सड़कें, फ्लाईओवर और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही रोजगार और निवेश की नींव। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत प्रदेश भर में मकानों की गणना शुरू। पहले दिन 1,35,00,000 से अधिक मकानों की हुई गिनती। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप

0: जारी मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी व पश्चिमी क्षेत्रों में अगले तीन दिनों तक और लू चलने की जारी की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। वे आयोजन को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: 19वें रोजगार मेले का आयोजन प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर किया जाएगा। लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कार्यक्रम में शामिल होंगे। देश के सभी हिस्सों से चयनित नवनियुक्त उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार ग्रहण करेंगे। रोजगार मेला आरंभ किए जाने के बाद देश में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से लगभग 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देवरिया में 655 करोड़ रुपए की लागत से 19 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और उत्तर प्रदेश ने विकास की नई गति पकड़ी है और अब विकास की यह यात्रा रुकने वाली नहीं है। श्री योगी ने कहा कि अच्छी सड़कें, फ्लाईओवर, पुल और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही रोजगार व निवेश की नींव होते हैं। आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश का नाम सम्मान व गर्व के साथ लिया जाता है। यूपी विरासत और विकास दोनों का संगम बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद नए भारत का निर्माण हुआ है।
2: 2014 के बाद आज जिस नए भारत का हम सब दर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और उनका वह विजन है जो विकास को प्राथमिकता देता है। और प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बात को हमेशा प्राथमिकता दी है कि गति जितनी तेज होगी, विकास का लाभ उतनी तेजी के साथ आम जन को प्राप्त होगा।
0: इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, राज्य मंत्री ग्राम्य विकास विजय लक्ष्मी गौतम सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 17 निवेशकों को औद्योगिक आवंटन पत्र प्रदान किया। इस पहल से प्रदेश में नए निवेश, रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने निवेशकों के साथ संवाद कर उन्हें प्रदेश में उपलब्ध औद्योगिक संभावनाओं और सरकार की योजनाओं से भी अवगत कराया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश टूरिज्म, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि जेवर और यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी के आसपास जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है वह नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है। इस कार्यक्रम में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता भी उपस्थित रहे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से जारी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 की रिपोर्ट में वाराणसी को सेंट्रल जोन का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर रहा। वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत यह सर्वेक्षण देश के गांवों में स्वच्छता की वास्तविक स्थिति जानने के लिए कराया गया था।
3: यह जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण होता है, ये मुख्यतः इसके चार पिलर्स हैं। पहला पिलर जिसमें थर्ड पार्टी एजेंसी द्वारा गांव का सर्वे किया जाता है। इसके अलावा जो सेवा स्तरीय प्रगति होती है उसकी भी निगरानी इस सर्वेक्षण में होती है। तीसरा जो हमारे नागरिक हैं उनका जो फीडबैक है, सिटीजन फीडबैक के भी इसमें 100 अंक होते हैं। और इसके अलावा जो विभिन्न तरह के संयंत्र हमारे जनपद में लगे हुए हैं, जैसे कि 3 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट है, बायोगैस प्लांट है, FSTP है, फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, इन सबके जो कार्यक्षमता है उसका भी आकलन इस सर्वे में किया जाता है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत कल से प्रदेश में मकानों की गणना और सूचीकरण का कार्य शुरू हो गया है। इसी क्रम में राज्य के 3,89,312 मकान सूचीकरण ब्लॉक में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों द्वारा सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया। इस दौरान लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास, गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर और आगरा में ताजमहल परिसर की भी गणना की गई। इस बार सिर्फ घरों की गिनती ही नहीं बल्कि प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान भी जनगणना का हिस्सा बन रही है। अभियान के पहले ही दिन 1,35,00,000 से अधिक घरों पर जनगणना मकान संख्या अंकित की गई। इससे पूर्व 7 से 21 मई तक स्वगणना का कार्य किया गया। मऊ के जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने जनगणना कार्य को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्ता के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। अमरोहा में जनगणना में संपूर्ण जिले को कुल 3,682 गणना ब्लॉक में विभाजित किया गया है। गोरखपुर में कुल 9,322 गणना ब्लॉक बनाए गए हैं जिनमें 11,000 से अधिक प्रगणक और पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। अमरोहा के जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने बताया कि प्रगणक घर घर जाकर जनगणना संबंधी आंकड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं।
4: हमारे 3,680 HLBs हैं और हर किसी को अराउंड 150 एवरेज यानी कि अराउंड 600-800 की पॉपुलेशन हर किसी एन्यूमरेटर को करना है और ये काम जैसे वो अपने स्कूल की ड्यूटी करते हैं उसके बाद के एक घंटे में करना है। और जो ये कैलकुलेशन हुई है इसकी साइंटिफिक टूल्स के हिसाब से, उसके हिसाब से एक परिवार के कराने में लगभग 10 मिनट लग रहे हैं। तो अगर एन्यूमरेटर डेली 1 से 1.5 घंटा भी देंगे तो अपने वो दैनिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
0: सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के CBSE के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल बांदा लगातार 6ठे दिन प्रदेश में सबसे गर्म जिला रहा जहां अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी तरह प्रयागराज में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस, झांसी और उरई में 45.4 डिग्री सेल्सियस और आगरा में तापमान 45.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में दिन में लू चलने की चेतावनी जारी की है। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि इस दौरान कई इलाकों में तेज धूल भरी हवाएं चलने की भी आशंका है।
5: प्रदेश में आगामी 1 सप्ताह के दौरान कुछ स्थानों पर उष्ण लहर से भीषण उष्ण लहर के साथ कहीं कहीं उष्ण लहर से होने की संभावना के दृष्टिगत 24 मई तक प्रदेश के दक्षिणी भागों के लिए रेड अलर्ट जबकि उसके बाद 26 मई तक के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है भीषण लू और उष्ण रात्रि के लिए, और लोगों से दी गई सलाह के अनुसार सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है।
0: देश में कल वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराएगा। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। राजधानी लखनऊ सहित देशभर के 47 स्थानों पर होगा रोजगार मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 655 करोड़ रुपए लागत की 19 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, अच्छी सड़कें, फ्लाईओवर और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही रोजगार और निवेश की नींव। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत प्रदेश भर में मकानों की गणना शुरू। पहले दिन 1,35,00,000 से अधिक मकानों की हुई गिनती। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी व पश्चिमी क्षेत्रों में अगले 3 दिनों तक और लू चलने की जारी की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
6: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुँच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम।
7: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे।

नई उम्मीदों से भरा ये समा नए दिन की ताजगी को और रोशन कर दे, इन्हीं प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम में कीजिए स्वीकार दीपिका का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, सुबह है नई और नया है सवेरा, सूरज की किरणें हवाओं का बसेरा, खुले आसमान में सूरज का चेहरा, मुबारक हो आपको ये हसीन सवेरा। नए दिन की आप सभी को अनेक मंगल कामनाएं।

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे। साथियों, आज है 23 मई और आज का इतिहास क्या कहता है, आइए जानते हैं। आज ही के दिन सन 2008 में भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। आज ही के दिन सन 1805 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने एक आदेश के अंतर्गत दिल्ली के मुगल बादशाह के लिए एक स्थायी प्रावधान की व्यवस्था की। आज के दिन सन 1923 में बेल्जियम ने सेवना एयरलाइंस बनाया। सन 1926 में प्रथम विश्व युद्ध के समय इटली ने ऑस्ट्रिया हंगरी तथा जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।

इसके अलावा बात करें आज ही के दिन की तो सन 1951 में चीन ने एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में तिब्बत पर कब्जा किया। सन 1977 में बेनिन ने संविधान को अंगीकार किया। सन 1984 में आज ही के दिन विच्छेंद्री पाल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। सन 2016 में भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान यानी इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से पूरी तरह से भारत में बने स्पेस शटल RLV-TD को लॉन्च किया। और अब बात करते हैं आज के दिन किन किन व्यक्तियों का जन्म हुआ था, तो हम आपको बता दें सन 1919 में जयपुर राजघराने की राजमाता महारानी गायत्री देवी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञों में से एक पीसी वैद्य का जन्म आज के दिन सन 1918 में हुआ। इसके अलावा सन 1931 में जन्म हुआ वसुंधरा कुमलके का, ये भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थे।

और साथियों, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आकाशवाणी के 90 वर्ष की यात्रा में आपकी मुलाकात करवाते हैं एक खास शख्सियत से। आज के हमारे मेहमान हैं आकाशवाणी के पूर्व कार्यक्रम अधिशासी एम आर यदुवंशी। तो चलिए कार्यक्रम के इस पड़ाव में आगे बढ़ते हैं।

0: बहुत शुक्रिया आपका।
1: सर, आकाशवाणी अपने 90 वर्ष की यात्रा को पूर्ण करने जा रहा है
0: जी।
1: हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष की बात है। आप तो काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं आकाशवाणी से, आकाशवाणी की इस यात्रा को आप किस रूप में देखते हैं?
0: देखिए, जैसा आपने कहा है कि लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा अपने लिस्टनर्स के लिए, श्रोताओं के लिए
1: जी,
0: कि जब हम छोटे थे, यानी कि हाई स्कूल के इर्द गिर्द पढ़ाई कर रहे थे, उस वक्त से आकाशवाणी रामपुर और नजीबाबाद को खूब सुनते थे और सुनना शुरू किया, और उसके बाद से आकाशवाणी के अंदर आने का भी मौका मिला मुझे, और लगभग 33 वर्ष हमने आकाशवाणी के अंदर पूरे किए। और कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ

0: अब चूंकि मुझे रिटायर हुए भी 4 वर्ष हो गया है, तो 64 वर्ष की जो जर्नी है वो आकाशवाणी के साथ पूरी हो चुकी है। और क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हम उस समय 7-8 ऐसे क्लास में पढ़ रहे थे, तब से रेडियो सो रहे हैं, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि कम से कम हमने 50 वर्ष बड़े अच्छे से देखे हैं आकाशवाणी के, और आकाशवाणी को सुना है और बड़े करीब से आकाशवाणी को जाना है। अब चूंकि 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं आकाशवाणी के लिए, ये बड़े गौरव की बात है। और आकाशवाणी ने अपनी जो भूमिका समाज के विकास के लिए निभाई है, और जो उद्देश्य है आकाशवाणी का, सूचनाएं, शिक्षा और मनोरंजन, ये तीनों ही विषयों को लेकर के आकाशवाणी शुरुआत से लेकर अब तक काम करती रही है, और किसी भी समाज की यही आवश्यकता है। अगर इन तीनों को समाज के लिए दिया जाता है आकाशवाणी के माध्यम से, तो निश्चित ही समाज विकसित होता है, देश विकसित होता है, क्योंकि समाज से ही देश है। और इस तरीके से आकाशवाणी अपनी भूमिका आरंभ से ही निभाता चला आ रहा है।
1: सर, आपने अपना जुड़ाव बताया अब तक का, शुरुआत से लेके जो अब चल रहा है तब तक का आपने जुड़ाव बहुत विस्तार से बताया। सर, एक समय वो था जब इतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई थी और उस दौर में रेडियो ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। सर, आज तकनीकी के आने पर भी इसके स्वरूप में जरूर परिवर्तन हुआ है, लेकिन जो लगाव है क्या आज भी वो उतना ही बरकरार है लोगों का?
0: देखिए, ऐसा है कि मैं 1990 में आकाशवाणी में आया, प्रोग्राम सेक्शन में आया, और मैंने उस समय से आकाशवाणी के अंदर रह करके काम किया। और उस वक्त की जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी विकसित नहीं थी जितनी की आज है।
2: जी बिल्कुल।
0: और उस समय हमारे पास जो मशीनें होती थी वो एक तरह की मैनुअल मशीनें होती थी, उन पर हम जो कार्यक्रम बनाते थे और श्रोताओं तक पहुंचाते थे, ट्रांसमीटर्स भी पहले AM हुआ करते थे, मीडियम वेव, आज भी हैं लेकिन बहुत कम रह गए हैं। FM आया, FM बहुत ही प्रचलित हुआ, बहुत ही फेमस हुआ। और दूसरा, एक शॉर्ट वेव पहले चलता था,
1: जी
0: 3 तरह के हमारे ट्रांसमीटर्स चलते थे। एक और ट्रांसमीटर था लेकिन उसका जो रिसीवर था वो बहुत महंगा था, इसलिए वो सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन बाकी जो 3 हमारे ट्रांसमीटर्स थे, 3 मोड के, ये काफी प्रसिद्ध हुए और काफी सुने जाने लगे और खूब ज्यादा सुने जाते थे। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, वैसे वैसे आकाशवाणी ने भी टेक्नोलॉजी को अपनाया है। अगर
1: जी
0: हम आज की बात करें तो आज कंप्यूटर का जमाना है, आज रिकॉर्डिंग कंप्यूटर पर होती है, प्रसारण के लिए डिजिटल ट्रांसमीटर्स आ गए हैं, और जो लिसनिंग है हमारी वो इंटरनेट के माध्यम से भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठ करके हम किसी भी केंद्र को सुन सकते हैं आज की तारीख में। और
1: बिल्कुल
0: वैसे जो हमारी रेंज होती थी कहीं ना कहीं वो पहले सीमित कर देती थी हमको, उसी रेंज तक हमारी आवाज पहुंचती थी। लेकिन आज चूंकि इंटरनेट का जमाना है, टेक्नोलॉजी विकसित हुई है, तो हमने भी अपने आप को विकसित किया है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित हुई है, वैसे वैसे हमने भी अपना विकास किया है, हम भी आगे बढ़े हैं। तो आकाशवाणी किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। और जहां तक एक पहलू आपके पूछने का आशय भी हो सकता है कि टेक्नोलॉजी जब बढ़ती है तो हर क्षेत्र में बढ़ती है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो बहुत सारे चैनल्स जो कि दूरदर्शन से रिलेटेड आए हैं, तो और वैसे भी बहुत सारे रेडियो प्राइवेट चैनल्स भी आ गए हैं। लेकिन हमारी अपनी मान मर्यादाएं हैं, हम चूंकि सरकारी रेडियो है तो हम अपनी मान मर्यादा में रह करके प्रसारण करते हैं, हम वो प्रसारण करते हैं, वो चीजें हम समाज को देते हैं जिन चीजों का असर समाज पर पॉजिटिव पड़े।
1: बिल्कुल।
0: कोई निगेटिव वाली बातें हम नहीं करते हैं, हम इस चीज का ध्यान रखते हैं। लेकिन जो प्राइवेट चैनल्स हैं उनको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं, वो नहीं जानते संस्कार क्या है, लेकिन हम संस्कार को लेकर चलते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो सूचनाओं का क्षेत्र हो, चाहे वो मनोरंजन का क्षेत्र हो। हमारे यहाँ से बजने वाले गाने आपको सोवर मिलेंगे जो आप प्राइवेट चैनल्स पर नहीं सुन सकते, हमारे यहाँ से जो प्रसारण होता है वो आपको सोवर मिलेगा जो प्राइवेट चैनल्स पर नहीं मिल सकता। ऐसे ही जो समाचार वाली बात है तो समाचारों को लेकर तो खैर ये है कि हमारे ही जो समाचार है वो ही लोग ज्यादातर प्रसारित करते हैं और रिले करते हैं और इस तरह से जो होता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम आज भी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ रही है हम उतने ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा सर आपने। अपने 90 वर्षों को सफर में जो उतार चढ़ाव देखे हैं आकाशवाणी ने, जैसे कि कोई भी आपदा हो, महामारी हो या फिर कोई भी लोकहित से संबंधित जानकारी, सभी चीजों को लेकर आकाशवाणी बड़ी ही शालीनता से अपनी बातों को श्रोताओं तक पहुंचाने में सफल रहा है। सर अगर हम बात करें रेडियो की, तो रेडियो ने मनोरंजन, सामाजिक जानकारी या फिर कोई भी ऑथेंटिक न्यूज जो होती है वो एक बेहतर तरीके से अपनी बात को पहुंचाने का माध्यम बना है। सर आज भी किसी भी खबर को लेकर अगर कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है तो रेडियो पर जो खबर प्रसारित हो जाती है उसको अंतिम माना जाता है, और इसकी व्यापकता को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए जहाँ तक सूचनाओं का सवाल है या समाचारों का सवाल है, तो हम वो समाचार देते हैं जिससे कि समाज पैनिक ना हो जाए। हमारे यहाँ इस बात का ध्यान रखा जाता है, जैसे आपने कहा कि आपदा का समय होता है और उस वक्त भी समाज में एक बहुत बड़ा डर बैठा हुआ होता है। मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गई है, गांव कट रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ से जो समाचार जाएगा आकाशवाणी के माध्यम से जो समाचार जाएगा वो एक ऐसा संतुलित समाचार होगा, न्यूज होगी जिसको सुनकर आदमी बहुत ज्यादा भयभीत नहीं होता है। हम भयभीत नहीं करते समाज को, हम समाज को दो चीजें बताते हैं जिससे कि समाज जागरूक हो जाए और अपने आप को उस आपदा से बचा ले। तो यही आकाशवाणी की खासियत रही है। और मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि देखिए आकाशवाणी पर जो फेथ है, आकाशवाणी पर जो विश्वास है, उसका कारण एक बहुत बड़ा है कि आकाशवाणी का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी इंडिया में ऐसा फैला हुआ है कि जो इंडिया का, भारत का इंटीरियर क्षेत्र है, जो बिल्कुल रिमोट क्षेत्र है, तो ऐसे क्षेत्र में भी आकाशवाणी के ट्रांसमीटर्स लगे हुए हैं जहां पर आदमी का जाना मुश्किल हो रहा है, आम पब्लिक भी वहां नहीं है। ऐसी स्थिति में भी हमने अपने ट्रांसमीटर्स को वहां लगाया हुआ है और जब कोई भी समाचार जाता है उसको रिले किया जाता है उस क्षेत्र के हिसाब से, तो आप ये सोच के चलिए कि यहाँ पर आकाशवाणी के समाचारों पर इसलिए भी बहुत ज्यादा विश्वास किया जाता है, विश्वसनीयता है कि ये काम दूसरा कोई चैनल नहीं कर सकता, दूरदर्शन ये नहीं कर सकता, क्योंकि दूरदर्शन भी हमारा ही एक पार्ट है लेकिन वो नहीं कर सकता क्योंकि उसकी उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दूसरे टाइप का है। हमारा हमने केवल अपने शब्दों को पहुंचाना होता है, ऑडियो पहुंचाना होता है, जबकि उनको वीडियो भी दिखाना होता है। तो कुछ चीजें हैं जो हमारे साथ बहुत विलस हैं, इसलिए हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। जहां तक लोकप्रियता का सवाल है, तो ना हमारी लोकप्रियता पहले कम थी और ना कम हुई है, ना आगे भविष्य में कम होगी, क्योंकि आकाशवाणी का अपना एक अलग वजूद है और वो वजूद कायम है,
1: कायम रहेगा। सर आप बहुत लंबे समय से जुड़े हैं आकाशवाणी से, अपनी सेवाएं दी हैं सर आपने। सर हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं के साथ कोई ऐसा पल या फिर किस्सा शेयर करें जो बहुत ही यादगार रहा हो।
0: इस बारे में एक चीज और जोड़ दूं कि 1990 में जब मैं आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर में मैंने ज्वाइन किया था, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानी जाती है जगह जिसे हमारे यहाँ के लोग काला पानी कहते हैं, तो मैं यहाँ पर ये कह दूं कि सिर्फ एक आकाशवाणी ऐसा माध्यम था वहां जिसे सुनकर के लोग अपने अपनी जर्नी पूरी करते थे। मान लीजिए कोई शिप कहाँ से कहाँ जाएगा ये केवल आकाशवाणी बताता था, कोई प्लेन अंडमान से दिल्ली जाएगा या अंडमान से मद्रास जाएगा या अंडमान से कलकत्ता जाएगा या कलकत्ता से अंडमान जाएगा या मद्रास से अंडमान जाएगा या शिप इसी तरह एक दूसरी जगह जाएंगे, तो इसकी पूरी जानकारी और जो वहां पर लोकल में भी मैरिन शिप मैरिन डिपार्टमेंट के जो शिप हैं वो भी चलते हैं, इंटर आइलैंड सेवा है, तो वो भी सब रेडियो के माध्यम से ही सुन करके लोग अपने प्रोग्राम बनाते हैं। इनको पता होता है कि फला दिन शिप जो है वो फला जट्टी से चलेगा और वो अपनी तैयारी करके उस जट्टी पर पहुंच जाते हैं, टिकट खरीद लेते हैं। तो ये इतनी बड़ी भूमिका और कोई नहीं निभा सकता, ये केवल और केवल आकाशवाणी को ही ये दायित्व मिला हुआ है और ये आकाशवाणी का सौभाग्य रहा कि ये एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी आकाशवाणी ने बखूबी निभाई है और आज भी निभा रहा है। तो ये मेरी शुरुआत 1990 से होने के बाद से फिर मैं रामपुर आकाशवाणी से जुड़ा और रामपुर आकाशवाणी के बाद फिर मैं बरेली आकाशवाणी आया 2008 में और इसके बाद फिर नजीबाबाद में गया 2013 में, 2013 के बाद फिर मैं 2014 में मैं आकाशवाणी रामपुर आया और आकाशवाणी रामपुर से मैं फिर 2017 में फिर बरेली आ गया और इसके बाद में यहाँ पूरी सेवाएं करके अपने घर हूँ आज। तो इन सारे केंद्रों पर जो मैंने काम किया है तो मुझे ये लगा कि आकाशवाणी में काम करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत गर्व की बात थी। एक जो रेपुटेशन समाज के अंदर मिलती है और एक जो एक मन को शांति मिलती है कोई भी प्रोग्राम बनाने के बाद और उसे सुन करके ऐसा लगता है कि हमने एक अच्छा काम समाज के लिए किया है, ये सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी कर सकता है। तो इसलिए आकाशवाणी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं और मुझे लगता है कि आकाशवाणी अपनी जो भूमिका निभा रहा है और इसी तरह लोग चर्चाएं करते रहते हैं कि आकाशवाणी का महत्व कम हो गया, दूरदर्शन आ गया, ऐसा हो गया, लिसनिंग कम हो गई, ऐसा नहीं है। आज भी आकाशवाणी में आप देखिए तो जो पोस्ट कार्ड हैं, पत्र हैं, वो आज भी आते हैं और किसी डिपार्टमेंट में पत्र आपको नहीं मिलेंगे। आजकल चिट्ठियां लिखना बंद हो गया लेकिन हमारे आकाशवाणी के लिए लोग चिट्ठियां लिखते हैं आज भी, हमारे लिसनर्स की आज भी कमी नहीं है, ये केवल और केवल हमारे ही साथ है। तो इसलिए आकाशवाणी का वजूद है और हमेशा कायम रहेगा।
1: सर, आकाशवाणी के 90 वर्ष की यात्रा में आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष की यात्रा में आकाशवाणी रामपुर के पूर्व कार्यक्रम अधिशासी MR यदुवंशी जी को।

साथियों, ये संसार कई तरह के जैविक और अजैविक तत्वों से मिलकर चलता है, जिसमें जीवों की विभिन्न प्रजातियां मिलकर जैव विविधता दर्शाती हैं। इन्हीं जीवों में से एक जाति है कछुआ। इसी के संरक्षण में आज हम मना रहे हैं, यानी 23 मई को विश्व कछुआ दिवस। इस दिन की शुरुआत सन 2000 में अमेरिकन टॉर्टोइस रेस्क्यू द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को कछुओं और उसके संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। इसके अलावा कछुओं की घटती संख्या, उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करने के लिए भी लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है। कछुआ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा ये जल स्रोतों को साफ करने में भी सहायक होते हैं। कछुओं की कई प्रजातियां आज विलुप्ति की कगार पर हैं। कछुओं की मौजूदगी ये दर्शाती है कि जल और पर्यावरण स्वस्थ है। आज अगर इनकी संख्या में कमी हो रही है तो संकेत साफ है कि पर्यावरण हमारा बिगड़ रहा है। इसलिए कछुओं का संरक्षण जैव विविधता और पर्यावरण दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है। साथियों, कछुए प्रकृति के संतुलन में कई तरह से मदद करते हैं, जैसे कि जल स्रोतों को साफ रखना, समुद्री घास की रक्षा करना, बीजों को फैलाने में भी इनकी मदद ली जाती है। इसके साथ साथ खाद्य श्रृंखला का भी ये मुख्य हिस्सा बनते हैं। साथियों, कछुओं के सामने आज सबसे बड़ा खतरा है, वो है अवैध शिकार और तस्करी का। जंगली जलाशयों का नष्ट होना, जलवायु परिवर्तन और प्लास्टिक एवं जल प्रदूषण भी इसके मुख्य कारण हैं। कछुओं की विलुप्ति की ये एक मुख्य वजह बनी हुई है। साथियों, आपको बता दें कि ओडिशा ओलिव रिडले कछुओं के सामूहिक प्रजनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस अद्भुत प्राकृतिक घटना को देखने के लिए राज्यों में तीन मुख्य स्थान सबसे ज्यादा मशहूर हैं, जैसे कि गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य, ऋषिकुलिया नदी का मुहाना और देवी नदी का मुहाना। साथियों, आज विश्व कछुआ दिवस पर हम आपसे कहना चाहेंगे कि प्राकृतिक जीवों का संरक्षण करें और उनके संरक्षण में अपनी भागीदारी अदा करें।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे आकाशवाणी का। ये रामपुर केंद्र है, सवेरे के 8 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व

0: बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
3: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारी जांजीपुर की मित्रता अब से सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम

0: और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
3: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: भारत तिब्बत सीमा पुलिस की महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
4: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाईं और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8,000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद ने कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी आईएएस अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है, जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट यूजी की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे शत प्रतिशत त्रुटि रहित। नवभारत टाइम्स ने त्विषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, प्रतिशोध की भावना से काम न करें WFI। लोकसत्ता की हेडलाइन है, आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभलें तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। एनसीईआरटी की 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to distributes over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments today. RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. U.S. Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden four-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha today. Indian Army officer Major Abhilasha Barak

0: and 16 other districts are under yellow alert. Yesterday, the temperature crossed 44 degrees Celsius in 10 cities. Nugaon in Chhatarpur district was the hottest place in the state. The mercury touched 46.8 degrees there. The biggest worry is that Notapa has not even begun yet. Notapa starts on May 25th and lasts for 9 days. The Met Department says the heat will remain at its peak till May 31st. Abhinav Goyal, Akashvani, Bhopal.
1: In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad, SRH, defeated Royal Challengers Bengaluru, RCB, by 55 runs in Hyderabad last night, chasing a massive target of 256 runs set by SRH. RCB could manage to score 200 runs for 4 wickets in 20 overs. Rajat Patidar was the top scorer with 56 runs. For Hyderabad, Ishan Malinga claimed 2 wickets. Earlier opting to bat first, SRH posted 255 for 4 in their stipulated 20 overs. Ishan Kishan was the top scorer with unbeaten 79 runs and so he was named player of the match. Today, Lucknow Super Giants will take on Punjab Kings in Lucknow at 7:30 this evening. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakal.
2: Thank you, Sunil. The Asian Age leads with the headline, India-Cyprus Inc. Six-Packs Boost Trade Security Ties. The Reserve Bank of India Central Board has approved a record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to the government for financial year 26, reports the Economic Times. In its editorial piece titled Sri Putin Meet, a new axis in the making, the Pioneer argues that the recent summit between Xi Jinping and Vladimir Putin signals a deepening China-Russia alignment with potentially major consequences for the global order. The piece suggests that Beijing and Moscow are moving beyond symbolism and toward a more coordinated challenge to American influence. It concludes that the emergence of such an axis may become one of the defining geopolitical development of our time. And finally, in a bold push to boost biodiversity and climate resilience, the Andhra Pradesh Forest Department has launched preparations to produce 25 million seed balls in June during the monsoon season, writes the Statesman. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to distribute over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments today. RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden 4-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha today. Indian Army Officer Major Abhilasha Barak honored with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, host Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा. आदाब. खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी. सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुख्तलिफ सरकारी महकमों में नए भर्ती किए गए अफराद को 51,000 से ज्यादा तकरीरनामे में तकसीम करेंगे. आरबीआई ने माली साल 2025-26 के लिए 2.86 लाख करोड़ रुपए की इजाफी रिकॉर्ड रकम मरकजी हुकूमत को सौंपने की इजाजत दी है. अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो भारत के अपने पहले 4 रोजा दौरे पर कोलकाता पहुंच गए हैं. वो आज दोपहर नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे. भारतीय महकमे मौसमियात ने मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज शदीद गर्मी के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है. भारतीय फौज की अफसर मेजर अभिलाषा बराक को साल 2025 का अक्वामे मुत्तहदा की फौजी सिन्फी वकील के अवार्ड से नवाजा गया है. और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया. अब खबरें तफसील से. वजीर आजम नरेंद्र मोदी 19वें रोजगार मेले के तहत आज मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों में 9 तकर्रशुदा 51,000 से ज्यादा नौजवानों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकर्रनामे तकसीम करेंगे. जनाब मोदी इस मौके पर तकरीब से खिताब भी करेंगे. हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि रोजगार मेला वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से रोजगार पैदा करने को दी जा रही तरजीह की अक्कासी करता है اور اس ویژن کو حقیقت میں بدل رہا ہے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
4: روزگار میلہ وزیر اعظم مودی کی جانب سے روزگار پیدا کرنے کو ترجیح دینے کی جانب ایک اہم قدم ہے جو نوجوانوں کو بامانہ مواقع فراہم کرنے اور ملک کی تعمیر میں اہم رول ادا کر رہا ہے. اپنے آغاز کے بعد سے ملک بھر میں منعقد ہوئے 18 روزگار میلوں میں اب تک 12 لاکھ تقررنامے جاری کیے جا چکے ہیں. 19واں روزگار میلہ ملک بھر کے 47 مقامات پر ہوگا. ملک بھر سے تقرری پانے والے امیدوار مختلف وزارتوں اور محکموں میں ملازمت حاصل کریں گے, جن میں ریلویز, داخلہ, صحت و خاندانی بہبود اور اعلیٰ تعلیم سمیت دیگر محکمے اور وزارتیں شامل ہیں. نئی دلی سے دیپیندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر.
3: بھارتی ریزرو بینک آر بی آئی نے ریکارڈ 2.86 لاکھ کروڑ روپے کی رقم اضافی اثاثے کے طور پر مرکزی حکومت کو منتقل کرنے کی اجازت دی ہے. یہ رقم مالی سال 2025-26 کے لیے تھی, جو آر بی آئی کی جانب سے منافع کی تقسیم ڈویڈنڈ کی اب تک کی سب سے بڑی رقم ہے. یہ فیصلہ آر بی آئی کے ڈائریکٹرز کے مرکزی بورڈ کی 623ویں میٹنگ میں لیا گیا, جس کی صدارت کل ممبئی میں گورنر سنجے ملہوترا نے کی. آر بی آئی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس نے مجموعی آمدنی میں پچھلے سال کے مقابلے اس سال یعنی 2025-26 کے دوران 26.42% اضافہ ہوا ہے, جبکہ اخراجات میں, جن میں امکانی خطرات شامل نہیں ہیں, 27.60 کا اضافہ ہوا ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اپنے 4 روزہ بھارت دورے پر آج کولکاتہ پہنچ گئے ہیں. یہ بھارت کا ان کا پہلا دورہ ہوگا, جو واشنگٹن اور نئی دلی کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے کی جانب اہم قدم ثابت ہوگا. جناب روبیو کے دورے کے دوران تجارت, دفاع, توانائی کی یقینی فراہمی, ٹیکنالوجی اور بھارت بحر الکاہل حکمت عملی جیسے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر توجہ مرکوز کیے جانے کا امکان ہے. بھارت میں امریکی سفیر سرگیو گور نے ہوائی اڈے پر جناب روبیو کا استقبال کیا. امریکی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ کولکاتہ میں اپنے قیام کے دوران جناب روبیو مدر ہاؤس, سینٹ ٹیریسا مشنریز آف چیریٹی اور شہر کے چلڈرن ہوم کا دورہ کریں گے. سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گور نے بتایا کہ جناب روبیو دن میں نئی دلی کا سفر کریں گے اور وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے. امریکی سفیر کے مطابق یہ دورہ بنیادی طور پر دفاعی شراکت داریوں, جدید ٹیکنالوجیز, تجارتی تعلقات اور کواڈ فریم ورک کے تحت اشتراک جیسے اہم اسٹریٹجک شعبوں میں تعاون کو مستحکم کرنے پر توجہ مرکوز کرے گا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ بھارت اور قبرص کے درمیان سیمی کنڈکٹرز, خلا اور مصنوعی ذہانت جیسے نئے اور ابھرتے ہوئے شعبوں میں تعاون کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے. راشٹرپتی بھون میں کل قبرص کے اپنے ہم منصب نکولاس کرسٹوڈولائڈس اور ان کے وفد کو دیے گئے عشائیے کے بعد صدر جمہوریہ اظہار خیال کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی اور جدت ترازی دو طرفہ تعلقات کے مستقبل کے میدانوں کے طور پر ابھرے ہیں.
5: 1962 میں ہمارے راجنی سمبندھوں کی استھاپت کے بعد سے ہی بھارت اور سائپرس ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. ہماری جانچی پور کی مترتا اب سے سنمان, ساجا ملیہ, وشواس اور ایک جٹتا پر آدھارت ہے. آنے والے برسوں میں بھارت سائپرس کے ساتھ اپنے ویاپک سہیوگ کو آگے بڑھانے کے لیے اتسک ہے. مجھے پورن وشواس ہے کہ آپ کے مارگ درشن اور نیترتو کے ساتھ ہماری مترتا نرنتر سدرڑ ہوتی جائے گی.
3: صدر جمہوریہ نے سرحد پار دہشت گردی اور کثیر جہتی اداروں میں اصلاحات جیسے اہم معاملوں پر قبرص کی حمایت کی ستائش کی. صدر جمہوریہ نے قبرص کی سالمیت, اتحاد اور علاقائی یکجہتی کے تئیں بھارت کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ بھی کیا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ دو طرفہ تعلقات کو اسٹریٹجک ساجیداری میں بدل دیا گیا ہے, جو بھارت اور قبرص کے درمیان بڑھتی سوجھ بوجھ, گہرائی اور باہمی اعتماد کی عکاسی کرتے ہیں. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. بھارتی فوج کی افسر میجر ابھیلاشا براک کو, جو لبنان میں اقوام متحدہ کے قیام امن مشن میں خدمات انجام دے رہی ہیں, اقوام متحدہ کے 2025 کے ایک باوقار ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے. انہیں یہ ایوارڈ اس سال کی فوجی صنفی وکیل کے طور پر دیا جا رہا ہے. میجر براک, جو فی الحال ایک بھارتی بٹالین میں لبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری فورس میں خواتین کی سرگرمی والی ٹیم کی کمانڈر یو این آئی ایف آئی ایل کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں, بھارتی فوج کے جنگجو ہیلی کاپٹر کی پہلی خاتون پائلٹ بھی ہیں. یہ ایوارڈ حاصل کرنے والی میجر براک تیسری بھارتی قیام امن فوجی ہیں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوا ہے. اس سے پہلے میجر سمن گوانی کو سال 2019 میں جنوبی سوڈان میں اقوام متحدہ مشن کے تحت خدمات انجام دینے پر اس ایوارڈ سے نوازا گیا تھا, और मेजर राधिका सेन को साल 2023 में इस अवार्ड से नवाजा गया था। उन्हें यह अवार्ड जम्हूरिया कांगो में अक्वाम मुत्तहदा के इस्तेकाम मिशन के तहत उनकी खिदमात पर दिया गया था। भारत तिब्बत सरहद पुलिस ITBP ने माउंट एवरेस्ट पहुंचने वाली अभी तक की पहली ऐसी बैन अलाक्वामी कोहे पैमा मुहिम मुकम्मल कर ली है जो सिर्फ खवातीन पर मुश्तमिल है। ये कामयाबी इस फौज की कोहे पैमाई के मैदान में तारीखी संगे मील है। पेश है एक रिपोर्ट।
6: ITBP की एक 14 रकनी कोह पैमा टीम ने, जो 11 खवातीन, 3 तकनीकी माहरीन और मददगार अमले पर मुश्तमिल है, इस माह की 21 तारीख को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी सर कर ली। इस मुहिम को 19 अप्रैल को ITBP के सदर दफ्तर से रवाना किया गया था। अपनी हिमालय साफ करो और ग्लेशियर को महफूज करो मुहिम के तहत टीम ने माहौलियाती बेदारी की सरगर्मियां अंजाम दी और एवरेस्ट खित्ते से नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे को इकट्ठा किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने टीम को माउंट एवरेस्ट पर कौमी झंडा फहराने पर मुबारकबाद दी। जनाब शाह ने कहा कि इस बुलंदतरीन इलाके और सख्त आबोहवा के हालात में ये काबिल तहसीन कारनामा अंजाम देकर टीम ने ITBP के खुद से पहले मुल्क के मोटो की शान बरकरार रखी है। जिज्ञासा पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम पे।
3: आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 91 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ है। 10 दिन से भी कम मुद्दत में ये तीसरा इजाफा है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे का इजाफा हुआ है और ये 99 रुपये 51 पैसे फी लीटर हो गया है, जबकि डीजल की कीमत में 91 पैसे का इजाफा होकर ये 92 रुपये 49 पैसे लीटर हो गया है। ये इजाफा ईरान तनाज़े और आमनाए हुरमुज में रुकावट के सबब खाम तेल की आलमी कीमतों में अचानक इजाफे के दौरान हुआ है। इस दौरान पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने बताया कि भारत में पेट्रोल और डीजल भरपूर मकदार में दस्तियाब है और पूरे मुल्क में सप्लाई भी मुस्तहकम है। सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो घबराहट में खरीदारी ना करें और ईंधन की खरीदारी अपनी असल ज़रूरत के मुताबिक करें। वजारत ने मजीद कहा कि जिम्मेदारी के साथ की जाने वाली खपत और आवाम के तआवुन से इस यकीन दहानी में मदद मिलेगी कि ज़्यादा मांग वाले इन दिनों के दौरान ईंधन सभी के लिए दस्तियाब है। मध्य प्रदेश सरकार ने यकसां सिविल कोड UCC की जानिब एक अहम कदम उठाया है। वजीर आला मोहन यादव ने कल सेक्रेटेरिएट में UCC.MP.GOV.IN वेबसाइट का आगाज किया। पोर्टल के जरिए सियासी पार्टियां और समाजी तंजीमें मुजवजा UCC मामले पर अपने ख्यालात और मशवरे पेश कर सकती हैं। रद्दमल दाखिल करने की आखिरी तारीख इस साल 15 जून मुकर्रर की गई है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात के जवाबी पर्चों की स्कैंड फोटोकॉपी हासिल करने की आखिरी तारीख में एक दिन की तौसी करते हुए इसे 24 मई तक बढ़ा दिया है। इससे पहले इसकी आखिरी तारीख आज तक थी। CBI ने कहा कि ये पिछले कुछ दिनों से इसकी वेबसाइट पर CBSE ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से इसकी वेबसाइट पर गैर मुतवक्के ट्रैफिक और गैर मजाज इंटरफेस के मुतादित कोशिशों से खलल अंदाजी के खदशे के बाद ये फैसला लिया गया। बोर्ड ने इत्तला दी है कि जवाबी पर्चों की स्कैन कॉपी हासिल करने के बाद पर्चों की दोबारा जांच के लिए तलबा को 2 दिन मिलेंगे। भारतीय महकमा मौसमियात ने मशरिकी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज शदीद गर्मी से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में अगले 5 दिन के दौरान सख्त गर्मी से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इसी तरह के मौसमी हालात अगले 5 दिन तक साहिली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी रहेंगे। गंगाई मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आज मौसम के गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। इस दौरान भारतीय महकमा मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में कल तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। मध्य प्रदेश में शदीद गर्मी के हालात जारी हैं। रियासत के 42 जिलों में भारतीय महकमा मौसमियात ने शदीद गर्मी से मुतालिक वार्निंग जारी की है। कई खित्तों में दर्जे हरारत के औसत से ज्यादा रहने पर रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। तफसील हमारे नामानिगार से।
4: मध्य प्रदेश शदीद गर्मी की गिरफ्त में है। रियासत में टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। इन तीनों मकामात पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर और 20 दिगर जिलों में शदीद गर्मी से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ग्वालियर और दिगर 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और भोपाल, इंदौर समेत दिगर 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में दर्ज हरारत कल 44 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा, गर्मी की यह शदीद लहर 31 मई तक जारी रहेगी। इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश के लोगों को अगले 10 दिन तक गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ स्वरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
3: ट्रंप इंतजामिया ने अमेरिका के ग्रीन कार्ड तरीक़ेकार में एक बड़ी तब्दीली की है। उन्होंने कहा है कि उन गैर मुल्की शहरियों को जो मुस्तकिल सकूनत चाहते हैं, इसकी दरख्वास्त देने के लिए अपने वतन वापस जाना होगा। इस कदम से पहले अमेरिकी शहरियत और इमिग्रेशन खिदमात USCIS ने एक पॉलिसी तैयार की थी जिसमें अमेरिका में रहने वाले सिर्फ उन लोगों को मंजूरी दी जाएगी जो गैर मामूली हालात से दो चार हैं। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने अपने ओहदे से इस्तीफे का ऐलान किया है। मोहतरमा गबार्ड ने कहा है कि वो अपने शौहर अब्राहम विलियम्स में हड्डियों के कैंसर की तशखीस के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे रही हैं जो 30 जून से नाफिज हो जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को लिखे इस्तीफे में मोहतरमा गबार्ड ने कहा कि वो गुज़िश्ता 1.5 साल से नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के ओहदे पर फ़राइज़ अंजाम देने का मौका फराहम करने पर बेहद मशकूर हैं। IPL क्रिकेट में कल रात हैदराबाद में खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से शिकस्त दी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर शानदार 255 रन बनाए। आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे लखनऊ जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
4: शुक्रिया जमीर। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कुब्रुस के सदर क्रिस्टोफर लराइस के दरमियान हुई बातचीत पर तवज्जो मरकूज की है। बातचीत के बाद एक मुश्तरका बयान में जनाब मोदी ने कहा कि भारत और कुब्रुस ने ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की सतह तक ले जाने का फैसला किया है और सरमायाकारी को दोगुना करने का हदफ मुकर्रर किया है। रोजाना प्रताप इंकलाब ने वजारत खारजा के हवाले से खबर दी है कि क्वाड ममालिक के वजारत खारजा की मीटिंग 26 तारीख को मुनक़िद होगी जिसमें शिरकत के लिए अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के वजारत खारजा भारत आएंगे। इस मौके पर भारत बहरुल्काहिल खित्ते और बाहमी मफादात के बैन अलाक़वामी मसायल पर गौर व खौज किया जाएगा। राज्यसभा की 26 सीटों पर इंतखाबात 18 जून को होंगे। इस खबर को रोजनामा इंकलाब ने खसूसी तौर पर शाये किया है। इस बात का ऐलान इंतखाबी कमीशन ने कल किया।
3: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मुख्तलिफ सरकारी महकमों में नए भर्ती किए गए अफराद को 51,000 से ज्यादा तकरनामे तकसीम करेंगे। RBI ने माली साल 2025-26 के लिए 2.86 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड इजाफी रकम मरकजी हुकूमत को सौंपने की इजाज़त दी है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो भारत के अपने पहले 4 रोजा दौरे पर कोलकाता पहुँच गए हैं। वो आज दोपहर नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। भारतीय महकमा मौसमियात ने मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज शदीद गर्मी के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। भारतीय फौज के अफसर मेजर अभिलाषा बराक को साल 2025 का अक्वामे मुत्तहदा की फौजी सिन्फी वकील के अवार्ड से नवाजा गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
7: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 8:45 हुए हैं। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स।

कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह के स्वर में, और फिल्म है एनिमल।

आंख मिचोली इस फिल्म में अभी आपने सुना सचिन जिगर, जुनिता गांधी और शाश्वत सिंह को। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं शान के स्वर में फिल्म छिपकली से।

अब दिल्ली दूर नहीं, इस फिल्म में अभी आपने सुना जुबिन नौटियाल को, और अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म भूल भुलैया 2 से। इस गीत को गाया है तुलसी कुमार और आदित्य ने।

पूर्वा और वीर पांडे के स्वर में अभी आपने सुना कार्यक्रम का ये गीत फिल्म बॉबी ऋषि की लव स्टोरी फिल्म से। और अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म बड़े मियां और छोटे मियां से। इस गीत को गाया है विशाल मिश्रा, नेहा भसीन और इरशाद कामिल ने।

इसी गीत के साथ आज का 102.9 मॉर्निंग हिट्स कार्यक्रम संपन्न करने की दीपिका होती जी अनुमति नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 होना चाहते हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए इटावा और हमीरपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं इटावा जिले की हलचल, आलेख और स्वर है अमित कुमार तिवारी का।
1: इटावा के बुद्धा पार्क में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के द्वारा 14 करोड़ लागत से होने वाले 11 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया। इनको जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे पर्यटन एवं संस्कृति विभाग कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि महिला आरक्षण बिल सरकार के द्वारा महिलाओं को हक दिलाने के लिए लाया जा रहा है। इससे महिलाएं समाज में अपना हक प्राप्त करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार में होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा मंत्री व जनपद इटावा के प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने संसद में नारी शक्ति से जुड़े विधेयकों के विरोध को लेकर कांग्रेस सपा पर तीखा हमला बोला। धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि 16 व 17 अप्रैल को संसद में पेश महत्वपूर्ण विधेयकों का विरोध कर विपक्ष ने महिलाओं की आकांक्षाओं को ठेस पहुँचाई है। कड़ी मेहनत और लगन से हर सपना पूरा हो सकता है, इसे साबित किया है जसवंत नगर की प्रख्या भदौरिया ने। यूपी बोर्ड हाईस्कूल परीक्षा 2026 में प्रदेश में 5वां स्थान हासिल कर प्रख्या ने जिले का नाम रोशन किया है। प्रख्या भदौरिया ने 600 में से 582 अंक प्राप्त कर 97% के साथ यूपी टॉप 5 में जगह बनाई। प्रख्या ने बताया कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करके IPS बनना चाहती है और देश की सेवा करना चाहती है। इटावा पुलिस लाइन ग्राउंड में दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। मुख्य

0: 49 स्वयं सहायता समूह एक्टिव हैं। महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए पंचनद ब्रांड की स्थापना की गई है। इसके तहत 18 सरस शॉप और 4 कैंटीन खोली गई हैं, जिन्हें समूह की महिलाएं ही चला रही हैं। पंचनद ब्रांड के अचार, साबुन, फिनाइल, मसाले का उत्पादन हो रहा है। इटावा के विकास भवन में शिक्षा मित्र सम्मान समारोह और बड़े हुए मानदेय वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सदर विधायक सरिता भदौरिया की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ के संबोधन का लाइव प्रसारण देखा गया। विधायक ने बताया कि शिक्षा मित्रों का मानदेय 1 अप्रैल 2026 से 10,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दिया गया है। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने बताया कि 1,286 शिक्षा मित्रों के खाते में बढ़ा हुआ मानदेय भेज दिया गया है। कार्यक्रम में 10 शिक्षा मित्रों को प्रतीकात्मक चेक भी दिए गए। इटावा में यमुना की सफाई पर डीएफओ विकास नायक ने सख्त रुख खाया है। जिला गंगा समिति की बैठक में उन्होंने एसटीपी चालू न होने पर नाराजगी जताई और कहा कि 8-9 महीने से सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं, गंदा पानी सीधे यमुना में बह रहा है। उन्होंने आउटलेट का सैंपल जांचने और यमुना के किनारे सफाई के निर्देश दिए। वृक्षारोपण में इमली के ज्यादा पौधे लगाने और ट्री गार्ड से सुरक्षा करने को कहा। भरतना में सभी MRF सेंटर चालू कराने के आदेश भी दिए हैं। इटावा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री के ऊर्जा बचत अपील को समर्थन दिया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने सभी वकीलों से कहा कि कार की जगह बाइक, ई रिक्शा या साइकिल से कचहरी आए। दूर से आने वाले वकील कारपूल बनाकर चलें। डीबी अध्यक्ष एडवोकेट राजेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि सभी वकील अब ऊर्जा बचत से देश की प्रगति में योगदान देंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी जी की अपील का समर्थन करते हुए समस्त वकील जितना अधिक से अधिक डीजल बचाकर राष्ट्र हित में अपना योगदान दें। हम सब वकील अधिक से अधिक डीजल और पेट्रोल की बचत करेंगे। जो लोग कार से आते हैं वो लोग कारपूल बनाकर चलें अथवा इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करें। जितना हो सके ऊर्जा को बचाने का प्रयास करें।
0: इटावा में राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत ने प्रेरणा सभागार में 102 अंशकालिक अनुदेशकों को सम्मानित किया और 10 को बढ़े हुए मानदेय के चेक दिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपए कर दिया है। इससे पहले शिक्षा मित्रों का मानदेय भी बढ़ाया गया था। राज्य मंत्री ने सीएम योगी को बधाई दी। लखनऊ के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी देखा गया। इटावा में नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। ऑपरेशन दहन के तहत पुलिस ने 206 केसों में बरामद 5,774 किलो से ज्यादा मादक पदार्थ नष्ट कर दिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने कानपुर देहात के इंसिनेटर प्लांट में वीडियोग्राफी के साथ पूरे मादक पदार्थ जलाए।
2: उत्तर प्रदेश शासन एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार चलाए जा रहे ऑपरेशन दहन के अंतर्गत जनपद इटावा पुलिस द्वारा बड़ी एवं उल्लेखनीय कार्रवाई की गई है। जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी की देखरेख में जनपद इटावा के विभिन्न थानों पर NDPS एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत कुल 206 अभियोगों में बरामद लगभग 5,775 किलोग्राम मादक पदार्थों का नियमानुसार विनष्टीकरण कराया गया। विनष्ट किए गए मादक पदार्थों में अवैध गांजा, डोडा, स्मैक, चरस एवं अफीम तथा अन्य नशीले पदार्थ शामिल हैं।
0: इंसानों के साथ अब जानवर भी भीषण गर्मी से बेहाल हैं। इटावा सफारी पार्क में वन्य जीवों को राहत देने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। बब्बर शेरों के नाइट सेल में खस की चटाई और डेजर्ट कूलर लगे हैं। ब्रीडिंग सेंटर में शेरनी और सांपों के लिए एयर कंडीशनर चल रहे हैं। उप निदेशक विनय सिंह ने बताया कि क्रॉल और सफारी क्षेत्र में फॉगर सावर से तापमान कम किया जा रहा है।
3: सफारी पार्क में जो भी वन्य जीव है उनको गर्मी और लू से बचाने के लिए एक विशेष इंतजाम किए जाते हैं, जिनके अंतर्गत जो हमारे हाउस हैं उनमें खस की चटाई लगाना, इसके साथ कूलर को लगाते हैं, बाहर जो क्रॉल एरिया है इसमें फॉगर लगे हुए हैं, तो इनके चलाने से जो हवा में नमी है वो बनी रहती है और टेम्परेचर मेंटेन रहता है।
0: गर्मी को देखते हुए सफारी का समय भी बदला गया है। सुबह 6:30 बजे से पर्यटकों के लिए सफारी खुल रही है ताकि दोपहर की धूप से बचा जा सके।
4: इटावा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हमीरपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शिव कुमार सेठी का।
5: जनपद हमीरपुर में पिछले 3-4 दिनों में गर्मी ने 6 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 19 मई को 46.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। लू के थपेड़ों से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, साथ ही उल्टी, दस्त, डायरिया के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तेज गर्मी के कारण सड़कों में सन्नाटा देखने को मिल रहा है। चिकित्सकों ने लोगों से अपील की है कि दोपहर के वक्त बाहर न निकलें, बाहर का खाना न खाएं, घर का बना ताजा भोजन ही करें। सत्तू, बेल का शरबत, आम का पना, नारियल पानी और फलों का जूस आदि का सेवन अधिक करें। मौसम विभाग के अनुसार आगे आने वाले दिनों में और अधिक गर्मी बढ़ने की संभावना है। जनपद हमीरपुर के सर्राफा एसोसिएशन के व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन करते हुए कहा कि गोल्डन मोडर्नाइजेशन स्कीम को आकर्षक बनाया जाए, घरों में रखी पुरानी ज्वेलरी को रिसाइकिल कर नई ज्वेलरी बनवाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। व्यापारियों ने सुझाव दिया है कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बुलियन व बार की खरीद को कुछ समय के लिए टाला जाए। व्यापारियों ने अपने इस सुझावों से संबंधित ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा। स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को फिर से पोस्टपेड करने के आदेश का जनपद हमीरपुर के लोगों ने स्वागत किया है। इस फैसले से उपभोक्ता खुश हैं क्योंकि अब आए दिन बिजली कटने की समस्या से

0: उपभोक्ताओं को जूझना नहीं पड़ेगा। अधीक्षण अभियंता ज्ञान चंद यादव कहते हैं कि सभी प्रीपेड स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड करने का सरकार ने निर्णय लिया है। करीब एक सप्ताह में ही सभी मीटरों को पोस्टपेड में बदल दिया जाएगा। उपभोक्ताओं को उनके मोबाइल पर हर माह का बिल भेज दिया जाएगा। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि जिनका भी मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं है वह मीटर अकाउंट में अपना नंबर जरूर पंजीकृत करा लें। जनपद हमीरपुर के संचालित 1500 आंगनबाड़ी केंद्रों में अब नौनिहालों गर्भवती व धात्री महिलाओं को पका हुआ ताजा व पौष्टिक आहार परोसने का सरकार ने निर्णय किया है, जिससे अब केंद्रों में सूखा पुष्टाहार वितरित नहीं किया जाएगा बल्कि नौनिहालों व प्रसूताओं को आटे बेसन का हलवा बर्फी तथा स्वादिष्ट खिचड़ी खिलाई जाएगी। इससे 6 माह से 3 माह के सामान्य बच्चों को शिशु अमृत व शिशु आहार के तहत आटा बेसन का मीठा हलवा और 3 माह से 6 वर्ष के बच्चों को बाल पुष्टकर के रूप में आटा बेसन की मीठी बर्फी और नमकीन दलिया व मूंग की दाल की खिचड़ी दी जाएगी। सरकार का यह निर्णय बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सेहत में सुधार की ओर एक अच्छा कदम माना जा रहा है। इससे राशन की कालाबाजारी आदि में भी रोक लगेगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी इंद्रपाल सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार सभी केंद्रों में बच्चों, गर्भवती धात्री महिलाओं तथा कुपोषित बच्चों को ताजा व पौष्टिक पोषाहार खिलाया जाएगा। अब सूखा दाल, दलिया, पंजीरी, रिफाइंड आदि का वितरण नहीं होगा। इस माह सभी ब्लॉकों में नेफेड द्वारा राशन सामग्री की आपूर्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विगत दिनों बेसिक शिक्षा विभाग के लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि सप्ताह में एक दिन शिक्षक और बच्चे स्वच्छता अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में बच्चे श्रमदान करते हुए दिखाई दें तो इसे नकारात्मक रूप से प्रस्तुत न किया जाए। इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि गर्मियों के अवकाश के बाद स्कूल खुलने पर सप्ताह में एक दिन निर्धारित किया जाएगा। उस दिन सभी शिक्षक और बच्चे स्वच्छता अभियान चलाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों में अनुशासन और स्वच्छता की भावना विकसित होगी। अभियान के तहत जो स्कूल स्वच्छ और सुंदर होंगे उन स्कूलों के शिक्षकों और बच्चों को सम्मानित किया जाएगा।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल में आज आपने सुनी इटावा और हमीरपुर जिलों की खबरें। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 9:25 हुए हैं। अब आपको सुनवाते हैं गौरव भारत देश के। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा महादेवी वर्मा को।
4: जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते वे पथ पखार, जो तुम आ जाते एक बार, हंस उठते पल में आदर नयन, धुल जाता होठों से विषाद, छा जाता जीवन में बसंत, लुट जाता चिर संचित विराग, आंखें देती सर्वस्वार, जो तुम आ जाते एक बार। प्रस्तुत रचना हिंदी साहित्य की एक प्रमुख लेखिका, कवयित्री और शिक्षाविद महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी साहित्य के छायावादी युग की एक प्रमुख हस्ती मानी जाती हैं। महादेवी वर्मा का साहित्यिक योगदान हिंदी साहित्य को नए आयाम देने में महत्वपूर्ण रहा है। महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीराबाई कहा जाता था, क्योंकि वह अपनी कविताओं में एक प्रेमी से बिछड़ने के बाद के कष्ट और पीड़ा को काफ़ी भावनात्मक तरीके से पेश करती थीं। महादेवी वर्मा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रयागराज इलाहाबाद में पूरी की और बाद में संस्कृत में एमए किया। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक और महिला मुद्दों का विवरण मिलता है। उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से महिलाओं के अधिकार, उनकी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की बात की। उनकी रचनाएं नारीवादी दृष्टिकोण को प्रकट करती हैं और वे नारी मुक्त आंदोलन की प्रबल समर्थक थीं। महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य रचनाओं में यामा, नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत और दीपशिखा शामिल हैं। उनकी कविताओं में भावनाओं की गहराई, प्रकृति का सुंदर चित्रण और मानवीय संवेदनाएं प्रमुखता से मिलती हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति के विभिन्न रूपों का सुंदर चित्रण किया है और उनके माध्यम से जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर किया है। महादेवी वर्मा की निबंध और गद्य रचनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। उनकी प्रमुख गद्य रचनाओं में पथ के साथी, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं शामिल हैं। इन रचनाओं में उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों, समाज की विसंगतियों और मानव संवेदनाओं का वर्णन किया है। उनकी लेखनी में सरलता, स्पष्टता और संवेदनशीलता की विशेषता है। महादेवी वर्मा को उनकी उत्कृष्ट साहित्यिक सेवाओं के लिए अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया। उन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार और 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनका जीवन और साहित्यिक यात्रा हमें प्रेरणा देते हैं और उनके लेखन से हमें समाज और जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का अवसर मिलता है। महादेवी वर्मा का निधन 11 सितंबर 1987 को हुआ। उनकी साहित्यिक धरोहर आज भी हिंदी साहित्य को समृद्ध बना रही है और नई पीढ़ी को प्रेरित कर रही है।
3: अभी आप सुन रहे थे गौरव भारत देश की, जिसमें अभी आपने सुना अवधेश कुमार गौतम के स्वर में महादेवी वर्मा के बारे में।

0: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 9:30 हुए हैं। अब सुनिए उर्दू कार्यक्रम।
1: शुरू है बनामे खुदाए ताला कि जो मेहरबा है बहुत रहम वाला। समीन बज़्म अदब रामपुर रेडियो मरकज से आपके प्रोग्राम की मेज़बान रबा पंजुम आपकी खिदमत में हाजिर है। सलाम सुबह कबूल करें। समीन, उर्दू जुबान जहां मोहब्बत, तहजीब, अखलाक और शीरीनी का दर्ज देती है, वहीं साथ ही उर्दू अदब हमें यकजह। खुदाए ताला कि जो मेहरबा है बहुत रहम वाला। समीन बज़्म अदब रामपुर रेडियो मरकज से आपके प्रोग्राम की मेज़बान रबा पंजुम आपकी खिदमत में हाजिर है। सलाम सुबह कबूल करें। समीन, उर्दू जुबान जहां मोहब्बत, तहजीब, अखलाक और शीरीनी का दर्ज देती है, वहीं साथ ही उर्दू अदब हमें यकजहती और आपसी मोहब्बत, भाईचारे का ऐसा सबक पढ़ाता है कि जो दिलों में घर कर जाता है। हम मुआहिद हैं, हमारा केश है तरके रसूम, मिल्लतें जब मिट गईं, अज्जाए ईमा हो गईं। ये और ऐसे ही बहुत से दूसरे शेर कि है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद। चंद्र प्रकाश जौहर की एक नज्म मजहब का इख्तलाफ मिटाने की बात कर उसका ये शेर कि जौहर मिटा के मजहब व मिल्लत का इख्तलाफ, जौहर मिटा के मजहब व मिल्लत का इख्तलाफ, नफरत की आग दिल से बुझाने की बात कर। इस जैसे बहुत से अनगिनत अशार, नज़्में और गजलें कौमी यकजहती की एक ऐसी सबक आमोज शायरी है जो उर्दू जुबान और अदब को तमाम दूसरे लिटरेचर्स में मुमताज और सरबुलंद रखती है। जी हाँ, समीन अदब, आज इसी सिलसिले में हमने जिस तकरीर का इंतखाब किया है उसका मौजू है उर्दू अदब में कौमी यकजहती के अनासिर। और इस तकरीर को पेश करने के लिए हमारी दावत पर तशरीफ लाई हैं मोहतरमा तरन्नुम परवीन साहिबा। समात कीजिए उनसे ये तकरीर।
2: हिंदुस्तान दुनिया के मुमालिक में अपनी अलग पहचान और इम्तियाजी शान रखता है। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मजाहिब, मुख्तलिफ तहजीबें और मुख्तलिफ जबानें पाई जाती हैं। हर 12 कोर्स पर जबान का लहजा बदल जाता है। यहाँ 2175 के करीब जबानें इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसे मुश्तरका अनासिर भी हैं जिनमें एक मुश्तरका तहजीब के हुज़ू व ख़ल नुमाया तौर पर नजर आते हैं, जिसे कसरत में

0: ये थे जनाब बाकर जैदी, जो अपने खूबसूरत कलाम से हम सबको महसूस कर रहे थे। और सामीन, अब घड़ी की सुइयों का इशारा हमें समझ लेना चाहिए। अब हमें इजाज़त लेनी चाहिए अगले प्रोग्राम तक के लिए। अपनी मेज़बान रबाब अंजुम को रामपुर रेडियो मरकज़ से आज का ये प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दें। अब तो जाते हैं मैं कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। अलविदा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रामपुर की पेशकश था और आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से नशर किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। अपने श्रोताओं को हम बता दें, कल अर्थात रविवार
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। दिन के 9:50 हुए हैं। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। उपशास्त्रीय संगीत गायन के इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे मोहिंदर सिंह को, राग है सोहनी।

अभी आप सुन रहे थे मोहिंदर सिंह के स्वर में कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत का गायन। ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। राग था सोहनी। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 10:05 हुए हैं। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश के स्वर में फिल्म सरस्वती चंद से। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को दीपिका का नमस्कार।

अभी आपने सुना ये गीत मुकेश और लता मंगेशकर के स्वर में। इस गीत को सुनने के लिए खत हमारे पास आया था जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल कुमार धंजे, शीला धंजे और गायत्री धंजे का। इन्हीं के साथ हैं खोड़ी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद। पुराना शहर बरेली से इस गीत को सुनना चाहा था अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति मौर्य ने। ग्राम जीवनपुरा पंजाब से थे चरणजीत कौर, हेवन सिंधु और सुरेंद्र सिंह। पंडित नगला बाईपास मुरादाबाद से इस गीत को सुनना चाहा था डॉक्टर अख्तर हुसैन, बहारुल निशा, असलम हुसैन। बेटला सिरसी से थे डॉक्टर महमूद हुसैन, बीबीपुर से मकसूद हुसैन और इनके साथी। गांधी समाधि रोड रामपुर से हमारे पास खत आया था हाजी गफ्फार खां, राजिया खान, सिमरन खान, गुलफ शाह, जीनत अमान, हबीब अहमद इदरसी और शहनाज बाबू अंसारी का। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से थे ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित राय, हैप्पी राय। दुबिहा निवादा गाजीपुर से इस गीत को पसंद किया था प्रतीक रॉय, रोशनी रॉय, प्रांजल रॉय ने। गाजीपुर से इस गीत को सुना चाहा था अवधेश रॉय, प्रीति रॉय और नवनीत रॉय ने। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से हमारे श्रोता से थे बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष। मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर जिला पीलीभीत से इस गीत को सुना चाहा था विमल वर्मा, विनय वर्मा और इनके परिवार के सदस्यों ने। दौलतबाग मुरादाबाद से थे जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। और अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर। पंजू सराय संभल से हैं छोटे अंसारी, आलम अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी और असद अंसारी। जिला रतलाम मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजू बाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। आजाद नक्सर हरिद्वार से हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। ये सभी हमारे श्रोता साथी हैं आजाद नगर नक्सर हरिद्वार से। बेड़ी से हैं राजेश, सोनी, कंचन, गायत्री, वैष्णवी, चंचल, अर्जुन और धीरज। बलराम गेट काजगंज से इस गीत को सुनने के लिए खत आया है असलम सैफी, जैबन शाह, अक्रम सैफी और आबाद खान का। राजद्वारा रोड मीठे कुए रामपुर से सुनने वाले हैं आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, रवि रस्तोगी, फिरासत रस्तोगी, अर्पित, अभेरिया और आरुष। शिकारपुर उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता हैं बबली कुमार प्रजापति, पुष्पा देवी, डॉली, दीपांशु, पूजा, भीम और अभिषेक। इन्हीं के साथ हमारे श्रोता साथी हैं दुर्गादास, गंगाधर, गजानन, संजय, आशीष, पृथ्वीराज और साध्वी। पुणे से इस गीत को सुनने के लिए खत आया है पंकज कुमार और प्रियंका का। गांव खेड़ावाड़ी जिला हिंगोली महाराष्ट्र से इस गीत को सुना चाहा है शाहजी बोर्ड की, नंदा बोर्ड के, हनुमान, सारिखा, सुरेखा, सोनम और बोर्ड के परिवार ने। जतिका किशनपुर से है आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख और चांदनी नाज। कार्यक्रम के इसी गीत को पसंद किया है करोला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान ने। शाहबाजपुर कला कस्बा पागबड़ा से हैं मजाहिर हुसैन अंसारी, बेगम रईस अनाज और मुजक्किर बाबू। बहेड़ी से हैं राजेश, गायत्री और चंचल। जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से इस गीत को सुनना चाहा है तुषार कुड़रे, प्रसिक एकता, मेघना, उत्कर्षा और अरुणा ने। तेलंगाना जिला भोंगीर से है मोहम्मद बुरहानुद्दीन, यूसुफुद्दीन, फजान और फरहानुद्दीन। रेलवे रोड गंजुंडवारा से हमारे साथी हैं मोहम्मद कलीम, भुवन प्रकाश गौतम और फारूक शेख। लीजिए सुनिएगा इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत मोहम्मद रफी के स्वर में। फिल्म है मेरे महबूब।

यशुदास बनारसी सेन गुप्ता और हेमलता के स्वर में अभी आपने सुना ये गीत इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर। जमनी मोहल्ला इस्लाम नगर से थे मुजफ्फर अली खान, मतीन खान, अल्फिया खान और ईशा खान। मनकारा मंदिर, बीडे कॉलोनी, करगैना।

बरेली से इस गीत को सुना चाहा था बिनी सिंह सागर, पनीलाल सागर, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश सागर, राजेश कुमार, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, ओमवती भारती, रवनक, शुगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और पृथव सिंह ने। रामपुर लिसनर्स क्लब नालापार बाग छोटे साहेब रामपुर से इस गीत को पसंद किया था नवाबुद्दीन, निजामुद्दीन, मोहम्मद जमालुद्दीन, सादिया अक्सा और हम्माद ने। रहमत नगर छप्पड़ वाली मस्जिद मुरादाबाद से सुनने वाले थे बाबू अंसारी, शहनाज अंसारी, आफरीन और सुमैया महरीन। राजा बाजार चौक पिहिया आरा से इस गीत को सुनना चाहा था पूनम देवी, संगीता देवी, बीना और प्रतिज्ञा ने। इन्हीं के साथ थे गोला बाजार बक्सर से पूनम, पूजा, रोशनी, अमृता, सुरभि और खुशबू। और अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर। लेवा खेल मोहल्ला चांदुर बिस्वा से इस गीत के लिए खत आया है नारायण, ललिता, परी खड़ से गणेश, कार्तिक, स्वाति चौधरी और प्रयाग चौधरी का। आदर्श नगर मलौट पंजाब से हमारे श्रोता हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडिस शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना और निवान शर्मा। ग्राम घाटमपुर जिला रामपुर से इस गीत को पसंद किया है रामभजन सैनी, हरप्यारी सैनी, राजीव, संजय, मुकेश, आशा, अंशिका, पूजा और रामप्रकाश सैनी। वंदना नगर एयरपोर्ट रोड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से इस गीत को पसंद किया है पूजा, बबिता, शोभा, रेखा, स्वाति, प्रयाग चौधरी और इनके बहुत सारे साथियों ने। कोकिलवारा और आई जिला मुजफ्फरपुर से सुनने वाले हैं मोहम्मद फैसल शेख, नुसरत जहां, शेख टोली समस्तीपुर से हमारे पास खत आया है मोहम्मद शाहनवाज परवेज और मुसरत जहां का। जसपुर उत्तराखंड से इस गीत को सुनना चाहा है रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत रानी, तबस्सुम और रुखसार का। कार्यक्रम के इसी अंतिम गीत को पसंद किया है लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, साकी पवार, मोइन छोटू और मोहम्मद हसनैन पवार ने। जिला अमरोहा ने बस्ती पते खालसा से हमारे श्रोता हैं बारुल हसन सिद्दीकी, आलम सिद्दीकी, यूसुफ सिद्दीकी, अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, सलीम फहीम सिद्दीकी, यासीन अंसारी और सुदेश चौहान। कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर लता मंगेशकर के स्वर में, फिल्म है खानदान।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 10:30 हुए हैं। अब आपको सुनवाते हैं गोल्डन हिट्स। कार्यक्रम का पहला गीत हमने दिया है फिल्म फकीरा से, और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

गीत। इस फिल्म का अभी आपने सुना ये गीत लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर के स्वर में। आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म आए मिलन की बेला से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।

पर अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म नीला आकाश से। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गोल्डन हिट्स, आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर 11 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम धरोहर। धरोहर के अंतर्गत इन दिनों आप सुन रहे हैं धारावाहिक जिंदगी के आईने में। आज आइए सुनते हैं इस धारावाहिक की कड़ी संख्या 9।
1: जिंदगी के आईने में सभी श्रोताओं को असीम सक्सेना का नमस्कार। जिंदगी सांसों की सरगम पर एहसासों की रवानी, कुछ पाने कुछ खोने की कहानी। समय इंसान को बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ हाथों से फिसल भी जाता है। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब हम कुछ पल ठहरते हैं, जिंदगी के आईने में बीते हुए लम्हों को निहारने की कोशिश करते हैं। ऐसे में लबों पर कभी मुस्कुराहट थिरकती है तो कभी आंखों की कोर से आंसू भी जमते हैं।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर तीर्थराज मिश्र, एक प्रसारण कर्मी, एक साहित्यकार जिन्होंने सेवाएं दी कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर को भी। व्यक्तित्व के विभिन्न रूप हैं और आज वो कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। डॉक्टर तीर्थराज मिश्र जी, हम आपका स्वागत करते हैं आकाशवाणी रामपुर के स्टूडियो में। शुरुआत आपके बचपन से ही करेंगे, कहाँ जन्म हुआ, किस तरह का पारिवारिक परिवेश रहा?
1: हमारा जन्म जनपद जौनपुर में
0: जी
1: हुआ और शिक्षा हमारी इंटर तक तो गांव के इंटर कॉलेज में हुई, लेकिन इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैंने प्रवेश लिया।
0: शिक्षा के लिए कुछ खास आपने तय कर रखी थी दिशा, या सामान्य विषयों को लेने के बाद एक दिशा खुद ब खुद तय हो गई?
1: मैं वस्तुतः शिक्षक ही बनने की कामना लिए हुए था, लेकिन वो डिग्री कॉलेज में।
0: अच्छा।
1: लेकिन इन्हीं कारणों से मैं फिर मास्टर्स डिग्री नहीं कर सका इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, तो गोरखपुर विश्वविद्यालय से हमने बीएड की उपाधि ली। बीएड करने के बाद फिर शिक्षा जगत में प्रवेश की, तो विद्यालय की दशा बड़ी विचित्र थी, वो मुझे बड़ा कष्ट हुआ।
0: कैसी थी उस समय? तो कहते हैं शिक्षा पर खासा ध्यान भी दिया जाता था और लोगों के बीच रुचि थी, शिक्षा शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच संबंध भी बहुत अच्छे थे,
1: लेकिन प्रबंधकीय व्यवस्था ऐसी थी।
0: अच्छा।
1: सक्सेना जी की वेतनमान के बारे में और कई कारण रहते थे, अस्थिरता मन में रहती थी कब हटा दें प्रबंधक, तो एक भले आदमी के लिए हल्का सा वो कष्टदायक काम होता था। फिर मैंने शिक्षा जगत से मुख मोड़ लिया, क्योंकि बभुक्षिता व्याकरण ने भुज्यते, एक कहावत है, भूखा व्यक्ति व्याकरण नहीं खाता। इसके बाद फिर मैं यूपी गवर्नमेंट की सेवाओं में, कई विभिन्न सेवाओं में रहा, लेकिन चूंकि साहित्य के अभिरुचि के नाते मुझे अच्छा नहीं लगता था, बल्कि अधिकारियों से विरोध का सामना भी कभी कभार करना पड़ता।
0: साहित्य के प्रति आपकी रुचि किस उम्र में जागृत हुई और क्यों हुई?
1: बचपन से ही, जब मैं प्रारंभिक कक्षाओं में था तो जब डिप्टी साहब स्कूल में आते थे तो कहते थे किसी छात्र से कविता सुनवाइए, कोई कविता पाठ करे, और लड़के दुबके रहते थे, लेकिन मैं धड़ल्ले से कविता पाठ करता था। इसके बाद डिबेट में भी जब मैं बोलता था तो लोग बहुत प्रभावित होते थे, और जब और क्लास में गया हायर क्लास में
0: जी।
1: लेकिन जब मैं बोलता था तो लोगों के मुंह से निकलता था आप तो रेडियो में जाने लायक हैं, तो इससे लगता था कि मैं सही। और रेडियो उस समय बहुत सशक्त माध्यम था। खैर, इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गया तो वहाँ भी प्रेरणा मिली डॉक्टर अंकुर वर्मा से, और गुनाहों का देवता जो उपन्यास लिखे थे डॉक्टर धर्मी भारती, वो शिक्षक थे।
0: अच्छा।
1: उन लोगों से व्यक्तित्व का, अभी इलाहाबाद साहित्य केंद्र था
0: जी, बिल्कुल,
1: तो मैं भी एक आध बार साहित्य केंद्रों में गया और देखा, तो वहाँ मैंने एक खंडकाव्य लिखा था विरहवारी, श्रवण कुमार के जीवन से संबंधित।
0: अच्छा।
1: था डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को जब मैंने
0: ये पहली रचना थी,
1: पहली रचना थी, जब पांडुलिप दिखाई मैंने तो उन्होंने बड़ी प्रशंसा की भाई, और वह उनकी प्रशंसा बहुत बड़ा मूलधन सिद्ध हुआ। उन्होंने लिखा, अतीत के ऐसे स्वर्णिम पृष्ठ जो जनजीवन की आदर्शों की ओर प्रेरित कर सकें, कविता के माध्यम से आने चाहिए। इस दृष्टि से श्रीमती जी बधाई के पात्र हैं। आशा है वे अपनी परमार्जित कला के माध्यम से हिंदी साहित्य को उत्तम कृतियां प्रदान करेंगे, तो इससे प्रेरणा मिली। इसके बाद जब 1900 चीन ने आक्रमण किया
0: जी जी,
1: तो उससे मुझे इतनी वेदना हुई। 1962 में चीन ने आक्रमण किया था, इतनी वेदना हुई कि मैंने एक पद्य में बुकलेट लिखी, विजय आह्वान, हिमगिर के ऊंचे शिखरों से गूंज रही है वाणी, उठो जवानों आवाज बचा लो भारत माँ का पानी, मान सरोवर की लघु लहरें आहें भरकर कहती, इतनी मुझको नहीं बचाओगे कि अथराण याचना करती, शीत भूमि है नहीं घास तक उगती, मनुष्य कहाँ है ऐसी भूमि है, तो वीरों का सस्ता खून कहाँ है, ऐसा मत देखो यो को देख सोचो अतीत की झांकी, वीरों ने याहू दे देकर मरथल, गलित अज्ञ को काट फेंकना अपनी नीत नहीं है, अंतिम क्षण तक रक्षा करना इससे श्रेष्ठ नहीं है, इन चिंच भर भूमि है कितनों ने की कुर्बानी, उठो जवानों आज बचा लो भारत माँ का पानी। इस बुकलेट को प्रकाशित करके सक्सेना जी फिर मैं विद्यालयों में बांटा।
0: अच्छा।
1: छात्रों में एक ऐसा प्रसंग आया कि मैं अपने गाँव के इंटर कॉलेज में गया हुआ था, हमारे ही बड़े भाई प्रिंसिपल थे, कविता पाठ छात्रों का हो रहा था, हमारी इसी बुकलेट से छात्रों ने कविता सुनाई।
0: अच्छा।
1: तो प्रिंसिपल साहब ने मुस्कुरा कर कहा, छात्रों से कहा कि छात्रों अभी जो कविता तुम लोगों ने सुनाया उसके लिखने वाले कौन हैं? हमारे छोटे भाई बैठे हुए हैं। इससे फिर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। और जब 1965 में पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो जय जवान जय किसान माने की रचना लिए। भारतवर्ष साथिये देखो कितना प्यारा देश हमारा, कल कल कर बहती रहती गंगा यमुना सरयो धारा, उत्तर में नगराज हिमालय दुश्मन को ललकार रहा है, दक्षिण में सागर भारत माता का पैर पसार रहा है, इतने वर्ण धर्म के रहती नहीं भिन्नता हमें कोई, देश हमारा धरती अपनी हम सब है आपस में भाई, गेहूं चावल ज्वार बाजरा चना मटर लहराती रहती, वर्षा में मक्का की ढाले हम सबकी झोली है भरती, आम अनार नाशपाती संतरा से अंगूर लताएं लहराया करती हैं सब दिन, पूरी हैं आवश्यकताएं, उत्तर में हिंदी भाषा बंगला पंजाबी बोली जाती, दक्षिण में तमिल मलयालम कन्नड़ और तेलुगु भाती, कहीं मराठी गुजराती अपनी लीला को है दिखलाती, राजस्थानी राणा की वीरता कहानी है बतलाती, देश के लिए जो मरता है अमर हमेशा हो जाता है, अरे साथियों झांसी क्या वह किला आज क्या बतलाता है, और बताते बालू के गण राजपुता ने की यश गाथा, जंगल जंगल राणा भूमि इत्यादि,
0: क्या बात।
1: लेकिन यह रचना प्रकाशित नहीं कर पाए, जिसके इसी बीच आकाशवाणी के प्रति लगाव था ही, उस समय उत्तर देश में केवल लखनऊ और इलाहाबाद रेडियो स्टेशन थे
0: जी।
1: वाराणसी और रामपुर ये दो आखिरी सेंटर नहीं कहते थे, ये प्रोग्राम यहाँ से प्रसारित नहीं होता था,
0: केवल मन में वो इच्छा बराबर बनी रही थी कि रेडियो से जुड़ना है,
1: विकट इच्छा थी। एक बार इलाहाबाद रेडियो स्टेशन में टाइपिस्ट की जगह निकली,
0: अच्छा
1: तो इतना लगाव था रेडियो स्टेशन से कि मैंने लोगों से पूछा भाई टाइप सीख लूं क्या, लोगों ने कहा क्यों, जबकि मैं अधिकारी वर्ग में था, हमने कहा रेडियो स्टेशन में घुसना चाहता है कि आप क्लर्क बनेंगे वहाँ टाइपिस्ट, खैर इतना लगाव था। इसी बीच विज्ञापन प्रकाशित हुआ स्क्रिप्ट राइटर का,
0: अच्छा
1: दो पोस्ट थी लखनऊ और रामपुर स्टेशन के लिए, तो जिज्ञासा थी और लोगों ने ललकारा भी, और चूंकि लिखने की प्रवृत्ति थी तो मैंने आवेदन पत्र दिया और लिखित परीक्षा में आकाशवाणी केंद्र रामपुर में आए, तो वहाँ का दृश्य देख करके सबसे कमजोर अपने को देखा और लोग थे, लेकिन लिखने की थोड़ी क्षमता थी, अभ्यास भी था, तो जिसके में इंटरव्यू हुआ रिटन टेस्ट के बाद, भगवती चरण वर्मा जी जो प्रसिद्ध उपन्यासकार थे एक्सपर्ट थे
0: जी।
1: और चुनाव हो गया 1/2/1968 को आकाशवाणी केंद्र रामपुर स्क्रिप्ट राइटर के पद पर कार्यभार ग्रहण।
0: सौभाग्य है आकाशवाणी रामपुर का कि आज इसी केंद्र पर आपसे आपके संस्मरणों के जरिए बहुत सारी जानकारियां ताज़ा हो रही हैं। 68 से आकाशवाणी रामपुर से आप जुड़े, शुरुआती दौर था क्योंकि 65 में केंद्र स्थापित हुआ था, तो चुनौतियां बहुत सारी रही होंगी,
1: और उस समय प्रसारण नहीं होता था, केवल रिले होता था,
0: अच्छा
1: 5:15 केवल यहां से रिले होता, लखनऊ केंद्र से रिले होता। जब फैमिली प्लानिंग सेल यहां स्थापित हुई, जिसमें मैं आया यहां परिवार नियोजन एकांश में
0: जी,
1: तो यहां से रिकॉर्डिंग करके भेजते थे हम लोग लखनऊ, वहीं से प्रसारित, टूटते बंधन हमारा नाटक प्रसारित हुआ था, पुरखों की थाती हमने एक लिखा था, एक आलाप था वो बहुत पसंद किया गया था, और इंटरव्यू लेकर के किसानों का महिलाओं का ये सब भेजते थे, लेकिन प्रसारित वहीं से होता।
0: और स्क्रिप्ट लेखन में आपकी जो साहित्यिक अभिरुचि थी वो अपना प्रभाव जरूर दिखाती रही होगी, और उसके जरिए आपकी लिखी हुई जो स्क्रिप्ट थी खासी पसंद भी की जाती रही होंगी।
1: लेकिन जो पिपाशा थी सक्सेना जी वो शांत न हो पाई,
0: अच्छा
1: क्योंकि यहाँ से प्रसारित कार्यक्रम प्रसारित नहीं होता था,
0: अच्छा
1: तो विडम्बना यह थी कि एक नाटक पर हमारे वहाँ टिप्पणी कर दी लोगों ने, आकाशवाणी रामपुर लखनऊ वालों ने, क्योंकि वही देखते थे,
0: अच्छा
1: जब मिला मैंने पूछा तो बहुत झेपे, खैर लेकिन चूंकि वो जिसे कहते हैं कि वहीं से प्रसारित होता था इसलिए उनका एक अधिकार भी था, तो इसलिए यहाँ रह करके जो चाहता था वो नहीं हो पाता, इसलिए कि यह जिस ढंग से रेडियो स्टेशन की रूपरेखा होनी चाहिए थी उस समय नहीं थी, केवल 5:15 शाम को रिले होता था,
0: मतलब आत्मसंतुष्टि नहीं थी आपको?
1: नहीं थी ना, जो पिपाशा थी वो शांत कैसे हो गई उस दिन कार्यक्रम
0: जी जी,
1: जिस भावना से या इच्छा से आकाशवाणी में जुड़ा मैं, लेकिन नौकरी करने से ज्यादा महत्व था कि आकाशवाणी केंद्र के कार्यक्रमों में रुचि लूं और लिखूं, लेकिन वो नहीं हो पाया। इसी बीच पंतनगर विश्वविद्यालय यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था, कन्वोकेशन में रामपुर रेडियो स्टेशन से लोग रिकॉर्डिंग के लिए गए थे, तो मेरे मन में आया कि पंतनगर बहुत दूर नहीं है, तो वहाँ जब वांट निकली तो पूछा लोगों से, लोगों का नहीं बहुत नजदीक, तो वहाँ जाकर के हम देखते थे बीच में, देखा तो ऐसे स्टूडियो बना हुआ बन रहा है, अमेरिकन पैटर्न पर चूंकि यूनिवर्सिटी थी इसलिए बहुत अच्छे सामान उन्होंने दिया था, लेकिन अब एग्रीकल्चर से मेरा कोई संबंध नहीं था, बहुत दूर दूर
0: अलग अलग दिशाएं थी दोनों,
1: टोटल अलग दिशा
0: और कहां ये
1: अलग दिशा थी, लेकिन वहाँ भ्रम हो गया कि रेडियो स्टेशन खुल रहा है, बाहरी आदमी रेडियो स्टेशन ही जानते हैं बार बार कहे, अच्छा अंतरंग बहुत पता नहीं लगाया, पूछा क्योंकि इंजीनियर साहब ऑल इंडिया रेडियो के डेप्टेशन पाए थे त्रिपाठी जी थे, तो ये और दृढ़ हो गया कुछ संबंध है, तो कंस्ट्रक्शन में थे खैर, तो फिर यहाँ वहाँ भी अप्लाई किया, इसके बाद खैर सिलेक्शन भी हो गया, तो यहाँ से फिर 15 अक्टूबर
0: तो वहाँ पर आप पंतनगर में जो संचार केंद्र खुला पहली बार वो वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हुई।
1: वह पहली बार ऐसा था कि पंतनगर विश्वविद्यालय जो है अमेरिकन पैटर्न यूनिवर्सिटी विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी पैटर्न में है, तो वहाँ हर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन होता है, उसी पैटर्न पर यहाँ सारी व्यवस्था की गई। लेकिन यहाँ एकाधिकार था आकाशवाणी का, वो कहीं प्राइवेट अलाउ नहीं था उससे। आज तो अलाउ है, आज पंतनगर जनवाणी केंद्र खुल गया है, सब कुछ। उस समय नहीं था तो इसलिए प्रसारण नहीं हो सकता था। इसके बाद लेकिन एक प्लान वहाँ, चूंकि स्टूडियो था, धीरे धीरे संबंध हमारा संबंध क्योंकि आकाशवाणी से था, इसका एक फायदा हुआ। तो यहाँ एग्रीकल्चर एकांश स्थापित हुई और लखनऊ में थी, वाराणसी में थी
0: जी।
1: तो चूंकि मुझे सब जानते थे, इसलिए व्यक्तिगत संपर्क के बाद लोगों ने कहा कि वैज्ञानिकों की रिकॉर्डिंग आप भेजिए, हम ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो 10 रिकॉर्डिंग महीने में वैज्ञानिकों के विभिन्न विषयों पर भेजते रहे, और धीरे धीरे 14 स्टेशनों पर प्रोग्राम जाने लगा।
0: तो डॉक्टर साहब, साहित्य की आपकी पृष्ठभूमि रही, कृषि के वैज्ञानिकों से आप साक्षात्कार ले रहे हैं, किस तरह से संभव हो पाया?
1: यह मात्र विडंबना है कि अभ्यास किया है।
0: अच्छा,
1: पंतनगर में घुसने के बाद यद्यपि एक बार फिर आकाशवाणी में लौटने की इच्छा व्यक्त की, तो केंद्र निदेशक लखनऊ ने मुस्कुरा कहा, कमिश्नर झगड़ा कर लिए हो क्या वहाँ, पंतनगर तो बहुत बढ़िया जगह है, हमने देखा है।
0: जी जी।
1: खैर, लेकिन लौटे नहीं फिर। तो कहते हैं कि एक व्यावसायिक पक्ष भी जीवन का होता है, और धीरे धीरे उसी में रम गए, और इतना रम गए कि लिखा हमने वहाँ भी।
0: और आज भी हमें याद है जब रामपुर से खेती किसानी नाम से कार्यक्रम होता था, तो पंतनगर से जो भी साक्षात्कार आते थे उसमें इंटरव्यू लेने वाले डॉक्टर तीर्थराज मिश्र होते थे।
1: हाँ, बहुत
0: आपने इंटरव्यू लिया।
1: और इसके बाद जो है वहाँ किसान भारती एक पत्रिका प्रकाशित होती है पंतनगर में संचार केंद्र से, तो उसमें 3 स्तंभ थे, कृषिवाणी, प्रगतिशील किसान और प्रश्न पिटारी, ये स्तंभ खाली पड़े थे। तो वह दायित्व भी मुझे सौंपा गया किन्हीं कारणों से, यद्यपि पता था कि एग्रीकल्चर के नहीं है कोई नहीं, लेकिन यह हुआ कि आप लिखते हैं। तो उस स्तंभ को करीब 5 साल तक मैं लिखता रहा। इसके बाद जब संपादक वहां चले गए तो किसान भारती के संपादक का पद भी मुझे दे दिया गया।
0: अच्छा,
1: तो 5 साल तक किसान भारती पत्रिका का संपादन भी किया।
0: आपने शोध भी किया है किसी साहित्यिक विषय पर, उसके संबंध में जानकारी दीजिए।
1: हाँ, चूंकि जिज्ञासा थी और मैंने PhD की उपाधि जो ले हिंदी में, हमारा विषय था वो भी बहुत नया ही, हिंदी के अभिनंदन ग्रंथ विवरण एवं मूल्यांकन।
0: अच्छा,
1: क्योंकि अभिनंदन ग्रंथों की परंपरा थी, तो बहुत अभिनंदन ग्रंथ दिए जाते थे, अभिनंदन और प्रशस्ति दोनों में।
0: किसी व्यक्ति विशेष की या किसी साहित्यकार की, उन अभिनंदन ग्रंथों से तात्पर्य है?
1: अभिनंदन ग्रंथ यहाँ राजनेताओं को भी दिए गए, साहित्यकारों को भी। अच्छा। दिए गए और दिए गए, तो ये एक बृहद विषय था, एक विवादास्पद विषय भी था। लेकिन सौभाग्य था कि मुझे उपाधि मिल गई, क्योंकि विवाद भी रहता था। वो कहते थे अभिनंदन ग्रंथ तो कोई महत्व नहीं रखते। हमने कहा सैकड़ों ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, संपादन हुए हैं, आखिर उन पर कुछ न चर्चा चलाई जाए। तो हमने एक मानक भी निर्धारित किया कि अभिनंदन ग्रंथ कैसा होना चाहिए, किसका अभिनंदन हम करें, किसका न करें, अभिनंदन और प्रशस्ति में क्या अंतर है। जैसे रीत काल के कवि 200 वर्षों तक राजाओं की प्रशस्ति करते रहे।
0: जी जी।
1: दल के दरारंते कमठ करारे फूटे, के राके से पात बिहराने फंसे, इत्यादि इत्यादि कहते रहते थे। लेकिन इसके बाद अभिनंदन जो है इस प्रजातांत्रिक ढांचे में एक आया कि हम जिसके प्रति श्रद्धा रखते हैं इन्हीं कलाओं में, तो उसका स्वागत करें, तो ये एक धर्म भी है, इससे प्रोत्साहन भी मिलता है। तो लिखा हमने, बहुत सर्वे किया और मुझे PhD की उपाधि मिल गई है।
0: डॉक्टर तीर्थराज मिश्र, आपने जो भी खंड काव्य लिखा, विजय आह्वान कहें या फिर जय जवान जय किसान आपकी कविता आई, कहीं ना कहीं देशभक्ति पूर्ण रचनाएं आपका विषय नहीं, या और भी विषयों को आपने
1: ना? मैं देश आज भी सर्विस में भी बहुत बाधा पड़ी, आज भी दायित्व बोध का अभाव देखता हूं, बहुत कष्ट होता है। मैं बहुत दायित्व बोधी रहा हूं, और इसलिए देर से आना या काम न करना या लापरवाही करना, इस विषय पर बहुत विवाद रहा। अब जहां भी रहा हूं, वैसे शिक्षक के रूप में था तो वहां भी विवाद था।
0: आकाशवाणी के गिरिजा कुमार माथुर जी का अनुभव आप बता रहे थे, तो श्रोताओं के लिए भी वो साझा कर दें।
1: तो माथुर जी बड़े खैर कवि थे, वो उस समय जो संयुक्त निदेशक थे प्रशिक्षण के आकाशवाणी भवन में। तो इस ढंग से कार्यक्रम चलता रहा जीवन का, और मैं फिर जनवरी 99 में सेवानिवृत्त हुआ।
0: कुछ और कविताएं आपने इस बीच में रची हो जो बहुत अछूती हो, अलग हो आपकी?
1: उसी समय बीच कविता में ऐसा है, मैं कविता ही जैसे BED करते समय अपनी ही कविता मैंने पढ़ाई थी।
0: अच्छा,
1: वो बहुत आश्चर्यजनक था। अंत पहले ये हुआ, हमने कहा कहीं एक बुरा न मान जाए प्रसिद्ध
0: जी जी,
1: तो हमने लिखा प्रेमो पहाड़ यह ग्रहण करो हुलसी सपूत तुम एक बार, कवियरकुल कुमुद कलाधर सम कर रहे कौमदी का प्रसार, संस्कृतियों का संघर्ष हुआ हिंदुत्व जला बन देवदार, तब तुमने उसका शमन किया बरसा मानस की सुधाधार, आशा की लहरें लहर उठी मानव सरता आर पार, हुलसी सपूत तुम एक बार, तुमने कितने पथ एक किए दिखलाकर दीपक राम नाम, हुलसी हुलसी पा तुझे बली रत्नावल रत्नावली बाम, आनंद नंद मन के तुलसी हे तुलसी है महिमा पार, प्रेम पहाड़ यह ग्रहण करो हुलसी सपूत।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
1: पंतनगर में लड़कों की उद्दंडता देख करके

0: ये छोड़कर मुझको जीवन पथ पर स्नेह तुम्हारा प्रगत प्रेरणा देता रहा निरंतर। आज ऋण हो रहा पूर्ण कर तेरी चिराकांक्षा, माँ तुझको करता हूँ सादर शोध प्रबंध समर्थ।
1: क्या बात है,
0: क्या माँ की इच्छा थी जब मर गई।
1: अच्छा, ये जो आपने जो कुछ भी लिखा इसको प्रकाशित करके किसी ग्रंथ के रूप में श्रोताओं तक पहुँचाने का, पाठकों तक पहुँचाने का विचार आया मन में?
0: प्रकाशन बहुत महंगा है और उसका एक व्यवसाय पक्ष बहुत कमजोर है, इसलिए साहित्यिक जितनी रचना है उसका कहाँ प्रकाशन, न सब ठप हो गए हैं। अब पाठकों की रुचि वर्तमान में तो लगभग नहीं के बराबर। इस समय जो संचार माध्यमों में सबसे प्रबल माध्यम है, देख ही रहे हैं आप, प्राइवेट प्रसारण शुरू हो गया है, दूरदर्शन ये चैनल से जो दे रहे हैं, तो इतना सरलीकरण हो गया है जिसके कारण कि यह प्रसारण में इतना नहीं प्रभावशाली माना जा रहा है, तो इसलिए यह व्यावसायिक पक्ष बहुत टेढ़ा है।
1: डॉक्टर साहब, आपने कृषि विश्वविद्यालय को सेवाएं दी और काफी समय तक दी,
0: लगभग 30 वर्षों तक,
1: 30 सालों तक, और साहित्यिक अभिरुचि आपके भीतर पलती रही, तो कृषि को भी साहित्य का आधार कभी प्रदान किया आपने, उसको वो रंग दिया?
0: कई बार दिया, और उस पत्रिका में भी, जैसे मैं जब लिखा करता था ना
1: जी,
0: उसमें घा की एक कहावत है बड़ी,
1: जी जी बताएं,
0: भुइयां अपने हर होई चार, कि एक अच्छे किसान की परिभाषा है, भुइयां अपने हर होई चार, औ घर गिरहिन गौ दुधार, अरहर के दाल जड़हन के भात, गागल निबुआ औ घी उतात,
1: क्या बात,
0: सहरस खाण दही जो होए, बाके नयन परोसे जो होए, कहीं घाक तब सब ही झूठा, वहाँ छाड़ यहीं वैकुंठा। ऐसे बीच बीच में पद्य लिखता रहता है,
1: जी जी जी,
0: वो अभिरुचि करता रहता है, लेकिन साहित्यिक पक्ष जो है इसका एक व्यावसायिक पक्ष बहुत मजबूत नहीं रहा है। मैं जो है निराला की पुत्री थी, वो बीमार पड़ी, 25 रुपए की जरूरत थी, सरोज स्मृत उन्होंने लिखा है
1: जी,
0: तो वो निराला जी बहुत गिड़गिड़ाए कि कोई 25 रुपए दे दे, किसी ने नहीं दिया। इसी बीच सूचना आई कि सरोज मर गई, इसके बाद पागल ही हो गए। एक साल बाद उन्होंने सरोज स्मित जो लिखा है बहुत विकट है, तो उसको जब मैं पढ़ता था तो बहुत प्रभावित था, जब ये परिवार होगा तो इसका दायित्व संभालना मुख्य दायित्व है, इसलिए पारिवारिक दायित्वों में भी बता दूं, हमारी बड़ी पुत्री है
1: जी,
0: इस समय केंद्रीय सरकार में राजपत्रित पद पर है, सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो में, लड़का हमारा एकमात्र है, वो भी केंद्रीय सरकार में प्रबंधक के पद पर, अच्छे पद पर है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस पक्ष को भी देखना एक गृहस्थ का बहुत बड़ा धर्म है, तो इसलिए
1: बच्चों को आपने संस्कार देने में किस बात का ध्यान रखा है और क्या कोशिश की है?
0: ऐसा है कि जैसे मैं तो साहित्यिक अवरेज का था, हिंदी का था, लेकिन सारे बच्चे हमारे साइंस पढ़े
1: जी,
0: उसी क्षेत्र में खा रहे हैं इस समय, यद्यपि अभिरुचि थी बड़ी बच्ची हमारी, वो भी थोड़ा बहुत लिखती थी, रत्नेश भी लिखते थे, लेकिन अब वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार उन विषयों में रह करके उधर तैयारी में इधर ध्यान देना, कोई तो शिक्षा और इन सब का जो है व्यावसायिक पक्ष भी देखना बहुत जरूरी।
1: डॉक्टर मिश्र, बहुत सारे साहित्यकारों के आप संपर्क में रहे, धर्मवीर भारती जी आपके शिक्षक रहे, क्या कुछ उनके व्यक्तित्व से आपने ग्रहण करने की कोशिश की?
0: ऐसा है कि साहित्यकार या कवि भी एक नागरिक, राष्ट्र का नागरिक है, उसका व्यक्तित्व वैसे ही होना चाहिए जैसे कि एक अच्छे नागरिक का। धर्मवीर भारती जी के साथ उन्होंने पहली शादी की, एक बच्ची पैदा हुई, फिर छोड़ दिया, फिर दूसरी शादी की, और अंतिम समय उनका भी बहुत कष्टमय बीता, बल्कि लिखा हुआ था कि विगत 10 वर्षों से निराशापूर्ण जीवन बीती थी। डॉक्टर रामकौर वर्मा जी जो हमारे गुरु रहे और हमारे PhD के परीक्षक भी थे थीसिस के, लेकिन विडंबना यह थी कि पारिवारिक दायित्वों में बहुत रुचि नहीं ली, एक लड़की थी उनकी, और लड़की यदि वहाँ प्रोफेसर हो गई लेकिन वह भी अनमैरिड रह गई।
1: अच्छा।
0: तो कहने मतलब अंतिम समय देखा कि पूरा वीरान हो गया, कौन देखेगा, तो ये इसलिए हम इन सब से मुझे प्रेरणा मिली थी कि यदि पारिवारिक दायित्व है तो उसका निर्वहन करना ये पहला व्यक्ति का धर्म है।
1: डॉक्टर मिश्र, आप अपने पूरे कार्यकाल में अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं?
0: यदि व्यक्तिगत तौर पर बच्चों के यही शिक्षा दीक्षा और सर्विस, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है।
1: साहित्यिक क्षेत्र में?
0: साहित्यिक क्षेत्र तो संस्कृत में एक श्लोक है, मैं कह दूं, बभुक्षित व्याकरण न भुज्यते न पियते काव्य रस पिपासते ही, भूखा व्यक्ति व्याकरण नहीं खाएगा और प्यासा व्यक्ति और रस काव्य का रस नहीं पिएगा। इस भौतिक जीवन में, क्योंकि साहित्यकारों के दुर्दशा जो पढ़ा करता था और देखा करता था, उससे मुझे बड़ी प्रेरणा मिली कि साहित्यिक चीज अपनी जगह है लेकिन पारिवारिक दायित्व को निभालना यह एक बहुत बड़ा धर्म है।
1: साहित्यिक अभिरुचि की जहां तक बात इस दौर में करते हैं तो युवा पीढ़ी में साहित्य के प्रति रुचि लगभग लगभग ना के बराबर है, तो इसको देखकर दिल को दुख जरूर होता होगा
0: उसका, क्योंकि व्यावसायिक पक्ष नहीं है। इस भौतिक जीवन के लिए व्यावसायिक पक्ष बहुत जरूरी है। तो अब नई पीढ़ी इसको पढ़ करके कविता लिख करके कई हमसे आते थे, पूछते भी रहते थे, हमका कविता से पेट नहीं भरेगा ना, अब शादीशुदा हो तो बच्चों पर भी ध्यान दीजिए, तो व्यावसायिक पक्ष भी।
1: तो डॉक्टर मिश्र 1999 में आपने सेवा से अवकाश

0: ग्रहण किया, उसके बाद से अब किस तरह से आप मुख्य धारा से खुद को जोड़े हुए हैं?
1: कहीं नहीं, अब बीत राग होकर के केवल बसंत नहीं बसंत है मेरा, जिसे कहते हैं अब बसंत नहीं है अब बसंत है, इसलिए अब कहीं नहीं।
0: दिनचर्या क्या रहती है आपकी?
1: अक्सर हमारे बहुत लोग पूछते हैं पारिवारिक जीवन, इसमें धनपत्नी हम दो प्राणी है और पोता हमारे साथ है।
0: अच्छा अच्छा,
1: वो साथ रहता है, ज्यादा समय उसके साथ देते हैं, घुमाते घुमाते रहते हैं। और बहुत समाचार पहला 6 बजे रेडियो ट्रांजिस्टर से हम समाचार सुनते हैं, बैटरी ऑपरेटेड है, और 6 बजे समाचार सुनते हैं, फिर 7 बजे समाचार सुनते हैं, फिर रामचरित मानस का पाठ जो आता है उसको सुनते हैं, फिर 8 बजे समाचार सुनते हैं, शाम को सुनते हैं प्रोग्राम, यही है। हम फिल्म नहीं देखते, यहाँ तक कि दूरदर्शन कार्यक्रम नहीं देखते।
0: गीत संगीत में भी कोई दिलचस्पी ज्यादा नहीं है?
1: कोई नहीं, अब जिस समाज को विघटन और टूटन देख करके बहुत कष्ट होता है। शिक्षा दीक्षा 47 के बाद बहुत बढ़ी, लेकिन जिस ढंग से मानव मूल्यों का अवमूल्यन हो रहा है इसे हार्दिक क्लेश होता है। उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति आज कारागार में है, ये बहुत बड़ी विडंबना है।
0: डॉक्टर मिश्र, लेखन कार्य क्या अभी भी जारी है? कविताएं फूट रही हैं?
1: अब नहीं, बता दिया कि अब बसंत है,
0: अब कुछ नहीं,
1: कोई लेखन कार्य नहीं, मात्र यह है कि इन्हीं पारिवारिक दायित्व में देखता रहता हूँ। अब बच्चे का की पोस्टिंग हो गई अभी भुवनेश्वर,
0: जी जी,
1: तो पहली बार इतनी दूर, पहले लखनऊ था, इसके बाद भुवनेश्वर,
0: जी जी।
1: अब एक ही लड़का है, वैसे अटैचमेंट था उसका भी था, तो बड़ा अटपटा लग रहा है, बहुत छटपटा रहा है, उनका देखो ट्रांसफर हो जाएगा, प्रयास किया जाएगा।
0: डॉक्टर साहब, आप प्रसारण से भी जुड़े रहे, आप कृषि विश्वविद्यालय से भी जुड़े रहे, श्रोताओं से आपका सीधा संबंध रहा, तो क्या आप श्रोताओं के लिए इस माइक्रोफोन के माध्यम से कहना चाहेंगे?
1: नहीं, पहले तो जो प्रसारण से जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन करूंगा कि इसकी गुणवत्ता बनाए रखना पहला धर्म है
0: जी।
1: और यदि वैसे भी बता दूं कि आकाशवाणी जो सबसे सक्षम माध्यम था, लेकिन चूंकि ये केवल श्रव्य माध्यम है और दूरदर्शन श्रव्य दृश्य दोनों है, तो मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है आदमी में कि सुनी ही और देखी हुई चीज पर लोग अधिक विश्वास करते हैं सुनी हुई चीज के बदले। तो इस नाते जो वर्तमान स्थिति है देख रहा हूँ पाठकों को श्रोताओं को, वो जो है वो अब नहीं उतना ज्यादा नहीं इधर हो रहा है, और तो इसलिए जो है हमारी पहली वार्ता जो प्रसारित हुई वसुधैव कुटुंबकम इसी रामपुर आकाशवाणी अच्छा। से बहुत लोगों ने चिट्ठियां लिखी, इसके बाद 50 से ज्यादा वार्ताएं प्रसारित हुई, लेकिन कहीं कोई चर्चा तक नहीं चला था। तो इसका मतलब श्रोता पक्ष का तो हटा हुआ है, और इसमें किसी का दोष नहीं है, इसलिए उचित यही है कि माध्यम यह सशक्त है, और चूंकि केवल सभ्य माध्यम है इसलिए भाषा बहुत सक्षम माध्यम इसमें है।
0: डॉक्टर तीर्थराज मिश्र, हम आभारी हैं आपके कि आपने हमारे लिए इतना समय निकाला और अपने जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, ये थी जिंदगी के आईने में कार्यक्रम की आज की कड़ी। अगले अंक में फिर हमारे साथ होगी एक और शख्सियत, तब तक के लिए असीम को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

जिंदगी के आईने में। अभी आपने इस धारावाहिक की 9वीं कड़ी सुनी। धरोहर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है।

आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। 11:30 में है, ये समय है मन भावन का।

मन भवन कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीत माला। गीतमाला कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को रेणु तिवारी का नमस्कार।

लड़खड़ाते कदमों को जो संभाले वो हाथ दोस्ती है, जिसे सुनते ही दिल हंसते वो बात दोस्ती है, अंगारों को जो बना दे फूल वो जादू दोस्ती है, बदल कर रख दे जो हर भूल वो काबू दोस्ती है, अंधेरों को कर दे जो रोशन वो दीप दोस्ती है, हर आंसू को कर दे मोती वो सीप दोस्ती है, हर नाकामी को जो हरा दे वो जीत दोस्ती है, हर जमाने में जो रहे जिंदा वो रीत दोस्ती है।

सच सबको नाज होता है ऐसी दोस्ती पर, और खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें सच्चा दोस्त मिलता है। ऐसा दोस्त जो हर सुख दुख का साथी हो, हर राज का राजदार हो, और हाँ वो जो अपने दोस्त के दिल में रहता हो। एक दोस्त ऐसा हुआ करे जो सिर्फ मेरा हुआ करे, मैं रोऊं तो हंसाया करे, रूठूं तो मनाया करे, वो भूल जाए नाम मेरा, मुझे फर्जी नामों से बुलाया करे, मेरी हर खुशी में शामिल हो, मेरी शरारत में मुस्कुराया करे, उसे कमी महसूस हो मेरी, वो भी मुझे याद आया करे, उदासी पर मुझे हंसाकर आंखों से नमी चुराया करे, मेरी अक्सर नादानियों पर वो मुझे हक से डराया करे। एक दोस्त ऐसा हुआ करे जो सिर्फ मेरा हुआ करे।

दोस्ती पर दिल और जान लुटाने वाले दोस्त आसानी से नहीं मिलते। अगर आपको ऐसा दोस्त मिला है तो इस दोस्ती को संभाल कर रखें, दोस्त का भरोसा करें, क्योंकि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो दिल से निभाया जाता है और अक्सर इस रिश्ते को दुनिया की नजर लग जाती है। गलतफहमी दोस्ती की सबसे बड़ी दुश्मन है। अक्सर जब दोस्ती को दुनियादारी की नजर से निभाया जाता है तो मायूसी हाथ लगती है। एक दिन हम जुदा हो जाएंगे, जाने कहां खो जाएंगे, तुम लाख पुकारोगे हमको पर लौट के हम ना आएंगे। थक हार के दिन के कामों से जब रात को सोने जाओगे तब याद तुम्हें हम आएंगे पर लौट के ना आ पाएंगे। एक रोज ये रिश्ता छूटेगा, फिर कोई ना हमसे रूठेगा, पर हम ना आंखें खोलेंगे, तुमसे कभी ना बोलेंगे, आखिर उस दिन तुम रो दोगे, ए दोस्त मुझे तुम खो दोगे।

दोस्ती के बीच गलतफहमियों की ये दीवार तब तक ही रहती है जब तक खामोशी रहती है। चाहे गिला शिकवा ही क्यों ना हो, पर बातचीत कायम रहे तो देर सवेर गलतफहमियों के बादल छट ही जाते हैं और दिल का ये रिश्ता जीत ही जाता है। दोस्ती पर भरोसा और गहरा हो जाता है, वो भरोसा जो सारी जिंदगी हर मोड़ पर दोस्ती को दिन ब दिन मजबूत करता है। उस समय दिल बस यही दुआ करता है।

0: आपके काम, आपके फैसलों से विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि होगी। और आपको वो मंत्र कभी भूलना नहीं है, हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव, नागरिक का कल्याण ही हमारा कर्तव्य है। मैं एक बार फिर आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को आगे के जीवन के लिए, देश सेवा के इस अवसर को निभाने के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देशभर के 47 स्थानों पर आयोजित 19 रोजगार मेले के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार पत्र वितरित करने के अवसर पर आयोजित समारोह और माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन सुन रहे थे।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
5: 8700001-4242।
2: यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन के ठीक 12 बजे हैं। अब सुनिए चित्रपट संगीत।

मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था लोफर। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आइए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के ही संगीत निर्देशन में आपको सुनवाते हैं आक्रमण फिल्म का एक गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है।

अब सुनिए एक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित कर रहा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार शौर्य, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है। नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल http://awards.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 है। सूचना समाप्त हुई।

आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। 12:10 हुए हैं। अब हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम है गीत आपके नाम।

गीत आपके नाम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को रेणु तिवारी का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का ये पहला गीत कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज की आवाजों में, लव 86 फिल्म का ये गीत किया है हमने अपने इन सभी श्रोताओं के नाम, सिंधौली, मीरगंज, बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया, जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बोडाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश, साथ हैं जगताप, ग्राम दूलापुर जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह, जिला नांदेड़ येताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद और दुर्गेश्वरी जायसवाल, नेहरू चौक पैठण से सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा, प्रसाद जाधव, सोनी, सोनल जाधव, बीबी सिया जाधव, जालना शहर से सोमनाथ, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव, कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरुशब्द सिंह, इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिर अजीम और निशा अजीम, जालंधर से नेहा मक्कड़, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, आसमान अंसारी और शबनम बानो, बक्सर से राज, एसडी अंसारी और फातमा नाज, चमन पार्क दिल्ली से सोनम और अदीबा, मऊनाथ भंजन से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, जालंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां, इशरत जहां, हेमा, मेरठ कैंट से दर्शन लाल बंसल, कैथल से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा, सब्जी मंडी बुलडाणा से शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा, आयजा अनम और मुदसिर हुसैन, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुगिंदर सिंह जोड़ा सीटी, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबराय, आप सभी के नाम ये गीत कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज

गीत आपके नाम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम करणवीर हाउस भूचो कैचिया बठिंडा पंजाब से, प्रेम सिंह जौड़ा मनजीत कौर, करणवीर करण दपिंदर वरिंदर कुलदीप सिमू एकम दमन और अभिजोत, बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी कमरुन्निशा शबिस्ता मोहम्मद नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी, धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी नौशाद सलमानी बीबी आलिया और आयन बाबू, बरेली कैंट चनेटी से विनेश कुमार रागनी श्रीवास्तव और मुस्कान, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्ड के नंदा बोर्ड के हनुमान बोर्ड के उत्तम जमदाड़े और स्वराज जमदाड़े, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा कपिल छिपा ईशान छिपा और पूजा परिहार, बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूड़त नेहा जैन दीपक मयंक मूड़त चेतन नाहटा, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता नीलम बत्ता निहारिका बत्ता हार्दिक और वंश बत्ता, जेल रोड रायगढ़ से सौरभ निषाद प्रकाश कुमार बबलू निषाद और तरुण यादव, मुंदीचक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी, जिला मुरादाबाद गोविंदपुर खुर्द से राजा हसैन शाहिद और आदिल हुसैन, बोरसरा नेला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू वीमा वैभवी विनोद विभूति अंशु बबली और प्रियांशु साहू, ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड से रामशरण विश्वकर्मा साहिल विश्वकर्मा मंजू रंजना वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, ईदगाह गेट मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी रईस दूल्हा अंसारी, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता राधा नामदेव संजय ढींगिया संदीप अनिल जैन और दर्शन भाई, ग्राम महेशपुर खेम मुरादाबाद से तौफीक अहमद सिद्दीकी अतीक अहमद सिद्दीकी मोहम्मद दानिश सिद्दीकी हमजा सिद्दीकी और गुलशन साहिबा, जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा जतिंदर कौर गुरप्रीत सिंह लवप्रीत कौर, ये श्रोता है फालजिका पंजाब से भूषण खेड़ा विशाल खेड़ा विशु खेड़ा लाडली खेड़ा शालिनी टिवांशी और आरबी खेड़ा, साथ हैं जीवन सिंह बूक, बरली मुंबई से नवाब खान इशरत जहां मास्टर अजहर खान और अजीम खान, गांव जाखोद से शंभुदयाल खटक विमला देवी अमरजीत

दरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और पूजा खटक, छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल, इमरान अहमद फूलवाले, कापसेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद फूलवाले, बेगूसराय से शमीम अहमद, राइन अखलाक अहमद और समस्त फूलवाले परिवार, स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू और पप्पी भाटिया, आप सभी के नाम ये गीत कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। फिल्म का नाम है नाम।

आकाशवाणी रामपुर से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत आपके नाम अपनी रेडियो साथी रेनु तिवारी के साथ। कार्यक्रम का अगला गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में चमत्कार फिल्म का ये गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम चंद्रनगर सहारनपुर से कौशल्या जोशी सुरेश प्रभा शंकर देव और आशु गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन वीना मस्कीन आशीष राजा चैतन्य मस्कीन मेघा मस्कीन चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचिता केशु रिधान खुराना मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकार नर्मदा पोहरकार और सुजाता पोहरकार ग्राम बहरामपुर टेमा जिला खरगोन से तिलोकचंद वर्मा भागवत वर्मा अभिषेक सीमा वर्मा अभिषेक वर्मा सचिन समरराज वर्मा आरोही वर्मा मनाली हिमाचल से हर्ष विनय विनीत रोजस भाई चंडीगढ़ से शेफाली शेफी डेविस विमला और सतीश भाटापारा दंतरेगी से हीरामणि वर्मा पारसमणि वर्मा पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोकेलाल वर्मा ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी लालू मिस्त्री अंसारी मोहम्मद मुनाजिर अंसारी अबरार हुसैन अंसारी मुन्ना भाई अंसारी आशिक हुसैन अंसारी और अल्ताफ हुसैन गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली और मुजफ्फर अली गणेशपुर गंज डुंडवारा से एम फारूक शेख शेख शमा परवीन साइमा फारूक सरफराज शेख गुलफराज शेख और बीबी मुस्कान अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा और गव्या मल्होत्रा ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निघत परवीन अब्बासी शहनवाज अब्बासी सरफराज अब्बासी फरदीन सुहान अरजान और अबान अब्बासी साथ है परिवार के सभी सदस्य पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत श्वेता भगत की सुतासु अर्णव आनंद और सत्यम आनंद बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविन्द्र सिंह छावड़ा इंद्रजीत कौर छावड़ा स्वीटी छावड़ा ये श्रोता हैं जावेद अख्तर राही शमसुल कमर राही बेगम रुखसार रकीबा शाहीन तूबा आफरीन शमीमा अख्तर अंसारी तेलंगाना बंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन फरहान फैजान समायरा आजमीन गुड़िया गांव फरासी हिसार से राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी संबलपुर काकेर से श्रोता हैं फागू राम यादव ज्योति और ओजस्वी यादव व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव दिव्येंदु भूषण संस्कृति और पौरुष मॉडल टाउन से सुधीर नूतन सुनीता शर्मा सुनीता जैन पिपरिया से कमलकांत गुप्ता दीपा रिमझिम गुप्ता समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता श्रद्धा गुप्ता अदिति गुप्ता राधे गुप्ता दीपक और अंकुर राघव गुप्ता आप सभी के नाम ये गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म का नाम है चमत्कार।

चमत्कार इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत आपके नाम कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। सूर्या फिल्म का ये गीत हमने किया है अपने इन सभी श्रोताओं के नाम। ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार और साई गायकवाड़। जेल रोड बक्सर से असलम अंसारी, शमसुल हक और शरफुद्दीन अंसारी। पटियाली रोड गंजवारा से आमिर हुसैन, बेगम तैयब शेख, फौजिया शेख, आहिल हुसैन, अरहान हुसैन और परिवार के सभी सदस्य। ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया, कमलेश, निशा, प्रज्ञा, प्रतिमा, वेद बाबू कठेरिया और समस्त कठेरिया परिवार। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल मनवर, चेतन मनवर, रोशनी और बीबी प्रियांशी। कुम्हार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा, प्रथमेश और पांडुरंग कुमार। ग्राम व पोस्ट लदावली जिला मुरादाबाद से माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना, साथ हैं अजीत कसाना। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत कौशिकी, दीपाली, युवान और आर के राजा। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का। ग्राम दूलापुर जिला मुरादाबाद से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। नहन स्टेट जिला समस्तीपुर बिहार से विनय कुमार मिश्रा, विनीता मिश्रा, गुंजन, छोटू, अमन, आराध्या, नूतन और लल्लन मिश्रा। वार्ड नंबर एक पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, देशांत कुमार और अर्पिता जी। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। ग्राम व पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुनूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी, डीजे प्रधान। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। बेड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर। वैष्णो कलानी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अल्तमश खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और शादाब खत्री। गोगावा से हाजी इसहाक लोड़ामानी, मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अयूब शेरी। दंतरेगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा। राहट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप, अक्षय रामेकर, रुद्रा, रुचिका और समस्त रामेकर परिवार। जखड़गांव अहमदनगर से मोहम्मद नासिर हुसैन पटेल और अमीना पटेल। सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और अशोक येले। आप सभी के नाम ये गीत मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। फिल्म का नाम है सूर्या।

सूर्या, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। इन्हीं आवाजों में अब ये गीत फिल्म जीना तेरी गली में। ये गीत हमने किया है अपने इन सभी श्रोताओं के नाम। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बीबी गर्वी और हिमाक्ष। तहसील स्वर पंजाबी कॉलोनी से त्रिलोकी नाथ राठौर, अजय राठौर, विजय राठौर, विनय राठौर, विकास राठौर, आकाश राठौर, शिवांशी, प्रियंका और शिवाय राठौर। अंबाला कैंट से सोनाली नारंग, पथिक भसीन, कृष्ण कुलभूषण भसीन और इनकी दादी जी। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद। गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनैद मुजावर, सबीहा मुजावर, मुखाइल मुजावर और जैनब मुजावर। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खुलवार, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन टिकेस्ट्रो, रोजी, पर्ल और विलिस टिकेस्ट्रो। दिल्ली से रेशमा अंसारी, निशा और शकीला अंसारी। डुमराव बिहार से आसमा परवीन और वली भाई अंसारी। ये श्रोता हैं गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम, साक्षी, अच्छे लाल, बुल्की वाली और फलना झा। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ शर्मा और मैंडी शर्मा। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सोनिया और विशाल सपकाल। गांव लोहगंज लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रशीद वारसी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी। सिकंदरा राव से मुबीन अब्बासी और इशरत परवीन। कलाम रोड हरगोविंद नगर नवा शहर से सुरिंदर संधु, अनीता संधु, रोहित, रितेश, शिखा, प्रीतेश संधु और मैक्स। कपसीड़ा दिल्ली से फिरोज खान, अहमद मोगा, इकबाल मोगा। जालंधर से संदीप और सुरेश। मेरठ कैंट से राधिका शाक्य और दिव्या अग्रवाल। ग्राम व पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायल, प्रथमेश देशमुख, सर्वद देशमुख, प्रणाली देशमुख, सानवी और कल्पना देशमुख। आप सभी के नाम ये गीत अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। फिल्म का नाम है जीना तेरी गली में।

इस गीत के लिए हमें कुछ और ईमेल भी मिले हैं। सनावद ग्राम खंगवाड़ा से दगड़ू सेन, धर्मेंद्र सेन, श्रीराम सेन, कलाबाई, सावित्री, निशा सेन, आयुष, दीपांशु, आरुषि और लक्षिता सेन। खुर्जा से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश, चंदन, अंकुश अरोड़ा। राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, वंदना कुमार और बिट्टू कुमार। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा। रायपुर से मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रजा और गौसिया फातिमा। सहारनपुर से आशु जाधव, कस्बा गुन्नौर से नसीमुल इस्लाम गुन्नौरी, फरहीन अब्बासी, दानिश गुन्नौरी। पटेल नगर से रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप और आजू जाजौरिया। साथ ही हैं गुड्डू। श्रोताओं, हमने अपने बहुत से श्रोताओं के ईमेल शामिल करने की कोशिश की है, पर फिर भी इतनी बड़ी संख्या में हमें ईमेल मिले हैं कि सबको शामिल करना हमारे लिए संभव नहीं है। अगले कार्यक्रम में हमारी फिर कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा ईमेल हम शामिल कर सकें। और अब गीत आपके नाम कार्यक्रम समाप्त करने की रेणु तिवारी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत आपके नाम। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दिन का एक बजने वाला है। कुछ ही पलों में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला साझेदार बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: केरलम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बेंच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों में मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देशभर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है।
3: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह!
4: फसा! अनजान ऐप से बचें।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण में सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। एक बजकर 1:15 पर आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। सुनहरा दौर ये कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा 2:30 पर। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे 2010 के दशक के कुछ फिल्मी गीत।

हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे आज शाम के साथ। युवा साथियों के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी होगा 5:15 पर। चित्रपट संगीत का आनंद आप ले सकेंगे 6:10 पर। किसान साथियों के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत होगा 6:20 पर। इसमें आज चर्चा का विषय होगा मक्का की खेती। साथ ही डॉक्टर दीपक कुमार के साथ हम आपको सुनवाएंगे एक भेंटवार्ता, पशुओं के लिए संतुलित आहार का महत्व। आपसे भेंट करेंगे पंकज कुमार। कृषि संकेत में खरपतवार नियंत्रण के तरीके आपको बताए जाएंगे और क्षेत्र संकलित कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। छांव बरगद की ये कार्यक्रम प्रसारित होगा शाम 7 बजे। इसमें आज सुनिएगा श्री इरफान खां के साथ भेंट वार्ता। भेंट करता होंगे असीम सक्सेना।

सुगम संगीत में 7:31 पर सुनिएगा बेगम अख्तर की आवाज में कुछ गजलें। गीत गाता चल व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा 8:00।

9:30 पर अखिल भारतीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगी और दिल्ली केंद्र से ही रात्रि 10 बजे सुनिएगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।

0: ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं, 1:10 हुआ चाहते हैं। आकाशवाणी लखनऊ से कुछ ही देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्तवानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज 19वीं रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा नए भर्ती होने वाले नौजवानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीनामे तकसीम किए। इस मौके पर प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क भर के हजारों नौजवानों के लिए आज का दिन बहुत अहम है।
2: आज देश भर के हजारों युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं।
1: समाजी इंसाफ के मरकजी वजीर मुमलकत बीएल वर्मन लखनऊ में तकरीबन 330 अहलकारों को तकरीनामे तकसीम किए। ये रोजगार मेला लखनऊ समेत मुल्क भर में 47 मुकामात पर मुनक्किद किया गया। मरकजी हुकूमत अब तक 12 लाख से ज्यादा नौजवानों को शफाफ तरीके से नौकरियां दे चुकी हैं। वहीं वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में इन तमाम नौतैनात नौजवानों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी। उन्होंने अवामी फलाही इकदाम के लिए वज़ीर-ए-आज़म का भी तहदिल से शुक्रिया अदा किया। मर्दमशुमारी 2027 के पहले मरहले में कल रियासत में घरों की गिनती और फहरिस्त साजी शुरू हुई। इस सिलसिले में शुमार कुंदगान और निगरानों ने रियासत के 3,89,312 घरों की फहरिस्तबंदी के ब्लॉक्स में सर्वे का काम शुरू किया। इस दौरान लखनऊ में वजीर आला की रिहायशगाह, गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर और आगरा में ताजमहल को भी शुमार किया गया। इस मरतबा न सिर्फ घरों की गिनती बल्कि रियासत की तारीखी और सकाफती शिनाख्त भी मर्दमशुमारी का हिस्सा बन रही है। मुहिम के पहले ही दिन 1,35,00,000 से ज्यादा घरों पर मर्दमशुमारी के घरों के नंबर लगाए गए हैं। बुजुर्ग शहरियों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन कल मुल्क भर में शुरू की गई। इसका मकसद बुजुर्ग शहरियों के लिए सपोर्ट सिस्टम को मुस्तहकम करना है। जीवन ऐप सरकारी फलाही स्कीमों, हंगामी इमदाद और बुजुर्ग शहरियों की रिहाइश के बारे में मालूमात फराहम करेगी। वजारत जल शक्ति के पीने के पानी और सफाई सुथराई के महकमे की तरफ से जारी करदा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 की रिपोर्ट में वाराणसी को सेंट्रल जोन का बेहतरीन जिला करार दिया गया। रियासतों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर। वाराणसी के चीफ डेवलपमेंट अफसर प्रखर कुमार सिंह ने कहा कि यह सर्वे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत मुल्क के देहातों में सफाई की असल हालत का जायजा लेने के लिए किया गया था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने दर्जे 12 के बोर्ड इम्तिहान के जवाबी शीटों की स्कैनशुदा कॉपियां हासिल करने की आखिरी तारीख को एक दिन बढ़ाकर 24 मई तक कर दिया है। CBSE ने यह फैसला अपनी वेबसाइट पर दरखास्तों में इजाफे और तकनीकी खराबियों के बाद किया। सुप्रीम कोर्ट यकम जुलाई से नवी जमात के तलबा के लिए 3 जबानों को लाजमी करार देने के CBSE के फैसले को चैलेंज करने वाली एक अर्जी पर अगले हफ्ते समाअत करेगी। सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली और जस्टिस जॉय मालिया बागची और विपुल एम पंचोली पर मुश्तमिल बेंच के सामने मामला उठाया। उन्होंने कहा कि मुफादयामा की अर्जी तलबा, असातजा और वालदैन ने दायर की है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे फी लीटर तक का इजाफा किया गया। ईंधन की कीमतों में ये तीसरी नजरेसानी है, जिसमें 15 मई को 3 रुपये फी लीटर, 19 मई को 90 पैसे का इजाफा हुआ। ये इजाफा ईरान के तनाजे और अपनाए हरमूज में रुकावटों के बाद आलमी खाम तेल की कीमतों में इजाफे के दरमियान हुआ है। बाराबंकी के फतेहपुर थाना इलाके में वाकई झांसा गांव में देर रात सड़क हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद की मौत हो गई। हादसा उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे सोए हुए खानदान को कुचल दिया। हादसे में जख्मी होने वाले एक खातून को तश्वीशनाक हालत में लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिफर किया गया। ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। आज IPL क्रिकेट मुकाबले में लखनऊ सुपर जॉइंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। شدید گرمی اور ہیٹ ویو کے حالات ریاست کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق باندہ کل لگاتار چھٹے دن ریاست کا گرم ترین ضلع رہا۔ محکمہ موسمیات نے اگلے تین دنوں تک ریاست کے مشرقی و مغربی علاقوں میں دن کے وقت ہیٹ ویو کی وارننگ جاری کی ہے۔ لکھنؤ محکمہ موسمیات کے سینئر سائنسدان اتل کمار سنگھ نے کہا کہ اس دوران کئی علاقوں میں تیز دھول کے طوفان کی بھی توقع ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اگلا بلٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا۔
0: میڈیم ویو 336.7 میٹر یعنی 891 کلو ہرٹز اور ایف ایم 102.9 میگا ہرٹز پر آکاشوانی کا یہ رامپور کیندر ہے۔ 1:15 ہوئے ہیں۔ اب پرستوت ہے سجیو فون ان کاریکرم ہیلو فرمائش۔

हेलो फरमाइश कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो साथी रेणु तिवारी। कीजिए स्वीकार नमस्कार। श्रोताओं, अगर आप भी कोई गीत सुनना चाहते हैं, अपने दिल की कोई बात करना चाहते हैं हमारे साथ, तो डायल करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 0595-232-4326। और अब हमारे पहले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो हमारा अपने श्रोता से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन कॉल कटने से पहले उन्होंने हमें अपनी फरमाइश बता दी थी। राकेश जी का फोन हमें लगा था, हमारे पास आया था, और उन्होंने दिल का क्या कसूर फिल्म का ये गीत सुनना चाहा था। हमें खेद है राकेश जी की लाइन कट जाने के कारण हमारी आपसे बात नहीं हो सकी, लेकिन हम आपकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं। लीजिए सुनिए।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार बहन जी।
0: नमस्कार।
1: जिला गुना मध्य प्रदेश से आपका भाई मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ बहन।
0: चंदेल जी, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि आपके शहर में मौसम के क्या हाल हैं?
1: बहन जी, हमारे शहर में तो ये मान लीजिए गर्मी पड़ रही है, इस समय भयंकर गर्मी है।
0: जी, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से, कैसे
1: आप
0: वो ऐसे मौसम
1: यही
0: में
1: कहना
0: बचाव
1: चाहेंगे
0: करें?
1: कि धूप में ना निकले, और अगर जरूरी काम पड़े तो फिर सिर पे तौलिया रख के जाए, मुंह बांध के जाए, बार बार पानी पीते रहे, और एक प्याज अपनी जेब में जरूर अवश्य ले जाए। उससे क्या है, लू की बचत हो जाती है।
0: बहुत अच्छी बात कही है आपने। आज आपका फोन लगा है हेलो फरमाइश में,
1: जी,
0: कौन सा गीत सुनवा दें आपको?
1: फिल्म का नाम तो है गंगा यमुना सरस्वती, और गाने के बोल हैं चूड़िया खनकी खनकाने वाले आ गए। और बहन जी, इसी गाने को सुनने वाले कुछ मेरे मित्र भी हैं,
0: बिल्कुल।
1: बक्कार फरीदी जी है बिजनौर से, और बीजीपुर मुरादाबाद से मकसूद हुसैन भाई साहब हैं, और केसरी सिंह राजपूत जी हैं, भारत सिंह अहिरवाल जी हैं, राम बाबू शर्मा जी हैं, राम बाबू मालवीय जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, इन सभी को यह गाना डेडिकेट रहेगा।
0: आप सभी की फरमाइश पर हम सुनवा रहे हैं ये गीत। लीजिए, सुनिए।

0: हेलो
1: हेलो दीदी, नमस्ते जी।
0: नमस्ते
1: दीदी, मैं जिला रामपुर ग्राम गंगा एक मिनट वाली मस्जिद के पास से
0: शबनम, कैसी हैं आप?
1: हम बहुत अच्छी हैं दीदी, आप बताइए आप कैसी हो, परिवार में और स्टाफ के लोग सब कैसे हैं?
0: यहाँ भी सब ठीक हैं। ये बताइए, गर्मी का मौसम है, ऐसे में कैसे काम चल रहा है आपका?
1: जी दीदी, हमारा काम तो दीदी अच्छा चल रहा है, पार्लर में बैठे हैं और बस आपको याद कर रहे थे। वो गर्मी बहुत पड़ रही है और पंखे के नीचे बैठे हैं।
0: बिल्कुल, गर्मी बहुत पड़ रही है, ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपना ध्यान रखें।
1: जी दीदी, और मैं तो सभी श्रोताओं से कहना चाहती हूँ कि इतनी धूप में नहीं निकलें और उधर 5 बजे के टाइम पे ही निकलें और नींबू पानी पीते रहें, पानी का प्रयोग ज़्यादा करें।
0: बिल्कुल, और आकाशवाणी के कार्यक्रम भी सुनते रहें।
1: दीदी ये तो बात सही कह रही है।
0: जी, आज आपका फोन लगा है हेलो फरमाइश में, कौन सा गीत सुनवा दें आपको?
1: दीदी इससे पहले कहूँगी, हम जब हेलो रामपुर हेलो फरमाइश सब सुनिए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, सभी श्रोताओं से भी कहना यही चाहते हैं सब सुने ध्यान से। और फिल्म का नाम है दिल वाले और गाने के बोले कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आंखें। और दीदी दो नाम लेना चाहूंगी,
0: बिल्कुल,
1: जैसे समय हाजी गफ्फार का शमा परवीन और ककरबे से हैं शायरा खान, इनको गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ।
0: आप सभी के लिए हम सुनवा रहे हैं ये गीत, लीजिए सुनिए।

0: हेलो
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कालरी जिला छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: इंद्रभान जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए, आज बहुत दिनों के बाद हमारी आपसे बात हो रही है।
1: हाँ मैडम, क्या था, लगातार मैं फोन करता था, कई बार तो शुरू में नहीं लगता था तो बीच में रिंग जाता था, लेकिन उतना नहीं था आप लोगों की तरफ से, लेकिन मेरा रिंग जाता है एकदम
0: जी। कई बार ऐसा हो रहा होता है कि हमारी अपने श्रोताओं से बात हो रही होती है तो संपर्क नहीं हो पाता और आपको ऐसा लगता है कि कॉल जा रही है।
1: अगर कॉल जाती है ना मैडम, तो किसी भी श्रोता का तो कोशिश कीजिएगा कि जैसे हेलो बात करके इसके बाद वो अगले श्रोता का जो गाना चल रहा है थोड़ा सा मोबाइल में हल्का सा लिखे दीजिएगा, बोलिएगा कि आप होल्ड में रहिए, इस गाने के बाद हम आपको आपका फोन को लेंगे, काटेगा इतना बोलिएगा तो वो श्रोता कोई नहीं काटेगा आपका फोन।
0: जी बात ये होती है कि जब हमारे श्रोता से बात हो रही होती है और दूसरे श्रोता बात कर रहे होते हैं, जब आपकी कॉल लगती है तो हम पहले ही गीत पूछ कर उसको होल्ड पर रख देते हैं। जी
1: तो जैसे गाना चल रहा है तो थोड़ा सा गाना सुना दी कि हेलो बात करते हुए कि गाना बता दिए, इसके बाद तो उसका गाना उसको मोबाइल में अगले श्रोता का वो गाना को उसको हल्का सा लिख के सुना दी तो उसको लगेगा कि अब मेरा कॉल उठेगा।
0: बिल्कुल, हम अपने श्रोताओं की भावनाओं का पूरा ख्याल रखते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे कोई भी श्रोता निराश ना हो। बहरहाल आज आपका फोन लग गया है हेलो फरमाइश में, कौन सा गीत सुनाते हैं आपको?
1: फिल्म का नाम है सनम तेरी कसम और गीत के बोले खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो। गायिका नितिन मोहन दर्शन रावल। और सबसे पहले गीत आपको केंद्र निर्देशक साहब को, प्रभात श्रोता को, आकाशवाणी रामपुर में जुड़े सभी लोगों को, आपके परिवारजन के रिश्तेदारों को, अफिसियलियों को, पूरे उद्घोषक भाई बहनों को, हेलो एक्टर रेडियो फरमाइश ग्रुप में जुड़े श्रोताओं को, पूरे भारत श्रोता को डिडेट कर रहा हूँ फोन स्वामी के, धन्यवाद। अब इंतजार कर रहा हूँ अपने पसंद के गीत सुनने के, फोन स्वामी, धन्यवाद।
0: आप सभी की फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं।

0: हेलो
1: जी। हेलो फरमाइश
0: जी। हेलो फरमाइश
1: जी। पहले आपको नमस्कार
0: नमस्कार
1: जी। जिला अमरोहा नई बस्ती पते खास से बहादुर हसन सिद्दीकी बोल रहा हूँ।
0: बहारुल भाई, बहुत दिनों के बाद हमारी आपसे बात हो रही है आज।
1: देखिए, जब जब आपकी ड्यूटी लगी तो हमारी हमने कोड कोड लगाने के लिए कोशिश भी नहीं की, और आज देखिए कोशिश ये सब सिर्फ 2 बार ट्राई किया था फोन और फौरन ही लग गया फोन।
0: जी, बहुत अच्छी किस्मत है आपकी, क्योंकि कई बार हमारे श्रोता शिकायत करते हैं कि लंबे समय तक वो कॉल करते रहते हैं लेकिन उनकी कॉल रिसीव नहीं होती।
1: देखिए, अब से हमसे पहले जो श्रोता बात कर रहे थे उनकी कॉल सुना आता, लेकिन 1 मिनट भी नहीं हुआ जो कि कॉल लग गई है, तो अच्छा लग रहा है।
0: बिल्कुल, ये किस्मत की बात है। कभी कभी किस्मत साथ देती है तो पहली बार में ही कॉल लग जाती है, और कभी कभी बहुत सारे श्रोता लाइन में लगे होते हैं, वो बात कर रहे होते हैं तो कॉल नहीं लग पाती। आज आपकी कॉल लगी है।
1: कुछ तो ऐसे शिकायत करते हैं, देखिए हम काफी दिनों से कॉल लगाते हैं फोन नहीं लगता, उनसे ये कहना था। देखिए, आप कोशिश करते रहे, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। ऐसे नहीं है जो कि आपने 2 बार 3 बार ट्राई करा और फोन छोड़ दिया, बोले फोन नहीं लग रहा। मन से फोन लगाइए, जरूर इंशाल्लाह जरूर फोन लगेगा आपका।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने कि हमारे श्रोता हिम्मत ना हारें, कॉल करते रहें, एक ना एक दिन कॉल जरूर लगेगी।
1: जी जी जी।
0: आज आपकी कॉल लगी है, कौन सा गीत सुनवाते हैं आपको?
1: फिल्म का नाम रहेगा हम आपके दिल में रहते हैं, उसका टाइटल सॉन्ग सुनवा देना आप, और घर के कुछ नाम थे।
0: बिल्कुल,
1: जैसे मोहम्मद आलम सिद्दीकी हैं, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी हैं, बेटी अलीशा सिद्दीकी, शिबान सिद्दीकी, अलीशा सिद्दीकी, सलीम सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, और यासिन अंसारी, सुतेज चौहान, अतीक तौफीक, दानी सिद्दीकी, महेशपुर से, इकराम प्रेमी साहब रामपुर से, नवाबुद्दीन भाई रामपुर से, दुलापुर मुर्दाबाद से, मुकेश कश्यप जी हैं, राशिद अंसारी हैं, पागबड़ा से मुजाहिर अंसारी हैं।
0: आप सभी की फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, लीजिए सुनिए।
1: धन्यवाद, नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो फरमाइश।
0: हेलो फरमाइश।
1: सबसे पहले आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: मैं गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान आपसे बात कर रहा हूँ।
0: गफ्फार भाई कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप सुनाइए, आपके और आकाशवाणी परिवार के क्या हाल है?
0: यहाँ भी हाल सही है, लेकिन मौसम में गर्मी काफी बढ़ गई है।
1: जी बहुत ही गर्मी है
0: जी। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे सुनने वालों से, क्या एहतियात बरतें?
1: मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जान है तो जहान है, शाम को घर से निकलें, दिन भर घर में रहें और कच्चे आम का पन्ना बनाकर पिएं, शिकंजी पिएं, गन्ने का रस पिएं, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं,
0: बिल्कुल
1: खाएं, तरबूज खाएं, यही सब चीजें खाएं, आप लू से बचे रहेंगे।
0: बिल्कुल, हम और आप तो एहतियात बरत सकते हैं, पर जो मूक पशु पक्षी होते हैं उनके लिए ऐसे मौसम में बहुत मुश्किल खड़ी हो जाती है।
1: जी लोगों को चाहिए कि छत पर उनके दाने पानी का इंतजाम करें।
0: बिल्कुल। आज हेलो फरमाइश में आपका फोन लगा है, कौन सा गीत सुनवा दें आपको?
1: फिल्म का नाम है प्यार ही प्यार, मोहम्मद रफी साहब की आवाज है, गाने के बोल हैं देखा तेरी आंखों में प्यार ही प्यार, कुछ सुनने वालों के नाम है।
0: बिल्कुल
1: जी। सबसे पहले मेरी वाइफ है राजिया खान, सिमरन खान, इरफान खान, शमा परवीन, शाहिदा परवीन, शानूर अंसारी, शबनम अब्बासी, मसूद हुसैन, जीनत अमान, गुलाब शाह, आकाश रस्तोगी, सचिन के बाद से संदीप सक्सेना, हबीब अहमद, यही सब सुनना चाहेंगे।
0: आप सभी की फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, लीजिए सुनिए है।

0: हेलो
1: हेलो फरमाइश
0: जी। हेलो फरमाइश
1: मैम जी। आदाब
0: आदाब।
1: मैं जिला रामपुर ग्राम खेड़ांडे से मोहम्मद कामिल बात कर रहा हूँ।
0: कामिल भाई हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: मैम एकदम अच्छे हैं, बस आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है मैम
0: जी। आज आपकी कॉल बहुत समय के बाद लगी है शायद।
1: मैम हाँ कुल एक दो हफ्ते के बाद लगी है मैम, टाइम मिलता है लगा लेते हैं, थोड़ा बिजी रहते हैं तो नहीं लगा पाते हैं मैम
0: जी। क्या कहना चाहेंगे आज आप?
1: मैम मुझे सॉन्ग सुनना है एक
0: जी।
1: फिल्म का नाम है साजन का घर और गाने के बोल हैं दर्द सहेंगे कुछ न कहेंगे प्यार में तेरे।
0: ठीक है, आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं।
1: सुनने वाले मेरे साथ में
0: बिल्कुल
1: मोहम्मद तालिब परवेज, वसीम अकरम, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, अनीसुर रहमान, यही सब सुनना चाहेंगे मैम।
0: आप सभी की फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, लीजिए सुनिए।
1: थैंक यू मैम।

0: हेलो
1: जी,
0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश मैम, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। हमारी कौन सी श्रोता बोल रही है?
1: जिला रामपुर ग्राम काशी बोल रहे, शबनम दी बात कर रही हूँ आपसे।
0: शबनम कैसी हैं आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं मैम, आप बताइए आप कैसी हो और आकाशवाड़ी रामपुर में सभी लोग कैसे हैं?
0: यहाँ भी सभी ठीक हैं। ये बताइए क्या करती हैं आप?
1: मैम मैं जरी का काम करती हूँ, साथ ही साथ आपके प्रोग्राम सुनती रहती हूँ।
0: आज आपका फोन लगा है हेलो फरमाइश प्रोग्राम में, कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
1: मैम फिल्म का नाम है आदमी खिलौना है और कोई भी गाना प्ले कर देना कुछ सुनने वाली।
0: बिल्कुल।
1: ये है रामपुर से सायरा बीन, अनम बी और लाइबा काजमी, आप और हम।
0: आप सभी की फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, लीजिए सुनिए है।

श्रोताओं, हमारा और आपका आज का साथ यहीं तक। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात के वादे के साथ। आज रेणु तिवारी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सजीव पुनन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 2 बजने वाले कुछ ही पलों में अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से रिले होगा।

0: in infrastructure, digitization, employment opportunities, and ease of doing business. Dr. Murugan said that the centre has so far provided 12 lakh jobs, fulfilling the assurance given by the Prime Minister. He said the government's success is driven by the mantra of reform, perform and transform. He urged the citizens to stay informed about various welfare schemes and programs of the government. We spoke to some of the beneficiaries who were given appointment letters at today's Rozgar Mela.
1: My name is Sakshi Verma and I'm from Raipur, Chhattisgarh, and I'm very grateful to ICF and PM Narendra Modi and Government of India that I get this opportunity through cultural quota. As a classical dancer, we get this job is very difficult and I'm very grateful to them. So thank you, ICF.
2: My name is Santakishore. I'm from Trivandrum, Kerala. I wrote this exam some years back, but now I got posted and now I'm very happy. I thank our central government for providing such an opportunity. I will take this not only as my work, but a service to the nation.
3: My name is Tejinder Singh Kanda. I am from Bathinda, Punjab, and I am selected for junior associate in State Bank of India. I am so grateful for the central government giving me the opportunity to serve the nation.
0: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary has announced that 1 lakh teachers will be recruited in the state over the next 5 years. During a high-level review meeting of the Education Department, the Chief Minister directed the officials to ensure the recruitment of at least 20,000 teachers every year. He said that the notification for teacher appointments will now be issued annually in the month of July to streamline the recruitment process. Meanwhile, Education Minister Mithilesh Tiwari said that the Chief Minister's announcement has ended the uncertainty surrounding the fourth phase of the teacher recruitment examination, TRE4. He informed that the Education Department will soon assess vacant teaching posts and send a fresh requisition for further recruitment. The Bihar government has announced free travel on state-run buses for all students appearing for the NEET UG re-examination scheduled on June 21. In a social media post, Chief Minister Samrat Chaudhary said all NEET candidates in the state will be allowed to travel free of cost on government buses. The Chief Minister also appealed to district administrations, temples and non-governmental organizations to help arrange drinking water and sattu, a flour made from dry roasted pulses and cereals, for students and their parents at bus stands, railway stations and other major locations. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has extended the last date for obtaining scanned photocopies of answer books for Class 12 board examinations by one more day until tomorrow. Earlier, the deadline was today. The CBSE said the decision was made after its website experienced unprecedented traffic over the past few days, along with several attempts of unauthorized interference, making it prone to disruptions. The board informed that the students will have up to 2 days to apply for the next stage of verification of marks or re-evaluation after receiving the scanned copy of their answer books. The CBSE has advised candidates to make use of the extended timeline and complete the process accordingly. U.S. Secretary of State Marco Rubio arrived in Kolkata this morning on a 4-day visit to India. This is his maiden visit to India, marking an important step towards strengthening bilateral ties and expanding cooperation in trade, defense, energy security, technology, and Indo-Pacific strategy. U.S. Ambassador to India Sergio Gore received Mr. Rubio at the Kolkata airport. Soon after his arrival, the U.S. Secretary of State visited Mother House, the headquarters of St. Teresa's Missionaries of Charity, and the children's home in the city. Secretary Rubio will call on Prime Minister Narendra Modi in New Delhi today. According to the U.S. ambassador, the upcoming engagements will primarily focus on strengthening cooperation in key strategic sectors, including defense partnerships, advanced technologies, trade ties and collaboration under the Quadrilateral Security Dialogue, Quad, framework. Tomorrow, Mr. Rubio will hold talks with External Affairs Minister S. Jaishankar and attend the U.S. Embassy's Independence Day celebrations in the national capital. The World Health Organization, WHO, has raised the public health risk of the Bundibugyo strain of Ebola in the Democratic Republic of the Congo from high to very high at the national level. WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus said the risk is now assessed as very high nationally, high regionally, and low globally. He added that 82 cases and 7 deaths have been confirmed, but the outbreak is likely much larger, with nearly 750 suspected cases and 177 suspected deaths reported so far. The WHO had earlier declared the outbreak a public health emergency of international concern, while clarifying that it is not at the pandemic level. Indian Oil has reassured customers and the general public that there is no overall shortage of petrol and diesel in the country. In a statement, the oil marketing company said that the current situation being witnessed at certain retail outlets is highly localized and temporary in nature, arising due to local demand-supply imbalances and redistribution of sales patterns in select areas. Indraprastha Gas Limited, IGL, increased the price of compressed natural gas, CNG, by 1 rupee today. After the price hike, the new rate for 1 kg CNG in the national capital is 81 rupees and 9 paise. In IPL cricket, Lucknow Super Giants will take on Punjab Kings in Lucknow this evening. The match will start at 7:30 p.m. Last night, Sunrisers Hyderabad defeated Royal Challengers Bengaluru by 55 runs in Hyderabad. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red warning for heatwave to severe heatwave conditions over East Uttar Pradesh, East Madhya Pradesh and Vidarbha till tomorrow. According to the IMD, heatwave conditions are expected to persist over large parts of northwest, central and eastern India over the next 6 to 7 days. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi distributes over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments, says India is partnering with various countries across the world to provide opportunities, employment and global exposure to youth. Bihar government to recruit 1 lakh teachers in the state over the next 5 years. CBSE extends last date for obtaining scanned copies, photocopies of answer books for class 12 board examinations until tomorrow. U.S. Secretary of State Marco Rubio to call on Prime Minister Modi in New Delhi today. WHO raises public health risk of Bundibugyo strain of Ebola in Congo from high to very high. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants to take on Punjab Kings in Lucknow this evening. And with that, we end the midday news.
4: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Lovely Nigam. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे. कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है. बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करेगी. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल तक की. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया. और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है. उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं. प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें. श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है.
5: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है. आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है. भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है. इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
5: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
4: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
5: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
4: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
6: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आईगॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं।

0: पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरल में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री आरसीएफ कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। सीबीएसई ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। सीबीएसई ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
0: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1,100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है।

0: पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99 रुपये 51 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81 रुपये 9 पैसे हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेनियो कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थों या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 2:00 बजकर 30 मिनट हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरा दौर।

सुनहरा दौर इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं 2010 के दशक के कुछ फिल्मी गीत। सबसे पहले ये गीत वेद शर्मा की आवाज में, फिल्म का नाम है मलंग।

मलंग। इस फिल्म को मैं अभी आपने सुना वेद शर्मा को। आइए अब सुनते हैं ये गीत हर्षदीप कौर और भानु प्रताप सिंह की आवाजों में। फिल्म का नाम है मनमर्जियां।

मन मर्जियां इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना हर्षदीप कौर और भानु प्रताप सिंह की आवाजों में। आकाशवाणी रामपुर से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनहरा दौर। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं 2010 के दशक के कुछ फिल्मी गीत। आइए अब सुनते हैं ये गीत अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में। फिल्म का नाम है हैप्पी हार्डी एंड हीर।

रोचक कोहली, अरिजीत सिंह और नेहा कक्कड़ की आवाजों में अभी आपने ये गीत सुना। फिल्म थी पति पत्नी और वो। आकाशवाणी रामपुर से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनहरा दौर। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं 2010 के दशक के कुछ फिल्मी गीत। आइए अब सुनते हैं ये गीत यासिर देसाई की आवाज में। फिल्म का नाम है गोल्ड।

AIR at 90. सुनहरा दौर, ये कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से। कार्यक्रम का ये अंतिम गीत मीत ब्रदर्स अनजान और यासिर देसाई की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है शिमला मिर्च।

0: यह दौर सुनहरे गीतों का हर दिल को बहलाता है, बीते लम्हों की खुशबू से मन महक महक जाता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरा दौर, ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर 3 बजे। अभी तक आप सुन रहे थे हमारी पहली सभा के प्रसारण। इन्हीं मीटर्स पर शाम 5 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। अब से लेकर शाम 5 बजे तक एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर विविध भारती के प्रसारण उपलब्ध रहेंगे। मीडियम वेव पर हमें ये सभा सम्पन्न करने की आज्ञा दीजिए।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी तो शुरू करते हैं आज का ये सफर आपके मनपसंद गीतों का। तो पहला गीत सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता हैं, ये कहाँ से लिखा है आपने? आपने लिखा है गांव जाखोद राजस्थान से, पूजा खटक बिमला देवी शंभुदयाल खटक ने। और इसी ये खत हमें मिला है कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती, रेखा गुजराती। और ये खत हमें मिला है बीकानेर से और राजस्थान से। अच्छा, आप राजस्थान के थे श्रोता जिनका नाम हमने पढ़ दिया है। आप है चेतक सर्कल उदयपुर से मुकेश जीनगर, रेणु जीनगर, अजय, प्रिंस और कुलदीप। आप सभी सुनना चाहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाज मोहम्मद रफी की, और फिल्म का नाम है जीने की राह।

अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अनामिका से। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन। इस गीत को सुनने की आप सभी ख्वाहिशमंद हैं। आप हैं कोल्हापुर से सतीश वाघमारे, आतिश वाघमारे, स्वाति, वर्षा वाघमारे, श्रमण वाघमारे, श्रमेण वाघमारे। अच्छा, आपने चंदन नगर सातारा से ये खत लिखा है। और उल्लास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर, चेतन शामतकर ने खत लिखा है हमें। आप हैं पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और अलीना मंसूरी। नंदग्राम गाजियाबाद से बाबूराम आनंद, बीना आनंद, खुशी आनंद। और गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी पंवार और मास्टर मनीष। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म अनामिका में।

0: लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म अनामिका में। अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। आप हैं पलसीकर कॉलोनी इंदौर से धनेश मटाई, राकेश मटाई, उमेश, जिम्मी, अमिता, हनी, दियाना, जियांश मटाई, करनाल हरियाणा से गुरविंदर सिंह पांधा, मनविंदर सिंह पांधा, और ये खत आया है हैदराबाद से कनुगुला गोपाल, महेश्वरी, प्रावलिका, विष्णुवर्धन और विघ्नेश का। हम आप सभी से ये अनुरोध भी करते हैं कि कृपया अपने नाम थोड़ा सा साफ सुथरा लिखें ताकि हमें पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो और हम आपके नामों का उच्चारण सही ढंग से कर पाएं। आप सभी सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म लैला मजनू का गीत। गीतकार साहिर लुधियानवी हैं और संगीतकार मदन मोहन हैं।
1: तेरे दर पे आया हूँ।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, अनजान की बोल, लता मंगेशकर की आवाज है और फिल्म का नाम है अपने रंग हजार। सुनने वाले हमारे श्रोता हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर दुर्ग से, आप हैं छत्तीसगढ़ से अनंत जैन, हंसित जैन, प्रीति जैन, और छत्तीसगढ़ से ही हैं देवरी भटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर एस, अश्विनी कुमार और गणेश राम। लीजिए आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर। आप हैं लिखने वाले गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोधले, आरती जोधले और इनके परिवार वाले। ये खत हमें मिला है छत्तीसगढ़ से जिला धमतरी से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू, शुभम सावित्री साहू। यानी ये खत है इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से। हमें उम्मीद है आपने अपना नाम सुन लिया होगा। और ये खत मिला है गाजियाबाद से, नंदग्राम गाजियाबाद से बाबूराम आनंद, बीना आनंद, खुशी आनंद का। और वनोजा टांडा से सानिका राठौड़, एस आर टेलर, जय राठौड़, सुनील राठौड़, इंदुबाई राठौड़ और

आवाज किशोर कुमार की, गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और तर्ज बनाई है राहुल देव बर्मन ने। इस गीत को सुनने के लिए आपने हमें खत लिखे। आप हैं बोडूसरा नेला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली, प्रियांशु साहू। और ये खत आया है खमहरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार का। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: किशोर कुमार की गाय फिल्म अमर प्रेम के इस गीत के साथ ही आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, नमस्कार।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: सब यथास्थान विराजें, कार्यवाही आरंभ की जाए।
1: जो आज्ञा महाराज। महाराणा की जय। राणा हाड़ा जी का विशेष दूत एक संदेश लेकर आया है और दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा चाहता है।
0: आने दिया जाए।
2: महाराणा की जय।
3: राणा हाड़ा जी ने ये पत्र आपकी सेवा में प्रेषित किया है।
0: मंत्री जी,
1: अन्नदाता,
0: पत्र का भावार्थ व्यक्त कीजिए।
1: अन्नदाता, राणा हाड़ा जी अपनी अतीत सुंदरी कन्या का विवाह हमारे वीर सामंत चूड़ावत से करना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए आपकी अनुमति मांगी है।
0: यदि चूड़ावत जी को यह प्रस्ताव स्वीकार है तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है?
1: महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं इस विषय में कुछ निवेदन करूं।
0: आज्ञा है मंत्री जी, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं।
1: महाराज, सरदार चूड़ावत हमारे वीर सेनापति हैं। राणा हाड़ा ने उन्हें अपनी सुंदरी कन्या के लिए मांगकर बुद्धिमता का परिचय दिया है। पर मेरी सम्मति में तो वीर चूड़ावत की जीवन संगनी कोई वीर कन्या ही हो सकती है, हाड़ी कुमारी नहीं।
0: महामंत्री जी, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हाड़ी कुमारी छत्राणी नहीं है? क्या उसकी रगों में पूर्वजों का रक्त प्रवाहित नहीं हो रहा?
1: महाराज,
0: हम आपकी शंका का कारण समझने में असमर्थ हैं।
1: महाराज, जहां तक मुझे ज्ञात है, हाड़ी कुमारी में वीरोचित गुणों का अभाव है। सामंत चूड़ावत का बचपन तो तलवारों की खनखनाहट में पला है और यौवन युद्ध क्षेत्र में पल्लवित हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सूखते हुए सूर्य को ग्रहण लग जाए। विद्वानों ने कहा भी है, भार्या रूपवती शत्रु, यूं ही नारी का रूप और यौवन पुरुष की सबसे बड़ी दुर्बलता है। जानबूझकर इस दुर्बलता को गले की माला बनाने की सलाह मैं नहीं दे सकता।
0: चूड़ावत जी,
4: महाराणा,
0: आपकी इस विषय में क्या सम्मति है? क्योंकि वीर राजपूत केवल अपने ही विचारों और अपने ही भुजबल के विश्वास पर आगे बढ़ता है, इसलिए निसंकोच आप अपने विचार व्यक्त कीजिए।
4: महाराणा, हाड़ी कुमारी के अद्भुत रूप और लावण्य की चर्चा सुनकर भी मैंने कभी भावुकता का आश्रय नहीं लिया। पर मैं इतना अवश्य कहूंगा कि रूपवती भार्या को चाहे शत्रु कहा जाए अथवा उसे पुरुष की दुर्बलता की संज्ञा दी जाए, पर इन सब के साथ साथ वो पुरुष के जीवन की एक महान प्रेरणादायक शक्ति भी है। वह शक्ति जिसके अभाव में शिव भी शव के समान हो जाता है। आज एक नारी के सौंदर्य ने मेरी वीरता और पुरुषत्व को चुनौती दी है। यदि महाराणा की आज्ञा हो तो स्वीकार कर लूं इस चुनौती को।
0: हम आपको ये चुनौती स्वीकार करने की अनुमति देते हैं। मलखान सिंह
5: जी, महाराज,
0: राणा हाड़ा को यह शुभ संदेश दे दो कि हमें ये संबंध स्वीकार है। महामंत्री जी।
1: जी महाराणा।
0: सामंत चूड़ावत के विवाह का आयोजन राजकीय सम्मान से अतिशीघ्र किया जाए।
1: जो आज्ञा महाराज।

0: भैया भाभी बहुत ही सुंदर हैं।
1: सच
0: सच भैया, देखोगे तो पागल हो जाओगी।
1: तनिक अपनी भाभी को हमें भी तो दिखा दो।
0: इतने उतावले क्यों हो रहे हो, थोड़ी देर और ठहर जाओ ना। और हाँ, मेरे मुंह दिखलावनी।
1: ये लो।
0: कितनी अच्छी है ये माला।
1: अब बोल कहाँ है तेरी भाभी।
2: अरे तारा, कहाँ चली गई?
0: सब भाभी को ही घेर कर बैठी हैं।
1: अच्छा,
0: कोई सुनता ही नहीं।
2: तारा, तारा आई।
0: देख तारा, जरा भैया को ऊपर वाले कमरे का रास्ता दिखा देना, बेचारे थक गए हैं।
3: आइए सामन, ऊपर जाकर विश्राम कीजिए और प्रतीक्षा भी।
1: प्रतीक्षा? प्रतीक्षा किसकी?
3: चंद्रोदय की। आज आपके शयन कक्ष में पूर्ण चंद्र का आगमन जो होने वाला है।
1: ओ, अब समझा, तुम बहुत नटखट हो।
0: आओ भाभी, इधर आओ, यहाँ बैठो। हाँ ऐसे,
4: यहाँ यहाँ क्या करना होगा मुझे?
0: ये हमारी कुल देवी हैं, सौभाग्य और यश की देवी।
4: अच्छा,
0: नववधु इनसे आशीर्वाद प्राप्त कर ही पति के दर्शन कर सकती है। आज के दिन वधु जो कुछ इनसे मांगती है वो उसे अवश्य मिलता है।
4: अच्छा
0: भाभी, मांगो जो भी इच्छा हो।
4: मैं केवल यही मांगती हूँ कि मेरे पति पर कभी भी किसी भी प्रकार का कलंक न लगे, यश और सौभाग्य की वर्षा होती रहे उन पर।
0: धन्य हो भाभी, तुमने वही मांगा जो मांगना चाहिए था।
4: इसके सिवा और मैं मांगी क्या सकती थी?
0: भाभी, तुम्हारे ये विचार तुम्हारी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। और हाँ भाभी, अब रात अधिक हो रही है, हम सब तो आज रत जगा करेंगी। तुम ऊपर जाओ, आज तुम्हारी मधु यामिनी है ना?
4: ना ना, मैं भी तुम लोगों के साथ रत जगा करूंगी।
0: रत जगा तो करोगी ही, पर ऊपर यहाँ नहीं। भाभी शर्माओ नहीं, ऊपर जाओ। नहीं जाती? अच्छा ठहरो, मैं भैया को बुलाती हूँ, तुम्हें गोद में उठाकर ले जाएंगे।
4: हाँ अरे अरे,
0: बुलाओ भैया।
4: मैं जाती हूँ।
0: तारा सुन
4: जी,
0: भैया ऊपर के कमरे में ही है ना?
3: जी हाँ, सामन तो वहाँ पहले से ही हाड़ी रानी की प्रतीक्षा में बैठे हैं।
0: बस अब खूब मजा आएगा।
4: कितना सुंदर कक्ष है ये, पलंग, गुलाब की पंखुड़ियाँ, फूलों के पर्दे और ये तलवार अवश्य मेरे स्वामी की है। और वो चित्र किसका है? ओह स्वामी, प्रियतम, कितना तेजस्वी मुख है। आज मेरी चिर संचित अभिलाषा पूर्ण हुई, मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरे। जब तुम सामने आओगे तब तो शायद लज्जा के मारे में कुछ बोल भी नहीं सकते। कौन?
1: स्वागत है।
4: ओह, आप यहाँ?
1: हाँ प्रिय, मैं यहाँ कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। पर ये घूंघट किस लिए? मैंने तो तुम्हारे रूप की एक झलक भर देखी है, हृदय नहीं भरा। अच्छा तो मैं ही इस चंद्रमुख पर से इन घूंघट रूपी बादलों को हटाए देता हूं।
4: ओह,
1: ऐसे
4: ना,
1: हाँ, अब ठीक है। हाँ, देख रहा हूं रूप का सागर, विधाता के हाथों खड़ी हुई सौंदर्य की प्रतिमा, पवित्रता और कोमलता की प्रत्यक्ष देवी मीनाक्षी, सुहाग बिंदिया और शशि मुख पर ये मोती की नथ, मानो साक्षात भगवती का ही पदार्पण हुआ है मेरे घर में। मेरा अपनापन, मेरा व्यक्तित्व जैसे तुम में विलीन होता जा रहा है। मैं नहीं हूं, मैं और तुम।
4: स्वामी मेरे देवता,
1: सच
4: मैं तुम्हारी पुजारी।
5: सभी प्रजाजनों को सूचित किया जाता है,
1: तुम सच मुगल बादशाह सुंदर हो,
5: नगर की
1: चंद्रमुखी
5: बलपूर्वक विवाह करने के लिए
1: चकोर
5: अपनी विशाल सेना
1: जी चाहता है कि एक तक तुम्हें देखता ही रहूं।
5: नगर के राजा ने
4: स्वामी
5: हमारे महाराणा से
4: पागलपन
5: सहायता है। महाराणा के
1: तुम कुछ कहती जाओ और मैं सुनता रहूं। मेरी रानी, मैं तुम्हारे सौंदर्य सागर के यौवन रूपी भंवर में फंस गया हूँ।
4: स्वामी
1: कमल के कोमल संपुट में बंद भंवर की तरह हैरान हूँ, मुक्त हूँ।
4: सुना आपने?
1: इधर
4: स्वामी।
1: प्रिय
4: छोड़िए, छोड़िए मेरा हाथ।
1: प्रिय मुझसे क्या अपराध हो गया है जो तुम इतनी प्रसन्न हो और अचानक दूर खड़ी हो गई?
4: स्वामी सुनिए नगाड़े की ध्वनि। राजपूत तो इसका मतलब अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए मैं पीछे हट गई।
1: ओह मेरी हाड़ी रानी, मेवाड़ भूमि वीरों से शून्य नहीं है, और फिर मेरे लिए तो राणा जी का विशेष दूत आएगा।
4: जानती हूँ, पर देश की आन पर मर मिटने वाले किसी की प्रतीक्षा नहीं किया करते।
1: प्रियतम,
4: मेरी प्रार्थना है कि आप किसी की प्रतीक्षा न करें और तुरंत अपने कर्तव्य का पालन करें।
1: प्रिय जीवन में प्रेम का महत्व किसी भी वस्तु से कम नहीं, कम से कम इस मधु यामिनी को तो बीत जाने दो। विधाता भी कैसा क्रूर है, जीवन के इस मधुर हास्य में कठोरता का अठास और संगीत की मधुर लहरी में ये भयानक चीत्कार जैसा क्षण मेरे ही भाग्य में था। तुम्हें जी भर कर निहार भी न सका, एक बार हृदय से लगा भी न सका। सेज पर सजी हुई गुलाब की पंखड़ियां भी तुम्हारी प्रतीक्षा में मुरझा जाएंगी।
4: स्वामी ये केवल आपका मोह और वासना है।
1: रानी
4: प्रेम प्रेरणा देता है, मोह विचलित करता है।
1: रानी
4: स्वामी विचलित हो रहे हैं क्योंकि मोह ने प्रेम को बंदी बना रखा है।
1: हाँ रानी मैं विचलित हो रहा हूँ। मैंने अब तक यौवन के उद्दाम वेग को केवल तलवार की धार पर ही रोक रखा था, पर तुम्हारे रूप और यौवन ने उस वेग को इतना तीव्र कर दिया है कि उसे रोकना असंभव सा हो रहा है। अपने प्राणों को अब तक मैं बर्छों और भालों की नोक पर ही उछालता फिरता था, पर आज जैसी घुटन और उलझन कभी न हुई थी। क्या करूं?
4: तो ठीक है स्वामी, आप चूड़ियां पहनकर यहां बैठिए और मैं सैनिक वेश में युद्ध भूमि में जाती हूँ।
1: रानी ठहरो,
4: आप इस पुष्प शैया पर बैठकर अपनी घुटन का उपचार करिए, मैं आपकी इस कायरता के पाप का प्रायश्चित करने जाती
1: हूँ। ठहरो रानी,
4: यह हरावंश की तलवार है जिसने हर संकट में हमारी रक्षा की है, मैं जाती हूँ।
1: रानी ठहरो।
4: नहीं
1: रानी सुनो तुम।
4: नहीं सामन, नहीं, मैं जीते जी अपने आप पर यह कलंक नहीं आने दूंगी कि जब सहस्त्रों युवक एक अबला की सतीत्व रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रहे थे, उस समय सामंत रंग महल में रंगरेलियां मना रहा था। रूप और यौवन की आंधी में सामंत की वीरता एक तिनके की भांति उड़ गई। अपनी प्रियतमा के केश पुष्पों की सुगंध में मधु सामंत तलवारों की खनखनाहट से भयभीत हो गया। नहीं नहीं सामंत, नहीं, मैं आप पर एक कलंक का टीका नहीं सह।
1: रानी शांत हो और जरा यहाँ बैठो।
4: छोड़िए मुझे, मैं ये तलवार लेकर आलमगीर की सेना पर टूट पड़ूंगी। एक राजपूत बाला के लिए मैं अपने प्राणों की बलि दे दूंगी। कोई पूछेगा तो कह दूंगी कि सामन की वीरता कायरता के बंदी खाने में बड़ी तड़प रही है।
1: नहीं नहीं नहीं, ठहरो रानी, तुम चली जाओगी तो मुझे विदा कौन करेगा?
4: तो फिर शीघ्रता कीजिए स्वामी, आइए मैं आपके भाल पर रक्त तिलक कर दूं। स्वामी विजयी हो और शीघ्र लौटे, यही मेरी शुभकामना है।
1: रण क्षेत्र में भी मैं तुम्हारी मनोहर छवि न भूल सकूंगा, तुम मेरी रग रग में समा गई हो। मैं तुम्हारे इस निर्दोष अछूते और अतृप्त यौवन को देख रहा हूं। सोचता हूं यदि मैं जीवित न लौटा तो तुम्हारा ये रूप यौवन
4: ऐसा न कहिए प्रियतम, यदि कहीं कुछ अनहोनी हो गई तो ये दासी स्वर्ग में आपके स्वागत के लिए पहले ही उपस्थित हो जाएगी। आप ऐसे विचार हृदय से निकाल दीजिए और निश्चिंत होकर रणभूमि में जाइए।
1: अच्छा प्रिय, विदा।
5: जय भवानी।
4: जय भवानी। विजय प्राप्त कर शीघ्र आइए, मैं विजय मान लिए आपकी प्रतीक्षा करूंगी। भवानी आपको यह शौर्य दे।

0: कितनी सुंदर है हाड़ी रानी, कितनी मस्ती और अल्हड़पन है उसके अंग संचालन में। पात्र में भरी हुई मदिरा के समान इठलाता हुआ उसका यौवन, जैसे मदिरा की मादकता को भी चुनौती दे रहा हो। एक बार गले से भी न लगा सका, क्या करती होगी इस समय? कदाचित गुलाब की पंखड़ियों से सजी सेज पर बड़ी तड़प रही होगी। अगर मैं जीवित न लौटा तो उसका ही यौवन रूप, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी को भेजना ठीक होगा, कुछ निशानी भी मांग लाएगा। रण सिंह उपयुक्त है इस कार्य के लिए, उसी को भेजता हूं।
1: रण सिंह का प्रणाम स्वीकार हो रानी जी।
2: कहिए रण सिंह जी, क्या समाचार लाए हैं?
1: महारानी, सामंत बड़े विफल हैं। उन्होंने मुझे आपके पास कुछ सेनानी लाने भेजा है, साथ ही ये संदेश भी दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर जौहर व्रत करने से आप ना हिचकें।
2: ओह, अभी तक प्रियतम का मोह नहीं टूटा। एक क्षत्रानी अपनी मान मर्यादा की रक्षा करना अच्छी तरह से जानती है। लीजिए, ये मेरे पितृकुल की तलवार है। निशानी के रूप में उन्हें ये तलवार देकर कहिएगा कि दोनों वंशों की लाज अब उनके हाथ है।
1: जो आज्ञा।
2: तारा, आज 3 दिन हुए, युद्धस्थल का कोई समाचार नहीं मिला।
3: वह रानी जी, जब रणसिंह आते हैं तब आप क्रोधित उठती हैं, और जब युद्ध का कोई समाचार नहीं मिलता तब व्याकुल होकर रोने लगती हैं।
2: तारा, तारा देख तो कोई आ रहा है।
3: रणसिंह जी आए हैं।
1: रानी जी, रणसिंह का प्रणाम स्वीकार हो।
2: रणसिंह, युद्ध भूमि का क्या समाचार है?
1: महारानी जी, युद्ध किसी भी समय आरंभ हो सकता है। सामंत ने मुझे अंतिम बार आपसे कुछ सेनानी मांग लाने को कहा है। उनका शरीर रणभूमि में है पर मन आपके ही पास मंडरा रहा है।
2: रणसिंह, एक अबला के सतीत्व को संकट में देखकर भी सामंत मेरे ही बारे में सोच रही है? इस हाड़ जाम की पुतली के मोह में उनकी सारी एकाग्रता नष्ट हो रही है। उनकी इस मानसिक कायरता का कारण मैं हूं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ करना होगा तो फिर यही ठीक है। रणसिंह, प्रतीक्षा करो, मैं आज तुम्हें अंतिम निशानी दूंगी, ऐसी निशानी जो कभी भी किसी भी पत्नी ने अपने पति को न दी होगी। विजय मार। तारा, तारा
3: आई। आई रानी जी, आपने मुझे बुलाया।
2: हाँ तारा, मेरी प्यारी सखी, तूने मेरी बहुत सेवा की है ना, आज अंतिम बार मैं तेरी सहायता चाहती हूँ।
3: ये क्या कर रही है?
2: तारा, इधर आ, मेरी मांग में सिंदूर भर दे। मेरे केशों को सुगंधित पुष्पों से सजा दे, पैरों में बिछिया पहना और मावर लगा। जल्दी कर, जल्दी कर तारा।
3: रानी जी, रानी जी, मुझे छोड़कर मत जाओ।
2: पगली, रोती है, क्षत्रानी होकर रोती है। शिखा ताकत, रणसिंह मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ला, ला सिंदूर ला। अरे, तेरे हाथ कांप रहे हैं, ठीक से मांग तो भर दे। ऐसे दर्पण ला, दर्पण इधर ला। अरे अरे वाह, मैं कितनी अच्छी लग रही हूं। जब मेरा विवाह हुआ था तब सब कहते थे कि बहुत सुंदर लग रही हूँ, पर आज मैं कैसी लग रही हूँ ये तो तू ही बता सकती है। बता बता ना। अरे फिर रोती है? ला ला तारा, मेरे विवाह का जोड़ा और मुझे पहना दे। सुन तारा, एक बार तूने ही कहा था ना कि सावन की विजय माल का सबसे सुंदर पुष्प मैं हूँ। हाँ, आज वही पुष्प बनने में जा रही हूँ। स्वामी के जोड़े करवोलत वक्ष पर ये मेरा शीश रूपी पुष्प खूब खिलेगा, खूब खिलेगा। बस बस अब बहुत विलंब हो रहा है, ये रानी जी, मुझे आपके चरण स्पर्श तो कर लेने दीजिए। बस बस अब समय नहीं है तारा, अब समय नहीं है, मेरा भग्न शेष रण सिंह को दे देना।

0: तारा, तुम रो क्यों रही हो?
1: रण सिंह जी, लीजिए, हाड़ी रानी ने सामन के लिए ये विजय माल भेजी है।
0: ये कैसी विजय माल है जो इस तरह थाली में ढांक कर लाई हो?
1: आप स्वयं देख लें और सामन तक शीघ्र पहुंचा दें।
0: ये क्या, ये रानी के शीश की विजय माल? धन्य हाड़ी रानी, तुम्हारा ये बलिदान युग युग तक भारत के नरनारियों को प्रेरणा देता रहेगा। जाता हूं तारा।
2: अभी तक रण सिंह नहीं आया और इधर आलमगीर अपनी विशाल सेना के साथ आगे बढ़ा आ रहा है। उसे रोकने का कोई उपाय नहीं सूझता। हाड़ी रानी नस नस में बस गई है, क्या करूं?
0: सामंत, क्या मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो सकता हूं?
2: आओ आओ रण सिंह, मैं बड़ी उत्सुकता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। कहो, हाड़ी रानी कुशल से तो है? मेरे लिए कुछ सेनानी दी उन्होंने?
0: हाँ सामंत, रानी जी ने आपके लिए ये विजय माल भेजी है।
2: अच्छा,
0: इसे गले में पहनकर आप झूम पड़ेंगे।
2: सच?
0: और जो भी इस अनोखी विजय माल को देखेगा वो अपने प्राणों की बाजी लगा देगा। इस विजय माल के साथ ही हाड़ी रानी ने एक निवेदन भी किया है।
2: वो क्या?
0: कि इस युद्ध में हम सब का एक ही नारा हो और एक ही लक्ष्य हो, विजय या मृत्यु।
2: हमें सब स्वीकार है, पर सेनानी तो दिखाओ।
0: आगे बढ़िए सामंत, और इस ढके हुए थाल को स्वयं खोलकर रानी की दी हुई इस निशानी से अपने वक्ष स्थल को सुशोभित कीजिए।
2: रण सिंह जी, क्या लाए हो?
3: हाड़ी का भंग ऋषि, ये क्या किया तुमने रण सिंह?
0: मैंने नहीं, आपने ही ये किया। रानी के मोह में अंधे होकर आपने मुझे बार बार सेनानी लाने को भेजा। रानी आपकी दुविधा को पहचान गई और आप पर कोई कलंक न लगे।
3: रण सिंह, मैं समझ गया, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं ही दोषी हूं। सचमुच मेरा पतन हो गया था, रानी ने मुझे बचा लिया।
2: हाड़ी रानी, तुम साक्षात भवानी थी, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, नहीं पहचाना। इन लहराते हुए सुंदर केशों की माला बनाकर मेरे गले में पहना दो रण सिंह। मेरी प्रियतमा का शीश मेरी छाती पर लटकने दो। मेरे मृत शरीर को रानी के साथ एक ही चिता पर रखकर भस्म कर देना। अब मेरी आंखों पर से मोह का आवरण हट गया है। भूखे सिंह की तरह हम अपने शत्रुओं पर टूट पड़ेंगे। साथियों, आगे बढ़ो,
4: विजय हमारी।

0: गुरुकुल के पैर फाड़ दे।
1: सच रणसिंह, तुम विजयी हुए?
0: हाँ सामन, सच। मुगल बादशाह भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, शायद वो भी रणभूमि छोड़कर भाग निकला। सामन,
1: शत्रु भाग गया। जय भवानी, हम विजयी हुए, हम विजयी हुए। मैं चाहता हूँ मेरी प्रियतमा मेरी प्रतीक्षा में होगी।
0: मैं चाहता हूँ सामन, आप कहाँ जाने जा रहे हैं? सामन ठहरिए, ठहरिए सामन।
1: रानी सुना तुमने, हम विजयी होकर आ गए, हम लौट कर आ गए। आओ हमारा स्वागत करो, टीका लगाओ, आरती उतारो, रानी शीघ्र आओ। तारा, ओ तारा
2: जी। सामंत,
1: रानी जी कहाँ है? उनसे कहो कि हम विजयी होकर आ गए हैं, विजय माल लेकर जल्दी आए।
2: सामंत, रानी जी की विजय माल तो आपके गले में पहले से ही सुशोभित है।
1: हाँ, रानी मेरी हाड़ी, रानी मेरी विजय माल

विजय माल। अभी आपने रवि शर्मा लिखित ये नाटक सुना। प्रस्तुतकर्ता बी डी माथुर।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज विविध भारती के स्टूडियो में एक युवा अभिनेता हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि युवा अभिनेता, लेखक, गायक और संगीतकार देवेंद्र अहिरवार। बहुत स्वागत देवेंद्र।
3: बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।
2: देवेंद्र, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी जो पहचान बनी है वो 120 बहादुर से बनी है।
3: जी जी।
2: ये फिल्म आपको कैसे मिली थी?
3: ये फिल्म के पहले एक बहुत लंबी कहानी है। इस पहचान तो ऐसे नहीं है कि इस फिल्म से बनी है, क्योंकि मैं लगातार थिएटर कर रहा था। लगभग 15-20 सालों से मैंने काम किया है। मैं काफ़ी छोटा तब से काम कर रहा हूँ और एक ऐसे बोल सकते हैं कि एक बहुत एक बड़ी ऑडियंस को जानने का मौका मिला कि
2: Correct.
3: इस नाम का कोई बंदा है कुछ काम करता है। तो ये फिल्म मुझे जैसे सबको मिलती है, क्योंकि हम बाहर के लोग हैं तो ऑडिशन से ही मिलती है। सो मैं ऐसे म्यूजिक में हूँ, मेरा गाने गाने का काम है, या मैं एक्टिंग करता हूँ या नाटक बनाता हूँ। तो कास्टिंग डायरेक्टर जो अनमोल आहूजा है, उनको मालूम था कि मैं गाना गाता हूँ। तो एक कैरेक्टर था 120 बहादुर के लिए, ऑडिशन हुआ कि एक गाना गाने वाला लड़का चाहिए। तो उन्होंने
2: अच्छा।
3: मुझे ऑडिशन लिया, पर वो उस कैरेक्टर के लिए मैं बाद में फिट नहीं बैठा, मेरा लुक नहीं जा रहा था और मेरा काम, मेरा ऑडिशन अच्छा हुआ था। तो उनको लगा कि इसको हम फिल्म में इस वाले कैरेक्टर के लिए नहीं रख सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे एक दूसरे कैरेक्टर के लिए टेस्ट किया जिसका नाम था बैंगन। तो उस बैंगन कैरेक्टर के लिए फिर मैं फाइनल हुआ। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, खासकर बुंदेलखंड के पूरे एरिया ने, मध्य प्रदेश के पूरे एरिया ने और पूरे देश के लोगों ने फिर बहुत ज़्यादा प्यार दिया और मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ।
2: बिल्कुल, लेकिन आपकी यात्रा यहाँ से शुरू नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि सीधे चलते हैं बुंदेलखंड की तरफ।
3: जी जी।
2: आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका बचपन कैसा था और अपने माता पिता के बारे में बताइए।
3: जी जी। सो मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरे गाँव का नाम है पहरा।
2: क्या बात।
3: सो मैं बहुत छोटा था तब मैंने एक रेडियो पर गाना सुना था कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, इश्क और भी गहरा हुआ है।
2: ओह।
3: तो मैं काफी छोटा था और मैं सोचता था मेरे गांव का नाम फिल्मों में आता है। मेरे गांव के नाम पे गाने बने हुए हैं।
2: हाँ।
3: तो तभी मैंने सोचा था कि मैं बच्चे के दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो मैं फिल्मों में जाऊंगा।
2: अरे
3: और मुझे पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है, सच में ऐसा होने वाला है। तो एक ऐसी छोटी सी कहानी है। और मैं रेडियो लगातार सुनता था, विविध भारती लगातार सुनता था, छतरपुर आकाशवाणी मैं बहुत सुनता था, हेलो फरमाइश में सुनता था, रेडियो मेरे साथ ही रहता था, मेरा दोस्त हुआ करता था एक तरीके से, क्योंकि मेरे पापा भी गाना गाते थे तो उनको भी शौक था। देशर पटरिया के गाना, उर्मिला पांडे जी के गाने और भी बहुत सारे लोगों के गाने मैं सुनता था। तो ऐसा एक जीवन बीता और मेरे घर के बाहर एक चबूतरा था। चबूतरे पे शाम को लोग अपने खेतों पे खाना खाने के पहले, डिनर करने के पहले वहाँ पे बैठते थे और फिर वो वहाँ पे कुछ गाने गाते थे 1-2 घंटे और फिर अपने खेतों पे जाते थे सोने के लिए कि जानवर उनके खेतों में ना घुसवाए। सो पूरा किसान परिवार, एक छोटी सी बस्ती मैं आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। सो उन लोगों में मैं और मेरा भाई लखन भी, दो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे जो बैठते थे और कई दफ़ा लोग हमसे इरिटेट भी होते थे कि बच्चे बहुत ज़्यादा बैठते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते नहीं हैं। तो फिर क्या हुआ कि मंडली ने सोचा कि इस मंडली को थोड़ा बड़ा करते हैं। तो उस समय ऐसा होता था कि कोई गलत करता था तो उससे वो लगाते थे, जुर्माना लगाते थे।
2: अच्छा अच्छा।
3: तो ऐसा करके होता, तो किसी ने कुछ गलत किया होगा तो उन्होंने कुछ पैसा दिया, 8-10 हज़ार रुपये उधर से आए। तो उन्होंने सोचा इस पैसे का क्या करें।
2: हाँ।
3: उन्होंने सोचा अब हारमोनियम ले लेते हैं।
2: अरे वाह वाह।
3: तो उन्होंने हारमोनियम ले लिया, पर हारमोनियम बजाना तो किसी को नहीं आता था, तो अब बड़ा असमंजस हो गया। तो रात को बैठते थे पर हारमोनियम रहता था, अब बजा तो कोई नहीं था।
2: हाँ।
3: तो फिर वो हमारा घर जैसे बगल में था तो हमारे घर में रखते थे वो हारमोनियम। तो मैं और मेरा भाई स्कूल से आके हम 2-2-3-3 घंटे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। वो ढोलक बजाता था, मैं हारमोनियम बजाता था और ऐसे बजाते बजाते बजाते बजाते सडनली थोड़ा थोड़ा गाने के आसपास में दिखने लग गया लोगों को कि ये गाने के आसपास से, गाने के आसपास है, कोई भी गाना गाता है तो उसके आसपास ही बजा लेता है। तो ऐसे करके मैं उस पहला जो मेरा ग्रुप था, जो मेरा पहला परफॉर्मेंस था, वो गांव के जो फोक आर्टिस्ट हैं, जो मंडली है जिनमें मेरे पिताजी
2: चबूतरे में हुआ,
3: चबूतरे पे ही मैंने उसको एकदम से ऐसे शुरू किया और फिर स्कूल में गाने गाने शुरू किए।
2: बाबा।
3: तो मैं ये बोलूंगा कि मेरे पिताजी भी किसान हैं, मेरी माँ भी किसान है और मैं बहुत ही प्राउडली ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। जिस तरह से हम प्राउडली बोल पाते हैं ना कि हम फौजी खानदान से
2: हैं,
3: ऐसे जय जवान जय किसान वाले जो पूरी बात है, अगर हम उन साथ में बोलें तो हम बहुत सारे लोगों को एक क्राइसिस रहता है कि बोलने में कि हम किसान परिवार से, तब मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं किसान परिवार का एक लड़का हूँ।
2: कितने दूर है छतरपुर से ये गाँव?
3: छतरपुर से 24 किलोमीटर दूर है ये, बसारी पन्ना रोड पर पड़ता है, तो बसारी के आगे है पहरा।
2: ओके।
3: बहुत ही छोटा सा गाँव है सर। बहुत ही।
2: कितनी क्लास तक वहाँ पढ़े आप?
3: मैं वहाँ पे पढ़ा 8वीं क्लास तक, उसके बाद मैं मैंने 12वीं तक पढ़ा बसारी में। बसारी में पढ़ते हुए एक फिल्म आई थी उस समय जिसका नाम था जीजाओरे, बुंदेली फिल्म थी। उसमें एक एक्टर थे हिमालय यादव जो उसी गांव के थे, तो वो लाइक वो बहुत पॉपुलर हो गए थे उस फिल्म से। उस फिल्म को बहुत प्यार मिला, हर घर में सीडी हुआ करती थी उस समय तक, जीजाओरे की सीडी, झूमो नाचो गाओ रे, खुशियां मनाओ रे, पता नहीं आओ रे भैया जी जाओ रे, ऐसा कुछ गाना था उसका, टाइटल सॉन्ग था उसका।
2: अच्छा, जब ये सब बातें हो रही हैं तो मुझे ये भी लग रहा है कि वो जो चबूतरे पर गाने होते थे उसमें से कोई गाना याद है?
3: उसपे ऐसे कुछ कुछ भी गम्मतें होती थी, गाने होते थे, लाइक फागे होती थी।
2: हाँ।
3: तो उसी तरह से कि कहां ले आए राजा पहाड़िया मेरे, कहां ले आए

0: मेरे कहाँ ले आए
1: उपटा लगे तुंगरिये, क्या
0: कुंवरिया, मतलब
1: बात
0: ना
1: है,
0: कहाँ ले आए राजा
1: क्योंकि
0: कुमारिया में,
1: मतलब
0: लाइक कोई
1: बुंदेलखंड।
0: लव मैरिज करके किसी को डिफिकल्ट शहर में ले जाए। ये गाना मतलब इनडायरेक्ट रूप से वैसा है, पीपा
1: हाँ
0: है।

0: कहा ले आए। सो वही है, लाइक मैं किसी लड़की को प्रॉमिस करूं कि मैं तो बंबई रहता हूं और फिर मैं वहां छोटे से कमरे में रख दूं, तो उसी सिचुएशन को एक अलग तरीके से कवि बुंदेली बुंदेलखंड के जो लोग हैं, जो
1: हाँ
0: लोग कवि हैं, लोग गायक हैं, वो कैसे उसको कैप्चर करते हैं और कैसे उसको करते हैं,
1: तो
0: तो
1: मजा आ गया मुझे सुन
0: बहुत ही
1: के
0: मजा आ गया, मतलब बहुत
1: तो।
0: मजा आ गया। तो
1: हाँ
0: यही था फिर बुंदेली, फिर जब बसारी में पढ़ता था, हिमालय भैया से मिलना हुआ, हिमालय यादव जी से मिलना हुआ, उस समय बसारी में एक फेस्टिवल होने लग गया था, उसका नाम था बुंदेली उत्सव।
1: हाँ
0: तो बुंदेली उत्सव बहुत बड़ा फेस्टिवल होता, फरवरी में लगभग 1 महीना 21 दिन चलता था वो।
1: अच्छा
0: और उस समय तो क्योंकि जो वो कराते थे शंकर प्रताप सिंह बुंदेला जी, मुन्ना राजा जी कराते थे उसको, तो पूरे एमपी के फोक आर्टिस्ट सेलिब्रिटी आते थे उधर। तो वो पहली बार मैंने एक नाटक किया उस ग्रुप में जुड़ के, हिमालय भैया के ग्रुप में जुड़ के, और नाटक का नाम था ददुआ भाव दिल्ली में बर्बाद,
1: अरे
0: और
1: बाप
0: मैं नाइन्थ
1: रे,
0: क्लास में पढ़ता था उस समय।
1: ठीक है।
0: उस नाटक में मैं रेल का डिब्बा बना था, हम ऊपर छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे हमारे,
1: हाँ
0: छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे,
1: तो
0: लाइक
1: बुंदेली में था ये।
0: हाँ बुंदेली में नाटक था। अब
1: हाँ
0: मुझे कोई भी डायलॉग याद नहीं है, क्योंकि मैं एक तो पहला नाटक था मेरा, तो
1: हाँ
0: उस ग्रुप से जुड़ गया और फिर मुझे बहुत मजा आया। और मैंने अभी आपसे बात भी किया, इस तरह का जो मुझे वो सर्कल में बैठते थे लोग, एक दूसरे की आंखों में बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, उस तरह का एक भाव मुझे लगता था। तो मुझे पता चला कि मैं शायद इस फील्ड में ही जाना चाहता हूं।
1: वाह।
0: तो फिर ऐसे शुरू हुआ सर, मैं जल्दी से इसको वो कर लेता हूँ कि खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई, खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, हमारे घर के पास ही है खजुराहो, 30 किलोमीटर दूरी है। सो खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई, राष्ट्रीय नाट विद्यालय एनएसडी की एक वर्कशॉप थी, और उसको डायरेक्ट करने आए थे इश्तियाक आरिफ खान, जो कि काफ़ी
1: ओ
0: बड़े
1: वो तो
0: एक्टर
1: पन्ना
0: हैं,
1: के ही
0: जो
1: है।
0: पन्ना के ही हैं। तो
1: हाँ
0: वो एनएसडी से पास आउट होने के बाद वो वर्कशॉप के लिए आए थे, हमको पूछा गया कि खजुराहो में वर्कशॉप हो रही है, तो खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई खजुराहो अंग्रेज आते हैं, गोरे, 5 स्टार होटल, तो हमें उधर पहुंचना है कुछ भी करके। तो घर में बोला कि एक वर्कशॉप हो रही है, तो उनने बोला क्या क्या चाहिए पड़ेगा, तो हमने बोला कि उन्होंने बोला 2-2 किलो चावल लेके चलना है, 1 किलो दाल लेके चल रही है, थोड़ा नमक लेके चलते हैं, हल्दी मिर्ची लेके चल रही है, क्योंकि वहाँ पे 1 महीने रहना है।
1: हाँ
0: तो शिल्पग्राम में एक वर्कशॉप हो रही थी और उसमें हमने काम किया, और वो एक नाटक उन्होंने कराया इश्तियाक जी ने, इन्हें कहीं देखा है,
1: अरे
0: इन्हें कहीं
1: वाह,
0: देखा है, तो एक ऐसे कैरेक्टर जिनको हमने कहीं ना कहीं देखा है, उसका नाटक उन्होंने बनाया था, और वो नाटक बहुत अच्छा बना, और मैं बहुत इंप्रेस हुआ कि इतने छोटे से हैं वो, क्यूट से हैं, और उन्होंने इतने 20-25 लोगों को, पूरे देश के लोगों को एक नाटक में पिरो दिया, और इतना अच्छा काम निकल के
1: और
0: आया।
1: इश्तियाक भाई की एक खासियत और है कि वो बहुत म्यूजिकल आदमी है।
0: हाँ, और म्यूजिकल प्ले था वो, और म्यूजिक में मेरा रुझान भी था, तो वो भी मेरे से काफी खुश थे। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं कुछ भी हो जाए, उनसे पूछा कि सर आपने मैं मुझे ये करना है या मैं कहाँ सीखूं, तो उन्होंने बोला था कि मैं एनएसडी से पढ़ा हुआ हूँ, तुम भी एनएसडी जाओ अगर तुम्हें करना है। तो फिर मैंने तब लिख लिया था डायरी में कि मुझे कुछ भी करके एनएसडी पहुंचना है।
1: डायरी में लिख गया।
0: हाँ, तो मैं लिख
1: अरे
0: लिया कि
1: क्या
0: अभी
1: बात
0: है
1: है।
0: मुझे पहुंचना है एनएसडी। तो फिर वहां
1: अभी
0: से
1: आगे की कहानी थोड़ा आगे सुनाएंगे।
0: जी जी
1: यहां एक फिल्मी गाने की जगह बनाते हैं।
0: हाँ जी
1: तो
0: जी
1: जिस दौर में हम हैं, जिस दौर में आप ये सब कर रहे थे कि आप वो बड़े गांव में गए और उसके बाद खजुराहो हो गए, उस दौर का कोई गाना याद आता हो तो वो गाना यहां बजाया जाए।
0: एक फिल्म थी वो शोला और शबनम,
1: गोइंदा
0: गाना
1: की
0: गाना सुनता,
1: फिल्म।
0: तू पागल प्रेमी आवारा, दिल
1: हाँ
0: तेरी मोहब्बत का मारा, तुझे पहचान लिया रे, अपना तुझे मान लिया रे। फिर म्यूजिक आता जो आप कह रहे थे ना,
1: हाँ
0: ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए
1: क्या बात
0: ओए।
1: है,
0: तो ये कुछ गाने जो ऐसे उस समय के याद है मुझे,
1: बिल्कुल वो एक जहन में बसे
0: बहुत
1: होते हैं
0: ही
1: और ये उस दौर की याद लेके
0: जी
1: आते
0: जी
1: हैं।
0: जी हमने
1: बातचीत
0: बहुत देखा
1: करेंगे।
0: है फिल्म को,
1: वाह।
0: बहुत देखा है फिल्म को हम, मैं तो करण अर्जुन बहुत देखी, ये देखा, पता नहीं मिथुन की फिल्में देखी, टड़ी पार जैसी फिल्में देखी,
1: हाँ,
0: गुंगा,
1: क्या
0: जो भी
1: बात
0: सीडी पे जो भी मिलता था देखते थे, जो भी मिलता था देखते, वो हमारे लिए बेस्ट फिल्म होती थी।
1: है। वाह, ये
0: हाँ
1: गाना सुनते
0: जी।
1: हैं।

0: देवेंद्र, आपसे बातें हो रही हैं और हम तकरीबन 90s के जमाने में हैं,
1: जी
0: और
1: जी
0: ये वो दौर है जब आप एक नाटक करते हैं बुंदेलखंड फेस्टिवल में, और फिर इश्तियाक आरिफ खान साहब से आपका परिचय
1: मुलाकात
0: होता है,
1: होती
0: जो
1: है
0: तब तक एनएसडी में हैं
1: जी,
0: और तब तक बंबई आके उन्होंने अपने जलवे नहीं दिखाए,
1: दिखाई दे
0: और वो एक शिविर लगाते हैं,
1: जी
0: और वहां से आपको एक राह दिखती है,
1: जी जी
0: एक लड़का जो पहरा गांव का है
1: जी
0: और जिसको बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा, जिसका परिचय नहीं है, उसका परिचय इन सब चीजों से होता है, और वो अपनी डायरी में लिख लेता है कि मुझे कैसे भी करके
1: यहाँ पहुँचना है।
0: उसके आगे क्या होता है।
1: उसके आगे मैं फिर स्कूल के बाद कॉलेज में पहुँचता हूँ, तो अब मुझे तो कोई कोई लोग चाहिए कि भाई ये काम करने वाले लोग कहाँ हैं, अभी मुझे 3-4 साल और पढ़ना पड़ेगा है ना, तब जाके मैं वहाँ पे जाऊँगा। क्योंकि मैं वर्कशॉप के निकलने के बाद मैं दिल्ली आया घूमने के लिए, कि मुझे पहले वो जगह देखनी है जहाँ मुझे पढ़ना है।
0: तो मंडी हाउस
1: तो
0: चले गए।
1: मैं पहले किसी दोस्त के साथ जो किसी बस्ती में रहता था, मजदूर फैमिली का, मजदूरी करने जाते थे उनके पिता जी, तो मैं उस दोस्त के साथ दिल्ली आया, और दिल्ली में मैं ढूंढते ढांढते उस बच्चे के साथ में, और मैं खुद बच्चा हूँ अभी, मैं 9th 10th क्लास में पढ़ता हूँ, और मैं एनएसडी की तरफ बढ़ते बढ़ते मैं वहाँ पहुँचा। उस समय मेट्रो बन रही थी, और मैंने पहली बार देखा कि वो ऐसी सीढ़ी है जिसपे पैर रखते अपने आप ऊपर पहुँचा देती है। मेरे लिए बड़ा चमत्कार था, मैं घर जाके लोगों को बता रहा हूँ कि भाई ऐसी सीढ़ी बन चुकी है धरती पे कि आपको चढ़ना नहीं पड़ता, आप अपने आप ऊपर पहुँच जाओगे। और मैं ऐसे हो गया, फिर मैं एनएसडी के गेट पर पहुँचा, और मैं एनएसडी मैंने देखा कि ये लिखा है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, मतलब ये वो जगह है। और मैंने वहां से निकलते हुए लड़के लड़कियों को देखा, और वो बहुत ही फ्रेंडली हैं, किसी ने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है, कोई कुछ डायलॉग पहन रहा है, कोई कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहा है, और मैं देखा कि भाई ये तो अलग दुनिया है, ये तो कमाल की दुनिया। तो मैं गेट में घुसने को हुआ, तो एक उस समय एक गार्ड हुआ करते थे, उनका नाम था धुरंधर जी,
0: अरे
1: रिटायर्ड
0: बाप रे
1: फौजी थे वो।
0: जी।
1: तो मैं घुसने लगा, उन्होंने बोला क्या हुआ, मैंने बोला कि मेरे को यहाँ पढ़ना है। बोले कौन सी क्लास में पढ़ते हो, मैंने कि मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ। तो कह रहे यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने कहा अरे अब तो मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा यार, तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। तो उन्होंने बोला कि अरे ऐसे बहुत लोग आते हैं बोलने के लिए, पहले अभी 10 क्लास में पढ़ता है, अभी तू ग्रेजुएशन करेगा फिर तेरा मन बदल जाएगा, पता चला कुछ हो जाएगा, तू नौकरी लग जाएगी तो तू नहीं आएगा। मैंने कहा नहीं नहीं सर मैं आऊँगा, मैंने बोला कि मैं आऊँगा, मुझे आना ही है इधर। तो मेरे पास उस समय नोकिया 26

0: मैंने सोचा यार यहाँ पे कोई नाटक ही नहीं करता उस तरह से, तो मैं ही नाटक करूंगा।
1: तो
0: तो मैंने कॉलेज
1: कॉलेज किस
0: में,
1: शहर में था?
0: ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में महाराजा कॉलेज, तो वहां पे मैंने ये ग्रुप बना दिया और छोटे मोटे नाटक करने लगा, यूथ फेस्टिवल में नाटक करने लगा। और पता चला कि छतरपुर में कोई इफ्टा नाम का एक संस्था है जो एक्टिव है, जो उस समय शिविन शुक्ला जी चला रहे थे, अभी भी वही संभालते हैं उसको। तो उनसे जुड़ गया, फिर उनने जो भी नाटक कराया उनमें नाटक करने लग गए। बकरी नाटक किया, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक किया,
1: बिल्कुल
0: और भी नाटक जो भी वो कराते थे उसमें उससे जुड़ गए। और वो रिकॉर्डिंग सुनता रहता था कि ये तो करना ही भाई, अभी एक नाटक हुआ है, वो नाटक हुआ। फिर ये भी सोचता था कि जिस लेवल के हम नाटक कर रहे हैं, इस लेवल के नाटक के उसमें काउंट होंगे, क्योंकि हम तो कुछ भी कर देते हैं,
1: बिल्कुल
0: कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कहीं बोल दिया ये इम्प्रोवाइज करके कर दिया, बुंदेली में कुछ भी बोल दिया कर दिया। तो फिर सोचा ग्रेजुएशन के दौरान कि भाई ऐसे चलेगा नहीं, भोपाल निकलना पड़ेगा,
1: अच्छा
0: कुछ भी करके अब इस जगह से निकलना पड़ेगा। अब भोपाल जाने के लिए किसी से मिलना पड़ेगा, आपको कोई जानता हो? आपको कोई भी नहीं जानता सर, एक बंदा नहीं है जिससे थिएटर या आर्ट फील्ड से जिससे भोपाल में किसी को जानता हो। तो एक उसी जो वर्कशॉप हुई थी इश्ताक जी वाली, उसमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे हरीश भैया, हरीश विश्वकर्मा उनका नाम था, उन्होंने एक नंबर दिया कि हेमंत देवलेकर नाम के एक बंदे हैं, हेमंत भाई
1: बिल्कुल
0: आप जानते होंगे, बहुत बड़े कवि हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल विहान ग्रुप।
0: तो हम विहान ग्रुप अभी वो चलाते हैं कि एक मेंबर हैं वो, और उनका नंबर दिया उन्होंने, और उन्होंने बोला कि ये तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि यही सज्जन पुरुष हैं। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने उनको फोन करता था, वो मैं पागल कर देता, भैया मुझे यहाँ से निकलना है, प्लीज मुझे निकलना है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है तुम आ जाओ, और मैं एक डायरेक्टर हैं अलख नंदन सिन्हा जी, मैं
1: गजब।
0: अलख दादा से उनसे मिलवा दूंगा, पर वो तुम्हें रखेंगे नहीं रखेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर मैंने एक समय ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद मैं एमए के लिए मैंने अप्लाई किया था, और मैं भोपाल की बस में बैठ गया रात को। शादियों का सीजन था, बहुत बहुत ढोल बज रहे थे, बस निकल नहीं पा रही थी शहर से, और मैं बस में बैठा हूं और मेरे घुटने कांप रहे हैं, और मैं सोच रहा हूं कि मैं एक बंदे का नंबर जान है सिर्फ मेरा, उसकी शक्ल भी नहीं देखी, और वो किस तरह के होंगे, किस तरह का व्यवहार होगा उनको, और मैं उस शहर में किसी को जानता नहीं हूं, और मैं वैसे ही जा रहा हूं, मेरे घुटने कांप रहे हैं, और बारात की वजह से बस धीरे धीरे चल रही है। मैं सोच रहा हूं कहीं ये भगवान का संकेत तो नहीं है कि अभी मौका है उतर ले, है ना। और मैं फिर बस से नहीं उतरा, और मैं पहुंच गया उधर 5 बजे मॉर्निंग में, और मैं 5 बजे से उनको फोन कर रहा हूं। अभी 5 बजे कोई कोई फोन उठाएगा?
1: बिल्कुल
0: वो तो उठे, जब उठे 10 बजे उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला कि वो रोशनपुरा चौराहे पे 12 बजे मिलेंगे। मैंने कहा 12 बजे तक मैं क्या करूंगा, मैं जाके कहीं, मैंने कुछ पोहा हुआ खाया, नाश्ता वाश्ता किया, और मैं डिवाइडर पे खड़ा हुआ 2 घंटे के लिए। मैंने कहा, मैं उनको बोल दिया कि मैं बीच डिवाइडर पे खड़ा रहूंगा भैया, ऐसा ना हो कि मेरा फोन बंद हो जाए या आपका फोन कुछ बंद हो जाए, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो मैं डिवाइडर पे खड़ा रहा, और फिर एक बंदा,
1: रोशनपुरा चौराहे पर।
0: हाँ एक एक बंदा शरीफ सा बंदा, एक हाथ में झोला लेके एक बंदा मेरे पास आए, और मैं वो उनको देखा मैंने कि मेरे को भगवान आ गए मेरे लिए, ये मेरे को रास्ता दिलाएंगे, ये पहला इंसान है जो मुझे कहीं पहुंचाएगा, और वो मुझे मिले, मैंने उनको देखा, और मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैंने उनके पैर छुए, वो नहीं बोले कि पैर वैर नहीं छूते, मैंने बोले हमारे यहाँ तो पैर बड़ों के पैर छूते हैं, उन्होंने बोले नहीं नहीं पैर नहीं छूते क्योंकि लोग अजीब के होते हैं। तो उन्होंने मुझे समझाया, और कट्टू फिर वो मुझे एक डायरेक्टर के घर में ले गए, अलग दादा के घर में, और हम बैठे हुए हैं, और 1 घंटा हो गया।
1: पहले हेमंत आया।
0: हेमंत दादा आए पहले, और उन्होंने
1: अच्छा
0: बोला कि मेरा तो कोई ग्रुप नहीं है भाई, मैं किसी ग्रुप में काम करता हूँ, मैं डायरेक्टर को मिलवा दूंगा, और क्योंकि वो उनका ग्रुप का नाम नटबुंदी ले, और तुम बुंदेलखंड से हो तो हो सकता है तुम्हें रख ले,
1: हाँ
0: और तुमने बोला तुम गाने गाने गाते हो तो हो सकता है तुम्हें म्यूजिक बंदों को रख ले। और मैं अतरंगी था सर, बेल बॉटम पैंट पहना हुआ है, लाल पीली कलर की शर्ट पहने हुए, बाल मेरे तेरे नाम जैसे हैं, बड़े
1: अरे
0: बड़े
1: बाप
0: मैंने
1: रे।
0: बाल रखे हुए थे। तो मैं वहां पहुंचा, लगता कि उधर रहते थे प्रोफेसर कॉलोनी में, तो उनके घर के बाहर हम बैठे हुए हैं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया बैठे बैठे, पानी आया चाय आई हम पी के बैठे हुए हैं, और मैं पूछूं कि क्या हुआ, तो बोले कि दादा कुछ पढ़ रहे हैं। और मैं सोचूं कि ऐसी क्या पढ़ाई है कि लोग घर में आके बैठे हैं, बंदा पढ़ ही रहा है, आ ही नहीं रहा है। फिर मुझे पता चला कि लोग इतने डिसिप्लिन होते हैं कि अपना पूरा काम करके आएंगे वो, उन्हें बैठना है तो बैठो। फिर अलग दादा एक आए, अंदर से एक बूढ़ा सा आदमी आया, और उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला कि कौन है ये उन्होंने बोला किसको लेके आ गए, कौन है, मेरी शक्ल देख के। अरे मैंने कहा सर मैं देवेंद्र हिरवार, और मैंने बहुत नाटक किए हैं छतरपुर में, मेरा बहुत नाम है, मेरे कॉलेज में पूरे लोग जानते हैं, आपके ग्रुप को मैं बहुत बढ़िया कर दूंगा सर।
1: अरे
0: मैं
1: बाप
0: बहुत
1: रे।
0: कॉन्फिडेंस था मेरे को, ये ताकत लगा रहा था क्योंकि मैं डरा हुआ भी था, तो मुझे और ताकत लगा, मरता हुआ आदमी और हाथ पे
1: ज्यादा
0: चलाता है, तो मैं हाथ पे चला रहा था। उनने बोला भाई इससे हो ही नहीं पाएगा, उनको देखे इसको भगाओ, इससे हो नहीं पाएगा। तो मैंने बोला सर ये ऑप्शन ही नहीं है, मैं जा ही नहीं सकता, मुझे कहीं जाना है और मैं उसके लिए आया हूं, मैं जा ही नहीं सकता, लौट नहीं सकता मैं। तो फिर उन्होंने मेरी जिद देखी, उन्होंने बोला कि यार ये लड़का पता नहीं, उन्होंने बोला कि देखो ऐसे लड़के जो घर से पैसे मांगते हैं उनको हम अपने ग्रुप में रखते नहीं है, और हम अपने ग्रुप में तुरंत जुड़े हुए नए बंदे को पैसे देते भी नहीं है, तो तुम क्या करोगे? मैं सर कुछ भी करूंगा, मैं आप मुझे बोलो मैं कुछ भी करूंगा, आपकी रिहर्सल से साफ कर दूंगा, आपको कुछ भी कर दूंगा मैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो हम तुमको रहने के लिए बस व्यवस्था कर सकते हैं, आपको बाकी चीजें आप खुद से देखनी पड़ेंगी। तो जिस रिपेक्टरी कंपनी में उनका सामान

0: रहता था, हाथा एक जगह थी श्यामला हिल्स पे, उसमें मैं, हेमंत देवलेकर भैया और एक और जितेंद्र भाई एक थे जो कि पत्रकार थे, वो रहते थे। तो ये लोगों के साथ रहना हुआ मेरा पहली बार, और ये
1: ओ
0: पढ़ने लिखने वाले लोग थे, भोपाल के साहित्य के लोग आते थे उस कमरे में, वहाँ पे एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी, और उनके साथ रहना, कविताएं सुनना, हेमंत भैया को सुनना। और फिर मैं हिम्मत करके मैंने बोला कि भैया, एक बार मैंने बोला कि मैं भी लिखता हूँ, तो उनने बोला कि अच्छा, तो एक महफिल थी, मैंने हिम्मत करके बोल दिया, उन्होंने बोला कि क्या क्या लिखा, तो तुम चाहो तो पढ़ सकते हो देवेंद्र, क्योंकि बहुत ही प्यारे काइंड थे, और मुझे लगा कि सच में वो मेरे लिए भगवान जैसे ही हैं, अभी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने एक बुंदेली कविता लिखी थी जो कि मेरी एक तरीके से पहली कविता थी, और मैंने उनको फिर सुनाई, उस महफिल में सुनाई पहली बार। मैं इधर सुना दूं आपको,
1: जरूर।
0: तो कविता बुंदेली में ही है कि दद्दा मोखा मेला जाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने,
1: बाबा
0: दद्दा मोखा मेला जाने। ऊंचे ऊंचे गड़े हिड़ोरा बिचरी खूब बराई, और मेला में मिल जे है दद्दा मोखा मम्मा माई, ओ
1: वाह
0: पुत्रा और पुतनिया हल्के कक्का से लिबवाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने,
1: शानदार है,
0: दद्दा मोखा
1: वाह
0: मेला जाने। घूमत घूमत जो दद्दा मोखा मौसी मिल जे है,
1: वाह
0: कैया लेके बड़े प्यार से हल्के मुन्ना के है, मोखा अपने मौसिया से गुब्बाड़ो लिबवाने,
1: वाह वाह
0: मोखा
1: वाह
0: अपने मौसिया से गुब्बाड़ो लिबवाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने।
1: क्या बात है।
0: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, ये उसके दोस्त हैं,
1: बिल्कुल
0: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, जिनके संगे बड़ी रहान में खेलो गिल्ली डंडा, जो मेला ना जा पाहो उनखा आके तिनगाने,
1: वाह वाह
0: आज ते
1: वाह
0: 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने,
1: क्या
0: दद्दा
1: बात है,
0: मोखा मेला जाने।
1: वाह वाह
0: आखिरी बंद है कि दद्दा धीरे से मुस्काए, ढीले दोई बेला, और नए तंगड़िया बंठन के गए दोई घूमबे मेला, फिर मेला में फिर दद्दा ने गड़गड़िया ले बुआई, और कंधे पे बैठा के पूरा मेला दो घुमाई, कहते हैं देवेंद्र जे बचपन हमें भूल नहीं पाने, और आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने,
1: वाह
0: दद्दा
1: वाह,
0: मुखा मेला जाने।
1: कहते हैं
0: क्या कि बचपन है उस
1: देवेंद्र।
0: समय, ये बुंदेलखंड के कभी गानों में
1: ये
0: कभी जो
1: होता
0: राइटर
1: था
0: होता था उसका नाम छाप
1: बिल्कुल।
0: बोलते थे उसे,
1: हाँ
0: छाप है, तो छाप लगा के ही मैंने पहली कविता लिखी थी, मेरी बुंदेली कविता थी। और वहां से ही मेरा साहित्य के बारे में, शेक्सपियर पढ़ना शुरू किया, ब्रेक्ट पढ़ना शुरू किया, चेखव पढ़ना शुरू किया, मोहन राकेश पढ़ना शुरू किया, गिरीश कर्नाड पढ़ना शुरू किया, विजय तेंदुलकर पढ़ना शुरू किया, बादल सरकार पढ़ना, तो वो साहित्य से जुड़ना शुरू हुआ।
1: उस समय खर्च निकालने के लिए क्या करते थे आप?
0: खर्च तो मेरा कुछ था ही नहीं, मैं तो आटा तो मैं घर से ले गया था, और 10 रुपए का, 5 रुपए का नमकीन का एक पैकेट आता है, भुजिया बोले ली, और रोटी बना के, और रोटी में घी लगा के, घी और ये दोनों चीज़ें घर से ले गया था, और रोल बना के उसमें नमकीन डालता था और उसको ऐसे खाता था। खर्च कुछ था ही नहीं,
1: बस
0: वहाँ
1: ये
0: से
1: खाना हो गया।
0: खाना हो गया, और वहाँ से रिहर्सल के लिए वॉक करता था, तो वॉक करके वहाँ पर जाता था, रिहर्सल करता था, टाइम से पहले पहुँचता था, तो रिहर्सल स्पेस साफ करता था, ये ड्यूटी थी मेरी, रिहर्सल स्पेस साफ करना है, चटाइयाँ बिछानी है, डायरेक्टर की कुर्सी लगानी है, पानी की बोतलें भरनी है। तो मैं और मेरे दो दोस्त और थे, एक दर्शित जो अभी कास्टिंग करता है कास्टिंग में मैं, और एक मेरा दोस्त था सिद्धार्थ पांडे जो कि मेरा पहला दोस्त बना, कि उस तरह से भोपाल का पहला बेस्ट फ्रेंड मेरा बना, और हम तीन लोग जाते थे, हम पहले पहुंचते थे, हम सब कुछ काम करते थे, डायरेक्टर आते थे बैठते थे, बड़े बड़े लोग एक्टिंग करते थे ग्रुप में, और मैं देखता था कि भाई ये तो बहुत अच्छे पढ़ते हैं, मेरी भाषा का बहुत खराब था, एक नाटक कर रहे थे तांबे के कीड़े, और दादा मुझे और मेरी भाषा बहुत खराब थी, तो उसमें थे एक पत्ती एक पत्थर एक शब्द, ऐसे कुछ डायलॉग हुआ करते थे, वो भुवनेश्वर का नाटक था, एब्स्ट्रैक्ट नाटक था, और पहला नाटक ही मुझे वो करने को मिला। मैं कुछ ऐसे अजीब से नाटक करने के बाद अचानक से एक एब्स्ट्रैक्ट नाटक करने लग गया, तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हो गया। तो उसमें एक डायलॉग था, ले लो कांच के बीच, तो मैं बोलता ले लो कांच के बीच, तो बोलते ले लो नहीं, वो मुझे सिखाते थे ले लो नहीं ले लो, और मैं बोलता था ले लो, और मैं बोलता था कि मैं वही तो बोलता हूँ, और मुझे इस बात पर गाली मिलती थी, और वो बोलते थे तुम बुंदेली फोड़ रहे हो, मैं तो यार ये मैं समझ नहीं आता, मैं वही तो बोलता हूँ। फिर मेरे दोस्त मुझे समझाते थे, मुझे पता चला कि मेरे को भाषा पे कितना काम करना पड़ेगा। सर मुझे अच्छे से याद है कि वो दादा के साथ काम करते करते ड्रामा स्कूल खुला भोपाल में, एक एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा, और मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे तो मैं पैसे मैं कमा नहीं सकता, और ग्रुप में पैसे मिलते नहीं, तो मुझे अब इस इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा जहाँ पे साल में इतने सारे लोग आएंगे नाटक कराने के लिए, और खुले ही था। तो मैंने फिर एमपी स्कूल ड्रामा के लिए एग्जाम दिया, पहला राउंड में मेरा सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर वर्कशॉप में मैं गया, फिर वर्कशॉप में चल का एक माहौल। सो भोपाल में मैंने देखा कि एक नाटक कर रहे थे कि मैं कैसे मैंने म्यूजिक बनाना समझा, मैंने सीखा तो किसी नहीं है, मैंने हारमोनियम सीख लिया था, पर म्यूजिक बनाना मैंने कैसे समझा, कि एक नाटक कर रहे थे हम लोअर डेप्थ, त्रिपुराई शर्मा मैम जो कि हम उनको डायरेक्ट करने आई थी, जो कि हमारे बीच में नहीं है, पर मैम का बहुत बड़ा योगदान है मेरे को सब चीज़ों के लिए, काफ़ी एनर्जी में भी जाने ले जाने में उनका बहुत योगदान है।

तो मैम का नाटक था और हम उसको कर रहे थे, और संजय उपाध्याय सर जो कि बहुत बड़ा नाम है म्यूज़िक इंडस्ट्री में और थिएटर की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, SNM अवार्डी हैं वो, और मेरे गुरु हैं, मैं उनको बहुत प्यार से उनसे सीखा है मैंने, तो एक नाटक कर रहे थे। तो उस नाटक में हम उज्जैन में, हमारी वर्कशॉप लगी हुई थी और उज्जैन में हम एक महीने के लिए वहाँ पर थे, तो सर ऐसे मेरे सामने ही गाने बना रहे थे। हारमोनियम बजाना मुझे आता था पर मैंने गाने नहीं बनाए थे, तो उन्होंने गाना बनाया मेरे सामने ही, और वो गाना मुझे ही गाना था तो मेरे सामने बना रहे थे, क्योंकि मैम पूछती थी कि संजय क्या हुआ, तो बताते थे मैम हम कर रहे हैं। तो एक गाना उन्होंने बनाया, एक कविता थी, दिखती है आस क्यों पाक पसारे, सही में है मन क्यों क्यों रूठे किनारे। तो उन्होंने इस गाने को कंपोज किया सर, देखिए छोटी सी बात है पर उन्होंने मेरे सामने कंपोज किया, और मैं ऐसे इंस्पायर हो, इनलाइट हो गया, मुझे लगा कि भाई ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो गाना ऐसा कुछ था।

0: असहमे है मन क्यों क्यों रूठे किनारे, क्यों रूठे किनारे, क्यों रूठे किनारे। तो ये गाना मुझे लगा कि भाई ये तो इतना बढ़िया काम है। तो फिर मैं आया उधर से वर्कशॉप के बाद, मैंने कुछ दिनों में कुछ 4-5 गाने बनाने की कोशिश की है और लिखने
1: क्या
0: भी शुरू
1: बात
0: किए,
1: है।
0: क्योंकि मैं पढ़ता था भावे में, लाइब्रेरी में पढ़ता था, बहुत सारे कवियों को मैंने पढ़ा हुआ था, तो मैंने कुछ कुछ गाने लिखने शुरू किए।
1: कंपोज
0: और
1: करना शुरू किया या लिखना शुरू
0: लिखने
1: किया?
0: भी लिखना दिखता तो मैं कविताएं था ही, पर मैंने कंपोज किए फिर 4-5 गाने। और फिर मैंने भोपाल में आके स्कूल के बाद मैंने बोला सर से कि सर मैं एक 5-6 गानों का, 7-8 मिनट का, एक 15-20 मिनट का एक शो करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पर ये ऐसी परंपरा बनाओ कि हर सैटरडे को कोई एक बंदा परफॉर्म करेगा। तो मैंने कहा हाँ, तो सर उसकी शुरुआत मैं ही करता हूँ अगले।
1: रुको, यहां एक गाने की जगह बनाते हैं, क्योंकि बहुत दिलचस्प दास्तान है। एक गाना सुनते हैं, उसके बाद ये दास्तान
0: हाँ,
1: सुनेंगे।
0: पता चलेगा
1: तो
0: सर।
1: बताओ यहां कौन सा गाना होना चाहिए देवेंद्र?
0: ओ साथी रे,
1: क्या बात है,
0: ओमकारा गाना,
1: ओमकारा का गाना
0: ओमकारा
1: है।
0: गाना है
1: बहुत
0: कि बहुत ही
1: शानदार
0: सुंदर
1: गाना है,
0: गाना है, बहुत ही
1: बहुत शानदार
0: सुंदर
1: गाना
0: गाना
1: है।
0: है।

0: ये गाना हमने ओंकारा फिल्म का सुना देवेंद्र,
1: जी
0: आप बता रहे थे कि हर शनिवार को ये परंपरा शुरू करो कि कोई परफॉर्म करेगा,
1: हाँ,
0: इसके आगे क्या हुआ?
1: तो मैंने कुछ गाने बनाए और मैंने परफॉर्म किया, तो वो गाने परफॉर्म करने के बाद कुछ बुंदेली गाने थे, कुछ ऐसे कुछ गाने थे, और वहाँ पे अगले नाटक को डायरेक्ट करने के लिए एक डायरेक्टर आए हुए थे, उनका नाम था वीके शर्मा। तो वीके सर ने मेरे को देखा परफॉर्म करते हुए, तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने मेरे शो के बाद बोला कि अगला मेरा जो शो होने वाला है उसका म्यूजिक तुम करोगे। तो वो मेरा पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था, उस नाटक का नाम था अपना अपना भाग। हाँ, अपना अपना भाग का मैंने पहला गाना है, वो ऐसा कुछ गाना था, एक सुना देता हूँ ऐसे करके। सुबह का भोला जीरो कादिर हीरो बन के लौटा है, सुबह का भोला जीरो कादिर हीरो बन के लौटा है, फिर से जन्म हुआ है उसका, फिर से मिला एक मौका है, फिर से जन्म हुआ है उसका, फिर से मिला एक मौका है, मेहनत करके भाग्य जुगा ले, तुझको किसने रोका है,
0: बाबा
1: सुबह का भोला जीरो कादिर हीरो बन के लौटा है। तो एक फेलियर आदमी की कहानी थी कि वो फेल हो गया था, फिर वो कैसे हीरो बन के लौट के आया है, उसके ऊपर हमने ये नाटक, और ये पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था, उसके बाद तो ये लंबा सिलसिला है और फिर
0: म्यूजिक का सिलसिला चल पड़ा,
1: चालू हो गया। फिर उसके
0: क्या
1: बाद मैं
0: बात है।
1: पास आउट हुआ, और फिर वीके सर ने बोल दिया कि भाई तू पास आउट होके दिल्ली आ जाना, मेरे ग्रुप में काम करना। तो एक
0: अच्छा,
1: ब्रिज मिल गया कि मुझे दिल्ली जाने का मौका मिल गया, क्योंकि मुझे दिल्ली ही पहुंचना है डेस्टिनेशन।
0: वो बोर्ड और
1: वो तो
0: वो
1: छूटा ही नहीं है,
0: धुरंधर
1: वो
0: जी याद
1: रिकॉर्डिंग
0: आ
1: तो
0: रहे।
1: छूटी
0: हाँ
1: नहीं है, वो तो मुझे जाने थे स्कूल, उधर हुआ नहीं है। जिस समय मैंने एमपी स्कूल ड्रामा के लिए ऑडिशन किया था, उस समय मैंने एनएसडी का भी ऑडिशन किया था, पर
0: अच्छा।
1: एमपी स्कूल ड्रामा मेरा हो गया। और देने गया इंटरव्यू, तो उन्होंने बोला कि भोपाल में खुद एक ड्रामा स्कूल खुला है, भोपाल में काम करते हो, तो भोपाल में आपने नहीं दिया? मैंने बोला मैंने दिया था। तो उन्होंने क्या हुआ? मैंने कि हो गया। तो उन्होंने बोला पहले वहां पढ़ के आओ। मैंने कहा अरे यार, तो फिर मुझे पढ़ने को वहां पर मौका मिला, और फिर मैं जुलाई में पास आउट हुआ था, 4 अगस्त 2012 को मैं दिल्ली आ गया था वीके सर के ग्रुप में काम करने के लिए, और फिर मेरे को 14 में मेरा सिलेक्शन हुआ, और तो उसके बाद मैंने दिल्ली में लगातार काम किया, दिल्ली में काम
0: लेकिन
1: किया,
0: 14 में एनएसडी में सिलेक्शन हो
1: हो
0: गया
1: गया।
0: और वहीं वो
1: और वो
0: धुरंधर जी
1: धुरंधर जी से
0: मिले
1: मिलना हुआ मेरा,
0: मिले धुरंधर जी।
1: धुरंधर जी उस समय तक थे, धुरंधर जी, पर वो मुझे भूल चुके थे तब तक। मैंने
0: हाँ
1: बोला आपको याद है एक बच्चा आया था, आपने मुझे बोला था कि तेरा नहीं हो पाएगा, यार ऐसे वो मनगढ़ंत कहानी सुना रहे, वो प्यार करते थे, वो थोड़ा सीनियर जैसे थे ना, जैसे बुजुर्ग
0: हाँ
1: ऐसे होते हैं, तो ऐसे थे वो, क्योंकि वो ऐसा कल्चरल ग्रुप है, एक्टिविटी है, तो वहां पे गार्ड गार्ड की तरह ट्रीट नहीं किया जाता जैसे
0: बिल्कुल
1: दुनिया में होता है।
0: जी,
1: तो वो ऐसे होता है कि अरे आप दादा हो, मतलब आप
0: हाँ,
1: वो
0: परिवार
1: प्यार
0: के एक
1: मिलता, परिवार के
0: सदस्य।
1: सदस्य हो, सीनियर सदस्य हो आप, तो
0: हाँ
1: उस तरह से। तो धुरंधर जी से काफी लंबा समय तक उनसे प्यार रहा है, और फिर वो रिटायर्ड हो गए, तो अब मिलना कम होता है, पर मैं दुआ करता हूँ जहां भी हो, बहुत ही अच्छे थे वो।
0: एनएसजी ने आपकी दुनिया को कितना बदला।
1: सो एनएसडी में भी मैं एक्टिंग करने गया था, मैंने एक्टिंग करनी थी मुझे, और मुझे शौक था एक्टिंग करने का, और मैंने पहला एक बड़ा नाटक मैं लीड रोल किया। उसके पहले तो क्योंकि मेरी भाषा बहुत खराब थी, एमपी स्कूल ड्रामा में मैं नाटकों में रोल करता था, एक नाटक में 6 रोल करता था, और मेरे डायलॉग किसके कैसे होते थे, छोटे छोटे रोल होते थे, बंदूक किसके पास है, मैं बोलता राजगुरु के पास, मेरा डायलॉग खत्म, मेरा
0: बस
1: रोल भी खत्म, मेरा रोल भी खत्म, मेरी भाषा इतनी खराब थी, क्योंकि
0: अच्छा,
1: मेरे
0: लेकिन
1: को,
0: ये फिर भाषा पर काम कैसे किया, ये
1: हाँ,
0: बहुत
1: मैं
0: महत्वपूर्ण
1: बता रहा हूं
0: है।
1: कि मैं ये कविता पढ़ते पढ़ते मैंने पहली बार शामिल बोलना शुरू किया था, शामिल बोलना शुरू किया पहले, क्योंकि मैं शामिल बोलता था, शेक्सपियर बोलता था, तो लोग हंसते थे, तो मुझे लगा कि अरे यार ये तो मेरा बहुत बड़ा मसला है। हाँ, तो मैंने भाषा पे काम किया, दोस्तों ने मुझे हेल्प की, मुझे लगातार टोका, मुझे समझाया, और फिर मैं कॉन्शियस हो गया उसको लेके, मैं उसको लेके कॉन्शियस हो गया कि भाई अच्छा, मैं गलत बोलता था,
0: शक को साफ बोल रहे हो।
1: हमेशा ही बोलता था। तो पहली बार मैंने ये कविता, जो राजीव जोशी की बहुत पॉपुलर कविता है, बाद में मैंने उसको कंपोज भी किया, जो हमारे बैंड का मंडी हाउस द बैंड, हमारा जो बैंड बैंड है उसमें गाना है ना, जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, तो शामिल मैंने पहली बार शब्द बोला था जिसमें मैंने सा को सही बोला था, शामिल बोला था। मेरे दोस्त चौंक गए थे कि भाई बोल दिया, यही तो बोलना था, इतने दिन से तुमसे यही तो बुलवाना चाह रहे थे हम। तो ये पहली बार ऐसे भाषा पे काम किया, और जब मैं पहली बार इसमें एनएसजी आया, और मैंने बहुत बड़ा रोल किया लोअर डेप नाटक में, दोबारा हुआ एनएसजी में, और उसमें मैंने साचिन का रोल किया, और डायरेक्ट कर रहे थे अनुरुद्ध खुटवर सर, और मैंने, मेरा बड़ा नाम हुआ उस नाटक से, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोई लड़का आया, और 2 2.5 घंटे के नाटक में 1.5 2 घंटे कम से कम स्टेज पे, और लगातार बोलना है,
0: वाह
1: और
0: वाह
1: कैरेक्टर
0: वाह।
1: बहुत डिफिकल्ट, कुछ भी चीज जो मैं नहीं करता था सब उसको करना है, मैनरिज्म पकड़ने की कोशिश की, और लंबे अंतराल के बाद वो नाटक बहुत अच्छा हुआ। पर जैसे ही मैं सेकेंड ईयर में गया, और उस समय मुझे समझ में आया कि यार मैं जहां से बिलोंग करता हूँ, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, जिन लोगों से मैं बिलोंग करता हूँ, अगर मैं एक्टिंग मैंने ले ली, तो उनकी कहानियां कौन कहेगा, तो फिर मैंने वहां से अपना रुझान बदला और मैंने डिजाइन एंड डायरेक्शन में अपने आप को कोर्स लिया। सेकेंड ईयर से आप स्पेशलाइजेशन करते हो तो वो लिया और फिर मैं उस तरफ आ गया। और फिर मैंने अपनी कहानियां लिखनी शुरू की, अपनी बात लिखनी शुरू की, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ उस जमीन की सच्चाई को लिखना शुरू किया, सोसाइटी पे क्वेश्चन करना शुरू किया। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि मैंने ठीक किया, क्योंकि मैं अभी भी एक्टिंग तो मैं कर ही लेता हूँ, मेरे को लोग प्यार करते हैं और मेरे को पता ही है कि मैं डायरेक्शन के हिसाब से जो मैं डायरेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे इतना प्रेशर नहीं रहता क्योंकि मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो मैं एक्टिंग भी बहुत सरल तरीके से करता हूँ। लोग मेरी एक्टिंग की तारीफ भी कर देते इस बहाने कि भाई तुम लोड नहीं लेते,
0: बिल्कुल,
1: तुम्हारी एफर्टलेस में दिखती है। तो ऐसे करके शुरू हुआ पूरा पूरा।
0: तो फिर दिल्ली में कौन से बड़े नाटक इस दौर की बात की है आपने?
1: अभी दिल्ली पहुंचा उस दौर के बड़े नाटक हुए थे, विरासत एक नाटक किया था अनुराधा कपूर मैम ने, बहुत बड़ा लेवल पे वो नाटक किया था जिसका बहुत नाम हुआ। उस समय बंसी दादा भी नाटक करते थे, बंसी कौल जी भी नाटक करते थे, एनएसडी में भी उनके साथ मैंने एक नाटक किया जिसका नाम था खेल मंडी खेल, उसका म्यूजिक मैंने बनाया।
0: मुखौटा,
1: हाँ, तो वो मूवमेंट थिएटर करते थे, लाजवाब लाइव थिएटर करते थे और वो फार्स कॉमेडी करते थे और कन्विक्शन के साथ कराते थे, वो बहुत बढ़िया काम था। तो उनके साथ भी काम करने का, त्रिपुराई शर्मा जी का नाम उस समय बहुत था और बहुत उनके साथ नाटक किए हम लोगों ने और बहुत नाटक देखे उनके, और बाहर भी दिल्ली के जो ग्रुप्स थे उनके साथ भी काफ़ी नाटक देखे। एक नाटक देखा था मैंने वाटर स्टेशन जो कि साउथ का नाटक था, और उस समय भारंगम होते थे तो भारंगम से भी बहुत सारे नाटक आते थे, दुनिया के सारे नाटक, बहुत सारे नाटक उस समय
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: देखे हमने। अभिलाष पिल्लई सर के नाटक देखे थे हमने और बहुत अलग अलग तरीके के, बहुत इंटरनेशनल लोगों से मिलना हुआ, पूरे देश के अलग अलग जगह के लोगों के, अलग अलग भाषाओं के लोगों से मिलना हुआ और पावरफुल लड़कियों से मिलना हुआ जो कि अपनी बात बहुत स्ट्रांगली कह पाती हैं और जो सोसाइटी में स्ट्रांगली अपनी प्रेजेंस को प्रूव करती हैं और वो दिखाती हैं कि वो किसी से कम नहीं है, इंटेलेक्चुअली और क्रिएटिवली भी वो किसी से कम नहीं है। तो उन टीचर्स से ज्यादा हम बैचमेट्स से सीखते हैं।
0: तो वहां से फिर मुंबई कैसे आना हुआ?
1: मैं पास आउट हुआ 17 में और फिर मेरे पास एक कॉल आया बहुत बड़े डायरेक्टर का, क्योंकि मैंने उस समय मेरा डिप्लोमा हुआ था डिरेल मैंने किया था, वो नाटक उस साल का बहुत बड़ा नाटक बन गया और वो थिएटर ओलंपिक हुआ उसकी क्लोजिंग में हुआ, वो इतना बड़ा नाटक था उसके 1000 लोग देखते थे और वो मैंने ही लिखा था, डायरेक्ट किया था, डिजाइन किया था। और एमपी छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे वो मैंने बनाया एक नाटक कि वहाँ से एक रेल की पटरी निकलती है और वहाँ पे एक गार्ड रहता है और वहाँ पे एक फाटक है और उस बंदे ने किसी बंदे को किडनैप कर रखा है, उसकी कहानी थी पूरा ऐसे ओपन स्पेस में करता था मैं। तो उस नाटक में एक गाना था तो वो गाना और उसके काफ़ी गाने ऐसे पॉपुलर हुए और मैंने रिकॉर्ड किया, तो दोस्तों ने मुझसे मांगे तो मैंने दे दिए किसी को, तो कुछ पत्रकार दोस्तों को भी दे दिया, उन्होंने गाना किसी डायरेक्टर को सुना दिया, काफी बड़े डायरेक्टर थे उनका नाम लूंगा क्योंकि मैंने उनके साथ फिर काम नहीं हो पाया, और उन्होंने मुझे कॉल किया कि तू बम्बई आ जा और मैं हम काम करेंगे। वो बहुत बड़ा नाम था वो डायरेक्टर का और मैं ऐसे चमक गया। रात का टाइम था 12 बजे के आसपास, एनएसडी से पास आउट होने के पहले की बात है, कुछ दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं और मेरे पास एक कॉल आता है, कुत्ते भौंक रहे हैं, हेली रोड पे मैं चल रहा हूँ मेरे दोस्तों के साथ में, और एक कॉल आया, उन्होंने बोला कि मैं फलाना बोल रहा हूँ। मैंने बोला कि मैं सर मैं समझा नहीं हूँ, उन्होंने बोला फलाना फलाना बोल रहा हूँ, सर सर वे कुत्तों की बहुत भौंकने की आवाज़ म्यूट हो गई है, मेरे दोस्त आगे निकल चुके हैं, आगे निकल चुके हैं और मैं वहीं खड़ा हुआ हूँ, कुत्ते मेरे आसपास पहुंच रहे हैं, मैं सुनाई देना बंद हो गया मुझे। मैंने कहा अरे हाँ सर, अरे सर मैं तो मर जाऊंगा सर, क्या हो गया सर, मैं आप बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, तो आ जाना मुंबई और अपन मिलते हैं कुछ काम करते हैं। फिर मैं आया मुंबई, उनसे मिलना हुआ पर वो काम नहीं बन पाया, अभी तक मैंने उनके साथ काम नहीं किया, पर उम्मीद है कि कभी ना कभी काम करेंगे। पर फिर ऐसे में मुंबई आ गया
0: और यहाँ से फिर मुंबई में काम का सिलसिला शुरू हुआ।
1: हाँ, मुंबई में काम का सिलसिला तो सर ऐसे शुरू होता है कि 3 महीने तो मैं समंदर पे जाके बैठा, क्योंकि पहली बार समंदर देखा था और पता ही नहीं रहता था जाना किधर है, पर ये बता था कि वहाँ हर हाल में पहुंचना है जहाँ जाने का ख्वाब देखा है, तो उसी तरफ बढ़ने की कोशिश करते थे, निकलते थे। फिर एक नाटक बना लिया क्योंकि कोई काम नहीं देगा तो क्या करोगे, फिर मैंने एक नाटक बना लिया कांजी हाउस जो मैंने ही लिखा था, और वो भी उसी बुंदेलखंड पृष्ठभूमि पे, वो शुरू ऐसे होता था, एक आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।
0: अच्छा।
1: वो क्योंकि रेडियो का बंदा था तो रेडियो पे कोई न्यूज चल रही है और आज शाम को 4-7 बजे उसका मैंने अनाउंसमेंट ऐसे बनाया था, इतने बजे नाटक होने वाला है जिस पृष्ठभूमि पे है, ऐसे करके उसमें ये अभिनेता काम कर रहे हैं, ये उसमें इस तरह के गाने, इस तरह का म्यूजिक है। तो कांजी हाउस में उसको बहुत प्यार मिला, मैंने उसके 25 शो किए और वो फिर कोविड लग गया, हम पृथ्वी करने ही वाले थे, कोविड लग गया, फिर वो पूरा का पूरा बंद हो गया नाटक। फिर अभी बहुत समय बाद मैंने एक बड़ा नाटक, मतलब कम लोगों के साथ में एक बड़ा नाटक बनाने की, बड़ी बात के साथ बनाने की कोशिश की है, जिसका नाम है बहुत जोर से प्यार लगा है, जो अभी लगातार हो रहा है।
0: और उसका एक गाना सुनाओ यार,
1: उसका टाइटल सॉन्ग सुना दूंगा मैं आपको।
0: बिल्कुल
1: सुनाता हूँ मैं आपको, उसका एक गाना है जो टाइटल सॉन्ग है, मैं एक इसकी छोटी सी गंभीर बात आ देता हूँ कि
0: बिल्कुल
1: एक छोटा सा सेंटेंस जिस उम्र में मैं पढ़ता हूँ, छोटी उम्र में, लाइक मैं अगर 13-14 साल का हूँ, 12-13 साल का हूँ, उस समय कोई एक कोई इंसान, ऐसा इंसान जिसके होने से आप चमकते हो, जिसके होने से आपको खुशी होती है, जिसके बगल से गुजरने से आपको कोई आपका क्रश है, और वो कोई एक ऐसी बात कह दे, एक सेंटेंस ऐसा बोल दे, उस सेंटेंस का असर कितना समय रहता है और वो सेंटेंस आपकी पूरी दुनिया कैसे बदल सकता है, वो एक सेंटेंस की कहानी है ये एक तरीके से। अगर वो नहीं होता तो ये लड़के की जो जिंदगी है, जो गुड्डू नाम का जो कैरेक्टर है, उसकी जिंदगी कुछ और ही होती। उस घटना ने उसकी जिंदगी बदल के रख
0: बदल
1: दी,
0: दी।
1: बदल दी। उस पर एक कहानी है। हर किसी की जिंदगी में ऐसा होता है। एक संवाद कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, भाषा में कितना पावर है, और अगर वो मीन करके, अगर वो सच में इंटेंसिटी के साथ बोला गया सेंटेंस है, संवाद
0: वो
1: है,
0: क्या कर
1: तो वो
0: सकता है।
1: क्या बदल सकता है, वो तबाही ला सकता है। तो वो कहानी है। अब ये गाना तो थोड़ा कमर्शियल गाना है क्योंकि हमारा नाटक भी कमर्शियल है, पर बात वही है कि वो फोक से शुरू होके ऐसे कमर्शियल की तरफ बढ़ता है क्योंकि वो कैरेक्टर भी ऐसे छोटे गांव से निकल के कहाँ कहाँ पहुंचता है, उसकी कहानी है। सो गाना है, अब कंट्रोल नहीं होता, अब बर्दाश्त के बाहर है, इसको कोई रोक सके, किसमें इतना पावर है, सीने के इस पार से लेके सीने के उस पार लगा है, बहुत जोर से प्यार लगा है,
0: क्या
1: पै
0: बात
1: पै
0: है।
1: पै पै पै, बहुत जोर से प्यार लगा है, पै पै पै पै पै, बहुत जोर से प्यार लगा है, सीधे लड़के के हाथों में इनलीगल हथियार लगा है, बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है,
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: जहन की हर एक चोट थी गायब, उन होठों में होठ थे गायब, हाथ थे गायब, बात थी गायब, दुनिया की औकात थी गायब, गायब पूरा बदन हुआ था, मैं तो उसका कफन हुआ था, बचने को बस सांस बची थी, फिर भी आधी रात बची थी,
0: वाह,
1: सुबह उठा तो कान के नीचे, सुबह उठा तो कान के नीचे, गर्दन पर स्कार लगा है, बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है, पा पा पा पा पा, बहुत जोर से प्यार लगा है,
0: क्या
1: ऐसे
0: बात है,
1: ये टाइप
0: क्या
1: का सॉन्ग
0: बात है,
1: है।
0: बढ़िया गाना है।
1: जी जी जी
0: कैसा रिस्पॉन्स है इस नाटक का?
1: आ सर जो भी देख रहा है उनको बहुत पसंद आ रहा है, और क्योंकि म्यूजिकल है तो लोग उससे और जुड़ते जा रहे हैं, और अभी हमने लगातार 5-6 शो किए हैं, हाउसफुल शो किए हैं, और हमें भी बहुत शो करने हैं, पूरा हिंदुस्तान घूमना है। तो जो भी श्रोता जो सुन रहे हैं हमें, अगर वो चाहें तो हमें बुला सकते हैं, और दो परफॉर्मेंस हम लगातार कर रहे हैं, एक तो हमारे मंडी हाउस बैंड है जो कि ऐसे गाने हैं, वो सारे गाने ओरिजिनल गाने हैं, इतने बड़े बड़े गाने हैं जो आपने फिल्मों में भी नहीं सुने होंगे, और रोहिणी ने ऐसा बोला हुआ है, मैंने नहीं बोला हुआ है तो बहुत अच्छे गाने हैं और बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, और इसे कोम्यून ने प्रोड्यूस किया हुआ है, और हमें इसे बहुत करना है, और अभी हम कर रहे हैं, अभी आगे हमारे शो है, हम पृथ्वी में भी करने वाले हैं, NMACC में भी कर रहे हैं, तो अभी बहुत प्यार की उम्मीद है, अभी बहुत प्यार चाहिए सर, बहुत नाम चाहिए, क्योंकि एक ऐसी जगह से निकलना है ताकि बहुत सारे लोगों को ताकत मिले और एक थोड़ा एग्जाम्पल बने कि हाँ कहीं से भी सपने देखे जा सकते हैं।
0: अभी वेब सीरीज आई थी बैंड वाले,
1: जी जी
0: वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? स्वानंद है उस वेब
1: जी
0: सीरीज
1: जी
0: में।
1: स्वानंद दादा हैं, और अंकुर तिवारी जी ने को डायरेक्ट किया है, को क्रिएटर है वो, और अक्षय वर्मा जी ने उसको डायरेक्ट किया, उसमें मेरे कैरेक्टर नाम है जिगी। जिगी एक कैरेक्टर है जो एक लड़की को प्यार करता था, पर वो लड़की प्रोफेसर की बेटी थी, इसलिए प्रोफेसर को पता चला कि मेरी लड़की को के पीछे पड़ा हुआ है ये, तो उस लड़के को अपने घर बुलाया राखी वाले दिन और उससे राखी बनवा दी, तो वो जिगी कैरेक्टर ऐसा है कि वो राखी भाई बना हुआ बेचारा,
0: बेचारा।
1: अब वो क्या करे, उसके दिमाग में बहुत है, वो प्यार भी करता है पर उसको बहन मानता है वो, अब उसको वो पीछे घूमता रहता है 24 घंटे, वो अपनी थार से उसके पीछे घूमता है, बहुत मतलब लोगों ने मुझे बहुत उसके लिए प्यार इसलिए दिया क्योंकि लोग उसमें कह रहे हैं कि तुमने उसमें बिल्कुल एक्टिंग नहीं की, क्यों, क्योंकि मेरे को लगा कि मैं उसमें क्या ही एक्टिंग करूंगा, वो मैंने उसको समझा बस कैरेक्टर को, क्योंकि समझाने वाले लोग भी अच्छे थे, स्वानंद दादा भी थे, अंकुर जी भी थे, अक्षय वर्मा जी भी थे, और आसपास के लोग, रोविंद सर उसमें काम कर रहे थे, हमारे गुरु जी रोविंद सर
0: बिल्कुल,
1: काम कर रहे, आशीष विद्यार्थी जी उसमें काम कर रहे हैं,
0: वाह,
1: तो काफी लोग उसमें थे, तो उसमें बहुत ही अच्छा था, और उसमें मेरा एक गाना भी था, मैंने गाने बनाने के लिए पहले उससे जुड़ा था, गाना उसमें सम्मोह माया नाम का एक गाना मैंने बनाया था,
0: सुनाओ ना।
1: अच्छा वो गाना कुछ ऐसा था, वो देखो सब लूप में फंस गए, सभी लिटिल बिट चूक में फंस गए, रोटी से परहेज किया है, पिज्जा बर्गर सूप में फंस गए, वो देखो सब लूप में फंस गए, बुजुर्गों ने फरमाया है प्यारे सब मोह माया है, अरे टैटू भी गुदवाया है, डूड सब मोह माया है, काफी ऐसे फन सॉन्ग है, आम आदमी का गाना है कि बेचारा क्या
0: बिल्कुल
1: चाय चढ़ा के दूध में फंस गए,
0: वाह वाह,
1: पी के कहीं तो फूंक में फंस गए,
0: वाह,
1: पिचकारी से खेल रहे थे नजरों की बंदूक में फंस गए,
0: क्या सुंदर
1: उसके लिरिक्स ऐसे हैं मतलब,
0: वाह वाह वाह। देवेंद्र बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सबसे अच्छी बातें वो होती हैं जिनमें आगे के लिए हमेशा गुंजाइश छोड़ दी जाए,
1: जी जी जी,
0: तो फिर कभी मिलेंगे और
1: भी
0: आगे और बहुत सारी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती,
1: बहुत बहुत शुक्रिया, रेडियो का मेरी जिंदगी में बहुत ही योगदान रहा है, और आप यकीन नहीं मानोगे मैंने बहुत सुना है विविध भारती, मैंने सुनता था आकाशवाणी का टाइम खत्म होता था फिर बोलते थे आप विविध भारती से कनेक्ट करते हैं, कर दिया जा रहा है आपको, फिर वहां से आप सुनते थे प्रोग्राम लगातार,
0: बिल्कुल,
1: और बहुत ही एक सादगी है, एक सरलता है, एक मोहब्बत इतना नहीं एक रेडियो में,
0: बिल्कुल,
1: और मैं बड़ा मिस करता हूँ इसको, और मैंने तो सुना ही, मैंने बताया कि वो रेडियो के गाने मेरे जहन में चलते रहते थे, बैरन होगी जिंदगी मैं कैसे कहूँ जैसे गाने मैंने सुन सुन के बड़ा हुआ हूँ मैं, सो मेरे साथ एक बड़ी खासियत जुड़ जाती है मेरे साथ कि मैंने थोड़ा म्यूजिक और जो लोक है जो फोक है वो काफ़ी मैंने जिया है और मैंने उसको महसूस किया है, और दूसरा मैं शहर भी रहा हूँ तो मैंने हर तरह की शहर से होके पानी पी के आया हूँ, तो मेरे लिए ये काम कर जाता है, और रेडियो का मेरे लिए बड़ा योगदान है कि वो गाना नहीं सुनता जब जब प्यार पे पहरा हुआ है तो मेरे ख्याल ही नहीं आता दिमाग में, और मैं आपके साथ बैठा हुआ था, और
0: सफर है,
1: हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है अच्छे लोगों से बात करके, और आपको तो मैं पढ़ता आया हूँ, मैं आपकी किताब भी पढ़ी है शैलेंद्र के ऊपर, और मुझे स्वानंदन दी थी वो पढ़ने के लिए, तो मैं उसको भी पढ़ता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपसे लगातार जुड़ा रहूंगा, आपसे बात करता रहूंगा, विविध भारती से जुड़ा रहूंगा,
0: शुक्रिया,
1: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।

आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज एवं एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर अभी तक आप विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई केंद्र के कार्यक्रम सुन रहे थे। हमारी दूसरी सभा मीडियम वेव और एफएम पर एक साथ आरंभ हो रही है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम आज शाम।

कार्यक्रम आज शाम के सभी श्रोताओं को अर्शी मसूद का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं कैसे हैं आप? उम्मीद पूरी है कि आप खुश होंगे, हंसते मुस्कुराते हुए होंगे और जिंदगी को भरपूर एंजॉय भी कर रहे होंगे, क्योंकि जिंदगी तो जीने की चीज है, खामोश रहने की नहीं। कहते भी हैं कि खामोशी चुप है और चुप रहने से चुप लग जाती है। इसलिए जिंदगी एक साज है, आवाज है, इसे गाइए, बात कीजिए, गुनगुनाइए, कभी अपने रिश्तों के साथ तो कभी अपने दोस्तों के साथ। श्रोताओं जब रिश्तों में बातें कम होने लगती है ना, तो दूरियां बढ़ने लगती हैं। कई बार लोग लड़ाई से नहीं बल्कि खामोशी से बिछड़ जाते हैं। एक छोटी सी बात, एक हालचाल, मुस्कान टूटते रिश्तों को बचा सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनों से बात करें, उनकी भावनाओं को समझें, रिश्तों को समय दें, सिर्फ जब नहीं जब उन्हें जरूरत हो बल्कि दिल से रिश्ते निभाएं। जब किसी से मिले तो सिर्फ हाथ ना मिलाएं बल्कि दिल मिलाएं, अपनेपन का एहसास दें। श्रोताओं जीवन बहुत छोटा है नफरतों को रखने के लिए। प्यार बांटिए, रिश्तों को खामोशी से नहीं बातें करके निभाइए, क्योंकि जो दिल से की गई बातें होती हैं वो दिल में ही तो सीधा उतरती हैं।

श्रोताओं, बात आज हम कर रहे हैं कि हमें बात करनी चाहिए, खामोशी नहीं इख्तियार करनी चाहिए बल्कि जज्बात को साथ लेना चाहिए। हर रिश्ते में धीरे धीरे दूरी खत्म हो जाती है, एक मुस्कान ही काफ़ी होती है दिल की राहें खोलने के लिए। थोड़ा अपनापन दिखाना चाहिए और ऐसे ही कुछ हमें रिश्तों को सजाना चाहिए। श्रोताओं, रिश्ते जहां बातों से शुरू होते हैं वहीं उनकी असली पहचान प्यार और विश्वास से होती है, मगर खामोशी जब आती है तो धीरे धीरे दूरी बढ़ने लगती है। अपनों की खुशी को दुख को हमें समझना है, लेकिन ये सिर्फ कुछ शब्द ही नहीं है बल्कि रिश्तों की सच्चाई है कि चुप रहने से चुप ही लग जाती है। प्रयास ये करें कि रिश्तों में दिल से जुड़ाव हो, सिर्फ शब्द नहीं भावनाएं भी जरूरी हैं। जीवन बहुत सुंदर है जब इसे अपनायत से, मोहब्बत से, अपनेपन के साथ हम जिए, जब कोई हमें समझता है और हमारी भावनाओं की कद्र करता है तो श्रोताओं, हमें बहुत खुशी मिलती है। जहां बात हम बात करने की कर रहे हैं तो वहीं कई बार छोटी सी बात पूछने से या बात करने से जब रिश्ते टूटने वाले हों तो वो बातें, वो संवाद, वो दिल की गहराई उन रिश्तों को बचा लेती है। इसलिए अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए, दिल से जुड़ना चाहिए, रिश्तों को मजबूत बनाना चाहिए। अगर बात मन की करें तो खामोश रहने से तो श्रोताओं गलत फहमियां भी बढ़ जाती है ना, इसलिए जब कहा ना हाथ मिलाएं तो दिल भी मिला लीजिए। चेहरे तो अपने लगते हैं मगर जब दिल से कोई बात होती है तो सच्चाई आंखों में उतर आती है। फिर चाहे रिश्ते खामोश हों वो भी अपनाइयत का एहसास देते हैं। श्रोताओं, जब रिश्तों की बात हो तो हर मुश्किल समय में भी हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और मीठे शब्द वो होते हैं जो हर रिश्ते को महका देते हैं। कहते भी है ना श्रोताओं कि कोशिश करें कि कोई अपना आपसे ना रूठे, जिंदगी में कभी अपनों का साथ ना छूटे, रिश्ता कोई भी हो उसे ऐसे निभाएं कि रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना टूटे।

श्रोताओं, कार्यक्रम आज शाम में आपसे वक्त उछला है विदा लेने का। इस वादे के साथ अर्शी मसूद को कार्यक्रम आज शाम समाप्त करने की इजाजत दीजिए कि आप खुश रहेंगे, हंसते मुस्कुराते हुए रहेंगे और दुआओं में याद रखेंगे।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आज शाम। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्ते, आदाब, गुड इवनिंग साथियों। स्वागत है आप सबका आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम युववाणी में। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो साथी तरुणा जोगेश,
1: और साथ हूं मैं आपका रेडियो पार्टनर नतांश अग्रवाल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खुश होंगे और मस्त होंगे। चलिए, हमेशा की तरह बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का हमारा सवाल है, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किस भारतीय पुरातत्वीय

0: बातें की थी।
1: साथियों सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने की थी? इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको जाना होगा आकाशवाणी रामपुर के फेसबुक पेज पर और आज अपलोड किए गए सवाल के कमेंट सेक्शन में लिख भेजने होंगे अपने अपने जवाब। सवाल का सही जवाब और सही जवाब देने वाले अपने सभी श्रोता साथियों के नाम हम बताएंगे आपको कार्यक्रम के अंत में। साथियों जैसा कि आपको याद होगा ही कि आज हमारा स्पेशल सेगमेंट हेलो फ्रेंड्स है, जिसमें हम फोन कॉल के जरिए आपसे जुड़ते हैं और करते हैं आपसे ढेर सारी बातें। तो साथियों भूलिएगा नहीं हमें कॉल करना। हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए 0595232423326।
0: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 0595232426। तरुण तुमने ये दो पंक्तियां तो कहीं ना कहीं सुनी होंगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
1: हाँ बिल्कुल नतांश, हरिवंश राय बच्चन जी की ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ आज भी हर उस इंसान को हौसला देती हैं जो अपनी जिंदगी में कोई ऊंचाई छूने का सपना देखता है।
0: हाँ, और पता है कुछ लोग इन पंक्तियों को सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में सच कर दिखाते हैं।
1: सच कहा नतांश, और आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक साहसी महिला की जिन्होंने सिर्फ पहाड़ नहीं चढ़ा बल्कि पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया।
0: हाँ, और इसलिए ही आज का दिन यानी 23 मई भारतीय इतिहास में बहुत खास माना जाता है, क्योंकि इसी दिन साल 1984 में बछेंद्री पाल ने इतिहास रचते हुए माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनने का गौरव हासिल किया था।
1: सोचिए साथियों उस समय ना आज जैसी मॉडर्न सुविधाएं थी ना इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, और फिर भी एक साधारण परिवार से आने वाली लड़की ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचकर पूरी दुनिया को चौंका दिया।
0: जी हाँ साथियों, बछेंद्री पाल का जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से गाँव में हुआ था। बचपन से ही उन्हें पहाड़ों से बेहद लगाव था और शायद वही लगाव धीरे धीरे उनके जुनून में बदल गया।
1: वो साथियों कहते हैं ना, अगर सपनों में सच्चाई हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ाई जाहिर है कि आसान नहीं थी, तेज बर्फीली हवाएं, कम ऑक्सीजन और हर दम पर खतरा, लेकिन बछेंद्री पाल जी ने हर मुश्किल को पार किया।
0: और जब उन्होंने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराया तो वो पल सिर्फ उनकी जीत नहीं था बल्कि पूरे भारत का गर्व था।
1: और सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि उन्होंने सिर्फ खुद सफलता हासिल नहीं की बल्कि बाद में कई युवाओं, खासकर लड़कियों को एडवेंचर स्पोर्ट्स और माउंटेनियरिंग के लिए प्रेरित किया।
0: सच में बछेंद्री पाल ने पूरी दुनिया को ये साबित कर दिया कि ऊंचाई से पहाड़ों की नहीं होती बल्कि सपनों की भी होती है।
1: तो साथियों इसी तरह बढ़ेंगे कार्यक्रम में आगे की ओर, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ कार्यक्रम युववाणी में।

0: वेलकम बैक दोस्तों। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम युववाणी में। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट सेगमेंट कुछ खास है आज की ओर।
1: कुछ ख्वाबों की बात, कुछ अपनों का साथ, नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
2: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
1: वाकई कुछ खास है आज,
2: कुछ खास है आज।

0: साथियों, माँ बनना एक स्त्री के जीवन का सबसे खूबसूरत एहसास माना जाता है, लेकिन जब गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी और प्रसव यानी लेबर के दौरान सही देखभाल और इलाज न मिले तो यही समय कई महिलाओं के लिए दर्द और संघर्ष का कारण भी बन सकता है।
1: और दोस्तों, आज का दिन यानी प्रसूति फेस्टुला उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फेस्टुला इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाने का काम करता है।
0: तो आइए दोस्तों, पहले बात करते हैं कि महिलाओं को ये बीमारी आखिर हो कैसे जाती है और क्या समस्याएं हैं जो इस बीमारी को इतना गंभीर बना देती है।

0: महिला जो अपने बच्चे के जन्म के बाद खुशियां और नया जीवन चाहती है, लेकिन इलाज और जागरूकता की कमी उसकी जिंदगी को संघर्ष में बदल देती है।
1: और सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि कई महिलाएं इस बीमारी के बारे में खुलकर बात भी नहीं कर पाती।
0: हाँ, लेकिन अच्छी बात ये है कि आज इस बीमारी का इलाज संभव है। अगर गर्भावस्था और प्रसव के दौरान महिलाओं को सही इलाज, पोषण, डॉक्टरों की देखभाल और सुरक्षित स्वास्थ्य सुविधाएं मिले तो इस समस्या को रोका भी जा सकता है।
1: और साथियों, आज का ये दिन हमें यही संदेश देता है कि महिलाओं का स्वास्थ्य सिर्फ उनका निजी विषय नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। हर माँ को सम्मान, सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए।
0: और याद रखिए, एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ समाज की सबसे मजबूत नींव होती है। तो साथियों, ये था हमारा सेगमेंट कुछ खास है आज।
2: कुछ ख्वाबों की बात,
3: कुछ अपनों का साथ,
2: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
3: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
2: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
3: वाकई कुछ खास है आज,
2: कुछ खास है आज।
0: साथियों, आप बढ़ेंगे अपने आज के विशेष सेगमेंट हेलो फ्रेंड्स की ओर और सुनेंगे आज सबसे पहले हमसे कौन से श्रोता साथी जुड़े हैं।
1: हेलो फ्रेंड्स।
4: हेलो फ्रेंड, नमस्कार।
1: जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
4: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
1: जी राकेश जी, कैसे हैं आप?
4: जी बहुत बढ़िया है।
1: जी, जैसा कि आपको पता है कि पूरे उत्तर भारत में हीट वेव का प्रकोप चल रहा है, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं?
4: जी जी, तो इससे ये बच सकते हैं कि जरूरत के हिसाब से हम सबसे पहले तो हमें बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए, और अगर दूर जाना भी हो तो अपने साथ जो छाता ले जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है इससे बचने का है, खूब पानी पीना चाहिए, और हो सके नींबू पानी इसके लिए बहुत उपयोगदार रहता है, और ठंडी ठंडी चीज जैसे पुदीना की चटनी होगी, ये चीज है, नारियल का पानी, ये चीज का सेवन करना चाहिए। माना कि हमारे हिमाचल में इतना शिमला जिले में तापमान ज्यादा नहीं होता, लेकिन 30 तक जो है हमारा तापमान पड़ता, फिर भी हम अपना जो है सावधानी हम बिल्कुल रखते हैं।
1: जी जी, बहुत खूब बहुत खूब। तो जैसा कि आपको पता है कि आज का हमारा सेगमेंट फरमाइशी गीतों पर आधारित है, तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप?
4: जी ब्लैक मैन का मूवी का गाना सुना दो, अक्षय लला जा ये वाला सुना दो।
1: जी, आपकी फरमाइश सुनाते हैं प्यारा सा गीत।
4: जी जी, धन्यवाद।

0: आइए साथियों, अब सुनते हैं अपने अगले श्रोता साथी को। हेलो
1: नताशा जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, और मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: जी प्रेम जी, तो जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि आजकल मौसम काफी गर्म हो गया है
1: जी,
0: तो आप क्या कहना चाहेंगे बाकी सब श्रोता साथियों से, कैसे अपना बचाव करें?
1: जी मैं बताना चाहूँगा, अगर ज्यादा गर्मी हो रही है तो सुबह शाम जो काम होता है ना अपना
0: जी,
1: वो सुबह शाम निपटा ले, और अगर गर्मी में निकलने की जरूरत पड़ रही है तो मतलब अपने कैप पहने हाथ में और पैर में, वो ऐसे मतलब सेफ्टी के साथ निकले, ताकि गर्मी, कुछ लोग क्या करते हैं गाड़ी पे जाते हैं तो पैर में भी काफी गर्मी लगती है, हवाएं तेज चलती है ना गर्म वाली
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: मतलब पाँव में भी मतलब ऐसे गर्म लू के झपटे लगते हैं, तो उनके पैरों के भी मतलब हमें सुरक्षा करनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा मतलब कम निकले गर्मी में।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने।
1: साथ में पानी पीते रहे, तरल पदार्थ का सेवन करें, और घर में रहकर मतलब कार्यक्रम सुने।
0: जी बिल्कुल, तो आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: ये फिल्म का नाम है करण अर्जुन, और गाने के बोले बंधन तो प्यार का बंधन है।
0: जी ठीक है
1: जी, मैं बताऊँ आपको, मैं मोबाइल ऐप से आपके कार्यक्रम सुन रहा हूँ
0: जी,
1: और बढ़िया अच्छा कार्यक्रम आप पेश कर रहे हो।
0: जी धन्यवाद, आकाशवाणी रामपुर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गीत।

0: हेलो फ्रेंड्स, हमारे अगले श्रोता हमसे कौन बात कर रहे हैं?
1: हेलो फ्रेंड, नमस्ते
0: जी। नमस्ते,
1: मैं पक्का कर पम्मी
0: जी। कैसे हैं आप?
1: हम ठीक है, आप बताइए। आकाशवाणी सब ठीक है
0: जी? हम भी बहुत बढ़िया। तो आकाशवाणी में आपका कॉल लगा है, कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत बढ़िया सर, मैंने आज के दिन फोन किया था, आपने कॉल उठाई थी आज के दिन भी।
0: जी जी जी। तो जैसा कि आपको पता है, आज फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम है, तो आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: नसीब फिल्म का। कौन सा है? नसीब फिल्म का।
0: नसीब फिल्म का, ठीक है, आपको सुनवाते हैं नसीब फिल्म का एक प्यारा सा गीत।
1: और बात सुनी सर।
0: जी जी।
1: ओला मेनू
0: जी बोलिए
1: जी। गाजी शादी हाजी गप्पा रहे करो साहब परवीन है
0: जी।
1: नहारी वाले इस्लाम में पक्का से जाइब बचा वाले होटल वाले
0: जी।
1: और नियाब छिपियाल में से
0: जी। आपसे को सुनवाते हैं प्यारा सा गीत।
1: ठीक, नमस्ते सर
0: जी। नमस्ते।

0: आइए साथियों, सुनते हैं अपने अगले श्रोता साथी को। हेलो फ्रेंड्स।
1: हेलो फ्रेंड्स
0: जी, कैसे हैं आप?
2: मैं बहुत अच्छा हूँ, जानना चाहता हूँ मैडम आप लोग कैसे हैं? आकाशवाणी रामपुर परिवार में सभी लोग कैसे हैं?
0: जी हम भी बहुत अच्छे हैं और आकाशवाणी रामपुर में भी सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज आपकी कॉल आकाशवाणी रामपुर में लगी है, क्या कहना चाहेंगे आप बढ़ती गर्मी के बारे में?
2: जी मैं कहना चाहूँगा कि इस समय काफी गर्मी पड़ रही है, तो बाहर को निकलें तो सर पर एक सूती कपड़ा डाल के ही निकलें, और कोई जरूरी काम है तो ही बाहर को निकलें। और मैम आपके प्रोग्राम में बराबर सुनता हूँ और काफी दिनों के बाद इस प्रोग्राम में कॉल लग रही है, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। आपका शुभ नाम जान सकता हूँ?
0: जी मैं तरुणा जोगेश।
2: जी आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है और प्रोग्राम करने का अंदाज भी बहुत प्यारा है आपका मैम।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
2: मैं अपना नाम बताना चाहूँगा क्योंकि मैंने अपना एड्रेस नहीं बताया।
0: जी जी बिल्कुल बताइए।
2: जिला रामपुर ग्राम

0: लिया गेट कॉलोनी से अमरजीत बात कर रहा हूँ मैं।
1: अच्छा अमरजीत जी, आपसे बात करके हमें बहुत खुशी हुई। तो बताइए कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आज आप?
0: मैं गीत सुनूंगा, फिल्म का नाम रहेगा दिल, और इसमें एक गीत है कि मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, ना जाने कहाँ दिल खो गया, ये सॉन्ग लगा देना मैं।
1: जी बिल्कुल, चलिए इन श्रोता साथी की फरमाइश पर सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फ्रेंड्स, हमारे अगले शो साथी हमसे कौन बात कर रहे हैं?
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार,
1: मैं गांव धनेटा सूतीपुरा से, जिला संभल से त्यागराम जी बोल रहा हूं।
0: जी कैसे हैं आप? हेलो,
1: आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: आपका प्रोग्राम सुनने से बहुत खुशी हो रही है, आज बड़ा सुकून मिल रहा है।
0: जी बहुत अच्छा लगा, हमारा एक कार्यक्रम भी आता है, चिट्ठी आई है तो आप चिट्ठी भी लिखा करिए हमें प्यारी प्यारी।
1: मैं सिलाई का काम करता हूँ, मैं सारे दिन लेडी चलता है मेरा।
0: जी जी जी, बहुत अच्छा लगा जान के,
1: लेडीज जेंट्स दोनों काम करता हूँ मैं।
0: जी तो अभी इतनी गर्मी पड़ रही है तो इसमें अपना ख्याल कैसे रख रहे हैं आप?
1: अपना ख्याल यही रख रहे हैं साहब, पानी पी रहे हैं
0: जी,
1: और ठंड में रहते हैं
0: जी जी,
1: और साहब नींबू पानी पीते रहते हैं
0: जी, बहुत खूब, और इस मौसम में धूप से निकलने से बहुत बचिए जी। जब
1: आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है आपका पेश करने का।
0: जी बहुत अच्छा लगा जान के। तो जैसा कि आपको पता है कि आज फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम है, तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप?
1: जी सनम बेवफा सुनवा दीजिए।
0: जी आपको सुनवाते हैं सनम बेवफा मूवी का ये प्यारा सा
1: टाइटल सॉन्ग।
0: जी जी जी, वही सुनवाएंगे।
1: नमस्कार
0: जी। नमस्कार।

0: हेलो फ्रेंड्स।
1: हेलो फ्रेंड्स
0: जी, कौन सी श्रोता साथी हमसे बात कर रहे हैं?
1: मैं रामपुर से निश्चल गंज आप बोल रही
0: हूँ। अच्छा रेखा जी, कैसी हैं आप?
1: हाँ मैम, हम तो ठीक है, आप बताइए आप कैसी हैं और रामपुर आकाशवाणी सब कैसे हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं और आकाशवाणी रामपुर में सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तो रेखा जी, आज हम बात कर रहे हैं बढ़ती गर्मी के ऊपर, तो क्या कहना चाहेंगी आप, कैसे कैसे हम अपना बचाव कर सकते हैं बढ़ती गर्मी से और कैसे स्वस्थ रह सकते हैं?
1: गर्मी तो इस बार भी पड़ रही है कि कोई
0: हिसाब
1: नहीं है।
0: जी बिल्कुल, तो कैसे
1: पानी ज्यादा पीना चाहिए, ठक्कर रखना चाहिए और ज्यादा धूप में नहीं निकलना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: जी, बहुत ही भयंकर पड़ रही है इस टाइम तो।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है। और
1: जी,
0: तो घर पर कैसे हैं सब?
1: सब ठीक है मैम,
0: सब स्वस्थ हैं।
1: जी
0: ठीक है। रेखा जी, आज आप कौन सा गीत सुनेंगी?
1: मैम उसका सुनवा दीजिएगा, सगाई फिल्मों का, ना ये जमीन थी ना ये आसमां था।
0: ठीक है ठीक है, चलिए इनकी पसंद का सुनते हैं ये गीत।

0: दोस्तों, ये था हमारा आज का सेगमेंट हेलो फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव की ओर।
1: तो साथियों, अब वक्त है आज के सवाल का सही जवाब जानने का। साथियों, हमने आपसे प्रोग्राम की शुरुआत में पूछा था, 1922 में मोहन जोदड़ो की खोज किस भारतीय पुरातत्व वेत्ता ने की थी, और इसका सही जवाब है राखाल दास बनर्जी। आइए जानते हैं उन सभी श्रोता साथियों के नाम जिन्होंने दिया है इस सवाल का सही जवाब।
0: आकाश रस्तोगी, शारुण अंसारी, राजवीर सिंह यादव, राजपाल गजभैया, सुदर्शन शाह, मोहम्मद रफीक पवार, धर्मेंद्र छिपा, दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, बालकरण वर्मा, बजेंद्र विश्वकर्मा, नानक खन्ना, अशोक सिंह, दिनेश वर्मा, गुरमीत सिंह, मीता, सुरेश जायसवाल, जॉन डी कैस्ट्रो, चौधरी राजवीर सिंह, भाई रफत साहब, किशन सपकाल, प्रेम सिंह वारवाल, हीरामणि वर्मा, भेरूलाल वाक्तरिया धाकड़, मोहम्मद जईद अली, उत्तम कुमार भगत, अजीत कसाना, विजय सिंह महोबिया, नबी हसन अब्बासी, नारायण लाल साहू, देवशंकर तामूरिया दिग्दर्शन गौड़, राधेश्याम पांडे, राजकुमार रामकुमार रेवाड़, सुनील पाठक, बलवंत कुमार वर्मा, प्रवीण चौहान, मास्टर विठल सुरोशे, अशोक दले, विमल सक्सेना भारती, मिसबा शमशी, सोहन जोशी, अभिजीत गवाकर, शाहजी बोटके, अल्ताफ उजरे, मोहम्मद आमिर अंसारी, जगदीश धाकर नायमा, मोतीलाल भीमटे, फागोराम यादव, संजय दिंगिया, पुंजाजी नवाकर, सुरेश खन्ना, सिद्धार्थ गोंडने, निसार सलमानी, हाजी गफ्फार खान, दिलशाद हुसैन, मसरूर हसन, गजन येले दरियापुर, मोहम्मद अफजल ताज, रवि रस्तोगी, हल्के जयपाल यादव, जीशान वारसी, शकील अहमद इदरीसी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, दीपेश वर्मा, अरविंद कुमार, कमल बालूजा, इशक अहमद, लाल मोहम्मद अंसारी, रवि कुमार, मुकेश कश्यप, नितेश कुमार देवांगन, गंगा सिंह रावत, दुर्गा राम साहू, विनोद मूढ़त और नजमल हुडा जावेद। आप सभी को सहयोग देने की बहुत बहुत बधाई।
1: तो दोस्तों, अब वक्त है आपसे विदा लेने का। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा बताना ना भूलें हमारे इस पते पर। हमारा पता है, कार्यक्रम चिट्ठी आई है युववाणी अनुभाग द्वारा, केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन संख्या है 244901। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है patramila@rampur.gmail.com।
0: साथ ही साथ आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमें अपने संदेश भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9410087876। दोस्तों, आपको बता दें, कल है दिन रविवार और कल हमारा सेगमेंट आएगा फिल्मी पिटारा। तो अब लेते हैं आपसे विदा इसी उम्मीद के साथ कि आप हमसे ऐसे जुड़े रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे।
1: तो साथियों, कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए साथी के साथ। तब तक के लिए तरुणा जोगेश
0: और नतांश अग्रवाल को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार, नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। आपके साथ थे नतांश अग्रवाल और तरुणा जोगेश। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ एवं एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर 6 बजने वाले हैं। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा किया और मदर टेरेसा की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: रोजगार मेले में आज 51,000 से भी अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात में वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। श्री गोयल ने कहा कि 33,600 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन वाली भारत औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घनमीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। मौसम विभाग ने केरलम में बुधवार तक अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त करते हुए 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज दक्षिण पश्चिम अरब सागर के कुछ हिस्सों और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 6:05 हुए हैं। अब सुनिए सूचना खोए हुए व्यक्ति के संबंध में। प्रभारी थाना निरीक्षक जनपद संभल से हमें सूचित करते हैं कि इनम पुत्री तसव्वुर ग्राम राजा गालिबपुर असमोली जनपद संभल, जिनकी आयु 18 वर्ष है, 5 अप्रैल 2026 से गुमशुदा हैं। इनका कद 4 फुट 5 इंच। इन्होंने हरे रंग का सूट, शलवार, पैरों में चप्पल पहन रखी है। इनके काले लंबे बाल हैं। जिस किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त हो, कृपया इस पते पर सूचित करें। तसव्वुर पुत्र समरेज निवासी ग्राम राजा गालिबपुर थाना स्मोली जनपद संभल। सूचित करने के लिए मोबाइल नंबर इस प्रकार है 9258110989। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए 9258110989।

गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में एक और सूचना सुनिए। प्रभारी थाना निरीक्षक धनारी संभल से हमें सूचित करते हैं कि मधु, जिनकी आयु जिनका कद 5 फुट है, 26 अप्रैल 2026 से गुमशुदा हैं। इनका रंग गेहुआ है, इन्होंने साड़ी पहन रखी है। जिस किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त हो, कृपया इस पते पर सूचित करें। किशन पाल पुत्र शिशुपाल, भैमापुर धनारी संभल। सूचित करने के लिए मोबाइल नंबर इस प्रकार है 7535871576। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए 7535871576।

0: गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में और एक और सूचना सुनिए। रंजना पत्नी वीरेंद्र निवासी ग्राम रहौली थाना कुड़ फतेहगढ़ जनपद संभल से सूचित करते हैं कि रंजना पत्नी वीरेंद्र 6/5/2026 से गुमशुदा हैं। इनका कद 5 फिट, रंग सांवला है, आयु 22 वर्ष, इन्होंने साड़ी पहन रखी है। जिस किसी व्यक्ति को रंजना पत्नी वीरेंद्र के संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त हो, कृपया इस पते पर सूचित करें वीरेंद्र पुत्र मुन्नालाल निवासी ग्राम रहौली थाना कुड़ फतेहगढ़ संभल। सूचित करने के लिए मोबाइल नंबर इस प्रकार है 7060508223। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए 7060508223। गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में सूचना समाप्त हुई।
1: बंदूक से निकली गोली का कोई नाम, कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता। जब ये गोली लगती है किसी इंसान को तो घायल होती है मानवता। छूट जाता है एक बचपन, वीरान हो जाता है किसी का जीवन, टूट जाती है किसी के बुढ़ापे की लाठी, बुझता है एक दीपक उम्मीद का। अपने इस देश में बारूद का ढेर नहीं, फूलों का चमन महकाएं, जीवन के हर रंग से इंद्रधनुष बनाएं।

0: फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बनाएं, हुब्बे वतन के पौधे इसमें नए लगाएं।
1: मिल मिल के हम तराने हुब्बे वतन के गाएं, बुलबुल हैं जिस चमन के गीत उस चमन के गाएं।
0: हम सब भी मिलकर गीत गाएं
1: अमन के भाईचारे के।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं महालक्ष्मी को फिल्म सुर में।

फिल्म हमराज में अलका याग्निक के गायसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सब भैया बहनन को आपकी बहन दीपा
1: और आपके भैया अखिलेश की
0: राम राम, राम। और सुना बो अखिलेश भैया, कैसे हो आप?
1: हाँ दीपा बहन, हम ठीक हैं और आशा करते हैं कि हमारे सभी किसान साथी कुशलता से होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने सभी काम, चाहे वो खेती बाड़ी के हों या पशुपालन के हों या अन्य कोई काम हो, समय रहते और अच्छी तरीके से कर रहे होंगे।
0: बिल्कुल अखिलेश भैया, इन दिनों गाँव देहात में खेतन की रौनक अलग ही दिखाई दे रही है। कहीं खेत तैयार हो रहे हैं तो कहीं किसान भाई बीज खाद व्यवस्था में जुटे हुए हैं। ऐसे में मक्का की खेती की चर्चा खूब सुनाई दे रही है भैया।
1: बिल्कुल सही कहा आपने दीपा बहन, मक्का अब केवल पशुओं के चारे तक सीमित नहीं है, अब इसका इस्तेमाल खाने पीने के सामान, दाने, भुट्टे और कई उद्योगों में भी होने लगा है। यही वजह है कि किसान भाई इसकी खेती में अब रुचि दिखा रहे हैं।
0: अखिलेश भैया, मक्का की फसल की सबसे अच्छी बात पता है क्या है?
1: वो कहा,
0: वो कम समय में तैयार हो जाती है और कई इलाकों की मिट्टी में आसानी से हो सकती है। यही कारण है कि छोटे किसान भी इसकी खेती अपना सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं।
1: हाँ दीपा बहन, मक्का की अच्छी पैदावार के लिए खेत की तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी है। खेत की मिट्टी भुरभुरी और साफ होनी चाहिए ताकि बीज अच्छे से जम सके। खेत में पानी की जो निकासी है उसकी व्यवस्था ठीक रहनी चाहिए।
0: भैया, गांव में कई किसान भाई अच्छी किस्म को बीज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सही बीज चुनन के लिए फसल मजबूत होती है और दाने भी अच्छे पड़ते हैं।
1: बिल्कुल दीपा बहन, समय पर बुवाई करना भी बहुत जरूरी है। अगर मौसम और नमी को ध्यान में रखकर बुवाई की जाए तो अंकुरण अच्छा होता है और पौधे को जो है तेजी से बढ़वार मिलती है।
0: बिल्कुल अखिलेश भैया, कई किसान भाई अब लाइन से बुवाइयों कर रहे हैं, इससे खेत में निराई गुड़ाई आसान हो जाती है और पौधों को बराबर जगह मिल जाती है।
1: हाँ दीपा बहन, मक्का की फसल में खाद और पोषण का भी बड़ा महत्व होता है। किसान भाई खेत की जरूरत के हिसाब से खाद डालें तो पौधे हरे भरे रहते हैं और बालियां अच्छी बनती हैं।

0: हाँ दीपा बहन, मक्का की हरी फसल पशुओं के चारे के रूप में भी बहुत काम आती है। यही वजह है कि पशुपालन करने वाले किसान भी इसकी खेती को लाभकारी मानते हैं।
1: भैया, बरसात के मौसम में खेत में पानी भरन की समस्या कई बार दिखाई देती है। ऐसे में किसान भैया को खेत से पानी निकालने की व्यवस्था पहले रखनी पड़ती है।
0: बिल्कुल दीपा बहन, ज़्यादा पानी फसल को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए खेत में संतुलित नमी बनाए रखना बहुत ही जरूरी है और साथ ही आवश्यकता से अधिक पानी निकालने के लिए जल निकासी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए।
1: बिल्कुल अखिलेश भैया, आप गांव में भुंटे बेचन को काम भी बढ़ रहे हैं। सड़क किनारे और बाजार में भुनो भुंटा बिकते हैं ना, तो जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है और इससे कहा है कि किसान को सीधा फायदा ही रहा है।
0: हाँ दीपा बहन, मक्का का उपयोग अब कई तरह के खाद्य पदार्थों में भी होने लगा है। दाने का दलिया, आटा और पशु आहार में इसका इस्तेमाल बढ़ने लगा है। इसकी मांग भी उसी तरीके से बढ़ती जा रही है।
1: अखिलेश भैया, कई बार नौजवान किसान भैया ना अब नई तकनीक को अपना रहे हैं और नई तकनीक के साथ खेती कर रहे हैं। मोबाइल और इंटरनेट के जानकारी लेकर भी नई किस्मों के बीज आधुनिक तरीके से सीख रहे हैं और कैसे खेती करना चाहिए जो उन्हें आसान ही रहे।
0: बिल्कुल सही कहा दीपा बहन, अब किसान भाई मौसम की जानकारी भी मोबाइल पर देख लेते हैं और इससे बुवाई और सिंचाई सही समय पर समझने में उन्हें मदद मिलती है।
1: अखिलेश भैया, गांव की महिलाएं भी खेती में काम बराबर को हाथ बटाए रही हैं। खेत की देखभाल से लेकर फसल तैयार होने तक पूरी परिवार मेहनत करत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आजकल महिलाओं पीछे ना हैं, खूब काम में खेतीबाड़ी में हाथ अच्छे से बटाए रही हैं।
0: हाँ दीपा बहन, मेहनत और धैर्य खेती की सबसे बड़ी ताकत है। किसान भाई अगर समय से पर खेत में देखभाल करेंगे तो मक्का की फसल से अच्छी पैदावार लेंगे और उन्हें एक अच्छी आमदनी मिलेगी जिससे उनका सहारा बना रहेगा।
1: अखिलेश भैया, कई किसान भैया ना अब मक्का की फसल को सीधे बेचने की बजाय उसको भंडारण भी कर रहे हैं ताकि सही समय पर अच्छा दाम मिल सके।
0: बिल्कुल दीपा बहन, सही तरीके से सुखाकर भंडारण किया जाए तो दाने लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं और नुकसान कम होता है।
1: हाँ भैया, खेती केवल मेहनत को ही काम ना है बल्कि समझदारी को काम है। मौसम, मिट्टी को समय मौसम कैसो है, मिट्टी कैसी है, समय को ध्यान रखें ना, तो किसान भैया बेहतर परिणाम ले सकते हैं।
0: हाँ दीपा बहन, गांव की खुशहाली खेत से जुड़ी होती है। जब फसल अच्छी होती है तो पूरे गांव में रौनक दिखाई देती है और खुशहाली रहती है।
1: किसान साथियों, मक्का की खेती सही देखभाल और मेहनत से अच्छी आमदनी को जरिया बन सकती है। जरूरत है समय पर तैयारी करने की और जागरूक होने की।
0: और सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसान भाई नई जानकारी लेते रहें और अनुभवी लोगों से सीखते रहें, यदि सीख खेती को जो है मजबूत बनाती है।
1: तो किसान साथियों, मेहनत, सही योजना और नई सोच के साथ मक्का की खेती गांव की तरक्की को अच्छा आधार बन सकती है।
0: तो दीपा बहन, ये तो बात रही मक्का की खेती और खेतीबाड़ी के साथ साथ हमारे लगभग सभी किसान साथी जो हैं पशुपालन करते हैं।
1: हाँ भैया बिल्कुल,
0: तो पशुओं के लिए भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, उनसे अच्छा दूध उत्पादन लेने के लिए हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है।
1: हाँ भैया, तो जाई बाप है, आज हम एक भेंटवार्ता अपने भैया बहन को सुनवाएंगे। पशुओं में संतुलित आहार को महत्व जानकारी देंगे डॉक्टर दीपक कुमार और जानकारी लई है हमारे भैया पंकज ने।
2: आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर दीपक कुमार जी, जो विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्र पीलीभीत में। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है पशुओं में संतुलित आहार का महत्व। पशुओं में संतुलित आहार क्या है?
3: अगर हम बात करें पशु में संतुलित आहार, तो संतुलित आहार का मतलब ये होता है, इस संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज मिश्रण तथा विटामिन का एक सही अनुपात होता है, जो कि हमारे पशुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
2: जी सर, तो सर इससे क्या क्या लाभ होते हैं हमारे पशुओं को?
3: अब हम इससे लाभ की बात करें तो सबसे पहले खिलाने से हमारा पशु जो है स्वस्थ रहता है।
2: जी,
3: जब हमारा पशु स्वस्थ रहेगा तो हमें दुनिया भर का जो खर्चा होता है डॉक्टर के पास जाने का, उससे हमारी जो है सेविंग बच जाती है।
2: जी सर,
3: दूसरा फायदा ये होता है कि हमारा पशु का दूध का उत्पादन बढ़ता है।
2: जी सर,
3: जब दूध का उत्पादन बढ़ेगा तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा लाभ होगा।
2: जी,
3: और तीसरा फायदा इससे क्या होता है कि हमारे पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।
2: जी,
3: जब पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी तो हमारा पशु कम बीमार पड़ेगा।
2: हम संतुलित आहार में आपने जैसे कहा, तो इसमें अगर हम दाने की मात्रा की बात करें तो लगभग ये कितने कितने अनुपात में होना चाहिए?
3: हमारे पशु में देखो, संतुलित आहार के अंदर हमारे हरा चारा, सूखा चारा, दाना, खनिज मिश्रण

0: जी
1: और विटामिन्स होना अति आवश्यक है।
0: जी
1: अब हम बात करेंगे दाने की, तो जो हमारे पशु होते हैं
0: जी
1: तो उन पशुओं को अलग अलग रूप से हमें दाना देना पड़ता है।
0: जी
1: जैसे कि हमारा खाली पशु है
0: जी
1: जो ना तो ग्यावन है ना वो दूध दे रहा है, तो उसके लिए हमें अलग तरीके से दाना देना पड़ता है।
0: जी
1: अब ये दाना होता क्या है,
0: जी
1: सर्वप्रथम तो हम इस पर बात कर लेते हैं कि
0: जी
1: दाना क्या होता है। दाने के अंदर एक मिश्रण होता है प्रोटीन युक्त चीजों का,
0: जी
1: जैसे जिसके अंदर खल हो, ठीक है, सस्ती वाली जो भी दाल हो
0: जी
1: उसके अंदर वो होनी चाहिए,
0: जी
1: साथ ही साथ में उसके अंदर चूनी चोकर भी
0: जी
1: होना चाहिए।
0: जी
1: अब हम बात कर रहे थे कि जो दो तीन प्रकार से ये दाना दिया जाता है, खाली पशु के लिए अलग दिया जाता है और
0: जी
1: दुधारू पशु जो दूध दे रहा है
0: जी सर
1: उसके लिए दाना अलग दिया जाता है।
0: जी
1: अब जो हमारा जो खाली पशु है तो खाली उसको जीवन निर्वाह के लिए हमें आधे से 1 किलोग्राम प्रतिदिन उसको दाना देना अति आवश्यक है।
0: जी
1: अगर हम ये दाना इतना देते रहेंगे तो हमारा पशु स्वस्थ रहेगा।
0: जी
1: और जो पशु दूध दे रहा है, जैसे कि गाय का पशु है, तो उसकी दाने देने की जो मात्रा होती है वो अलग होती है,
0: जी
1: और जो भैंस का पशु है उसके दाने देने की मात्रा अलग होती है।
0: जी
1: जैसे कि पशु का हम बात करें, हमारी एक गाय है 6 लीटर दूध देती है,
0: जी
1: जब वो 6 लीटर दूध देगी तो प्रति एक 3 लीटर दूध पे 1 किलोग्राम दाना देना अति आवश्यक है।
0: जी
1: इसी प्रकार जितना पशु दूध देता है उसी के हिसाब से इसकी मात्रा बढ़ा ली जाती है।
0: जी
1: और जो भैंस का पशु होता है उसमें प्रति एक 2.5 लीटर दूध पे 1 किलोग्राम दाना देना अति आवश्यक है।
0: जी
1: तो इस तरीके से हम अपने पशु को दाना देंगे तो हमारा पशु स्वस्थ रहेगा और उसका दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा।
0: जी मौसम के हिसाब से भी इसमें दाने की मात्रा दी जाती है। जैसे मान लीजिए इस समय गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में जो दाने की मात्रा होगी वो कुछ और होगी, और जब जाड़ों का समय जब होगा तो उसकी मात्रा कुछ और होगी।
1: हाँ, क्योंकि क्या होता है कि जो गर्मी का मौसम होता है तो
0: जी
1: उसमें थोड़ा सा ये बैलेंस दे देना चाहिए। अगर जैसे जाड़े का मौसम आता है तो उस
0: जी
1: टाइम पे क्या होता है कि पशु को जो एनर्जी होती है
0: जी
1: वो पशु के हीट जनरेट में, मतलब कि गर्मी पैदा करने में भी उसकी एनर्जी का नुकसान होता है,
0: जी
1: तो उसके लिए भी थोड़ा सा आप कोशिश करें कि 0.5 किलोग्राम दाना और बढ़ा दीजिए।
0: तो इस समय डॉक्टर साहब जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, ज्यादातर हम लोग भूसा की सानी कर देते हैं शाम को, तो इस समय हम किन किन बातों को ध्यान रखें पशु के आहार में?
1: देखो, जब अगर हमारे पास किसी कारणवश अगर हमारे पास हरा चारा नहीं है
0: जी
1: और हम भूसा खिला रहे हैं,
0: जी
1: तो जो मैंने बताया है कि आपको इतना दाना तो उसको देना ही देना है,
0: जी
1: उसके अतिरिक्त अपने पशु को मिनरल मिक्सर या खनिज मिश्रण देना जरूरी है। अब
0: जी
1: ये कितना देना जरूरी है, अगर हमारा एक बैक्स पशु है, मतलब बड़ा पशु
0: जी
1: है ना, गाय का है या भैंस का है, तो
0: जी
1: उसको 50 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से तो खनिज मिश्रण देना है,
0: अच्छा
1: साथ ही साथ में विटामिन्स। ये विटामिन्स अगर आप पशु को देंगे, विटामिन्स के लिए भी आजकल मार्केट में जो है बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे एक आता है मल्टीविटामिन सिरप आता है,
0: जी
1: तो उसके अंदर विटामिन ए, विटामिन ई, डी, इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है कि जो कि पशु के लिए बहुत ही आवश्यक है।
0: जी
1: जब इससे हम इस पशु को खिलाएंगे तो उसके दूध की उत्पादन क्षमता पे भी फर्क पड़ता है,
0: जी
1: क्योंकि हमें जो हरा चारा है, अगर हमारे पास हरा चारा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है
0: जी
1: तो विटामिन्स तो हमारे अधिकतर जो है हरे चारे से ही आते हैं।
0: जी हरे चारे में इस समय हमें क्या क्या देना चाहिए गर्मी के मौसम में अगर
1: देखो,
0: हम?
1: अभी जो मौसम है
0: जी
1: इसमें हम मक्का खिला सकते हैं,
0: जी मका
1: ठीक है, और अभी जो आने वाला मौसम है थोड़ा सा, अभी इस टाइम बुवाई भी चल चुकी है, कुछ
0: जी
1: जगह जो है नेपियर हाइब्रिड भी चल रहा है,
0: जी
1: तो अपने पशु को जो हरे चारे में नेपियर हाइब्रिड जरूर दें। और उसके बाद अब जो मौसम है सोरघम का है, जो चरी बाजरे का टाइम आ चुका
0: हाँ
1: है, तो अपने
0: जी
1: पशु को चरी बाजरा भी खिलाएं।
0: जी
1: अब एक पशु को जो है हरा चारा लगभग 25 से 30 किलोग्राम प्रतिदिन खिलाना चाहिए,
0: जी
1: जिससे कि पशु आपका स्वस्थ रहे। और साथ ही साथ में सूखा चारा, सूखा चारा भी अति आवश्यक है। सूखा चारा इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि अगर आप पशु को हरा चारा ही खिला देंगे
0: जी
1: तो उसकी अपाचे की समस्या हो जाएगी, मतलब
0: जी
1: अफारा हो
0: अफारा
1: जाएगा।
0: हो जाएगा। जी हम एक बात आपसे और पूछना चाहेंगे, जैसे हम सुबह को पशु को लगभग पानी की अगर हम बात करें तो कितना पानी हमें दिन में देना चाहिए, और फिर हमें जो उनका जो खनिज लवण है वो किस प्रकार से उन्हें खिलाना चाहिए?
1: तो हम जैसे बात करें तो हमारे पशु को जो पानी है
0: जी
1: एक दिन में हमारे पशु को लगभग, अब वो भी उसकी नस्ल के ऊपर डिपेंड
0: जी
1: करता है,
0: बिल्कुल
1: अगर पशु उसका जो शरीर भारी पशु है,
0: जी
1: मतलब कि 400 से या 500 किलोग्राम का है,
0: जी
1: तो उस पशु को लगभग आपको 20 से 30 लीटर पानी पूरे दिन में जरूर पिलाना है।
0: जी
1: और साथ ही साथ में जो खनिज मिश्रण है वो आप या तो उसको 2 बार दिन
0: जी
1: में खिलाएं,
0: जी
1: मतलब कि हर बार जब आप जो पशु को दाना खिलाएंगे तो उस
0: जी
1: दाने में मिक्स कर दें और
0: अच्छा
1: पशु खा लेगा, उसको 25 ग्राम एक बार और 25 ग्राम एक बार, टोटल 50 ग्राम प्रतिदिन अपने पशु का हो जाएगा।
0: जी
1: साथ ही साथ में जो हमारा पशु होता
0: जी
1: है ना, उसको जो है

0: 40 ग्राम प्रतिदिन नमक देना जरूरी है,
1: अच्छा, तो
0: ठीक
1: हम
0: है।
1: गर्मी में भी नमक दे सकते हैं?
0: हाँ, नमक तो हमेशा ही दे के चलना है,
1: अच्छा
0: और साथ ही साथ में कैल्शियम।
1: जी,
0: इस कैल्शियम का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि जो कैल्शियम होती है जो दुधारू पशु होता है, क्योंकि उसके जो दूध देता है पशु, तो
1: जी
0: दूध के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम निकलती है।
1: जी सर
0: अगर आप पशु को बाहर से कैल्शियम नहीं देंगे
1: जी
0: तो कैल्शियम की कमी आ
1: जी
0: जाएगी,
1: बिल्कुल।
0: तो जब कैल्शियम की कमी आ जाएगी तो पशु दूध कम कर देगा।
1: जब कैल्शियम कमी हो जाती है तो कुछ लक्षण और भी दिखाई देते हैं हमारे पशु में?
0: हाँ, अगर जैसे कि कैल्शियम की कमी है
1: जी
0: तो बहुत लोग बोलते हैं गांव में कि हमारे पशुओं को फूल आ रहा है,
1: जी हाँ
0: ठीक है।
1: हाँ
0: जो फूल आने की समस्या का जो भी बहुत बड़ा कारण है वो
1: जी
0: है कैल्शियम की कमी।
1: जी
0: कमी को बोलते हैं हाइपोकैल्शीमिया।
1: जी
0: अगर ये पशु में अंदर कैल्शियम की कमी रहेगी तो फूल आ जाएगा, जिससे कि पशु को बिहाने में दिक्कत होती है,
1: जी
0: बिहा लेता है पशु, तो
1: जी
0: उसके बाद जो है उसको दूध वाला बुखार भी हो जाता है।
1: इन चीज़ों को इसमें ध्यान देना चाहिए। एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाहेंगे, जो हमारा जैसे काला पशु होता है और एक दूसरे रंग के जो पशु हमारे होते हैं सफ़ेद, तो इनमें भी संतुलित आहार का अलग
0: नहीं, इसमें
1: वो
0: ऐसा
1: होता है?
0: ऐसा ऐसा कोई फर्क नहीं
1: ऐसा ये
0: पड़ता।
1: नहीं होता है कि काले पशु को हम संतुलित आहार इतना देना चाहिए या हमारे जो
0: नहीं
1: गाय
0: नहीं
1: है हमें उस
0: गाय का और भैंस का अलग हो सकता है, लेकिन जो गाय गाय है
1: जी
0: उसका अलग नहीं
1: उसका अलग
0: होता।
1: नहीं हो सकता
0: जी,
1: जी
0: क्योंकि ताना की जो भैंस होती है उसके दूध की बनावट अलग होती है, और जो गाय का दूध होता है उसकी
1: जी
0: बनावट अलग होती है।
1: जी
0: जैसे कि हम बात करें, गाय के दूध में जो वसा की मात्रा कम होती है
1: जी
0: और भैंस के दूध में वसा की मात्रा
1: जी
0: अधिक होती है,
1: जी
0: मतलब भैंस के दूध में ठोस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है और गाय के दूध के अंदर ठोस पदार्थ की मात्रा कम
1: जी
0: होती है।
1: जी विटामिन, तो डॉक्टर साहब विटामिन कैसे काम करता है मतलब?
0: विटामिन्स भी एक तरीके से हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, हमारे पशु के लिए।
1: जी
0: उसमें ये एक तरीके से सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। इसका काम कैसा होता है, देखो, जैसे कि हम होता है हमारे लिए भी जैसे दिक्कत, बहुत सारी दिक्कत आ जाती है, जैसे जैसे हम हमारे मुंह में अल्सर हो जाता है,
1: जी
0: ठीक है।
1: जी
0: तो अल्सर के अंदर बीकासूल खाते हैं,
1: जी
0: तो बीकासूल खाने से क्या होता है कि हमारा शरीर के जो जो मुंह का अल्सर होता है वो
1: जी
0: ठीक हो जाता है। वो ठीक इस वजह से हो जाता है क्योंकि अंदर जाके हमारी जो बहुत सारी शारीरिक क्रियाएं होती हैं
1: जी
0: उसको ठीक करता है।
1: जी
0: उसी प्रकार वो काम भी जाके जो पशुओं को भी हम विटामिन्स खिलाएंगे तो पशु के अंदर भी बहुत सारी क्रियाएं चलती रहती हैं, वो
1: जी
0: क्रियाएं अच्छे रूप से चलती हैं और निरंतर चलेंगे, तो जिससे क्या होगा, हमारा पशु स्वस्थ रहेगा।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान साथियों को पशुओं में संतुलित आहार का क्या महत्व है और उसके क्या-क्या लाभ हैं इस पर एक विस्तार से जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी हमारे किसान साथियों को पसंद आई होगी और इसको लाभ उठाएंगे। और आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी जो हमारे किसान साथी भेंटवार्ता सुन रहे हैं, बाकू विषय हो पशुओं में संतुलित आहार का महत्व, जय विषय पर बातचीत के माध्यम से जानकारी दे रहे थे। आप थे डॉक्टर दीपक कुमार, आपसे बातचीत कर जानकारी करा रहे थे हमारे भैया पंकज कुमार। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी किसान साथियों ने जानकारी बहुत अच्छी तरीका से बहुत ध्यान से सुनी होगी और जय जानकारी को पूर्व पूर्व लाभ उठाएंगे। और दीपक बहन, जब बात लाभ की आते हैं तो मन
0: हाँ
2: करता है कि कुछ गानों बजानों है जाए।
3: बिल्कुल भैया, और हम समझ रहे हैं और हम अपने भैया बहन को सुनवाएंगे अब एक अच्छे से लोकगीत। लोकगीत के बोल हैं नीली मेरी गोटी, जिसे गाओ है सोनिया व अमित कुमार ने।

0: हम उम्मीद करते हैं कि जो लोकगीत सुन के हमारे किसान साथी इनको मनोरंजन है वो भरपूर और जो उनकी पूरी दिन की थकान है वो है गई होगी दूर। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हम अपने किसान साथियों के लिए एक सुनवाते हैं परिचर्चा। विषय है कृषकों के लिए लाभकारी सरकारी योजनाएं। जाय विषय पर बातचीत के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं आप हैं नजमुल हसन, श्री सुरेश पाल, साहब हुसैन और आपसे बातचीत कर जानकारी करा रहे हैं हमारे भैया पंकज कुमार।
1: किसान साथियों, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रगतिशील कृषक श्री नजमुल हसन, श्री सवाब हुसैन और श्री सुरेश पाल जी। आप तीनों लोगों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, किसान साथियों का यही प्रयास रहते हैं हमारा जो मुख्य काम है खेती बाड़ी, हम उसको ठीक प्रकार से करें, नई नई तकनीकी से करें जिससे कि कम लागत में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होए। साथियों, बात करें हम कृषि क्षेत्र में, तो कृषि क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं। उद्देश्य हमारे सरकार को है कि हम किसानों की आय बढ़ानो और लागत को कम करनो और हमारे जोखिम को कम करना है। नजमुल हसन जी, आप कहाँ रहते हो साहब?
2: नवाबगंज।
1: आपके परिवार में कौन कौन है?
2: मैं हूँ, मेरी बीवी है, तीन बच्चे हैं।
1: अच्छा, तो आप कहाँ तक पढ़े हुए हो साहब?
2: हाई स्कूल।
1: आपने फिर हाई स्कूल के बाद पढ़ाई क्यों नहीं करी?
2: खेती बाड़ी में लग गए घर पे
1: जी,
2: ट्रैक्टर वोटर है उसे चलाने लगे।
1: उसके बाद मतलब पढ़ाई नहीं करी आपने, आप खेती बाड़ी करने लगे। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं?
2: हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं।
1: हाँ, बच्चे बड़ों का आदर करना सीखें, ये चीज हम पढ़ाई में अपने बच्चों को सिखाते हैं। नजमुल हसन जी, खेती बाड़ी करते हो तो हमारी सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है, हर क्षेत्र में हर उस पर सब्सिडी दे रही है, जिनका उद्देश्य सरकार का कि हम लोग खुशहाल रहें। तो आपने कौन कौन सी योजनाओं को लाभ ले रहे हैं आप
2: सरकार से? हम ट्रैक्टर सब्सिडी पे हमें छूट पे है
1: जी,
2: सरकार का काफी लाभ मिल रहा है हमें
1: जी।
2: यंत्र पे है, जैसे रोटावेटर है, स्प्रे मशीन है, ये सरकार के लाभ में हमें छूट पे सब्सिडी पे मिल रही है
1: जी।
2: सरकार अनुदान दे रही है इस पे
1: जी। क्योंकि हम देखते नजमुल हसन जी कि पुराने जमाने के जो हमारे किसान साथी थे वे खेती करते हैं, आज भी कर रहे हैं, लेकिन हम देखते वे हमारे दादा परदादा सुबह 3 बजे 2 बजे उठ जाते और हल लेके खेत में जाते और कोई फसल बो रहे हैं, बाकी तैयारी के लिए वे 7-8 दिन लग जाते हैं क्योंकि
2: समय लग जाता था,
1: समय बहुत लगते। आज के समय हम देख रहे हैं कि हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे कृषि के क्षेत्र में यंत्र
2: दिए,
1: ऐसा कोई यंत्र ना है जो हमारे इस समय हमारे
2: सब यंत्र सब्सिडी छूट पे हैं
1: जी।
2: हाँ, सरकार
1: तो आपने कौन सी योजना को लाभ लो हमारी सरकार से?
2: हमने रोटावेटर लिया है।
1: अच्छा, तो आपको हम सब्सिडी मिली?
2: सब्सिडी मिली हमें सरकार से
1: जी।
2: थ्रेसर लिया है।
1: अच्छा,
2: गेहूँ खाने का
1: जी,
2: सब्सिडी मिली सरकार से हमें
1: जी। और आपने,
2: और जैसे हम ब्लॉक पे जाते हैं जहाँ, तो हमें बीज भी छूट पर देती है सरकार, दवाई भी छूट पर देती है
1: जी जी, क्योंकि प्रमाणित बीज जो है वो हमें बोना चाहिए।
2: हाँ, बोना चाहिए
1: जी,
2: और छूट पे मिलता है, अनुदान पे मिलता है
1: जी। बहुत सारी योजनाएं

0: हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है,
1: हाँ, फसल बीमा योजना
0: तो इस
1: है,
0: योजना के बारे में आप क्या जानते हो भैया?
1: ऑनलाइन बीमा होता है,
0: जी
1: ऑनलाइन फसल बीमा करा दो, कोई नुकसान है फसल में, पाला
0: जी
1: है या कोई कोहरा है या ओला गिर जाए या बारिश आ जाए, तो उस पर किस पैसा दे देता है सरकार, पैसा दे देती है हमें किसानों को, सरकार
0: जी
1: की,
0: सरकार की
1: किसान के
0: योजना है
1: लिए।
0: तो जिसको लाभ आप ले रहे हो। खेती में आजकल देख रहे हैं हम कि हमारे किसान सम्मान निधि आ रही है,
1: हाँ, किसान सम्मान
0: आपको
1: निधि आ
0: किसान
1: रही
0: सम्मान
1: है।
0: निधि मिल रही है,
1: हाँ, मिल रही किसान सम्मान निधि।
0: तो आपके बराबर में हमारे सुरेश पाल ताऊ जी हैं। आपकी कितनी उम्र होगी?
2: हमारी उम्र ऐसी होगी 50-60 साल।
0: 60 साल की उम्र है आपकी। सुरेश पाल ताऊ जी, आपको तो बहुत तजुर्बा होना चाहिए, लेकिन इस समय पहले सब खेती करते और आज खेती कर रहे हो, आप का परिवर्तन देख रहे हो कि इतनी योजनाएं जो आज सरकार ने हमारी चला रखी हैं आज के समय में, क्या इतनी योजनाएं पहले चलती, इतने
2: ना
0: यंत्र
2: ना
0: हमारे
2: ना
0: खेती बाड़ी में
2: ना ना,
0: है,
2: पहले कुछ नहीं था।
0: तो आप कैसे
2: अब
0: खेती करते जरा बताइए थोड़ा सा।
2: खेती पहले का हर जोतते थे, अब हर
0: जी
2: चलना ट्रैक्टर है घर घर, और जिसके पास ना, अब मजदूरी भी जुता लेता।
0: अब से इतने साल पहले से परिवर्तन में हुआ है कि साहब बहुत सारे यंत्र आ
2: जे
0: गए
2: छः
0: हैं।
2: सात साल हो गए समझ लो, तब से ज्यादा सरकार मतलब योजना लिखा दी है।
0: जी
2: अब जैसे ब्लॉक जाओ, ट्यूबवेल लिखवाया, वो बोरिंग
0: जी
2: लिखवाया, वो बोरिंग भी करवा लिया।
0: जी हम लोग इंजन चलाते, आज भी चल रहा है इंजन, भाई भराई करते हैं हम खेत की,
2: हाँ,
0: तो
2: इंजन
0: इंजन
2: आज भी चल
0: चलाते
2: रहा
0: हैं
2: है।
0: और बोरिंग होते, आज भी ट्यूबवेल है, लेकिन पहले ट्यूबवेल चलते और उनसे भराई ही आती। तो आपके खेत में बोरिंग हो?
2: पहले बहुत कम, बहुत कम चलाओ था इंजन है, और
0: जी
2: थोड़ी ये था ले भाई होंगे बोर में ना, आप कुइयां खोद लेते पहले
0: पहले क्या चलते
2: अपने
0: सिंचाई के लिए?
2: अपने हाथ से, कुइयां खोद खोद के मतलब देखो कि
0: राइट,
2: राइट चलते।
0: अच्छा उनसे राइटन में बैल चलते।
2: हाँ, बैल चलते।
0: जी तो बाम में अगर आपको खेत की भराई करनी होती, मान लो 1 एकड़ खेत जैसे आपको है, तो बाम में कितने दिन लग जाते, कैसे का हो? तो
2: एक दिन में 1 बीघा भर पाता था।
0: एक दिन में 1 बीघा आपके
2: हाँ,
0: पास कितनी खेती है?
2: हमारे पास अब तो बहुत कम है, बाप हमारे है
0: जी
2: तो बेच कतराते, अब तो
0: जी
2: हमारे चारों ठिया बट गई,
0: तो
2: चार
0: उस
2: भाई हैं।
0: तो आपके पिताजी राइट चलाते।
2: हाँ, राइट चलाया।
0: अच्छा कोई फसल जैसे आप निकालते, आप उड़द कर रहे हो या आप अरहर करी हुई आपने, अब तो अरहर बहुत कम पैदा होती, पहले अरहर करते
2: हाँ, अरहर
0: और
2: होती,
0: हमारे किसान
2: मूंगफली
0: साथी
2: होती।
0: मूंग करते, तो
2: हाँ,
0: उनको इतनी मशीनों नहीं पहले जमाने में,
2: ना ना
0: तो
2: ना,
0: उनको कैसे निकालते आप, जैसे गेहूं निकालने हो, गेहूं
2: जे
0: खादन की मशीन नहीं?
2: मतलब ऐसा था, हाथ वाली चक्की थी,
0: जी
2: उससे औरतें आटा पीस लेती,
0: अच्छा
2: और अरहर जो ही तो वो
0: जी
2: झाल लेती
0: जी
2: अपने आप, हमने खुद झाला अपने हाथ जारी।
0: अच्छा
2: हाँ, अब तो कोई चीज लेने ही ना, सरकार ये तो दे रही है,
0: जी
2: गल्ला भी दे रही है हर
0: जी
2: महीना में
0: जी
2: खाने के लिए फेरी।
0: देखो अब अगर मैं सरकार की बात करूं तो देखो इस समय क्या है ना, हमारी सरकार सब सुविधाएं दे रही है।
2: हाँ, दे
0: पहली
2: रही।
0: बात तो यह है कि खेती किसानी के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो वह धन की पूर्ति हमारी सरकार जो है हमें किसान सम्मान निधि देकर कर रही है। वह पैसा से हम सब काम खेती बाड़ी के कर डालेंगे किसान सम्मान निधि से, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ ना कुछ हमारी खेती में किसान सम्मान निधि जो हमारे लिए 6,000 रुपया मिलता है साल में, तो बास कुछ ना कुछ तो हमारे आंसू पूछ जाते हैं, कुछ ना कुछ तो हमारे काम में आते हैं, तो हमारे सरकार व किसान सम्मान निधि हमारे दे रही है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, भाई हम खेती में लगाते रहेंगे अपने किसान सम्मान निधि पैसा, अब खेती में लगा दो हम कहीं पे हमने प्रयोग कर लो, स्वास्थ्य की बात रहेगी जहाँ कि भैया कोई व्यक्ति 60 साल का है और हमारे किसान साथी बेचारे कुछ मजदूर टाइप हैं या हमारे कुछ गरीब हैं या बुजुर्ग हैं, तो उनके इलाज के लिए हमारी सरकार ने आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं।
2: हाँ, कार्ड बनवाया है,
0: ताऊ
2: 5 लाख का इलाज फ्री
0: आपने,
2: है।
0: आपके पास आयुष्मान कार्ड है?
2: ना, हमारे पास नहीं है।
0: अच्छा तो आपने आयुष्मान कार्ड बनवाओ क्यों, आपकी उम्र 60 साल की है तो आपने आयुष्मान कार्ड क्यों ना बनवाओ?
2: पता है हमारा नाला वो
0: एक चीज और है, आप एक चीज करें कि आप जिस गांव में रहते हो उस गांव में हमारी आशा कार्यकर्त्री हैं, आंगनवाड़ी हैं, आप आशा बहन जी से मिलो और उनसे अपने परिवार के विवरण पूछो और उनसे कहो कि हमारा आयुष्मान कार्ड बनाते हैं। उस आयुष्मान कार्ड से क्या होता है कि हमारे कोई बीमारी हो जाती है तो वो बीमारी को इलाज हमारा फ्री ही आता
2: फ्री हो जाए वहाँ।
0: है। ताऊ आपको सम्मान निधि मिलती है,
2: हाँ, सामान मिलती है,
0: कितने पैसे मिलते हैं आपको?
2: 2,000 रुपये।
0: अच्छा 2,000 रुपया हर
2: हाँ
0: चौथे महीना में,
2: हाँ चौथे महीना, हर
0: यानी
2: चौथे
0: साल
2: महीना।
0: में 6,000 रुपये मिलता है आपको,
2: हाँ
0: तो
2: हाँ
0: आप
2: हाँ
0: वो पैसा क्या करते हो?
2: पैसा खेती में लगाते हैं, खाते पीते हैं।
0: अच्छा
2: हाँ,
0: अच्छा
2: अब खेतियों
0: तो
2: में तो लगाने हैं।
0: आपने अपने खेती में अब क्या कर रखो है, कोई योजना ली है कि जैसे सोलर पंप की योजना चल रही है, फ्री बोरिंग योजना चल रही है सरकार की, कृषि यंत्र पर योजना चल रही है सरकार की,
2: आप बोरिंग करवा लो ब्लॉक से
0: ब्लॉक से बोरिंग
2: फ्री।
0: चलाया है,
2: हाँ,
0: कोई पैसा तो नहीं गया?
2: ना ना ना ना, सिलेंडर
0: और
2: फ्री मिल लिया हमें।
0: सिलेंडर भी
2: हाँ
0: तो हमारी सरकार ने जमाने में कहा हो तो हमारी बहनें जो ही ना भी चूल्हे पर खाना बनाती और हमारी माने भी चूल्हे पर खाना बना हुए, उस समय

0: तू हमारी आंखन में माता बहनों की जा रहा है,
1: और
0: प्रदूषण फैल रहा वहां से, हमारी माता बहनों की आंखें खराब हो रही हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। सरकार ने उस योजना के तहत एक उज्ज्वला योजना चलाई, उसके तहत हर घर में सिलेंडर दे दो।
1: हाँ
0: और आज सरकार जो है, हमारे जो गरीब महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनको सरकार उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर भी होली दिवाली त्योहारों पर भरवा।
1: हाँ
0: तो बहुत अच्छी योजना हमारी सरकार ने चलाई है। और आप कह रहे हो कि हमने भैया बोरिंग
1: हाँ
0: करवा
1: बोलो
0: हुआ, तो आपके गांव में कितने बोरिंग होंगे ताऊ?
1: मतलब बोरिंग तो बहुत है सरकारी, जैसे ब्लॉक के जो बोरिंग है वे
0: जी
1: तो 4-6 होंगे,
0: अच्छा
1: और उसे तो मान लो सब ने कराए अपने पैसों से, मगर
0: अच्छा
1: हमने पैसा तो ना करा हुआ,
0: अच्छा
1: हमें
0: एक
1: फ्री
0: चीज,
1: में लो
0: इस समय जो पानी वाले हमारे इंजन है चलते हैं, तो पहले के मुकाबले अब कम ही गए
1: अन्य नब्बी है।
0: हैं। पहले हमारे सिंचाई के जो साधन हो वो इंजन है, वो
1: ट्यूबवेल
0: रह
1: बन गया
0: गए,
1: ज्यादा।
0: लेकिन अब हमारे सोलर पंप है, आराम से उनको सरकार सोलर पंप दे रही है, तो भैया बिजली से चल लो वो, और बिजली मुफ्त कर दी सरकार ने कि चलाओ। किसानों को तो बहुत बल्ले बल्ले है कि चलाओ भैया, कितनी सिंचाई करो और
1: और
0: आपको कोई पैसा देने ना पड़े। तो इन योजनाओं को हम लाभ उठा में। सबाब हुसैन भैया, आप कहाँ रहते हो?
2: बरखना
0: ये कहाँ पड़ते हैं?
2: ये नवाबगंज तहसील है,
0: अच्छा,
2: जिला बरेली।
0: तो सबाब भैया आपकी उम्र कितनी होगी?
2: ऐसे लगभग 42 साल।
0: 42 साल। आपके परिवार में कौन कौन है?
2: हमारे परिवार में 6 लोग हैं, 4 बच्चे, हम दोनों लोग मियाँ बीवी।
0: बच्चे पढ़ रहे हैं?
2: हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं।
0: तो आप क्या करते हो,
2: हम खेती करते
0: कब
2: हैं,
0: से कर रहे हो आप?
2: खेती जब से पैदा हुए पापा हमारे खेती करते हैं, जब से होशियार हुए हैं समझ लो खेती देखी हमने।
0: ये बताओ कि आप, हमारी सरकार है
2: जी
0: वो किन किन योजनाओं को चला रही है जो हमारे कृषि के क्षेत्र में है, और उनसे आपने क्या क्या लाभ लोगे?
2: कृषि में सरकार ने बहुत कुछ दिया,
0: जी
2: यंत्र पे भी छूट दे रही
0: जी
2: और बीज पे भी
0: जी
2: अनुदान दे रही
0: जी
2: और कृषि यंत्रों पे भी दे रही
0: जी
2: और कीटनाशकों पे भी दे रही, सारी चीज़ों पे सरकार काफ़ी योगदान दे रही है।
0: आपने कोई योजना ली सरकार से?
2: जी
0: कौन सी योजना ली आपने सरकार से?
2: यंत्र लिए हमने,
0: अच्छा, तो उन पर छूट
2: जी
0: मिली आपको?
2: हाँ 50% छूट मिली सरकार।
0: अच्छा,
2: जी
0: तो और इसके अलावा आपने
2: और ये खाद बीज,
0: लेते हो आप,
2: जी
0: तो छूट मिलती है उसमें।
2: जी
0: और इसके अलावा आप पशुपालन करते हो?
2: हाँ कर लेते हैं थोड़ा बहुत।
0: पशुपालन में क्या क्या है आपके? अच्छा,
2: पशु में जी दूध के लिए रखते हैं अपने, हाँ पहले पशु ज़्यादा पाले जाते थे।
0: किसान सम्मान निधि मिलती है आपको,
2: जी मिलती है,
0: तो उसका क्या करते हो आप?
2: उसका खेती में लगा देते और अपने खर्चे में ले लेते।
0: इसके अलावा आपका आयुष्मान कार्ड है?
2: आयुष्मान कार्ड नहीं है।
0: अच्छा, आयुष्मान कार्ड अपना आप अगर उस निर्धारित उसमें आ रहे हो
2: जी
0: उनके नियम में, तो आपका बनेगा। अच्छा, हमारी सरकार उन्नत बीज भी दे रही
2: जी उन्नत बीज दे रही।
0: है ना, और प्रमाणित बीज भी हमें
2: जी जी
0: खेती में
2: हाँ
0: बोना चाहिए।
2: जी
0: तो आप कभी बीज लाए हो?
2: जी लाए
0: कहाँ से लाए हो आप?
2: गोदाम से लाए,
0: अच्छा
2: सरकारी गोदाम से, और उस पर 50% सब्सिडी भी सरकार देती है,
0: अच्छा और क्या?
2: और खाद पे तो दे ही रही वो तो सभी को पता है।
0: अच्छा,
2: हाँ
0: आपने कभी अपनी खेत की मिट्टी की जांच कराई है?
2: जी कराई,
0: ले जाते हो आप?
2: हम भाई ब्लॉक से आते हैं
0: जी
2: गांव में आते हैं, तो वो मिट्टी की जांच के लिए मिट्टी मंगवाते हैं, तो
0: जी
2: किसान लोग अपने अपने मिट्टी लाके देते हैं, फिर उससे जांच होती है, फिर बाद में वो मृदा कार्ड मिल जाते हैं उसी नाम से,
0: जी
2: तो उस पर जो भी मिट्टी की जांच होती है उस पर आ जाती है लिख के सारी।
0: हम आपसे एक चीज और पूछना चाहेंगे कि आप पशुपालन करते हो?
3: घर के हिसाब से
0: अच्छा,
3: हाँ करते हैं।
0: क्योंकि अगर हम पशुपालन करें तो खेती के साथ साथ हम बहुत सारे उद्योग अपने स्थापित कर सकते हैं, और बहुत सारे हम काम कर सकते हैं, जैसे कि जब तक खेती में काम हो खेती में करें, इसके अलावा हम अपना दूसरा व्यवसाय कर सकते हैं। उससे हमारा क्या होता है, दैनिक जो खर्चा होते हैं हमारे, उसकी पूर्ति हो जाती है। जैसे आपके डेयरी उद्योग है,
3: हो
0: मुर्गी
3: गए
0: पालन
3: मुर्गी
0: है,
3: पालन है।
0: डेयरी उद्योग से संबंधित हमारी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं, जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, पशुधन बीमा योजना है, डेयरी उद्यमिता विकास योजना है। तो आपने और कोई उद्योग करने की नहीं सोची कि हम खेती वाले साथ साथ और कुछ उद्योग करें जिसमें सरकार सब्सिडी दे रही है, हमारी सरकार सहायता बहुत दे रही है?
3: सहायता तो काफी दे रही है सरकार, हम तो कृषि के यंत्र पे वही काम करते हैं। ट्रैक्टर उटर है उसी हिसाब से कृषि यंत्र लेते हैं, वही
0: जी
3: अपने सब्सिडी पे सरकार से
0: जी
3: वही अपने चलाते हैं।
0: तो कहना मतलब ये है कि हम आपके जो यंत्र हैं कृषि के, उनका आप फादल
3: हाँ
0: ले रहे
3: सरकार
0: हैं,
3: से हमें
0: तो
3: उससे लाभ मिला
0: आपके
3: है।
0: गांव में या आसपास में लोग उस स्कीम का, सरकार की स्कीम का फायदा ले रहे हैं?
3: हाँ फायदा ले रहे हैं सरकार का इस।
0: अच्छा, हमारे जो किसान साथी आपको सुन रहे हैं आकाशवाणी के माध्यम से, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि हम सरकारी योजना का लाभ कैसे लें सरकार से अपने?
3: सरकारी योजना का लाभ लें, ब्लॉक पे जाके उसका बीज लें, बीज भी सरकार 50% छूट पे दे रही है।
0: जी
3: हाँ और टोकन निकलता है अपने कृषि संबंधन से, टोकन के जरिए अपना यंत्र भी 50% 60% पे सरकार दे रही है, सभी किसान उसे खरीदें।
0: अच्छा, उसकी जानकारी ब्लॉक में ही

0: मिलती है, चले जाएं तहसील चले जाएं,
1: तहसील चले जाएं।
0: और समय समय पर हमारे अपने जो टीवी हम देखते हैं वहां पर कौन कौन सी योजना चल रहा है, पेपर में अखबार में पढ़े, और सबसे अच्छा तो हम ब्लॉक स्तर पर अपने काम करें और ब्लॉक स्तर से जानकारी ले लें। अच्छा सुरेश पाल जी, आप सरकार की कौन कौन सी योजनाएं और ले रहे हैं?
2: हमारे जैसे तो बोरिंग भी करा लिया,
0: जी
2: सिलेंडर भी दे रही सरकार, खाने
0: जी
2: पीने का भी दे रही है भाई।
0: जी देखो हमारी सरकार राशन भी हमें बहुत दे
2: हाँ,
0: रही है
2: राशन दे रही है हर महीना।
0: और पूर्ति हमें राशन की पूर्ति हो रही है, तो आप भी सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और सरकार के हमारे राज्य सरकार उनके कामों से आप खुश हैं,
2: खुश हैं
0: तो
2: सरकार
0: योजना का
2: से।
0: लाभ ले रहे हैं। अच्छा सवाब हुसैन जी, आप कोई उद्योग लगाने की सोच रहे हैं, या आपने बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, ये करने की सोच रहे हैं आप?
3: नहीं, अभी तो खेती कर रहे हैं
0: खेती के अलावा और क्या करते हो आप?
3: और साइड में दुकान भी है अपनी।
0: तो आप लोगों को दवाइयों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, और एक चीज़ और है कि जब कभी हम रासायनिक खादों का प्रयोग कम करें अपनी खेती में, और
3: जी,
0: जैविक खादों का और
3: जैविक का ज़्यादा करें,
0: जैविक
3: रासायनिक का
0: खादों
3: कम
0: का
3: करा
0: जी
3: जाए,
0: देसी खादों का प्रयोग करें।
3: देसी खाद का प्रयोग
0: तो
3: ज़्यादा करना चाहिए।
0: नजमुल हसन जी, कार्यक्रम के अंत में आप उनसे क्या कहना चाहोगे?
1: सभी किसान भाई सरकारी चीज का लाभ लें, सरकार सबको सब्सिडी दे रही है,
0: आपका कहना मतलब यह है कि सरकार जो सब्सिडी दे रही है उन योजनाओं का लाभ जरूर
3: लें,
0: लें,
1: जरूर
0: और
1: लें,
0: अगर कोई व्यक्ति को जानकारी नहीं है तो वो गांव के प्रधान जी से
1: ब्लॉक
0: ब्लॉक स्तर पर
1: पहुंचे।
0: जाकर पहुंचे और वहां से जानकारी लें और जागरूक बने और लोगों को दूसरों को लोगों को जागरूक करें। किसान हमारे सरकार की योजनाएं जो खेती बाड़ी में हैं उनके प्रति जागरूक हों और उन योजनाओं
3: जी,
0: का लाभ लें,
1: लाभ
0: और
1: लें, लाभ
0: अपना,
3: लें।
0: अपने परिवार का, अपने समाज का कल्याण है। आप तीनों हमारे कार्यक्रम आए और आपने हमारे साथियों को बहुत अच्छी जानकारी, आप धन्यवाद।
4: अभी जो हमारे किसान साथी परिचर्चा सुन रहे थे, बागों विषय हो कृषकों के लिए लाभकारी सरकारी योजनाएं, जाहिर विषय पर बातचीत के माध्यम से जानकारी दे रहे थे, आप थे श्री नजमुल हसन, श्री सुरेश पाल, श्री सवाब हुसैन, आपसे बातचीत कर जानकारी करा रहे थे हमारे भैया पंकज कुमार।
5: और अखिलेश भैया, अब बात करते हैं कृषि संकेत की।
4: हाँ मैम,
5: आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो लगभग हर किसान भैया की खेती से जुड़ो है। विषय है खरपतवार नियंत्रण के तरीके। इन दिनों खेतन में फसल के साथ साथ खरपतवार भी तेजी से उगने लगो भैया, जिससे ना किसानों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है।
4: बिल्कुल सही कहा आपने दीपा बहन, खरपतवार यानी कि खेत में उगने वाली बेकार घास फूस फसल के पोषण, पानी और दूध का हिस्सा अपने आप ले लेती हैं। इससे फसल कमजोर पड़ सकती है और उत्पादन पर भी असर पड़ता दिखाई देता है, इसलिए समय रहते खरपतवारों पर नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी माना जाता है फसल की अच्छी बढ़वार के लिए।
5: हाँ अखिलेश भैया, कई किसान भैया शुरुआत में ही खरपतवार को मामूली समझ लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना, समस्याएं बढ़ने लगती हैं। अगर समय पर सफाई ना करी जाए तो फसल पर काफी प्रभाव पड़ते हैं।
4: हाँ दीपा बहन, खेती की अच्छी तैयारी खरपतवार नियंत्रण की पहली सीढ़ी मानी जाती है। अगर खेत की गहरी जुताई की जाए और पुरानी घास को मिट्टी में दबा दिया जाए तो खरपतवार काफी हद तक कम हो जाते हैं।
5: भैया खेत को कुछ धूप लगनू बहुत जरूरी होती है और जाए बहुत फायदेमंद मानो जाते हैं। तेज धूप से कई बार खरपतवार के बीज कमजोर पड़ जाते हैं और उनको असर कम हो जाते हैं।
4: बिल्कुल दीपा बहन, इसके अलावा समय पर बुवाई करना भी बहुत जरूरी है। अगर फसल मजबूत तरीके से जल्दी बढ़े तो खरपतवार को फैलने का मौका नहीं मिल पाता है और फसल हमारी अच्छी होती है।
5: भैया किसान भाई ना, अब लाइन से बुवाई करते हैं, इससे खेत में निराई गुड़ाई करना आसान हो जाता है और खरपतवार हटाने में सुविधा रहती है।
4: हाँ दीपा बहन, खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई बहुत ही जरूरी है माना जाता है। खेत में उगी घास को शुरुआत में ही निकाल दिया जाए तो फसल को काफी फायदा मिल सकता है।
5: भैया गांव में पहले लोग हाथ से निराई गुड़ाई करते और आज भी कई किसान भैया करते हैं, यही तरीका अपनाते हैं और इससे खेत साफ सफाइयों में रहता है और मिट्टी की उपज जो है वो अच्छी बनी रहती है।
4: बिल्कुल दीपा बहन, अब कई जगह किसान भाई आधुनिक कृषि यंत्रों का इस्तेमाल भी करने लगे हैं, इसमें मेहनत और समय दोनों की बचत होती है।
5: भैया कुछ किसान भैया खरपतवार नियंत्रण के लिए दवाइयों का भी उपयोग करते हैं, लेकिन इनको इस्तेमाल सोच समझ कर ही और सही सलाह के अनुसार करना चाहिए।
4: हाँ दीपा बहन, सही कहा आपने, दवा का गलत उपयोग फसल को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह और निर्धारित मात्रा का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी माना जाता है।
5: हाँ भैया, खेत की मेड़न को आसपास साफ सफाई भी जरूरी होती है, कई बार वहीं से खरपतवार दोबारा खेत में फैलने लगते हैं।
4: बिल्कुल दीपा बहन, अगर खेत के आसपास की घास समय पर साफ कर दी जाए तो खरपतवार की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है।
5: हाँ भैया, फसल चक्र अपनानो भी फायदेमंद मानो जाते हैं। अलग अलग फसलें बोन से ना खरपतवार को असर कुछ हद तक कम करो जा सकते हैं।
4: हाँ दीपा बहन, कई किसान भाई अब जैविक तरीकों पर भी ध्यान दे रहे हैं। खेत में जैविक खाद और सही देखभाल से मिट्टी मजबूत रहती है और फसल की पैदावार अच्छी मिलती है।
5: भैया, खेत में जरूरत से ज़्यादा पानी भर जाने से खरपतवार तेजी से बढ़ सकती है, इसलिए सिंचाई को प्रबंधन बहुत सही तरह से ही करना चाहिए।
4: बिल्कुल दीपा बहन, फसल की जरूरत के हिसाब से ही पानी देना चाहिए, इससे फसल का जो है फायदा मिलता है और अनावश्यक घास फूस जो है वो कम होते हैं।
5: हाँ भैया, कई बार किसान भैया शुरुआत में ही खेत ना देख पाते हैं और बाद में खरपतवार ज़्यादा फैल जाती है, इसलिए समय समय पर खेत निरीक्षण करना जरूरी है भैया। और भैया, अब समय हमें बहुत ज़्यादा इजाज़त ना दे रहे हो, इसलिए कल काका प्रोग्राम जाएंगे, हम अपने भैया बहन को बहु बता दें।
4: हाँ मैं जरूर बताओ।
5: कल चर्चा हुई भैया धान की प्रजाति की, भेंट वार्ता में सुनवाई जाए सब्जियों में कीट व रोग प्रबंधन, जानकारी देंगे डॉक्टर दीपक कुमार और इनसे जानकारी ली है विक्रांत चौधरी ने, लोकगीत से मनोरंजन भी कराया जाए साथ भैया, और कृषि संकेत में जानकारी दी जाएगी खेती पशुपालन के साथ कुटीर उद्योग, और भैया आप कल के मौसम की जानकारी दे दें हमारे भैया बहनों को।
4: हाँ दीपा बहन, अगर हम मौसम की बात करें 24 मई 2026 को रामपुर के आसपास के क्षेत्रों में भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान लगभग 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। बारिश की कोई संभावना नहीं है। हवा की गति की हम बात करें तो 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा बहने की संभावना है। तो दीपा बहन, ये थी मौसम की जानकारी। अब चलते चलते अपने किसान साथियों को कर लें दोनों
5: राम राम, राम।

0: अभी किसान साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम छांव बरगद की। आज इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं श्री इरफान खान से असीम सक्सेना की भेंट वार्ता।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका छांव बरगद की कार्यक्रम में। उम्र के इस पड़ाव पर बहुत सारी यादें हम सफर बनकर हमेशा हमारे साथ रहती हैं। वो सुबहें याद आती हैं जब घर के आंगन में चाय की खुशबू के साथ शुरुआत होती थी, और उस दौर की शुरुआत रेडियो के साथ हुआ करती थी। दिन भर आकाशवाणी उनके साथ रहता, हम सफर बनता, सुख दुख का साझीदार बनता, आपस की बातें कहते सुनते, और जिंदगी के ये रास्ते इस तरह से तय होते जाते। आज कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत हैं जिन्होंने रेडियो को जिया है, रेडियो को अपना माना है, कह सकते हैं कि अपने सबसे करीब रखा है। हमारे बहुत पुराने श्रोता, वरिष्ठ श्रोता, जागरूक श्रोता और हमारी कमियों की तरफ इशारा करने वाले श्रोता इरफान खान साहब आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका इरफान खान साहब।
2: सबसे पहले मेरा दोनों हाथ जोड़कर सर असीम सक्सेना साहब को राम राम, नमस्कार और सलाम कबूल फरमाइएगा। आकाशवाणी शिमला के मैं कार्यक्रम सुनता था।
1: शुरुआत वहाँ से हुई?
2: शुरुआत मेरी वहाँ से हुई है। वहाँ पर कलावती ठाकुर थी, श्याम गुप्ता साहब थे, बी आर मेहता साहब थे, दीपक भंडारी साहब थे, हंसा वर्मा थी, बहनों का कार्यक्रम प्रस्तुत करती थी। तो वहाँ से 1978 में के एन भार्गव साहब आकाशवाणी रामपुर आए थे, उन्होंने मुझे बुलवाया था। मैं वहाँ 2 बार गया भी था। तो 1978 में मैंने एक यहाँ कृषि जगत में एक वार्ता पढ़ी थी, आलू की कहानी। उसके 2-3 महीने बाद मैंने पढ़ी थी, खेती के साथ साथ मुर्गी पालन से लाभ। तो मुझे 800 कुछ रुपए का चेक मिला था। वो चेक मैंने 1 महीने तक तोड़वाया भी नहीं था, देख के मैं जी रहा था। मेरे घर पोस्टमैन लेटर भी कर गया था, और फिर मैं उनके समय में बहुत आता जाता गया। लेकिन वो निगाह आकाशवाणी रामपुर की, वो चेहरे मेरी निगाह में थे। जब आपने श्रोता मंच मुझे पहली बार बुलाया तो आपका चेहरा मेरे दिमाग में आ गया। उस समय राजेश कुमार साहब थे, वो शहर में अलग ही दिखाई देते थे, तो वो थे, और राम कुमार सक्सेना साहब थे, मुझसे दस्तखत कराए। तो मैं काफ़ी उस समय आया गया था। फिर मैं आकाशवाणी रामपुर के प्रोग्राम सुनता भी रहा। फिर मुझे सरकारी नौकरी मिल गई, तो फिर मैंने सर असीम सक्सेना

0: पद्मा साहब की आवाज़ सुनी और मैडम पल्लवी राय जी की आवाज़ सुनी, बस मैंने यहीं से ही अपना कलम उठा के जो शुरू किया है तो इंशाल्लाह आज तक वो कलम रुका ही नहीं है। यह है आकाशवाणी रामपुर की मोहब्बत।
1: आपने सेवा के कई साल पूरे किए आकाशवाणी रामपुर को, साथ साथ आप सुनते रहे। जब आप रिटायर हो गए, इरफान खान साहब, फिर ज़िंदगी एक नया मोड़ लेती है, एक नई तरह से शुरुआत करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि सुबह शाम दोपहर कैसे करना है, क्या करना है, कैसे अपना वक्त गुजारना है, एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो आपने रेडियो के साथ उसको कैसे मैनेज किया?
0: रेडियो के साथ मैंने ऐसे किया कि मेरे घर में एक लड़की है, एक बीवी है, दो लड़की और तीन लड़कियों की शादी हो गई, तीन लड़के मेरे अलग रहते हैं, मैं और लड़की मेरी बीवी 100 गज का मकान है, इधर रहते हैं, पेंशन आ रही है, मालिक का लाख लाख शुक्र है, सुकून है, बस घर में पेपर है, जेब में पेपर है और दो दो मोबाइल रखता हूँ सादे वाले, एक आकाशवाणी रामपुर का प्रोग्राम सुनने के लिए, एक बात करने के लिए, और मैं नोट करता रहता हूँ रफ, और फिर शाम को फियर कर लेता हूँ, थकता नहीं है, मेरी उंगली थकती नहीं है क्योंकि मैं इससे जुड़ गया हूँ, इसीलिए मैं फिट हूँ, और जबकि मैं घर का सारा काम भी करता हूँ, बहुएँ आती हैं मेरी, मेरी बेटियाँ आती हैं, खिलाना पिलाना सब कुछ, हाँ मेरा पूरा परिवार रचा बसा है कि यह है सब कुछ, और मेरी जो लड़की है वो मेरा बड़ा सहयोग देती है क्योंकि सारा व्हाट्सएप मैं उसी से कराता हूँ, सब कुछ वो बताती है कि पापा हाँ अंकल का फ़ोन आया, मैडम का फ़ोन आया, सबका भी बताती है वो इसी हिसाब से, हाँ अब मैं कहता हूँ ये 17 लोगों को बेटे भेज दो, ये इनको भेज दो, इधर भेज दो, सब लड़की भेजती है, किसी का मैसेज तुरंत बताती है जैसे किया, तो मैं उनका शुक्रिया कहता हूँ, मेरे का बेटा तो आप भी भेज दिया करो। तो यह है आकाशवाणी रामपुर के प्रोग्राम की खूबी।
1: तो रिटायरमेंट के बाद आकाशवाणी आपका साथी जो पहले था वो अब हर समय का साथी बन गया। हमारे जो प्रेजेंटर्स हैं उनके मन में एक जिज्ञासा रहती है कि जितनी चिट्ठियाँ इरफान खान साहब लिखते हैं, जिस तरह से लिखते हैं, जितने विस्तार से लिखते हैं, 20-20, 22-22 पेज आप एक चिट्ठी में लिख भेजते हैं, तो ये कैसे मुमकिन हो पाता है?
0: जब मैंने आपकी आवाज़ सुनी, मैडम पल्लवी राय जी की आवाज़ सुनी, 26 अप्रैल को उनकी पुण्यतिथि थी, कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मेरी एक सोच ये रही थी कि सर असीम सक्सेना साहब के नाम से जो मैं खत डालता था, तो जब कोई बाहर का कोई भी मेहमान आए, अधिकारी आए, डायरेक्टर आए, कोई भी आए, जब वो 50 लिफाफे उठाए तो उसमें 40 लिफाफे के ऊपर सर असीम सक्सेना साहब का नाम होना चाहिए, ये मेरी सोच है। इतराज़ भी हुआ कि आप नाम से लिखते हैं ये ठीक नहीं है, फिर बहुत हुआ ये भी हुआ कि नहीं डालें अच्छा है, तो आखिर में फिर मैं केंद्रीय निदेशक के नाम से डालना शुरू कर दिया तभी, और मैं डंकी की चोट पर भी करता हूँ, मन की बात कार्यक्रम में प्रसार भारती को मैंने पहले लिख दिया है कि आकाशवाणी रामपुर में 10,000 के लगभग कार्यक्रम मेरे हैं और मुझे डर है कहीं मेरे पत्र इधर से उधर ना हो जाएं, इसकी डुप्लीकेट कॉपी मेरे पास है, ये मैंने आने वाले भविष्य के लिए लिख रखा है।
1: जो पत्र आप लिखते हैं एक दस्तावेज के रूप में आपके पास इकट्ठे हैं और किसी भी केंद्र के लिए एक धरोहर है कि श्रोता कितना प्यार करते हैं, और उस दौर में जब चिट्ठियों लिखने का चलन बहुत कम हो गया है आप चिट्ठी लिखते हैं, और आकाशवाणी के रामपुर केंद्र को आपने इतने पत्र भेजे हैं कि शायद ही किसी और श्रोता ने किसी और केंद्र पर भेजे होंगे। भारत में आप अनूठे हैं इस तादाद में खत भेजने के मामले में। आकाशवाणी रामपुर के तमाम कार्यक्रम आप सुनते हैं, नोट कर लेते हैं,
0: सारे प्रोग्राम की यादें ताज़ा हो रहती हैं, मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के लिए प्रसार भारती को भी लिखा था, मन की बात में भी लिखा था, कई बार लिख चुका हूँ, आकाशवाणी रामपुर से दिल ढूंढता है कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो भारत और विदेशों में भी सुना जाता है, ये तो मैंने लिख दिया, वाकई में उसका तो कोई जवाब ही नहीं है।
1: लेकिन एक शिकायत करें इरफान खान साहब आपसे,
0: ज़रूर
1: शिकायत यह है कि दिल ढूंढता है आपकी चिट्ठियाँ अभी तक ढूंढ रहा है।
0: हाँ मैंने बहुत पहले 2-4 चिट्ठियाँ लिखी थी, आपने पढ़ी भी थी और अच्छा लगता है, और मैं असल में चक्कर यह है मेरे दिमाग में कि अगर मैं दिल ढूंढता प्रोग्राम के लिए चिट्ठी लिखूँ, इधर इधर दिमाग लड़ाऊंगा तो मेरा और कार्यक्रम निकल जाएंगे, मेरा तो मेन मकसद यह है आकाशवाणी रामपुर के प्रोग्राम सुनना और रिकॉर्ड कायम करना मैं जी। लेकिन दिल ढूंढता है प्रोग्राम लिखता ज़रूर हूँ, कागज़ पर ज़रूर लिखता हूँ, और मुझे लोकगीत बहुत अच्छे लगते हैं, मैं घर में कभी कभी गुनगुनाता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो। शालू सक्सेना जी की आवाज़ में एक गीत है,

0: चरखा दे मैं सास को भेजा, चरखा दे मैंने सास को भेजा, आ गई मेरी नंदी बिजुरिया, मिलन जाने कब होगा। एक गीत और है
1: जी
0: प्रेमलता की आवाज़ में, पीतल के दो नैना घूरू नैन से नैन लड़ा दूंगी, जो सास मेरी अच्छा बोले घर को स्वर्ग बना दूंगी, जो सास मेरे लड़े लड़ाई घर में आग लगा दूंगी, पीतल के दो नैना घुंघरू नैन से नैन लड़ा दूंगी, जो मेरी जिठनी अच्छा बोले मैं दूध रबड़ी पिला दूंगी, जो मेरी जिठनी करे लड़ाई दूध में जहर पिला दूंगी, पीतल के दो नैना घुंघरू।
1: अच्छा लगा आपको सुनकर, और उससे ज़्यादा अच्छा लगा आपको इस वक्त देखकर कि जितनी रच बस गए थे आप इस लोकगीत में। तो जब आकाशवाणी के लोकगीत आप सुनते होंगे तो कैसा महसूस करते होंगे?
0: बहुत अच्छा लगता है मुझे, लोकगीत चटपटे बहुत अच्छे लगते हैं, चटपटे गीत भी सुनता हूँ, मायूस गीत नहीं सुनता हूँ कभी। मायूस गीत में ब्लड प्रेशर लो होता है और सुनता भी अच्छा नहीं लगता।
1: जिंदगी के इस मोड़ पर आकर, इस उम्र तक पहुंचकर बहुत सारे लोग मायूसी का चोला पहन लेते हैं, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता।
0: साहब जब मेरा पांव फ्रैक्चर हुआ था, यकीन जानिए उस वक्त नए अनाउंसर रखे गए थे आकाशवाणी रामपुर में, और कंपियर्स रखे गए थे, 33 लोगों के भाग गए थे, मेरा पांव टूट गया था। तो मैंने एक एक अनाउंसर की प्रोग्राम नोट करे
1: जी,
0: और एक एक कंपियर्स युवाड़ी के करे सबके, कि ये प्रोग्राम ना टूटे। वो मेरे लिए समय बड़ा खतरनाक था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैं कामयाब हो गया।
1: अब बहुत सारे कार्यक्रम विभिन्न श्रोताओं के लिए हमारे केंद्र से प्रसारित होते हैं, उन कार्यक्रमों के बारे में अपनी राय का इजहार आज
0: यह है कि जो नए
1: चाहेंगे।
0: कार्यक्रम आकाशवाणी रामपुर की तरफ से शुरू हुए हैं उसमें है आकाशवाणी रामपुर ब्रॉडकास्ट शो, सेहतनामा, लोकरंग, अमृत कलश, सुनहरा दौर, सुगम संगीत, शास्त्रीय संगीत, कृषि जगत कार्यक्रम में बदलाव किए गए हैं, लोक मंजरी, कृषि शंका समाधान शुरू हुआ है, आकाशवाणी गांव में अन्य परिवर्तन किए गए होंगे, और गीत आपके ईमेल पर और गीत गाता चल व्हाट्सएप पर, जो कार्यक्रम बंद हुए, मेरी माटी मेरा देश, गीत भारती, सुमंगल कार्यक्रम, सुपर संडे कार्यक्रम, देशगान, ये कार्यक्रम बंद हो गए हैं, और कार्यक्रमों और समय में जो परिवर्तन किया गया है, इनमें प्रोग्राम के नाम है कलियां कार्यक्रम, आपका पत्र मिला, परिवार जगत, कुमकुम, आंचल, हेलो फरमाइश, फोनिंग, झलकी, नात और कवालियां, साहित्य पत्रिका, और बाकी जो प्रोग्राम है दिल ढूंढ रहा है प्रोग्राम, जो सर असीम सक्सेना साहब पेश करते हैं, उनके अलावा कोई ये प्रोग्राम पेश कर ही नहीं सकता, अगर करेगा तो वो बात आएगी नहीं, वंदना कार्यक्रम, श्री रामचरित्र मानस गान, उर्दू प्रोग्राम, आपके अनुरोध पर गीतांजलि, सुबह सवेरे, धरती के गीत, धरोहर नाटक और झलकी, मन भावन, हेलो रामपुर, फोनी के प्रोग्राम, युवाड़ी, हेलो फ्रेंड्स, प्रेरक प्रसंग, आज का चिंतन, स्वास्थ्य संदेश और फिल्म संगीत, मॉर्निंग हिट्स, नई फिल्मों का कानून और हम, धरती के गीत, श्रोता मंच, कवि गोष्ठी, वार्ता, भेंट वार्ता, चर्चा परिवर्त परिचर्चा, आज के मेहमान और छांव बरकत की।
1: आपने अपने दिल के इतने करीब रखा है आकाशवाणी को, और आकाशवाणी रामपुर से खास लगाव है आपका, आपसे बहुत सारी बातें आज हुई हैं और विस्तार से आपने रेडियो के प्रति अपने प्यार का, अपने स्नेह का, अपनेपन का इजहार किया है कि कितना चाहते हैं आप दिलोजान की तरह आकाशवाणी को परिवार का एक हिस्सा मानते हुए आप कभी भी इसका साथ नहीं छोड़ते, और शायद आपके मन में ये गीत ज़रूर चलता होगा कि कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे।
0: कभी नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह, और सर असीम सक्सेना साहब से तो हमारा कुदरती लगाव है, आकाशवाणी रामपुर के अंदर अधिकारी आते रहेंगे जाते रहेंगे, जुड़े सबसे, लेकिन सर असीम सक्सेना साहब की आवाज़ को महत्व देते हैं, क्यों, ये लगाव है, इस लगाव को कोई नहीं छीन सकता, जैसे मेरा आपसे लगाव है, जैसे मैंने आपके नाम से सैकड़ों खत डाले, आपका नाम एक जगह नहीं हज़ारों जगह लिखे होंगे, यहाँ पर हज़ारों जगह लिखे होंगे, चाहे उर्दू प्रोग्राम के कंपियर से को हों।
1: शुक्रगुजार हैं आपके इरफान खान साहब कि आप इतना प्यार करते हैं हमें, इतना

0: दिल के करीब रखते हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा खजाना है, एक दौलत है जिसकी हमें हिफाजत रखनी है, और आपकी ये बातें हमेशा हमारे दिल में रहेंगी।
1: और मैं एक बात
0: हम
1: और कहना
0: जी
1: चाहूँगा,
0: जी
1: उर्दू प्रोग्राम की कंप्यूटर्स मैडम राव अंजुम साहिबा और मैडम आयशा राज साहिबा और फरीदुल्ला खां साहब, शमामा मसूद जी, शिवा नूर जी, मारिया खुशनूर जी, मनोज कुमार साहब
0: जी
1: जो मेरे दिल में बसते हैं और परिवार जगत कार्यक्रम पेश किया करते थे, और मैडम सुनीता सिंह जी और मैडम आयशा अनवार और मैडम प्रेरणा गुप्ते जी, आंधी जाए मे जाए मेरे हर पत्र का जवाब देते थे, इसीलिए सर मनोज कुमार साहब मेरे दिल में बसते हैं, उनका तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरफान खान साहब कि आपने वक्त निकाला हमारे इस कार्यक्रम में आए, और ऐसे ही आकाशवाणी को हमेशा अपने दिल में आप बसाए रखेंगे, ये दुआ है और यही गुजारिश है आपसे। बहुत बहुत
1: बिल्कुल
0: शुक्रिया।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम छाऊं बरकत की। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे श्री इरफान खान से असीम सक्सेना की भेंट वार्ता। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज़ एवं एफएम 102.9 मेगा हर्ट्ज़ पर 7:15 हुए हैं। श्रोताएं, आपको बता दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में आज रात्रि 10 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनिएगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। रात्रि 9:30 पर अखिल भारतीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती सुनिएगा, इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 8 बजे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा गीत गाता चल। समय याद रखिएगा आज रात्रि 8 बजे। शाम 7:31 पर कार्यक्रम सुगम संगीत में आप सुनिएगा बेगम अख्तर की गाई कुछ गजलें।

कल सवेरे 7 बजे आप सुनिएगा लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग। कल इस कार्यक्रम में कलाकार होंगे सरोज श्रीवास्तव। सवेरे 9:30 पर आप समाप्त फरमाइएगा उर्दू कार्यक्रम। आपका पत्र मिला साप्ताहिक पत्रोत्तर कार्यक्रम आपके रेडियो सेट पर होगा दिन में 10 बजे। श्रोताओं की शब्दावली पर आधारित कार्यक्रम मन भावन आपके रेडियो सेट पर होगा दिन में 11:30 पर। झलकी का समय रहेगा 10:45। सुबह सवेरे ये कार्यक्रम आप सुनिएगा सवेरे 7:31 पर। बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम कलियां आपके रेडियो सेट पर होगा 1:15 पर। 50 के दशक के फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरा दौर सुनिएगा 2:30 पर। हमारी दूसरी सभा में शाम 6:20 पर सुनिएगा किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत। 7 बजे सुनिएगा क्षेत्र संकलित गतिविधियों की रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम आसपास। युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी आपके रेडियो सेट पर होगा कल शाम 5:15 पर। श्रोताओं ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:18 होने वाले अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से होगा।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों के चयनित कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के देशों के साथ साझेदारी कर रहा है भारत। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और वाराणसी में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हुई रोजगार मेले में शामिल। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में की श्रम और सेवायोजन विभाग की समीक्षा बैठक। नए प्रावधानों के साथ सभी 75 जनपदों में बाल श्रमिक विद्या योजना लागू करने के दिए निर्देश। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित। बांदा में प्रशासन ने किए बचाव के इंतजाम। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी।

नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। उन्होंने आज वीडियो

के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। उन्होंने आज वीडियो नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है उन्होंने आज वीडियो

0: भारतीयों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व के कई विभिन्न देशों के साथ साझेदारी भी कर रहा है, जिसका मकसद देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाना है। उन्होंने कहा कि देश अब पूरी दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया सम्पन्न की जा रही है।
2: लखनऊ में 330 अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र हमने दिए और मैं कह सकता हूँ यह माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 12 लाख से भी ज्यादा लोगों के लिए पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां करके इस तरह से महिलाओं के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का काम होता है।
1: वाराणसी के

0: आगरा में रोजगार मेले का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने किया। श्री बघेल ने रोजगार मेले के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
1: मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि देश को जो उन्होंने सरकारी नौकरियों के रोजगार के लिए वादा किया था वो पूरा हुआ। इसके अलावा भी जैसा उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, तमाम स्टार्टअप के माध्यम से अन्य माध्यम से भी रोजगार दिए जा रहे हैं।
0: रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में श्रम एवं सेवायोजन विभाग की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा बैठक की। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक केवल उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति है। सरकार की प्राथमिकता है कि श्रमिकों, युवाओं और कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित कार्य वातावरण और बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध हों। बाल श्रमिक विद्या योजना वर्तमान में 20 जनपदों में संचालित है। मुख्यमंत्री ने इसे नए प्रावधानों के साथ प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सेवा मित्र व्यवस्था को रोजगार और जन सुविधा का अभिनव मॉडल बताते हुए कहा कि तकनीक आधारित ऐसी व्यवस्थाएं युवाओं और कुशल कामगारों के लिए नए अवसर तैयार करती हैं। मुख्यमंत्री ने निर्माण श्रमिकों के लिए सभी औद्योगिक शहरों में प्रस्तावित श्रमिक सुविधा केंद्रों यानी लेबर अड्डों को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। दो पैन कार्ड मामले में रामपुर में एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने आज सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम की सजा बढ़ाने की अपील पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने आजम खां की 7 साल की सजा को बढ़ाकर अब 10 साल कर दिया है। वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की 7 साल की सजा को बरकरार रखा है लेकिन उनके जुर्माने की रकम को बढ़ाया है। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के चलते जनजीवन प्रभावित है। राजधानी लखनऊ में आज दोपहर में पारा 43 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं बांदा लगातार प्रदेश का सबसे ज्यादा तापमान वाला जनपद बना हुआ है। बांदा के अपर जिलाधिकारी कुमार धर्मेंद्र ने बताया कि प्रशासन की ओर से गर्मी से बचाव के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
3: बांदा में जैसा कि टेम्परेचर लगातार उसी स्थिति में बना हुआ है तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन नए प्रयोग योजना कर रहा है। अभी तक हम लोग सब विभागों को उनकी क्या जिम्मेदारी है, क्या उनके कार्य हैं, वो उन्हें करने के लिए निर्देशित कर रहे हैं।
0: अयोध्या में आज तेज आंधी के साथ हुई बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा संचालित मुंशी मौलवी सेकेंडरी तथा आलिम सीनियर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा वर्ष 2026 का परिणाम आज घोषित किया गया। इस वर्ष मदरसा बोर्ड परीक्षा का कुल परिणाम 88.26% रहा। परिणाम में छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों से बेहतर रहा। उत्तर प्रदेश ट्रांसको के प्रबंध निदेशक मयूर माहेश्वरी ने कार्यों में प्रथम दृष्टया लापरवाही का दोषी पाए जाने पर गाजियाबाद में अधिशासी अभियंता राहुल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई 220 केवी मुरादनगर बापूधाम लाइन पर कंडक्टर टूटने और बिजली आपूर्ति बाधित होने के मामले में की गई है। फतेहपुर में जल संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन ने एक पहल शुरू की है। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने आज एराया ब्लॉक के सिमौरी गांव से इस अभियान की शुरुआत की। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रथम चरण में प्रत्येक ब्लॉक में लगभग 25 तालाब और पूरे जिले में कुल 300 तालाबों को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य तय किया गया है।
4: इसमें हम लोग ने फर्स्ट फेज में पूरे जनपद में प्रत्येक ब्लॉक में 25 तालाब लिए हैं जिनको अभी जो नई योजना हमारी आई है जी राम जी उसके माध्यम से लोगों को रोजगार देते हुए उनको कब्जा मुक्त करा करके और उन्हीं लोगों को रोजगार देते हुए उन्हीं के माध्यम से इनको

0: रुकवाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो कब्जा मुक्त होंगे और जो जल संचयन होगा तो वो आने वाले समय में जनपद फतेहपुर में एक विकास का एक नया दौर शुरू करे।
1: आईपीएल मुकाबले में आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हो रहा है। पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है। मैच को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों के चयनित कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के देशों के साथ साझेदारी कर रहा है भारत। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और वाराणसी में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हुई रोजगार मेले में शामिल। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में की श्रम और सेवायोजन विभाग की समीक्षा बैठक। नए प्रावधानों के साथ सभी 75 जनपदों में बाल श्रमिक विद्या योजना लागू करने के दिए निर्देश। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित, बांदा में प्रशासन ने किए बचाव के इंतजाम। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ एवं एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं बेगम अख्तर की गाई कुछ गजलें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे बेगम अख्तर की गाई कुछ गजलें। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हम अपने सुनने वालों को बता दें, अब से कुछ ही क्षणों बाद यानी रात्रि 8 बजे आप सुनिएगा व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ एवं एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को अर्शी मसूद का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम गीत गाता चल के लिए आप भी अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। नंबर है 9410087876। कार्यक्रम के पहले गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है महला बालादरी महमूद खान रामपुर से, भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, फिरोजा मुस्कान, अफसर अली नगमानाज मंसूरी। दिल्ली से शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार और सुनील कुमार। जिला मुरादाबाद से अजीत कसाना, माया देवी और आदित्य। ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी, रईस दुल्हा अंसारी, करूरा मुरादाबाद से मेराज अंसारी, उर्शाद अंसारी, बाबू अंसारी, कोटवा नारायणपुर, बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा रॉय, अमित कुमार, हैप्पी रॉय, जिला गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय और प्रांजल। इसी गीत को सुनना चाहा है सिंधाली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, रंगुड़िया शुएब खान, रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमान सिंह हैप्पी, जेएस नायक, शोभा और आपके परिवार के समस्त सदस्य। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं फिल्म आंधी में किशोर कुमार और लता मंगेशकर को।

कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी की फरमाइश पर नाला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदारानी और हिना कौसर। तालुका कुप्टी महाराष्ट्र से माया शिवांश, चंद्रकला, देवीदास और आपके परिवार के समस्त सदस्य। एयरपोर्ट रोड विंद्रनगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश कार्तिक, परी स्वाति, प्रिया चौधरी, देविका मालती चौधरी, वंदना और आपके परिवार के समस्त सदस्य। मेन रोड से प्रकाश, नर्मदा और सुजाता।

इसी गीत को सुनना चाहा है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले, राजदीप राशि श्रीमती शीतल। जैतुका किशनपुर से आलम शबाना रिजवान इमरान आलम शेख फिरोजा और चांदनी। संगमित्रा श्रोता संघ से जयराम दिशांत कुमार और अर्पिता। उत्तराखंड जसपुर से रियासत हुसैन सिद्दीकी नाज बेगम रियाज रिफाकत मोहम्मद रिहान समरीन और माहिरा नूर। इसी गीत को सुनना चाहा है मुताला महाराष्ट्र से विजय रतनमाला आरती और ओम कुमार। गांव फरांसी से राजकुमार प्रमोद कुमार पुष्पेंद्र कुमार। नाजमंजर सीतामढ़ी से अकरम हुसैन बेगम इशरत वसीम अकरम रुबीना आरिज नदीम शमी ममतरानी पूनम कुमारी। बिहार से शेख जफर और निर्गिस। बागपत उत्तर प्रदेश से ममता और कुणाल। सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला नसीम बेगम शुएब साइमा मुस्तफा आफिया शाहिदा और आपके परिवार के समस्त सदस्य। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश पूनम विशाल दिशा और निमित। ग्राम अमनपुर जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा साहिल मंजू रंजना वंदना प्रियल और दिव्यांशी। इसी गीत को सुनना चाहा है बेड़ी से राजेश कंचन वैष्णवी चंचल अर्जुन और धीरज। पैराडाइज कॉलोनी अमरावती महाराष्ट्र से सईद भाई मोहम्मद सैफ मोहम्मद सूफियान और सदफ फातिमा। जिला बरेली ग्राम करेली से मोहम्मद आमिर अंसारी नसरीन अंसारी शमा शमीम माहिनूर। गांव चौहलदा बागपत से संजय नमन और आपार। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं आशा भोसले को फिल्म हावड़ा ब्रिज में।

इस समय आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल। कार्यक्रम के लिए अगली फरमाइश हमें भेजिए। राजद्वारा रोड कोठी अफसराला से रूमा खान, बॉबी खान, मदीहा सुबहान, शबनम अब्बासी, गुलफिशा, जीना तमान, शमा परवीन, गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान, रजिया खान, सिमरन खान, संदीप सक्सेना, शहनाज बाबू अंसारी, हबीब अहमद इदरीसी और इरफान खान। इसी गीत को सुनना चाह है सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहाँ, रिफात जहाँ, नुजहत शाजिया और नाजिया। पंजाब से मिंटू, पिंकी, लवली और आरती। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर, जसवीर, सीता और गीता। गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से रेखा रघुवंशी, पूजा, बबीता, शोभा, नंदनी, आराध्या, वैष्णवी, ललिता, बोरखेर। जिला उज्जैन से विनोद, नेहा, दीपक, मयंक, चेतन, दीक्षा और कुश। मोहल्ला मजार चांद शामिया, रामपुर से मोहम्मद रमजान, अदनान अली मंसूरी, अरमान अली मंसूरी, रयान चांदनी, अनमता और आशु। बाघमुड़ा छत्तीसगढ़ से प्रज्ञानंद, नंदनी और प्रकाश। इसी गीत को सुनना चाहा है हिंगोली महाराष्ट्र से रामचंद्र, बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, उत्कर्ष चौहान। आदर्श नगर मलोट से पंजाब, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव, शाइना और निवान शर्मा। जमशेदपुर से हरजिंदर, एंजल, सोनू और आपके परिवार के समस्त सदस्य। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अब्रार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई।

दीक्षा, परवीन, तमन्ना और आपके परिवार के समस्त सदस्य। उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से चांदनी आकाश कुमार और आपके परिवार के समस्त सदस्य। इसी गीत को सुनना चाहा है। आसाम से हितेंद्र दास, भिवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल, किरण, कपिल और कुणाल, पंजाब से भूषण, विशु, विशाल, शालिनी और आपके परिवार के समस्त सदस्य। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश, बल्लू और तरुण। पाकिजा रेडियो वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा, मोहम्मद अलतमश, रमेश, मोहम्मद शादाब। जामा मस्जिद से हाजी इसहाक, मोहम्मद उमर और हाजी अयूब शेरी। इसी गीत को सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ से देवशंकर, अजय देव, तुषार, डॉली, राधिका और प्रभा। मजार चांद शामिया रामपुर से मोहम्मद रमजान और आपके परिवार के समस्त सदस्य। आप सभी की फरमाइश पर आइए, अब सुनते हैं मुकेश को फिल्म हिमालय की गोद में।

कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी की फरमाइश पर, सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान कल्पित और बेबी गर्वी, आप ही के परिवार से हिमाक्ष। इसी गीत को सुनना चाहा है बलूर छत्तीसगढ़ से देव शंकर, अजय देव, तुषार डॉली, राधिका, प्रभा देवी। कासकन से राधेश्याम और आपके परिवार के समस्त सदस्य। अनारकली बाजार जगराऊं से कमल पाठक, सुनील, दीपिका, गव्या, भाई सुचा, विनोद पुरी और जयपाल यादव। गांव खाबरी अव्वल से चौधरी राजवीर सिंह और चौधरी अवियाना। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता। मुताला महाराष्ट्र से विजय रतनमाला, कुमकुम। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल अंसारी। आसमानाज शबनम बानो, जेल रोड बक्सर से राज एस डी अंसारी, फातमा नाज, डॉक्टर सोनम, डॉक्टर अदीबा। रायगढ़ बिहार से उमा राज, पवन, उमा, संजय, दीपक, कमल। खंडवा से राधिका, नीता, सपना और राकेश। जेल रोड रायगढ़ से निशा, उमा, जानवी। चंद्रनगर सहारनपुर से देव शंकर, प्रभा रानी, सुरेश और नरेंद्र। बिहार से सुधा शर्मा, काजल, मीरा और अनामिका। सरगुजा से विनोद और आपके परिवार के समस्त सदस्य। इंदिरा विहार दिल्ली से बेबी अंसारी, डब्लू और दानिश अंसारी। जेल रोड रायगढ़ से नरेंद्र यादव, महेंद्र, जानवी यादव। बक्सर बिहार से राज एस डी अंसारी, फातिमा, राज अंसारी। तख्तपुर छत्तीसगढ़ से रमेश कुमार, मीरा देवी, गंगा देवी, मिश्री देवी। सरगुजा से प्रभा, प्रमिला, आशा, निशा और आपके परिवार के समस्त सदस्य। डूंगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल, राधिका, बेबी अंशिका और तन्मय। राजकोट से हेमा, सुधा, संध्या। वीरगाम से अजीता और सुनीता। सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से दीपक, विजय, अनुश्री। बलाईगढ़ से देव टूकर, तुषार, अजय देव। आप सभी की फरमाइश पर आइए अब सुनते हैं आशा भोसले को फिल्म लोफर में।

कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी की फरमाइश पर, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज, प्रकाश चंदन और अंकुश, बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल हर्ष, मनीष अंशिका, यूनुस खान और सोफिया खान, जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून, इसी गीत को सुनना चाह है महाराष्ट्र से अभिजीत, सरिता, प्रिंस एकांश, बदलापुर मुंबई से परिणीता, सिद्धांत और टुक टुक, बहादुरपुरा नागपुर से वैशाली, श्वेता कुमारी ध्वनी, खंडवा से पिंकी मिंकी और आपके परिवार के समस्त सदस्य, रायगढ़ से लाल चंद्र मिश्रा, रमेश कुमकुम, मनकारा मंदिर बीडी कॉलोनी करगैना बरेली से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश, राजेश कुमार, रूबी भारती, एकता दिव्या, रचना भारती, श्रीमती उमवती, खनक, शगुन, सारांश, अयांश, अदिति, शिवांश और पृथक, मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर, राही, शमशुल कमर, बेगम रुखसार, रकीबा तूबा, शमीम अख्तर अंसारी, पंजाब से राजा, संगीता महक, सुनीता आरजू, हसमुख लाल, बुलबुल संजीव और आपके परिवार के समस्त सदस्य, मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई, पिंकी आर्यन, कृष्णा और पीहू, खंडवा से अब्दुल गफ्फार, अब्दुल हक, जियाउल हक, मोहम्मद उमर, राजेंद्र, वंदनानगर मध्य प्रदेश से नारायण, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी, स्वाति और आपके परिवार के समस्त सदस्य, आप सभी की फरमाइश पर आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म शागिर्द में।

कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी की फरमाइश पर झारखंड से शिवा प्रेम कपिल, शिवान संगीता लिपि और दीपाली, लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला, राजस्थान से हर्षिता परमेश्वर कान्हा, श्रीमती मनोहर, प्रभुलाल बागरी, रटलाई जिला से नैना सत्यनारायण कपिल और आपके परिवार के समस्त सदस्य। इसी गीत को सुनना चाहा है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन, माहिरा नूर, राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण, तरुण और प्रतीक, रामगंज खंडवा से विजय, कविता, विवेक, विशाल, सोनू, मोनू, ईशु, सपना, शिवी और आपके परिवार के समस्त सदस्य। आप सभी की फरमाइश पर आइए अब सुनते हैं। फिल्म लव मैरिज में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को।

अभी आप सुन रहे थे व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।

0: समाचार आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की

बताएंगे। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
2: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
5: विकसित भारत 2047, जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज है, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
2: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबी जी राम जी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल किंयुआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानाऊ से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's consistent support for peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy. US Secretary of State Marco Rubio terms India as cornerstone of United States' approach towards Indo-Pacific region. Defense Minister Rajnath Singh asserts the country is becoming self-reliant in defense manufacturing, inaugurates artillery shell manufacturing plant at Shirdi in Maharashtra. Center asks Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by 5th of next month for strengthening defense infrastructure. 90 people killed in a coal mine explosion in China. And Indian grapplers Suraj Vashisht and Sagar Singh clinch silver medals at Asian Under 23 Wrestling Championships in Vietnam. Prime Minister Narendra Modi and US Secretary of State Marco Rubio today discussed sustained progress in the India-US Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Mr. Rubio called on Prime Minister Modi at Seva Tirth in New Delhi this afternoon. Mr. Modi said in a social media post that India and the US will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. Jaishankar and NSA Ajit Doval were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio briefed Mr. Modi on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors, including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. Mr. Rubio shared the US perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. He requested Secretary Rubio to convey his warm greetings to US President Donald Trump and said he looked forward to their continued exchanges. Secretary Rubio is on a four-day visit to India to take part in the Quad Foreign Ministers meeting on the 26th of this month. U.S. Secretary of State Marco Rubio today said that India is at the cornerstone of how the United States approaches the Indo-Pacific. Inaugurating the U.S. Embassy Support Annex building in New Delhi, Mr. Rubio said this is evident in the $20 billion that Indian companies invested in the United States and in India signing up for Pax Silica.
3: Expanded commercial ties now with more than $20 billion in investments. $20 billion in investments from Indian companies in the United States. We've deepened a security partnership through military exercises in the Indo-Pacific. And of course, as part of that, we recognize that an orderly and a secure consular system is vital to solidifying this important relationship.
2: Secretary Rubio called Prime Minister Narendra Modi and U.S. President Donald Trump as two very serious leaders who are focused on the long term.
3: Anchoring that is the relationship between the President and the Prime Minister. It's a personal relationship that dates back to the first administration when the President had a chance to visit here, and it has carried over into the second administration, and you can just see the connection between them, and I think that's incredibly important. It is. The connection between leaders is incredibly important. These are two very serious leaders that are focused not just on the short term, but on the long term, and so I think that is important to note because it's a key part of the foundation of the relationship between our countries. And just in the past year, we've seen this partnership deepen.
2: Prime Minister Narendra Modi has emphasized that government jobs serve as a

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अल्पी कुमारी।
1: और मैं संजय किशोर।
0: विज्ञान भारती में हम विज्ञान, तकनीक, शोध, नवाचार और समाज पर उनके प्रभाव से जुड़े विषयों को आप तक पहुंचाते हैं।
1: आज के अंक में हम चर्चा करेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा, विज्ञान और तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका पर।
0: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और सुपर कंप्यूटर,
1: दुर्लभ खनिजों के निष्कर्षण की नई तकनीक,
0: विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और बिहार में प्रवासी पक्षियों की गणना, खरीफ फसलों के नई किस्में एवं जैविक उर्वरक,
1: साथ ही सुनेंगे विज्ञान जगत की बातें, मई माह में जन्मे और दिवंगत महान वैज्ञानिकों के योगदान तथा मई माह के प्रमुख विज्ञान दिवस।

गौरवशाली 90 वर्षों की यात्रा, इन 9 दशकों में आकाशवाणी ने केवल समाचार और मनोरंजन ही नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक के जन जागरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत होती है वर्ष 1927 से, किंतु वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई। बाद में 1957 में इसे आकाशवाणी नाम मिला। स्वतंत्रता के समय देश में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे और इनकी पहुंच लगभग 11% आबादी तक थी। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। वर्तमान में आकाशवाणी के 470 से भी अधिक केंद्र कार्यरत हैं, जो देश के लगभग 92% भौगोलिक सीमा और 99% जनसंख्या तक

रहे हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष केवल प्रसारण की यात्रा नहीं बल्कि ज्ञान, शिक्षा और वैज्ञानिक चेतना के प्रसार की गौरव गाथा है। स्वतंत्रता के बाद देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। कम उत्पादन, पारंपरिक खेती और वैज्ञानिक जानकारी के अभाव के कारण किसान आर्थिक कठिनाइयों

क्षेत्रों में जहां इंटरनेट की पहुंच सीमित थी वहां रेडियो सबसे विश्वसनीय माध्यम बना। बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा और समुद्री तूफान जैसे आपदाएं हर वर्ष लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं। ओडिशा चक्रवात, बिहार बाढ़, असम की बाढ़ और सुनामी जैसी आपदाओं के दौरान रेडियो जीवन रक्षक माध्यम के रूप में सामने आया। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में आकाशवाणी ने स्वयं को

0: प्रोग्राम 30 एपिसोड का 16 लैंग्वेजेस में। तो ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। सबसे ज्यादा इसका फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ। इसका इवेल्युएशन हम सिर्फ दो जगह कर पाए, कर्नाटक और गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों में। उससे पता चलता था 4 से 6% लोगों में, कहीं 4%, कहीं 6% लोगों ने इस प्रोग्राम को सुनने के बाद में इन बुरी आदतों से छुटकारा पाया। एक सबसे और अच्छी बात थी, ये अपने से छोटे बच्चों को सिखाते थे, उनमें बुराइयां बताते थे, उनको शिक्षित करते थे। दो तरह का फायदा हुआ इस प्रोग्राम से। तो हम तो चाहते हैं इस तरह के प्रोग्राम और होते रहने चाहिए। सन 86 के आसपास भारतवर्ष में HIV का दौर शुरू हुआ। सन 88 में फिर मैंने HIV पर एक नेशनल फीचर, आधे घंटे का फीचर किया। उसमें हिंदुस्तान भर में जा जाकर जो उस समय के अपने एक्सपर्ट थे, मुंबई में डॉक्टर गिलाडा थे, तो चेन्नई में डॉक्टर सोलोमन थे, और यहाँ के उनकी पेशेंट्स के इंटरव्यू किए, यहाँ होम्योपैथिक एक्सपर्ट्स, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स, एलोपैथिक एक्सपर्ट्स, WHO, इन सबके से इंटरव्यू करके, इनकी रिकॉर्डिंग करके 30 मिनट का प्रोग्राम एक फीचर किया।
1: विज्ञान जगत में किए गए अपने योगदान को याद करते हुए आकाशवाणी में कार्यरत पूर्व ADG मनोज पटेरिया ने अपने अनुभव इस तरह साझा किए।
2: मैंने नाटक भी लिखे विज्ञान पर जो ब्रॉडकास्ट हुए। समय नाम का नाटक था जो टाइम मशीन के ऊपर था, एक प्रदूषण के ऊपर था, जिसमें ये था कि किस प्रकार से प्रदूषण आने वाले समय में मुश्किलात पैदा कर सकता है।
3: अब बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और नवीन अनुसंधानों की। संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एनर्जी और बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। IIT पटना के निदेशक डॉक्टर TN सिंह,
4: यहाँ पर 3 शोध के एक नए आयाम खुले हैं जिनको हम इनक्यूबेशन सेंटर कहते हैं, TBI, TIH। इन तीनों का मैंडेट अलग अलग है और इसमें एक नए नवाचार और नए तरह की शोध करने वाले विद्यार्थियों, न केवल IIT पटना के लेकिन बिहार और सुदूर राज्यों से भी आए हुए विद्यार्थी इसमें काम करते हैं। नई एक शोध हमारे यहाँ के एक शिक्षक और विद्यार्थियों ने मिलकर किया है कि डिमेंशिया की बीमारी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है, और उसके तहत उनका पेटेंट भी ग्रांट हुआ है। इस तरह से हमारे यहाँ 100 से ऊपर के पेटेंट फाइल हुए हैं और बहुत सारे ग्रांट भी हुए हैं। अभी वासिनी प्रोजेक्ट चल रहा है जो अंतर इंस्टीट्यूशनल कार्यक्रम है, जिसमें कि कुछ IIT, कुछ NIT, कुछ यूनिवर्सिटी सभी मिलकर के ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें एक भाषा में यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है तो सुनने वाला अपनी लोकल भाषा में उसको समझ सके और उसको सुन सके और प्रश्न भी कर सके अपनी भाषा में, तो वक्ता के पास उसकी भाषा में जिसमें वो बोल रहा है उसको वो प्रश्न का उत्तर देगा। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत ही सफल प्रयोग है यहाँ के शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए, और पहली बार IIT पटना से विदेश में बैटरी गई है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। बिहार में पहला सुपर कंप्यूटर IIT पटना के प्रांगण में स्थित है। हमारे यहाँ जो सुपर कंप्यूटर है, ये ब्रह्मास्त्र का हम बोलते हैं, ये सुपर कंप्यूटर की टेराबाइट में इसकी स्पीड हो, टेराबाइट बहुत ही फास्ट स्पीड, त्वरित काम को निष्पादित करने का इसके अंदर जो है काम है। AI के क्षेत्र में काफी यहाँ काम हो रहा है। केवल हम भाषा तक ही नहीं, हम AI के क्षेत्र में फॉर्मेशन तक के अंदर किस तरह से 5G, 6G को स्पीड अप किया जाए उसके लिए भी, और क्वांटम में भी यहाँ का फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विभाग जो है वो राष्ट्रीय स्तर के जो मिशन है क्वांटम का उसके साथ जुड़े हुए हैं।
1: दुर्लभ खनिज यानी रेयर मिनरल्स या क्रिटिकल मिनरल्स, ये ऐसे खनिज हैं जो स्वच्छ ऊर्जा, विद्युत, वाहन, रक्षा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा उन्नत विनिर्माण उद्योगों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर 17 खनिजों को दुर्लभ खनिज का दर्जा दिया गया है, जिनकी मांग तेजी से बढ़ रही है क्योंकि विश्व ऊर्जा परिवर्तन यानी एनर्जी ट्रांजिशन और हरित प्रौद्योगिकी की ओर अग्रसर है। भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन या ANRF देश के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के लिए धन देने, बढ़ावा देने और रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए अनिवार्य सर्वोच्च निकाय है। ANRF ने IIT पटना के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रत हती मिट्टी के परमानेंट मैग्नेट यानी स्थायी चुंबक से दुर्लभ खनिज के निष्कर्षण के अनुसंधान को ग्रांट दिया है।
5: जो आपका दुर्लभ खनिज है और हम लोग बोलते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स है, ये है कि आपका जो हम लोगों का डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होता है, तो वो सब चीजों में ये दुर्लभ खनिज इस्तेमाल होता है। हर देश में किसी किसी जगह में आपका ये दुर्लभ खनिज

जो डिपॉजिट्स होता है। सो ये डिपॉजिट से अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो हम लोग उनको बोलते हैं कि प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी रिसोर्स, तो वो उसके जियोलॉजिकल हैजर्ड्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो होता है हमारे पास सेकेंडरी रिसोर्स होता है। सेकेंडरी रिसोर्स ये होता है कि जैसे ई वर्ज्य होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है आपका, जो भी इलेक्ट्रॉनिक

मटेरियल प्राइमरी सोर्स पे अगर कोई मटेरियल है प्लास्टिक है तो उसको जलाया जाता है तो उससे प्रदूषण हो सकता है। तो इसलिए दूसरा तरीका क्या होता है कि आपके पास हाइड्रोमेटलर्जी होता है। हाइड्रोमेटलर्जी में जनरली लोग क्या करते हैं कि ऐसी

परमानेंट मैग्नेट जब वो ऑब्सोलीट हो जाता है उस परमानेंट मैग्नेट से, और मेजोरिटी ऑफ द सोर्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट आपका चाइना है, तो वो सब आप एक्सपोर्ट सब बंद कर दिया, जो डेवलप कंट्रीज है जिनके पास क्रिटिकल मिनरल का मेजोरिटी, इसलिए क्या है कि हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से ये सब पदार्थ और दुर्लभ खनिज निष्कासित करना है। तो इसी संदर्भ में ये

0: विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम था हर पक्षी महत्वपूर्ण है, आपका नजरिया मायने रखता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पक्षी दो प्रमुख वजहों से प्रवास करते हैं, भोजन और घोंसले की तलाश में ये पूरी दुनिया में प्रवास करते हैं। वर्ल्ड लाइफ के अनुसार विश्व के पक्षियों की 40% प्रजातियाँ अब घट रही हैं। प्रवासी पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उनकी घटती संख्या जल की गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रति कमजोर सहनशीलता का कारण बन रही है। भारत में हर साल 370 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं। बिहार में 70 से अधिक प्रवासी पक्षियों सहित कुल 260 से ज्यादा प्रजातियों के 10,000 से अधिक पक्षियों की गणना की गई है। आप ई बर्ड बिहार पर जाकर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पटना, भागलपुर या और भी जो क्षेत्र हैं उनमें हाल ही में देखे गए पक्षियों की सूची और चेकलिस्ट को देख सकते हैं। बिहार में प्रवासी पक्षियों के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर देव नारायण चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी डिपार्टमेंट, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर।
1: पिछले कई सालों से बिहार का जो वन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो और बॉम्बे की संस्था है बीएनएचएस, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इन दोनों के प्रयास से पक्षियों की गणना शुरू हुई है। 2022 से इसकी शुरुआत हुई और ये 26 लगभग 5 गणना हो चुकी और इससे काफी अच्छे परिणाम आए हैं। हम लोगों ने बिहार के 3800 जिलों में जितने भी इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स है जहाँ पर इन पक्षियों का वास होता है, ये प्रवासी पक्षी जहाँ से आकर के पनाह लेते हैं, वहाँ पर इसकी गिनती शुरू हुई और इसमें जो भी पक्षी विशेषज्ञ थे, जो बर्डर थे, जो ट्रेनर थे, उन लोगों को इसमें लगाया गया और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑर्डिनेटर की बहाली हुई जो एक्सपर्ट के रूप में काम करते हैं। इससे अच्छे परिणाम आए तो धीरे धीरे हर साल कुछ कुछ वेटलैंड की संख्या भी बढ़ती चले गई, उसको भी हम लोग कवर करते हैं। तो इसमें देखा गया कि एक अच्छा डाटा तैयार हो गया और आने वाले दिनों में बिहार के पक्षियों पर एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। जो इसके पहले 2012 में ही एक बुक पब्लिश हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा, बर्ड्स ऑफ बिहार, उसका जो इन्फॉर्मेशन था उससे कहीं ज्यादा इस रिपोर्ट के बाद जो ये छपेगा तो आने वाले दिनों में जो एकेडमिक्स के फील्ड में ये एक अच्छी जानकारी साबित होगी।
0: और अब जानते हैं विज्ञान जगत की नवीनतम घटनाओं के बारे में। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाला सुपर एल नीनो 1950 के बाद सबसे शक्तिशाली में से एक हो सकता है जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकता है। यह कई क्षेत्रों में बाढ़, सूखा, हीट वेव और जंगलों में आग जैसी घटनाओं को बढ़ा सकता है। जलवायु परिवर्तन इसकी प्रकृति को और अधिक अनिश्चित बना रहा है। सुपर एल नीनो का मतलब समुद्र के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की असामान्य बढ़ोतरी से है, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है। खासकर दक्षिण एशिया पर इसका अधिक असर पड़ता है।
2: भारत के असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पहली बार सैटेलाइट ट्रैक की गई गंगा सॉफ्ट शेल कछुए को छोड़कर संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। यह संवेदनशील मीठे पानी की प्रजाति का कछुआ है जो नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके व्यवहार, प्रवास और पर्यावरणीय खतरों के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए ट्रैक की जा रही है। यह पहल वैज्ञानिकों को इस जलीय सरीसृप प्रजाति के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करने में मदद करेगी। इस प्रजाति को असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है। और अब स्वाद और सेहत से भरपूर बिहार की पहचान मखाना के बारे में जानते हैं। सुपर फूड बन चुका मखाना अब वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। मखाना अनुसंधान केंद्र में मखाना की नई प्रजातियों और उत्पादन तकनीकों पर कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में ICAR राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार।
3: कोरोना काल के बाद से जब स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता काफी तेजी से बढ़ी है तो मखाना में पाए जाने वाले जितने औषधीय गुण हैं, इसमें पाई जाने वाली जितनी पौष्टिकताएं हैं, तो इन गुणों के प्रति, इन स्वास्थ्य लाभों के प्रति बहुत तेजी से दुनिया भर में जागरूकता हुई है। इसमें मिनरल्स काफी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, पोषक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे न्यूट्रिशन के लिए, जैसे आयरन, जिंक इत्यादि बहुत अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है। इसके अलावा ये जीरो फैट फूड इसे मानते हैं, इसमें फैट की मात्रा बहुत ही कम है, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसमें बहुत कम होता है, मधुमेह के जो मरीज हैं वो भी बहुत सुगमता से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, मोटापे की समस्या से जो ग्रसित है वो भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं क्योंकि फैट इसमें बहुत कम है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के माध्यम से भी एक नई प्रजाति अभी विकसित की जा रही है और मेरा मानना है कि अगले एक वर्ष में ये वैरायटी आ जाएगी जिसकी उत्पादन क्षमता यहाँ से करीब 15 से 20% और ज्यादा होगी। और इसके अतिरिक्त कांटे रहित मखाना

0: के प्रविधों के विकास पर भी अभी चर्चा हो रही है।
1: हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को सीमित करने की बात कही है ताकि खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा को प्राप्त किया जा सके। बिहार के 13 जिलों में जैविक खेती की जा रही है। कृषि विज्ञान में खरीफ खाद्यान्न की नई प्रजाति के विकास एवं ब्लू अलगी जैविक उर्वरकों के उपयोग के संबंध में बता रहे हैं डॉक्टर दिव्यांशु शेखर, कृषि विज्ञान केंद्र जाले दरभंगा।
2: जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश को प्राथमिकता में रखा है कि हम रासायनिक उर्वरकों से हटकर प्राकृतिक या जैविक उर्वरकों की तरफ बढ़े, जिससे कि न कि हमारा फसल की उत्पादकता बनी रहे, साथ में ही उसकी गुणवत्ता में भी कोई ह्रास न हो। खास तौर पे धान की फसल में जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी या जिसको हम अजोला कहते हैं, उसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमारी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है या आवश्यकता है वो 10-20% तक हम उसके द्वारा कम कर सकते हैं। साथ में ही इसके प्रयोग करने से हमारे भूमि में कार्बनिक तत्वों की भी मात्रा बढ़ती है और साथ साथ जो खरपतवार होते हैं उनकी भी संख्या कम होती है।
3: और अब अंतरिक्ष की बात। हाल ही में विश्व का पहला ऑप्टो SAR सैटेलाइट मिशन दृष्टि लॉन्च किया गया। यह एक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट है। अंतरिक्ष क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियों के बारे में हमसे बात की भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुअनंतपुरम के कुलपति प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी ने।
4: दो चीज होता है, देखिए आप जो 100 साल से हम लोग कोडाइकनाल से सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं, ये जरूरी इसीलिए है कि वो हमारे सबसे नजदीकी तारे हैं, उसका चुंबक क्षेत्र का कुछ परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन का एक 11 साल का एक हम बोलते हैं सोलर साइकिल जैसा है, तो कभी कभी उसमें चुंबक क्षेत्र थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कभी कभी थोड़ा कम होता है। एंड ये जो बढ़ना और कमना का जो ऑसिलेटर पैटर्न जो है, उसको स्टडी करने के लिए एक डायनामो मैकेनिज्म को हम लोग मैथमेटिकली अब इस्तेमाल करते हैं। सोलर डायनामो एक थ्योरी है जो हमको समझने के लिए ये करते हैं कि क्यों ऐसा सूर्य में चुंबक क्षेत्र 11 साल का एक पीरियोडिसिटी क्यों रहता है। बट ये तो एक थ्योरी हो गया, थ्योरी को तो मैच करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए। ऑब्जर्वेशन जितना लंबा होगा तभी इतना अच्छा है, इसीलिए ये कोडाइकनाल में ऑब्जर्वेशन हम लोग 1904 साल से चालू किया। उसी जमाने में तो फोटोग्राफिक प्लेट होता था, फिल्म होता था, हमने वो पूरा जो आर्काइव है उसको पूरा डिजिटाइज किया है। आजकल का जमाना में तो कोई हाथ से तो कुछ करते नहीं, आपको इमेज होना चाहिए जो डिजिटल मोड है। एक्चुअली पुराना आर्काइव है उसको डिजिटाइजेशन करना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है। तो ये 100 साल का पूरा डेटा डिजिटाइज करने के बाद हमने अभी अध्ययन किया कि ये 11 ईयर साइकिल कैसा होता है। कभी कभी एक साइकिल थोड़ा बड़ा होता है, कभी थोड़ा छोटा होता है। जब बड़ा होगा उसमें सोलर जो तूफान वो और ज्यादा होगा, जब थोड़ा चुंबक क्षेत्र थोड़ा कम होगा तो वो भी जानकारी होना चाहिए। एक तो है कि अभी हाल ही में ये तूफान आने वाला है या नहीं आने वाला, ये जानकारी, और एक है कि पहले ऐसा तूफान होता था कि नहीं होता था। अभी सन जो स्टार वो मिडिल एज में है, वो जब बड़ा हो जाएगा, वो रेड जायंट हो जाएगा, हम तो बच नहीं पाएंगे। अभी मिलियनियर में नहीं होने वाला है तो अभी सोचने का नहीं है, बट ये सब जानकारी होना चाहिए।
1: मई का महीना विज्ञान के इतिहास में बेहद खास है। कई महानतम वैज्ञानिकों का जन्म हुआ जिन्होंने भौतिकी, चिकित्सा और रासायन विज्ञान की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इस महीने देश के कुछ ऐसे महान वैज्ञानिक और गणितज्ञों का जन्म हुआ जिन्होंने न केवल भारत में आधुनिक विज्ञान और परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी बल्कि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया। डॉक्टर राजा रमन्ना, आप भारत के परमाणु कार्यक्रम के शिल्पकार कहे जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1925 को तुमकुर कर्नाटक में हुआ। K.R. रामनाथन, आप भारत के मौसम विज्ञान और ओजोन अनुसंधान के जनक माने जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1893 को पलक्कड़ केरल में हुआ। हरीश चंद्र, जो कि गणित और भौतिकी के महान सेतु कहे जाते हैं, आपका जन्म हुआ 11 मई 1923 को कानपुर उत्तर प्रदेश में। आप महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के सहायक भी रहे। आपने लाई ग्रुप्स और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में क्रांतिकारी सिद्धांत दिए जिन पर आज भी क्वांटम मैकेनिक्स और आधुनिक गणित टिकी हुई है। हमारे अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विजय भटकर, आप भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। आपका जन्म 11 मई 1946 को मोरंबा महाराष्ट्र में हुआ। आपके नेतृत्व में सीडेक ने साल 1991 में भारत

0: पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया। आगे नाम आता है प्रोफेसर डॉक्टर बलराम भार्गव का, जिनका जन्म 3 मई 1961 को हुआ था। आप भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे। पूरी दुनिया जब सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रही थी, तब भारत की वैज्ञानिक लड़ाई का नेतृत्व करने वाले मुख्य चेहरों में डॉक्टर भार्गव का नाम सबसे आगे था। और अब हम जानेंगे मई महीने में दुनिया ने विज्ञान जगत के कुछ बेहद प्रतिष्ठित चेहरों को खोया है। डॉक्टर मोनिका मोंटे फाल्कोन, आपका निधन 14 मई 2026 को हुआ। आपने समुद्री पारिस्थितिकी और जीव विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर विलियम चार्ल्स लिविंगस्टन, आपका निधन 2 मई 2026 को 98 वर्ष की आयु में हुआ। आपने सौर खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया।
1: आज विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को याद करते हुए हमारे सुधी श्रोताओं ने अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए। बिहार विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार,
2: शब्द ब्रह्म के मूल मंत्र को चरितार्थ करते हुए देश के जन जन की आवाज एवं सूचना क्रांति के उद्घोष के प्रतीक आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के गौरवमयी सचित्र के 90 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण आकाशवाणी परिवार और इसे करोड़ों श्रोताओं को मैं प्रेम कुमार, अध्यक्ष बिहार विधानसभा, हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। 8 जून 1936 को अपनी औपचारिक यात्रा शुरू करने वाला आकाशवाणी आज केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं, बल्कि स्वतंत्र भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विकास का आजीवन साक्षी है। स्वाधीनता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक आकाशवाणी राष्ट्र के सूत्र में पिरोने का अभूतपूर्व कार्य किया है। संकट और आपदा के समय इसकी प्रमाणिक खबरों ने हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है, जिससे इसकी विश्वसनीयता आज भी अक्षुण्य है। जन जागृति और राष्ट्र निर्माण सुदूर गांव, खेतों, खलिहानों और सीमावर्ती क्षेत्रों तक ज्ञान और चेतना का प्रकाश फैलाने में इस माध्यम की भूमिका रहती है। कृषि सुधारों से लेकर मन की बात जैसे संवादों के माध्यम से इसने जन जागृति को एक नई दिशा दी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति तक सरल भाषा में पहुंचाकर आकाशवाणी ने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के संकल्प को सिद्ध किया है। मैं इस अवसर पर आकाशवाणी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि अद्वितीय संस्थान आदि की अपनी स्पष्टता, राजभक्ति और सेवा से देश को आलोकित करता रहेगा। रेडियो की वह मधुर पुकार आज भी दिलों में बसती है। आकाशवाणी की हर धुन भारत की आत्मा सी लगती है।
0: पंचायती राज्य मंत्री बिहार सरकार दीपक प्रकाश,
3: मैं दीपक प्रकाश, मंत्री पंचायती राज विभाग, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हम सबों के सामाजिक जीवन में, देश के राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में और साथ ही साथ जो हमारा देश का इतिहास है, उन सबों में आकाशवाणी का एक विशेष रोल रहा है। आजादी की लड़ाई हो या विभिन्न कालखंडों में जन आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने का काम हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने कमेंडेबल काम किया है। हम सबों के बचपन की यादें भी आकाशवाणी से जुड़ी हैं। क्रिकेट की कमेंट्री आकाशवाणी पे सुननी हो, पुराने गाने आकाशवाणी पे सुनने हो, सभी विद्यार्थियों के लिए टॉक शोज के माध्यम से ज्ञानवर्धन करने की बात हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने काम किया है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ आकाशवाणी ने अपने को बदलने का भी काम किया है। एनालॉग से डिजिटल तक का सफर आकाशवाणी का विशेष रूप से कमेंडेबल है। आज के इस चकाचौंध दिखावटी मीडिया के दौर में आकाशवाणी का एक विशेष स्थान है, जो कि हमें अपने जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। आकाशवाणी का विशेष रूप से हम धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहेंगे कि आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबों के बीच किया जाने वाला मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होता है। एक बार पुनः आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे करने के लिए बधाई देते हुए, और आकाशवाणी हम लोगों के बीच जीवन का और हिस्सा बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, आज के युवा आकाशवाणी से जुड़े, इस बात की शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।
4: मेरा नाम नीलम चौधरी है, मैं एक्स IAS ऑफिसर हूं और एक कथक डांसर भी हूं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आकाशवाणी का नाम आते ही एक स्पंदन सा होने लगता है और याद आता है अपने स्टूडेंट लाइफ का वो स्टडी टेबल जहां हमेशा एक ट्रांजिस्टर रखा रहता था। चूंकि मैं म्यूजिक की फील्ड से हूं, इसीलिए म्यूजिक के लगभग सब कार्यक्रम मैं आकाशवाणी का सुना करती थी, चाहे वो शास्त्रीय संगीत का हो या फिल्मी गानों का हो, गैर फिल्मी गानों का हो, भजन हो, लोक संगीत हो, मैं सब कार्यक्रम सुनती थी और वो सारे गाने मुझे कॉन्सेंट्रेशन देते थे और मुझे पढ़ाई अच्छी मेरी होती थी। मैंने महसूस किया है कि आकाशवाणी ने समाज के हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोगों को अपने कार्यक्रम में इनकॉर्पोरेट किया है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र से हो।

0: स्वास्थ्य के क्षेत्र से हो, तकनीकी क्षेत्र से हो, नारी सशक्तिकरण की बात हो, लगभग लगभग सभी क्षेत्र के लोगों के लिए इसने कार्यक्रम बनाया है। बच्चों के लिए हो, शाम में 7-7:30 बजे अनंत सिंह का न्यूज होता था, वो तो बहुत ही लोकप्रिय था और बहुत स्पष्ट और बहुत अनबायस्ड कार्यक्रम हुआ करता था। उसके अलावा नाटक में हवा महल और लोहा सिंह का नाटक हम लोग बहुत इंतजार करते थे और सुनना करते थे। तो ये रिचनेस आकाशवाणी में शुरू से रहा है। आज भी हर वर्ग के लिए कार्यक्रम बनाना, उसे सक्सेसफुली प्रसारित करना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है आकाशवाणी की। और मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी इच्छा है, मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से 90 वर्षों का सफर तय हुआ, उससे भी और आगे बढ़कर आकाशवाणी अपना कार्यक्रम करे, लोगों में प्रिय रहे और हर वर्ग के लोग इसमें जुड़े रहे।
1: प्रोफेसर दिनेश सिंह, पद्मश्री, उपाध्यक्ष जम्मू एवं कश्मीर उच्च शिक्षा परिषद और पूर्व कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय।
2: पूर्ण रूप से अपने हृदय से बधाई दे रहा हूँ आकाशवाणी से जुड़े सारे जो हमारे सहयोगी हैं, और मैं चाहता हूँ कि इसको एक त्योहार के रूप में भारत में मनाया जाए, त्योहार के रूप में कि आकाशवाणी ने भारत के लिए क्या किया। मैं आकाशवाणी से बचपन से जुड़ा हूँ और आकाशवाणी से अमृत बरसता है पूरे देश में, विश्व में। मैंने यहाँ से इतनी रचनात्मक युक्तियों को ग्रहण किया है, इसने भारत की आत्मा को आकाशवाणी ने सींचा है। अब इसके जो एनिवर्सरी आ रही है, इसके 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हम सबको इसमें भागीदारी लेनी है और इस उत्सव को पूर्ण रूप से अपने अपनी जगह मनाना है। आकाशवाणी ने भारत का बहुत भला किया है।

0: ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे नई जानकारियों, नवीन शोध परक बातों एवं विज्ञान जगत की हलचलों के साथ।
1: तो सीखें कुछ नया, सोचें कुछ अलग। आज की विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती को तैयार करने में स्वर सहयोग रहा अल्पी कुमारी और संजय किशोर का। संयोजक थे दिलीप झा और प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार। आकाशवाणी पटना।
0: नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लाए हैं श्री सीपी माधवन नंबूदरी द्वारा प्रस्तुत कर्नाटक शास्त्रीय गायन। श्री सीपी माधवन नंबूदरी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी के नाम से जाना जाता है, आकाशवाणी के ए ग्रेड वोकल आर्टिस्ट हैं और कर्नाटक संगीत में दो दशकों से अधिक के उत्कृष्ट योगदान के साथ अत्यंत सम्मानित कलाकार हैं। उन्होंने 500 से अधिक एकल प्रस्तुतियां की है, जिनमें से अनेक में प्रसिद्ध कलाकारों जैसे डॉक्टर टी के मूर्ति, डॉक्टर उमयालपुरम के शिवरामन, श्री श्रीमुष्णम राजा राव तथा श्री मन्नारगुड़ी ईश्वरन ने संगति की है। उनके कार्यक्रम विदेशों में भी आयोजित हुए हैं, जिनमें अमेरिका, पेरिस, दक्षिण पूर्व एशिया तथा खाड़ी के देश शामिल हैं। केरल के चंगनाशेरी में जन्मे माधवन नंबूदरी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा अपने प्रथम गुरु श्री पीजी पद्म कुमार से प्राप्त की। बाद में वे स्वर्गीय टीवी शंकर नारायणन के शिष्य बने तथा उन्हें श्री पीआर कुमार केरला वर्मा और श्री कलन्यूर चंद्रशेखरन जैसे प्रसिद्ध संगीतज्ञों से उन्नत मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। वे आरएलवी संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय त्रिपोणितरा में पूर्व संगीत प्रवक्ता रह चुके हैं। उन्हें भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से जूनियर फेलोशिप भी प्राप्त हुई है और मद्रास म्यूजिक अकादमी से सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का सम्मान भी प्राप्त हुआ है।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ कर्नाटिक वोकल कॉन्सर्ट बाय श्री सीपी माधवन नंबूदरी, पॉपुलरली नोन एज चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी। ही इज एन ए ग्रेट वोकल आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी and a highly respected performer with over 2 decades of distinguished contribution to Carnatic music. He has presented more than 500 solo concerts, many of them accompanied by eminent maestros such as Dr. T.K. Murthy, Shri Umayalpuram K. Shivaraman, Shri Shri Mushnam Raja Rao, and Shri Mannarkudi Ishwaran. His performances have also reached audiences abroad, including concerts in the United States, Paris, Southeast Asia, and Gulf countries. Born at Chengannasheri in Kerala, Madhavan Nambudiri began his musical training under his first guru, Sri P.G. Padmakumar. He later became a disciple of late T.V. Shankaranarayanan and also received advanced guidance from renowned musicians Shri P.R. Kumara Kerala Varma and Shri Kalanyur Chandrasekharan, a former music lecturer at the RLV College of Music and Fine Arts, Tripunatra. He is also a recipient of the Junior Fellowship from the Ministry of Culture, Government of India, and has been honored with the Best Musician Award from the Madras Music Academy.
2: The contribution of Akashavani to the growth of artists like me is truly immeasurable. Akashavani has provided a dignified platform that nurtures talent and strengthens the cultural fabric of our nation. Best wishes to Akashavani for completing successful 90 years.
0: आज रात के प्रसारण में इनके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर विद्वान तिरुविरा विजू एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही विल बी अकंपनीड बाय विद्वान तिरुविरा विजू एस आनंद ऑन द वायलिन, विद्वान कोटयम जी संतोष कुमार ऑन द मृदंगम एंड श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार ऑन द घटम।
0: श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी अपने गायन की शुरुआत स्वाति तिरुनाल की रचना परम पुरुषम से कर रहे हैं, जो राग ललित पंचम पर आधारित है और खंडु चापू ताल में निबद्ध है।
1: श्री सीपी माधवन नंबूदरी बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विद परम पुरुषम, अ कॉम्पोजिशन ऑफ स्वाति तिरुनाल इन द राग ललित पंचमम सेट टू खंडु चापू ताल।

0: अब प्रस्तुत है केसी केशवा पिल्ले की एक कृति श्री बालकृष्णा पाहि माम, जो राग पूर्वी कल्याणी पर आधारित है और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू श्री बालकृष्णा पाहि माम, अ कॉम्पोजिशन ऑफ केसी केशव पिल्ले। इन द राग पूर्वी कल्याणी सेट टू रूपक ताल।

0: अपने गायन को जारी रखते हुए श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी अब प्रस्तुत कर रहे हैं श्यामा शास्त्री द्वारा रचित रावे हिमगिरी कुमारी, जो राग तोड़ी पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: द नेक्स्ट आइटम इज रावे हिमगिरी कुमारी इन द राग तोड़ी सेट टू आदि ताल कंपोज्ड बाय श्यामा शास्त्री।

0: ये था तनियावर्तनम। मृदंगम पर थे विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार।
1: दैट वॉज तनियावर्तनम प्लेड ऑन द मृदंगम बाय विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार एंड ऑन द घटम बाय श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार।
0: श्री चंगना श्री माधवन नंबूदरी अपने गायन का समापन पुदुकोड कृष्णमूर्ति की एक रचना श्री हरे से कर रहे हैं, जो कि राग रेवती पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री सीपी माधवन नंबूदरी कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद श्री हरे कंपोज्ड बाय पुदुकोड कृष्णमूर्ति इन द राग रेवती सेट टू आदि ताल।

0: इसके साथ ही संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी का गायन समाप्त होता है। इनके साथ वायलन पर विद्वान तिरुविजा विजु एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार ने संगति की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुवनंतपुरम केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: With that, we conclude the vocal recital by Sri C.P. Madhavan Nambudiri in the broadcast of National Program of Music. He was accompanied by Vidwan Tiruvida Viju S. Anand on the violin, Vidwan Kottayam G. Santosh Kumar on the mridangam, and Sri Vaadapalli R. Krishna Kumar on the ghatam. This broadcast was recorded at Akashvani Tiruvananthapuram and came to you from the Delhi station of Akashvani.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में

0: सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: भारत ने पैक सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि यह भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांचकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। यह विस्फोट कल क्युआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। वियतनाम के दा नांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतुगोब से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एहतजान खालमा से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रामपुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी ये सभा संपन्न होती है प्रातः 5:55 पर मीडियम वेव और एफएम पर। हमारी प्रातःकालीन सभा एक साथ आरंभ 5:55 पर मीडियम वेव और एफएम पर। हमारी प्रातःकालीन सभा एक साथ आरंभ